मीडियम वेव 396.82 मीटर अर्थात 756 किलोहर्ट्ज, एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। आज शनिवार है। शक संवत 1948 की वैशाख मास की 20वीं तिथि, तदनुसार 9 मई सन 2026। इस समय प्रातः के 5:57 और 9 सेकंड्स में हैं। अब हमारी प्रातःकालीन सभा आरंभ होती है।

0: मीडियम वेव और एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी जगदलपुर है। सुबह के 6 बजने वाले हैं। थोड़ी देर में समाचार अब हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले करेंगे।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। शुभेंदु अधिकारी आज पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। भारतीय जनता पार्टी यहां पहली बार सरकार बनाने जा रही है। शपथ ग्रहण समारोह कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन सहित कई केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने की उम्मीद है। इससे पहले कल श्री शुभेंदु अधिकारी को राज्य भाजपा विधायक दल का नेता चुना गया। विधायक दल की बैठक कोलकाता में गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई।
2: लगभग 8 प्रस्ताव और समर्थन प्राप्त हुए हैं और सभी प्रस्ताव और समर्थन एक ही नाम के मिले हैं। उसके बाद दूसरे नाम के लिए भी सबको समय दिया गया, पर्याप्त समय दिया गया, मगर कोई दूसरा नाम नहीं आया है। इसलिए केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में मैं श्री शुभेंदु अधिकारी जी को पश्चिम बंगाल विधानमंडल दल के नेता के रूप में निर्वाचित घोषित करता हूँ।
1: विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद श्री अधिकारी ने राज्यपाल आरएन रवि से भेंट की और सरकार बनाने का दावा पेश किया। तमिलनाडु में तमिलगम वेत्री कलगम तिवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय के नेतृत्व में सरकार गठन को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने टीवीके को समर्थन देने की खबरों का खंडन किया है। ये भी खबरें आ रही हैं कि वे आज होने वाला शपथ ग्रहण समारोह स्थगित कर दिया गया है। इससे पहले कल टीवी के प्रमुख ने राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अरलेकर से मुलाकात कर सहयोगी दलों के समर्थन पत्र सौंपकर सरकार बनाने का दावा पेश किया था। उधर केरलम में भी नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। यूडीएफ की प्रमुख पार्टी कांग्रेस रविवार तक नेता की घोषणा कर सकती है। कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि विधायक दल के नेता के बारे में राज्य में पार्टी पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय नेतृत्व निर्णय लेगा। वहीं असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रहा है। शपथ ग्रहण समारोह मंगलवार को होगा। पार्टी विधायक दल की बैठक कल होगी। सर्वोच्च न्यायालय ने पंजाब में बढ़ते मादक पदार्थों के खतरे पर चिंता व्यक्त की है। राज्य की नीति में मूलभूत बदलाव लाने और प्रमुख तस्करों को गिरफ्तार करने को कहा गया है। न्यायालय ने कहा कि इससे होने वाली मानवीय क्षति चिंताजनक है। ईरान और अमेरिका के बीच तनाव और बढ़ गया है। ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने दावा किया है कि उसने ओमान की खाड़ी में एक तेल टैंकर को कब्जे में ले लिया है। वहीं अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने कहा है कि उनके सुरक्षा बलों ने नाकेबंदी का उल्लंघन करने पर ईरानी झंडे वाले 2 टैंकरों को रोक दिया है। इन घटनाओं के बाद ईरान और अमेरिका के बीच संघर्ष विराम टूटने के कगार पर पहुंच गया है। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस और यूक्रेन के बीच 3 दिन के युद्ध विराम की घोषणा की है। युद्ध विराम आज से 11 मई तक रहेगा। राष्ट्रपति ट्रंप ने बताया कि यह प्रस्ताव उन्होंने स्वयं रखा था और इनमें दोनों पक्षों को 1,000 कैदियों का आदान प्रदान करना शामिल होगा। उन्होंने रूस यूक्रेन संघर्ष को द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सबसे बड़ा युद्ध बताते हुए कहा कि स्थायी रूप से शांति स्थापित करने के लिए बातचीत जारी है। ये युद्ध विराम रूस के विजय दिवस के मौके पर हो रहा है, जो प्रतिवर्ष 9 मई को मनाया जाता है। ये दिन द्वितीय विश्व युद्ध में नाजी जर्मनी पर सोवियत संघ की जीत के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। मौसम विभाग ने 13 मई तक देश के उत्तर पश्चिमी हिस्सों में बिजली चमकने और बारिश होने का अनुमान व्यक्त किया है। केरलम, माहे, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारिक्काल में तेज बारिश हो सकती है। भारत की महिला फुटबॉल टीम AFC अंडर 17 एशिया कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। भारत ने 2005 के बाद इस टूर्नामेंट में अपनी पहली जीत दर्ज की है। और IPL क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने कल रात दिल्ली कैपिटल्स को 8 विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए दिल्ली ने 8 विकेट खोकर 142 रन बनाए। जवाब में कोलकाता नाइट राइडर्स ने 15वें ओवर में 147 रन बनाकर लक्ष्य हासिल कर लिया। लगातार चौथी जीत के साथ कोलकाता अंक तालिका में सातवें स्थान पर पहुंच गई है। प्रतियोगिता में आज राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस सामने सामने होंगे। जयपुर में ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
0: मीडियम वेव और एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। इस समय सुबह के 6:05 हुए हैं। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। सर्वप्रथम सुनिए मातृ वंदना समो स्वरों में।

कहा जाता है कि राम से बड़ा राम का नाम है, जो दुखों का हरण करता है और जीवन मृत्यु के चक्र से मुक्ति दिलाता है। राम की महिमा अपरंपार है, जो मर्यादा, त्याग, प्रेम और धर्म के प्रतीक के रूप में पूजे जाते हैं। भगवान विष्णु के अवतार श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाते हैं, जो जीवन के आदर्श सत्य और संयम का मार्ग दिखाते हैं। उनके नाम का जाप, राम नाम, समस्त पापों को धोकर मोक्ष, सुख और शांति प्रदान करने वाला माना जाता है। आइए हम भी भगवान श्री राम की आराधना करें।

0: अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना, मीडियम वेव और एफएम बैंड पर। ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। इस समय सुबह की 6:20 हुए हैं। प्रस्तुत है आज का चिंतन।
1: सेवा धर्म परम गहनो योगी नाम अपि अगम्य। सेवा का प्रचलित अर्थ सामान्यतः हम देखते हैं वह चाकरी के रूप में है। वहाँ सेवा कार्य के बदले कुछ आर्थिक या भौतिक सहायता की याचना या अपेक्षा होती है। पर यदि यही सेवा कार्य धर्म के रूप में जीवन में उतारें तो वहाँ बदले में आत्मिक शांति और मानसिक शक्ति की अपेक्षाएं होती। हमारा जीवन सब समय संसार की विभिन्न झंझटों और चिंताओं में बिखरता और उलझता जाता है। ऐसे में जो इस जीवन को बांध कर एक उचित दिशा में ले जाए वही धर्म है। वहाँ कार्य की प्रेरणा बाध्यता से नहीं वरन प्रीति से मिलती है। चाकरी वृत्ति में सेवा कार्य एक बोझ के रूप में प्रतीत होता है, पर धर्म के रूप में वही कार्य उल्लास और संतोष देने वाला बन जाता है। एक लड़की अपने छोटे भाई को गोद में लेकर कल्पना करें कि पहाड़ी चल रही है। कोई यदि उससे कहे कि अरे तुम यह बोझ लेकर चल रही हो तो तुम्हें बहुत कष्ट होता होगा, तो लड़की का क्या उत्तर होगा आप जानते हैं? नहीं नहीं,

0: मेरा छोटा भाई है, उसे उठाने में कष्ट कैसा, इसमें तो मुझे आनंद मिलता है। पर यदि वह छोटा भाई ना होता और वह एक चाकर होती तो सब समय अपनी गरीबी या मजबूरी का रोना रोते हुए उसे ढोती। तो यही धर्म वाला दृष्टिकोण हमें अपने प्रत्येक कार्य में उतारने की चेष्टा करनी होगी। यह दृष्टिकोण आने से पहले हमारे भीतर की गुलामी की, बंधन की भावना भी दूर होगी, हम मुक्ति की ओर अग्रसर होंगे। सेवा जब धर्म का रूप ले लेती है तब वह पूजा बन जाती है, तब वहां अपना सर्वोत्तम समर्पित करने की शक्ति जागती। पर यह कैसी विडंबना दिखाई पड़ती है कि जब भारत गुलाम था, परतंत्र था, तब तो हमारे भीतर देश के प्रति समर्पण त्याग की भावना थी, पर स्वतंत्र होने के बाद यह गुलामी वाला, चाकरी वाला भाव, भोग स्वार्थ की वृत्ति प्रबल हो गई। स्वतंत्रता के पूर्व मानो हमने पूरी मानसिक शक्ति लगाकर एकत्र कर वह लड़ाई लड़ी थी, और स्वतंत्र होने के बाद इतने मानसिक रूप से कमजोर हो गए कि प्रलोभनों की आंधी में अपने को नहीं संभाल पाए। आज देश को आवश्यकता है इस मानसिक शक्ति को पुनः सबल बनाने की। इसके लिए हमें अपने कार्यों में सेवा धर्म की वृत्ति पुष्ट करनी होगी और चाकरी वृत्ति को निकाल फेंकनी होगी। पर क्या यह संभव है? श्री राम कृष्ण देव एक दिन अपने भक्तों को उपदेश देते हुए वैष्णव मत के संबंध में बोलते हुए बतलाने लगे कि इस मत के अनुसार तीन बातें करनी है, ईश्वर की पूजा अर्चना, नाम में रुचि रखकर स्मरण और जीवों पर दया। जीवों पर दया बोलते ही श्री राम कृष्ण देव समाधि मग्न हो गए और उसी भाव में कहने लगे, दूर हो जीवों पर दया, तू कीटानुकीट, तू जीवों पर दया करने वाला कौन होता है? दया नहीं सेवा, शिव ज्ञान से सेवा, शिव ज्ञान से सेवा, यह है सेवा का आदर्श। सामान्यतया सेवा के पीछे करुणा या दया का भाव होता है। मैं अधिक सामर्थ्यवान हूँ इसलिए असहायों पर कृपा कर रहा हूँ, ऐसी दृष्टि हो जाती है। पर उस सेवा कार्य से लोगों का तो कुछ अभाव दूर होता है, पर मैं अपना अकल्याण कर बैठता हूँ। मेरा लक्ष्य तब उस सेवा कार्य से आत्मिक तुष्टि न होकर अहंकार तुष्टि हो जाता, जीवन में तब छल कपट सब आ जाता है। पर यदि दया का भाव न होकर पूजा का भाव आ जावे तो वही सेवा कार्य जीवन को धन्यता प्रदान करता है। ईश्वर को हम वही अर्पण करते हैं जो हमें अच्छा लगता है कि हमारी है और पवित्र है। इस शिव दृष्टि को अपने बच्चों में, परिवार में देखने की चेष्टा करें तो उनके पालन पोषण के लिए जो चाकरी अभी हमें कभी कभी गलत मार्ग में भटका देती है वही चाकरी पूजा बन जावेगी, सब समय हमें सतमार्ग पर चलने की शक्ति देगी और संयमित करेगी। स्वयं के भीतर शिव को देखने का भाव लावें तो फिर क्या कोई अशुभ विचार अपने भीतर भटकने देंगे? यही प्राचीन ऋषियों द्वारा वेदांत में बतलाई गूढ़ साधना का रहस्य है, जो इस प्रकार सेवा धर्म के माध्यम से हमारे जीवन के लिए सहज हो सकता है।
1: ये था आज का चिंतन। आलेख और स्वर था स्वामी शिखरानंद का। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। इस समय सुबह के 6:25 हुए हैं। प्रस्तुत है श्री राम चरित मानस का गायन।

अपने को समर्पित कर देने के लिए रावण ने सीता को एक माह का समय दिया था। इस अवधि की समाप्ति पर सीता जी के लिए अपना अंत हो जाने से अधिक व्याकुलता का कारण पतिवियोग है। वो त्रिजटा से कुछ ऐसा उपाय करने की प्रार्थना करती हैं जिससे वो शीघ्र शरीर त्याग कर सकें। त्रिजटा उन्हें धीरज बंधाती हैं। हताश सीता अशोक वृक्ष से प्रार्थना करती हैं, तुम्हारे नए कोमल पत्ते अग्नि के समान दिख रहे हैं, तुम ही मुझ पर अग्नि वर्षा कर दो ताकि मेरी

विरह व्यथा का अंत हो जाए। अशोक वृक्ष की डाल पर बैठे हनुमान जनक नंदिनी के शोक सने वचन सुनकर विचलित हो जाते हैं। वह श्रीराम की अंगूठी सीता जी के सामने गिरा देते हैं। मुद्रिका पहचान कर सीता जी को आश्चर्य होता है। श्रीराम की महिमा के गान के स्वर सुनकर वह राम कथा रूपी अमृत बरसाने वाले से अपने सामने प्रकट होने की प्रार्थना करती हैं।

0: अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस का गायन। गायक स्वर था शोभना राम राठौर और कविता कृष्णमूर्ति का। संगीत निर्देशक थे सतीश भाटिया। मीडियम वेव 396.82 मीटर अर्थात 756 किलोहर्ट्ज, एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर हम आकाशवाणी के जगदलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय सुबह की 6:35 हुए हैं। प्रस्तुत है कृषि समय की बिड़ा खड़ा चौगोट।
1: काश्तकार भाई बहन मन, साग ने नंगत स्वाद काजे, चटनी काजे, संधान काजे, दवाई ओखत और आमट काजे बले लागे से लसुन इतरे काय पीला मन के पेट छेक तो काजे, जुड़ खोकली जुगे होली से बल्लो ने माला बनाउन पिंधा तो काजे बले लागे से लसुन। तो भाई बहन मन, इतरो गुण बीती लसुन चो नंगत कमाने कसन करतो राय एक मैं सांगे से। लसुन के घाम और शीत दोनों समय ने कमासोत, मांतर शीत समय एचो कमाने काजे नंगत आए। नंगत पानी निकरतो बीती दुई मटिया भूई लसुन कमाने काजे नंगत आए। एचो आगर उपजन काजे माटी जाँच करतो जरूरी आए। माटी जाँच नहीं होलो ने गोबर खत 20 टन, यूरिया 260 किलोग्राम, सिंगल सुपर फास्फेट 280 किलोग्राम और पोटास 60 किलोग्राम देतो रहा। फास्फोरस पोटास सपाए के और नाइट्रोजन चो आधा भाग के बुन तो पहल बेड़ा ने देतो रहा और बाचलो नाइट्रोजन के बुन लो एक महीना पाछे टॉप ड्रेसिंग असन भूई ने नगत मिसातो रहा। एचो किसम मनाए आईसी 49381 एग्रीफाउंड व्हाइट यमुना सफ़ेद, जी 282 एग्रीफाउंड पार्वती, आईसी 42891। भाटा बाटे ए समय ने बुनुक सकोत। लेन ले लेन चो दूरी 15 ले 20 सेंटीमीटर और बूटा ले बूटा चो दूरी 7 ले 10 सेंटीमीटर और खुदरा 5 सेंटीमीटर होतो रहा। 2.5 एकड़ ने 3.5 ले 5 क्विंटल बीज लागे से। बुनाई चो पहल लसुन के रिमन के डायथेन एम 45.3 ग्राम के 1 लीटर पानी चो घोर ने उपचार करुन पाछे बुनतो रहा। बुनाई पाछे पानी देतो रहा। एचो पाछे 10-15 दिन चो अंतर ने और जेठ बेरा हफ्ता भर ने एक हार पानी देतो रहा। गठ नगत होतो तक भूई ने नगत ओल रहतो रहा। पाकतो असन दखा दिलो ने पानी देतो रनु है। जुगे पानी होलो ने कांदा कुहुआ। साइकोसिल 500 PPM NAA नहाले इथेल के रोपलो 60 और 80 दिन पाछे स्प्रे करुक सकोत। बुन लो 20-25 दिन पाछे मिंजाई करतो रहा और 10 हफ्ता पाछे निंजाई गुड़ाई करतो रनु है। फसल 4-4.5 महीना ने तैयार हुआ है। तेवे पाना मन हरदिया होन सुखुआ है। असन होलो ने कांदा के बूटा संगे झिकुन पाना मन संगे बांधुन 2-3 दिन सुखालो पाछे ऊपर भाग के काटतो रहा। नगद कांदा बीती लसुन मिरे दे जोन खातो काजे नगद तो हो देची मोल भाव बोले नगद मिरे दे।
0: अभी आप सुन रही थी कृषि समय की बेड़ा खड़ा चौगोट। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। कार्यक्रम हुलहुली में अब लीजिए सुनिए राउत गिरली पाड़। कलाकार हैं धर्मू और साथी।

कार्यक्रम हुलहुली में अभी आप सुन रहे थे राउत गिरली पाड़। कलाकार थे धर्मू और साथी। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। इस समय सुबह के 6:50 हुए हैं। पेश है कार्यक्रम विवरण। आज रात 9:30 पर साहित्य भारती आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा। सुबह 8:30 पर डॉक्टर की सलाह। सुबह 9:00 बातों बातों में। सुबह 9:55 पर और सुबह 11:55 पर प्रादेशिक समाचार एकांश हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से रिले करेंगे। अब से कुछ देर बाद सुबह 7:05 पर होगा हमारा दैनिक कार्यक्रम नमस्कार जगदलपुर। इस कार्यक्रम के आकर्षण होंगे काव्य सरिता में कविता पाठ, आप सुनेंगे गंगोत्री मिश्रा से, और होगी फिल्मी गीतों की मधुरिमा। फिल्म संगीत का आनंद आज आप लेंगे सुबह 9:15 पर। सुबह 9:30 पर कार्यक्रम एक ही फिल्म से के अंतर्गत आज आप सुनेंगे फिल्म न तुम जानो न हम जाने के गीत। आज सुबह 10:00 कार्यक्रम आज ही जो सगा में बलबीर सिंह कच्छ से ली गई भेंट वार्ता, भेंट करता होंगे भरत कुमार गंगादित्य। आज सुबह 10:30 पर होगा बस्तर के लोकगीतों का कार्यक्रम गुड़दुम। इसमें आप सुनेंगे केदार यादव और साथियों के गाय

छत्तीसगढ़ी गीत। सुबह 11 बजे कार्यक्रम एक ही कलाकार केंद्रित होगा एसपी बाल सुब्रमण्यम पर। सुबह 11:30 पर होगा गैर फिल्मी गीतों और गजलों का कार्यक्रम गुलदस्ता। फोन इन कार्यक्रम लोकरस का प्रसारण किया जाएगा आज दोपहर 12 बजे। प्रस्तुति होगी डमरू राम मंडावी की, संयोजन होगा चंद्र ऋषि ठाकुर का। कृषि समय की बेड़ा खड़ा चौगोट का पुनः प्रसारण किया जाएगा दोपहर 1:05 पर। फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम श्रोता सुमन होगा आज दोपहर 1:10 पर। कार्यक्रम कला और कलाकार आप सुनेंगे दोपहर 2:30 पर।

हमारी सांध्यकालीन सभा में शाम 5:05 पर आप सुनेंगे देशभक्ति गीत, 5:10 पर होगा युवाओं का अपना कार्यक्रम युववाणी, इसे आप सुनेंगे हिंदी में। शाम 6:35 पर होगा हल्बी नाट्य गीत, कलाकार होंगे मधुराम और साथी। शाम 7:00 आप सुनेंगे बस्तर के स्वर। शाम 7:30 पर होगा प्रायोजित कार्यक्रम फोन इन किसान वाणी। आज रात 8:00 जो न्यूजर में आप सुनेंगे भद्री नाट्य गीत, कलाकार होंगे नीलू राम और साथी। रात 8:30 पर पिलामन काजे गोठ में आज का विषय होगा ऋतु चक्र, प्रस्तुति होगी बंशी राम की। रात 9:15 पर आमचुरान आमचो जीवना में संतु मौर्य से बलवीर सिंह कच्छ की भेंटवार्ता आप सुनेंगे। आज रात 10:00 आदिवासी लोकवाद्य धुन का कार्यक्रम होगा पाड़, इसमें आप सुनेंगे तेल चंगानी पाड़ और ऊर्जा पाड़, वादक कलाकार होंगे सोनारू और साथी। ये थी हमारी आज की सभी सभाओं में प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त जानकारी।

मीडियम वेव और एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। सुबह के 6:55 होने वाले हैं। क्रमशः संस्कृत और हिंदी में समाचार अब हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

0: राज्ये प्रथमं भाजपा नेतृत्वस्य सर्वकारस्य निर्माणाय प्रतिज्ञां प्रदत्तवान्। विधानसभा निर्वाचने भाजपेति दलं ऐतिहासिकं विजयं प्राप्नोत्। टीएमसीति दलस्य 15 वर्षाणां शासनं च समापितम्। पुदुचेरी राज्ये राष्ट्रिय जनतांत्रिक गठबंधनस्य मुख्यमंत्री पदस्य प्रत्याशी एन रंगासामी इत्येषः उपराज्यपालेन के कैलासनाथन वर्येण सह मिलित्वा अग्रिम सर्वकारस्य निर्माणाय प्रस्तावः प्रदत्तवान्। श्रीरंगासामी बहुसंख्यायां विधायकानां समर्थनपत्राणि उपराज्यपालाय समर्पितवान्। रक्षानुसंधान विकास संघटनेन डीआरडीओ इत्यनेन भारतीय वायुसेनया च गुरुवासरे ओडिशा तटस्य समीपे टैक्टिकल एडवांस्ड रेंज ऑगमेंटेशन तारेति शस्त्रस्य प्रथमोड्डयन परीक्षणं सफलतया सम्पादितम्। तारेति भारतस्य प्रथमा स्वदेशीया ग्लाइड शस्त्र व्यवस्थास्ति या मार्ग निर्देशित युद्धोपकरणान् यथार्थ निर्देशित शस्त्रेषु परिवर्तयति। दुबई नगरे भारतस्य वाणिज्य दूतावासेन समुद्रे मृतस्य एकस्याः नौकायाः भारतीयस्य चालकदलस्य मृत्योः विषये शोकः प्रकटितः। एकस्मिन् सामाजिकान्तर्जालीये पटले सन्देशे कॉन्सुलेट जनरल इत्यनेन घटनैषा दुर्भाग्यपूर्णम् उक्तम्। सः पोतस्य स्वामिना सह निरन्तरं सम्पर्के अस्ति। अधिकविवरणानि च अन्वेष्टुं प्रयासरतः अस्ति। दूतावासेन आश्वासितं यत् अस्मिन् विषये सर्वविध साहाय्यं प्राधान्येन प्रदीयन्ते। हॉर्मुज जलसन्ध्यां गतिरोधः तदा तीव्रः अभवत् यदा संयुक्तराष्ट्रसंघस्य सुरक्षापरिषदि अमेरिका समर्थितस्य प्रस्तावस्य प्रारूपम् ईरान देशेन निराकृतम्। तद्दोषपूर्णं राजनीतिना प्रेरितं चास्तीति उक्तम्। तेहरानेन उक्तं यत् अयं प्रस्तावः विवादस्य समाधाने साहाय्यं न कृत्वा अवैधरूपेण कार्यं कर्तुं प्रेरयिष्यति। तेहरानेन संयुक्तराष्ट्रसंघस्य सदस्यराष्ट्रान् प्रस्तावितस्य प्रस्तावस्य समर्थनं न कर्तुं प्रार्थितम्। आईपीएल क्रिकेट क्रीडायां गतरात्रौ दिल्ल्याः अरुण जेटलीति क्रिकेट क्रीडांगणे कोलकाता नाइट राइडर्स दलेन दिल्ली कैपिटल्स दलं अष्टस्तोभैः पराजितम्। अद्य जयपुरस्य सवाई मानसिंह क्रीडांगणे राजस्थान रॉयल्स दलं गुजरात टाइटन्स दलं सम्मुखीकरिष्यति। क्रीडायाः आरम्भः सायं सार्धसप्तवादने भविष्यति। प्रियाः श्रोतारः, संस्कृतजगता सम्बद्धैः विभिन्नैः क्रियाकलापैः संवलितस्य संस्कृतसाप्ताहिकीति विशिष्टकार्यक्रमस्य प्रसारणम् आकाशवाण्याः एफएम गोल्ड प्रवाहिकातः रविवासरे मध्याह्ने सार्धैकवादनतः भविष्यति। भवन्तः सर्वे श्रोतुं प्रभवन्ति। इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। शुभेंदु अधिकारी आज पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। भारतीय जनता पार्टी यहां पहली बार सरकार बनाने जा रही है। शपथ ग्रहण समारोह कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन सहित कई केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने की उम्मीद है। इससे पहले कल श्री शुभेंदु अधिकारी को राज्य भाजपा विधायक दल का नेता चुना गया। विधायक दल की बैठक कोलकाता में गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई। विधायक दल के नेता चुने जाने के बाद श्री अधिकारी ने राज्यपाल आर एन रवि से भेंट की और सरकार बनाने का दावा पेश किया। वहीं तमिलनाडु में तमिल वेत्री कड़गम टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय के नेतृत्व में सरकार गठन को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने टीवी को समर्थन देने की खबरों का खंडन किया है। ये भी खबरें आ रही हैं कि आज होने वाला शपथ ग्रहण समारोह स्थगित कर दिया गया है। इससे पहले कल टीवी के प्रमुख ने राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर से मुलाकात कर सहयोगी दलों के समर्थन पत्र सौंपकर सरकार बनाने का दावा पेश किया था। उधर केरला में भी नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। यूडीएफ की प्रमुख पार्टी कांग्रेस रविवार तक नेता की घोषणा कर सकती है। कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि विधायक दल के

0: के बारे में राज्य में पार्टी पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय नेतृत्व निर्णय लेगा। वहीं असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रहा है। शपथ ग्रहण समारोह मंगलवार को होगा। पार्टी विधायक दल की बैठक कल होगी। सर्वोच्च न्यायालय ने पंजाब में बढ़ते मादक पदार्थों के खतरे पर चिंता व्यक्त की है। राज्य की नीति में मूलभूत बदलाव लाने और प्रमुख तस्करों को गिरफ्तार करने को कहा गया है। न्यायालय ने कहा है कि इससे होने वाली मानवीय क्षति चिंताजनक है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस और यूक्रेन के बीच 3 दिन के युद्ध विराम की घोषणा की है। युद्ध विराम आज से 11 मई तक रहेगा। राष्ट्रपति ट्रंप ने बताया कि ये प्रस्ताव उन्होंने स्वयं रखा था और इसमें दोनों पक्षों के 1,000 कैदियों का आदान प्रदान भी शामिल होगा। उन्होंने रूस यूक्रेन संघर्ष को द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सबसे बड़ा युद्ध बताते हुए कहा कि स्थायी रूप से शांति स्थापित करने के लिए बातचीत जारी है। ये युद्ध विराम रूस के विजय दिवस के मौके पर हो रहा है, जो हर साल 9 मई को मनाया जाता है। ये दिन द्वितीय विश्व युद्ध में नाजी जर्मनी पर सोवियत संघ की जीत के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। ईरान ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अमरीका द्वारा समर्थित मसौदा प्रस्ताव को त्रुटिपूर्ण और राजनीतिक रूप से प्रेरित बताते हुए खंडन कर दिया है। ये प्रस्ताव होर्मुज जलडमरू मध्य में जहाजों की सुरक्षा में संबंधित था। ईरान ने इसे अपने आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप और अमरीकी हितों को साधने वाला कदम करार दिया है। ईरान ने संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों से प्रस्तावित प्रस्ताव का समर्थन न करने की अपील की है। उधर अमरीका ने ईरान पर वाणिज्यिक जलमार्ग को रोकने और समुद्री यातायात को अस्थिर करने का आरोप लगाया है। अमरीका ने 10 व्यक्तियों और कंपनियों पर प्रतिबंध लगाए हैं, जिनमें चीन और हांगकांग की कंपनियां भी शामिल हैं। अमरीका का आरोप है कि ये लोग और कंपनियां ईरान को हथियार बनाने और ड्रोन तथा बैलिस्टिक मिसाइल के लिए आवश्यक सामान जुटाने में मदद कर रही थीं। अमरीकी वित्त मंत्रालय ने कहा है कि ईरान की सैन्य क्षमता को रोकने के लिए आर्थिक कार्रवाई जारी रहेगी। साथ ही ईरान के साथ गैर कानूनी व्यापार करने वाली विदेशी कंपनियों और बैंकों पर भी कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। विशेषज्ञों का कहना है कि ये कदम विशेषकर होर्मुज जलडमरू मध्य में ईरान की समुद्री गतिविधियों को सीमित करने के लिए उठाया गया है। अमेरिका के विदेश विभाग ने बताया है कि इसराइल और लेबनान 14 और 15 मई को अमेरिका की मध्यस्थता में फिर से बातचीत शुरू करेंगे। विदेश विभाग के अनुसार दोनों देशों के प्रतिनिधिमंडल एक व्यापक शांति और सुरक्षा समझौते पर पहुंचने के लिए बैठक करेंगे। आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने कल रात दिल्ली कैपिटल्स को 8 विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए दिल्ली कैपिटल्स ने 8 विकेट खोकर 142 रन बनाए। जवाब में कोलकाता नाइट राइडर्स ने 15वें ओवर में 147 रन बनाकर लक्ष्य हासिल कर लिया। लगातार चौथी जीत के साथ कोलकाता नाइट राइडर्स अंक तालिका में 7वें स्थान पर पहुंच गई है। प्रतियोगिता में आज राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला गुजरात टाइटन्स से होगा। मैच जयपुर में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। भारत की महिला फुटबॉल टीम एएफसी अंडर 17 एशिया कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। भारत ने 2005 के बाद इस टूर्नामेंट में अपनी पहली जीत दर्ज की। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 396.82 मीटर अर्थात 756 किलोहर्ट्ज, एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। इस समय सुबह की 7:05 हुए हैं। पेश है हमारा दैनिक कार्यक्रम नमस्कार जगदलपुर।

श्रोताओं, सुबह होते ही जब सूरज की सुनहरी किरणें अपने उजियारे से एक नई ऊर्जा का संचार करती है, सुबह की हल्की ठंडी हवा, पेड़ों की शाखों पर बैठे रंग बिरंगे सुंदर पंछी मीठे स्वर में चहचहाने लगते हैं। उनका चहचहाना वातावरण में एक सजीवता और ताजगी का एहसास दिलाता है। ऐसा लगता है जैसे वो मीठी बोली में प्रकृति के साथ संवाद कर रहे हों, बतिया रहे हों। पक्षियों की ये संगीत सी सुमधुर बोली मन को शांति और आनंद का एहसास कराती है। ऐसे में दिन की शुरुआत सुखद और ताजगी से भरपूर होती है। आज सुबह सुबह पक्षियों का जिक्र इसलिए भी क्योंकि इस साल विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मई और अक्टूबर के दूसरे शनिवार को हर वर्ष की तरह मनाया जाएगा, जो प्रवासी पक्षियों के सामने आने वाले खतरों के बारे में जागरूकता बढ़ाता है। श्रोताओं, पक्षियों का प्रवास एक प्राकृतिक चमत्कार है। प्रवासी पक्षी भोजन, प्रजनन और अपने बच्चों के पालन पोषण के लिए अपने लिए सुरक्षित आवास की तलाश में सैकड़ों हजारों किलोमीटर की उड़ान भरते हैं। जब परिस्थितियां प्रतिकूल होने लगती हैं, मौसम का मिजाज बदलता है, तब बेहतर परिस्थितियों वाले क्षेत्रों की ओर अपने अस्तित्व की रक्षा करने के लिए इनके उड़ान की प्रक्रिया शुरू होती है। प्रवास के कई तरीके हैं। अधिकांश पक्षी उत्तरी क्षेत्रों से दक्षिणी शीतकालीन क्षेत्रों की ओर प्रवास करते हैं। कुछ पक्षी अफ्रीका के दक्षिणी भागों में प्रजनन करते हैं और सर्दियों में तटीय क्षेत्रों की हल्की जलवायु का आनंद लेने के लिए उत्तरी शीतकालीन क्षेत्रों की ओर क्षैतिज रूप से प्रवास करते हैं। गर्मियों के लिए वो पहाड़ों पर चले जाते हैं। अक्सर उनकी यात्रा बेहद थकाऊ होती है, जिसके दौरान वो अपनी पूरी क्षमता का इस्तेमाल भी करते हैं। लाल चिड़िया या रेड नॉट का प्रवास मार्ग किसी भी दूसरे पक्षी की तुलना में सबसे लंबा होता है, जो साल में दो बार 16,000 किलोमीटर तक की यात्रा तय करती है। श्रोताओं, प्रवास एक जोखिम भरी यात्रा है। इसमें कई खतरे शामिल होते हैं जो अक्सर मानवीय गतिविधियों की वजह से भी पैदा होते हैं। पक्षियों को भी प्रवास के दौरान कई खतरों का सामना करना पड़ता है, इसलिए शीतकालीन प्रवास और पड़ाव स्थलों के नष्ट होने से पक्षियों के जीवित रहने की संभावनाओं पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता है। इस साल विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 2026 की थीम है हर पक्षी मायने रखता है, आपके अवलोकन महत्वपूर्ण हैं। एवरी बर्ड काउंट्स, योर ऑब्जर्वेशंस मैटर्स। ये विषय प्रवासी पक्षियों के संरक्षण में जन विज्ञान और डेटा संग्रह के महत्व पर जोर देता है। इस साल 2026 की मुख्य बातें होंगी जनता को पक्षियों की आबादी और उनके आवासों पर नजर रखने के लिए प्रोत्साहित रखना, ये सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से डेटा एकत्र करने और पक्षी संरक्षण के लिए कार्रवाई को प्रेरित करने पर केंद्रित है।

0: माटी की सौंधी खुशबू के साथ,
1: पवन के ठंडे झोंके के साथ
0: हिलोरे लेगी
1: आकाश की वाणी।
0: आकाशवाणी
2: विज्ञापन के लिए संपर्क करें आकाशवाणी जगदलपुर आकर,
0: या फोन करें 222150 या 222400,
1: 222150 या 222400।
3: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सह कर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
4: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा

0: निखार।
1: इफको नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
2: देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए अपनी बात कीजिए विज्ञापन आकाशवाणी के साथ। डायल कीजिए हमारा टोल फ्री नंबर 1512।
3: विविध भारती के खजाने से हम आपके लिए लाते हैं अनमोल कार्यक्रम।
4: फौजी भाइयों की खिदमत में आपका खादिम नौशाद आदाब पेश करता है, कबूल फरमाइए।
3: कल और आज के ऐसे ही नामचीन सितारों को आप सुनते हैं विशेष जयमाला में, हर शनिवार और रविवार शाम 7:05 पर। विविध भारती आप सुन सकते हैं देश के कोने कोने में, मीडियम वेव पर, शॉर्ट वेव पर, एफएम पर। विविध भारती, आपकी बात पहुंचाए करोड़ों तक। विविध भारती पर विज्ञापन बुक कराने के लिए हमारा टोल फ्री नंबर है 15102, या लॉग ऑन करें csuair.org.in। विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन।
5: किसान भाई बहनों के लिए आकाशवाणी जगदलपुर की नई पहल, अब हर शनिवार को शाम 7:30 से 8 तक सुनिए फोन इन किसान वाणी, जहां कृषि विशेषज्ञ देंगे आपकी खेती से जुड़ी हर समस्या का आसान समाधान। बीज से लेकर बाजार तक हर सवाल का जवाब सीधे आपके लिए। और हाँ, इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी हर मंगलवार दोपहर 3:30 से 4 तक, तो आप भी जुड़िए और अपने सवाल हमें सीधे फोन पर बताइए। हमारा नंबर है 07782222666। फोन इन किसान वाणी, आपकी आवाज, आपकी कहानी, आपके खेतों की जुबानी।
6: जीएसटी से जुड़ी नई खबर ने आम लोगों और निवेशकों दोनों को राहत दी है। सबसे बड़ी राहत खाने पीने के सामान पर दी गई है। ब्रेड, रोटी और छेना पनीर पर अब कोई जीएसटी नहीं लगेगा। इसके अलावा 33 जरूरी दवाइयों के दाम कम कर दिए गए हैं, जिससे इलाज का खर्च भी घटेगा। लाइफ इंश्योरेंस पर भी पूरी तरह जीएसटी छूट दी गई है, जिससे पॉलिसी खरीदना अब और सस्ता हो जाएगा। छोटी कारों और 350 cc तक की बाइक पर जीएसटी 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है। इसका मतलब है कि गाड़ी या बाइक खरीदने का सपना अब पहले से सस्ता हो सकता है।
7: उड़ना जरूरी है, चलना जरूरी है, उड़ना जरूरी है, चलना जरूरी है, नई राहों को, नई दिशाओं को, नई आबो हवाओं को देखना, समझना, भालना जरूरी है। जिंदा हो गर तुम तो जीना जरूरी है, उड़ना जरूरी है, चलना जरूरी है। इन्हीं बातों के साथ बढ़ चलते हैं नमस्कार जगदलपुर के अगले पड़ाव काव्य सरिता की ओर, और आज इसमें हम आपको सुनवाते हैं कविता पाठ गंगोत्री मिश्रा से।
8: मेरी पहली कविता का शीर्षक है हम पलाश हैं। ये समय नहीं सजने संवरने का, सखियों, ये समय नहीं सजने संवरने का। अब भूल जाओ सावन में झूले झूलना, अब भूल जाओ सावन में झूले झूलना, हाथों की मेहंदी में प्रियतम का नाम लिखकर सपने सजाना। अब भूल जाओ सखियों सावन में झूले झूलना, हाथों की मेहंदी में प्रियतम का नाम लिखकर सपने सजाना। जंगल में उगे पेड़ों की तरह हैं हमारे सपने, जंगल में उगे पेड़ों की तरह हैं हमारे सपने, कोई पानी नहीं देगा। जंगल में उगे पेड़ों की तरह हैं हमारे सपने, कोई पानी नहीं देगा। किसी की शुभकामना नहीं होगी हमारे साथ, किसी की शुभकामना नहीं होगी हमारे साथ, कोई नहीं करेगा व्रत हमारे दीर्घ जीवन के लिए, कोई नहीं करेगा व्रत हमारे दीर्घ जीवन के लिए। झाड़ झंखाड़ के बीच ही पनपना

0: है हमें। झाड़ झंखाड़ के बीच ही पनपना है हमें पलाश की तरह। झाड़ झंखाड़ के बीच ही पनपना है हमें पलाश की तरह, वैशाख में भी लहलहाना है। पलाश की तरह वैशाख में भी लहलहाना है। और बरगद को बताना है कि अब उसकी छाया तले, और बरगद को बताना है कि अब उसकी छाया तले अंगुल भर की होकर जीना हमें स्वीकार नहीं। बरगद को बताना है कि अब उसकी छाया तले अंगुल भर की होकर जीना हमें स्वीकार नहीं, पलाश हैं हम। मेरी दूसरी कविता का शीर्षक है औरतें। कितने ही पतझड़ को पार कर पहुंचती हैं औरतें 50वें वसंत में। कितने ही पतझड़ को पार कर पहुंचती हैं औरतें 50वें वसंत में। अपनी सारी अतृप्त इच्छाओं को तह कर रख देने के बाद भी, अपनी सारी अतृप्त इच्छाओं को तह कर रख देने के बाद भी गुनगुनाती हैं प्रेम गीत। 50वां वसंत जी रही औरतें चिड़िया बन उड़ जाती हैं उस देश। 50वां वसंत जी रही औरतें चिड़िया बन उड़ जाती हैं उस देश, जहां नींव रखी थी पहले प्यार की। जहां नींव रखी थी पहले प्यार की। गुंथे आटे की लोइयां बनाती खुद भी गुंथ जाती हैं अतीत के साथ। गुंथे आटे की लोइयां बनाती खुद भी गुंथ जाती हैं अतीत के साथ। तन का भूगोल पढ़ते पुरुष की निगाहों से करना चाहती हैं नेह का अनुबंध। नीम में शहद तलाशती, नीम में शहद तलाशती गुनती हैं मन का व्याकरण। नीम में शहद तलाशती गुनती हैं मन का व्याकरण। 50वां वसंत जी रही औरतें फिर से जीना चाहती हैं 16वां वसंत। 50वां वसंत जी रही औरतें फिर से जीना चाहती हैं 16वां वसंत। अगली कविता का शीर्षक है टीस। झील सी थी मैं, नदी नहीं होना था मुझे। झील सी थी मैं, नदी नहीं होना था मुझे। आकुलता भी नहीं थी सागर से मिलने की। आकुलता भी नहीं थी सागर से मिलने की, उसके खारे पानी में मिठास अपनी घोलने की। झील सी थी मैं, नदी नहीं होना था मुझे। आकुलता भी नहीं थी सागर से मिलने की, उसके खारे पानी में मिठास अपनी घोलने की। झील सी थी मैं, पारदर्शी जल से भरी। झील सी थी मैं, पारदर्शी जल से भरी, अपने किनारों को समेटे। पारदर्शी जल से भरी अपने किनारों को समेटे। और फिर एक दिन बनना ही पड़ा मुझे बरसाती नदी। और फिर एक दिन बनना ही पड़ा मुझे बरसाती नदी। अपने तटबंधों को तोड़कर छलांग लगाना ही पड़ा ऊंचे पर्वत से। और फिर एक दिन बनना ही पड़ा मुझे बरसाती नदी। अपने तटबंधों को तोड़कर छलांग लगाना ही पड़ा ऊंचे पर्वत से। पत्थरों से सर टकराकर लहूलुहान होकर भी बहना पड़ा मुझे। पत्थरों से सर टकराकर लहूलुहान होकर भी बहना पड़ा मुझे निरंतर, पर नदी नहीं होना था मुझे। मेरी कविता का शीर्षक है लड़की। केवल लड़की नहीं होती, एक पौधा भी होती है लड़की। केवल एक लड़की नहीं होती, एक पौधा भी होती है लड़की। जिसे उखाड़ कर मनचाही जगह पर लगा नजर भर देख सकते हैं सुंदर फूल। जिसे उखाड़ कर मनचाही जगह पर लगा नजर भर देख सकते हैं सुंदर फूल। वह होती है एक ऊंचे पेड़ की सूखी टहनी। वह होती है एक ऊंचे पेड़ की सूखी टहनी, जिसे ईंधन बनाकर पका सकते हैं स्वादिष्ट भोजन। जिसे ईंधन बनाकर पका सकते हैं स्वादिष्ट भोजन। घना जंगल भी होती है लड़की। एक घना जंगल भी होती है लड़की, जिसमें घूमते भटक जाते हैं लोग। जिसमें घूमते भटक जाते हैं लोग। नाव बनकर गहरी नदी पार कराती है लड़की ही। नाव बनकर गहरी नदी पार कराती है लड़की ही। उदास शाम में बसेरे की ओर आकुलता से लौटती चिड़िया। उदास शाम में बसेरे की ओर आकुलता से लौटती चिड़िया। बहती नदी जो चट्टान से टकरा कर भी बनाए रखती है अस्तित्व। बहती नदी जो चट्टान से टकरा कर भी बनाए रखती है अस्तित्व। अनदेखी हवा की तरह सबको ठंडक देकर गुम हो जाती है लड़की ही। अनदेखी हवा की तरह सबको ठंडक देकर गुम हो जाती है लड़की ही। अगली कविता का शीर्षक है विडंबना। तुमने कहा शिखर छूना है मुझे। तुमने कहा शिखर छूना है मुझे। मैं सेतु बन गई तुम्हारे लिए। तुमने कहा शिखर छूना है मुझे। मैं सेतु बन गई तुम्हारे लिए। विलीन होना चाहा भावनाओं के अनंत सागर में। विलीन होना चाहा भावनाओं के अनंत सागर में। पर किनारे कर दिया लहर की तरह। पर किनारे कर दिया लहर की तरह। तुम्हें आसमान की ऊंचाई में देखने मैं गहरे सागर में समा गई। तुम्हें आसमान की ऊंचाई में देखने मैं गहरे सागर में समा गई। तुमने नहीं जाना मापने को देह का भूगोल काफी है एक रात की वयस। पर सदियां कम पड़ जाती हैं जीतने को मन का विश्वास। पर सदियां कम पड़ जाती हैं जीतने को मन का विश्वास। सब कुछ पाने के बाद तुम कह रहे थे लोगों से। सब कुछ पाने के बाद तुम कह रहे थे लोगों से जाने कहां गुम हो गई वह गुपचुप सी लड़की। सब कुछ पाने के बाद तुम कह रहे थे लोगों से जाने कहां खो गई वह गुपचुप सी लड़की। हिम्मत न थी उसमें आगे बढ़ने की। हिम्मत न थी उसमें आगे बढ़ने की। तुम्हारी उपलब्धियों के अंबार में कहीं नहीं थी मैं। तुम्हारी उपलब्धियों के अंबार में कहीं नहीं थी मैं।
1: काव्य सरिता में अभी आप सुन रहे थे गंगोत्री मिश्रा से कविता पाठ। आप सुन रहे हैं नमस्कार जगदलपुर।
2: जीएसटी से जुड़ी नई खबर ने आम लोगों और निवेशकों दोनों को राहत दी है। सबसे बड़ी राहत खाने पीने के सामान पर दी गई है। ब्रेड, रोटी और छेना पनीर पर अब कोई जीएसटी नहीं लगेगा। इसके अलावा 33 जरूरी दवाइयों के दाम कम कर दिए गए हैं, जिससे इलाज का खर्च भी घटेगा। लाइफ इंश्योरेंस पर भी पूरी तरह जीएसटी छूट दी गई है, जिससे पॉलिसी खरीदना अब और सस्ता हो जाएगा। छोटी कारों और 350 cc तक की बाइक पर जीएसटी 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है। इसका मतलब है कि गाड़ी या बाइक खरीदने का सपना अब पहले से सस्ता हो सकता है।
3: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
4: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
3: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
4: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
3: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001424 पर।
4: 8700001424।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: अरे गोपाल, जा तो सब्जी बाजार से नींबू और मिर्ची लेकर आना।
2: क्या बात है मालिक, आज आप नींबू और मिर्ची क्यों खा रहे हैं?
1: अरे पगले, खाने के लिए नहीं, दुकान में लगाने के लिए मंगवा रहा हूँ। तू तो देख रहा है, दिन भर बैठकर मक्खी मारता हूँ, 10 ग्राहक भी दुकान में नहीं आते।
2: आएंगे कैसे मालिक, हमारी दुकान का ठीक से प्रचार भी तो नहीं हो रहा है। मेरी मानिए तो आप भी अपनी दुकान का प्रचार आकाशवाणी से करवाइए, फिर देखिए हमारी दुकान में भी ग्राहकों की भीड़ लगेगी।
1: गोपाल, आज पहली बार तूने अक्लमंदी की बात की है रे।
2: क्यों नहीं मालिक, रेडियो जो सुनता हूँ।
3: अपनी दुकान, व्यापार या सेवा का प्रचार रेडियो से करवाइए, विज्ञापन बुक करने आकाशवाणी आइए।
4: और अब पेश है मधुरिमा।

तुम ही तो मुस्कुराहट हो, खुशी की तुम ही आहट हो। तुम ही तो मुस्कुराहट हो, खुशी की तुम ही आहट हो। मुकम्मल जो जहां कर दे मेरे दिल की वो सजावट हो।

लफ्ज़ लफ्ज़ तेरी याद का मेरे जहन में दर्ज है, लफ्ज़ लफ्ज़ तेरी याद का मेरे जहन में दर्ज है, तेरा इश्क ही इलाज है, तेरा इश्क ही मेरा मर्ज है।

0: अभी आप सुन रहे थे हमारा दैनिक कार्यक्रम नमस्कार जगदलपुर। ये कार्यक्रम आपकी सेवा में आकाशवाणी के जगदलपुर केंद्र से प्रसारित किया गया। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। सुबह के 8 बजने वाले हैं समाचार। अब हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। और अब मुख्य समाचार। शुभेंदु अधिकारी आज सुबह पश्चिम बंगाल के पहले भाजपा मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। तमिलनाडु में सरकार गठन को लेकर अनिश्चितता बरकरार। लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमणी भारत के नए प्रमुख रक्षा अध्यक्ष नियुक्त। अगले 2 दिन में केरलम, दक्षिण कर्नाटक, तमिलनाडु और पुदुचेरी में तेज बारिश का पूर्वानुमान। और फुटबॉल में भारत ने एएफसी अंडर 17 महिला एशिया कप के क्वार्टर फाइनल में पहली बार प्रवेश कर इतिहास रचा। अब समाचार विस्तार से। शुभेंदु अधिकारी आज पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि शपथ ग्रहण समारोह कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में होगा।
2: राज्य के राजनीतिक इतिहास में पहली बार भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार औपचारिक रूप से पदभार ग्रहण करेगी। शपथ ग्रहण समारोह सुबह 10 बजे शुरू होने वाला है और इसमें लाखों पार्टी समर्थकों, राजनीतिक नेताओं और देश भर से आए गण्यमान्य व्यक्तियों के शामिल होने का उम्मीद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित कई केंद्रीय मंत्री और भाजपा शासित राज्यों का मुख्यमंत्री इस कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। राज्यपाल आरएन रवि मुख्यमंत्री और नए मंत्रिमंडल के सदस्यों को पद और गोपनीयता का शपथ दिलाएंगे। नवनिर्वाचित संसदीय दल के नेता शुभेंदु अधिकारी ने घोषणा की है कि एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश के अध्यक्षता में आयोग राज्य में संस्थागत भ्रष्टाचार की जांच करेगा। संदीपन दास गुप्ता, आकाशवाणी न्यूज, कोलकाता।
1: इससे पहले कल श्री शुभेंदु अधिकारी को राज्य भाजपा विधायक दल का नेता चुना गया। विधायक दल की बैठक कोलकाता में गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता

0: में हुई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार देश की सीमाओं को सुरक्षित करेगी और राष्ट्रीय सुरक्षा की सबसे बड़ी कमी को दूर करेगी। कोलकाता में कल नव निर्वाचित भाजपा विधायकों को संबोधित करते हुए श्री अमित शाह ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की जीत संगठन के विस्तार या विचारधारा की पुष्टि के लिए नहीं है, बल्कि देश सुरक्षा को मजबूत करने के लिए है।
1: घुसपैठिया मुक्त बंगाल, सुरक्षित महिला और सुरक्षित जनता, ये हमारा वादा है। हमने बंगाल के आर्ष दृष्टाओं ने जो सुनार बांग्ला का संकल्प और स्वप्न देखा है, हम सब की जिम्मेदारी है कि हम सुनार बांग्ला को जमीन पर उतारने के लिए अपना सबसे अच्छा परफॉर्मेंस बंगाल की जनता को दें।
0: गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि लंबे समय से ठप पड़ी विकास योजनाओं को भाजपा सरकार फिर से शुरू करके पश्चिम बंगाल की जनता की सभी आकांक्षाओं को पूरा करने का काम करेगी।
1: आधुनिक खेती बंगाल तक पहुंची ही नहीं है, इंडस्ट्रीज बंगाल से भाग गई है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने का विजन ही नहीं है और महिला सुरक्षा और नागरिक सुरक्षा पाताल तक नीचे पहुंच गई। ये सारे मुद्दे भारतीय जनता पार्टी ने अपने संकल्प पत्र के अंदर लिए हैं और मुझे विश्वास है कि भाजपा सरकार मोदी जी के नेतृत्व में ये डबल इंजन की सरकार बनकर दिन दूनी रात चौगुनी बंगाल को प्रगति की दिशा में ले जाएगी।
0: तमिलनाडु में तमिलगा वेत्री कड़गम टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय के नेतृत्व में सरकार गठन को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। आईयूएमएल ने टीवीके को सरकार बनाने में समर्थन देने वाली खबरों का खंडन किया है। खबरों के अनुसार आज शपथ ग्रहण समारोह नहीं होगा। इससे पहले टीवीके ने दावा किया था कि विजय सरकार बनाने के लिए पूरी तरह तैयार है। प्रोफेसर खादर मोहिदीन के नेतृत्व वाली इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने कहा है कि उनकी पार्टी ने तमिलगा वेत्री कड़गम को समर्थन पत्र नहीं दिया है। एएमएम के पार्टी के नेता टीटीवी दिनाकरन ने राज्यपाल से संपर्क किया और मुन्नारुकई से निर्वाचित एकमात्र विधायक एस कामराज का समर्थन पत्र प्रस्तुत किया। इसमें एआईएडीएमके के महासचिव एडप्पडी पलनीसामी को मुख्यमंत्री बनाने की मांग की गई थी। उधर केरल में भी नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। यूडीएफ की प्रमुख पार्टी कांग्रेस रविवार तक नेता की घोषणा कर सकती है। कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि विधायक दल के नेता के बारे में राज्य में पार्टी पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय नेतृत्व निर्णय लेगा। वहीं असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रहा है। शपथ ग्रहण समारोह मंगलवार को होगा। पार्टी विधायक दल की बैठक कल होगी। सरकार ने लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमण्यम को अगला प्रमुख रक्षा अध्यक्ष सीडीएस नियुक्त किया है। वे जनरल अनिल चौहान का स्थान लेंगे जिनका कार्यकाल 30 मई को समाप्त हो रहा है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि पदभार ग्रहण करने की तिथि से वे सैन्य मामलों के विभाग के सचिव के रूप में भी कार्य करेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल सुब्रमण्यम वर्तमान में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय में सैन्य सलाहकार के रूप में कार्यरत हैं। इससे पहले वे सेना के उप प्रमुख और केंद्रीय कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के रूप में कार्य कर चुके हैं। सरकार ने वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन को नौसेना प्रमुख नियुक्त किया है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि वाइस एडमिरल स्वामीनाथन वर्तमान में पश्चिमी नौसेना कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के पद पर कार्यरत हैं। उन्हें भारतीय नौसेना में लगभग 4 दशकों की विशिष्ट सेवा का अनुभव है। वे एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी का स्थान लेंगे जो 31 मई को सेवानिवृत्त हो रही हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने नई दिल्ली में एलवीएमएच मोइट हेनेसी लुई विटो एसीई के अंतर्राष्ट्रीय संबंध निदेशक विसेंट स्टॉक से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने बताया कि चर्चा का मुख्य विषय निर्यात बढ़ाने के लिए भारत में विनिर्माण को मजबूत करना, स्थानीय प्रतिभाओं में निवेश करना, भविष्य के सहयोगों के माध्यम से भारतीय संस्कृति को बढ़ावा देना और संतुलित तथा पारस्परिक रूप से लाभकारी व्यापार साझेदारी को आगे बढ़ाना था। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने 16वें भारत यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन के परिणामों की सराहना करते हुए इसे रणनीतिक साझेदारी के लिए एक निर्णायक मोड़ बताया है। वित्त मंत्री कल नई दिल्ली में यूरोप दिवस समारोह को संबोधित कर रही थी। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि शिखर सम्मेलन के परिणाम दोनों देशों के संबंधों में परिवर्तनकारी चरण का संकेत देते हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
2: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प।
3: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।

0: अब तक इस योजना से 8 करोड़ 85 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस और यूक्रेन के बीच 3 दिन के युद्ध विराम की घोषणा की है। युद्ध विराम आज से 11 मई तक रहेगा। राष्ट्रपति ट्रंप ने बताया कि यह प्रस्ताव उन्होंने स्वयं रखा था और इसमें दोनों पक्षों के 1,000 कैदियों का आदान प्रदान भी शामिल होगा। ये युद्ध विराम रूस के विजय दिवस के मौके पर हो रहा है, जो हर साल 9 मई को मनाया जाता है। ये दिन द्वितीय विश्व युद्ध में नाजी जर्मनी पर सोवियत संघ की जीत के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। ईरान ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अमेरिका द्वारा समर्थित मसौदा प्रस्ताव को त्रुटिपूर्ण और राजनीतिक रूप से प्रेरित बताते हुए खंडन कर दिया है। यह प्रस्ताव होर्मुज जल डमरू मध्य में जहाजों की सुरक्षा से संबंधित था। एक रिपोर्ट।
2: ईरान ने इसे अपने आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप और अमरीकी हितों को साधने वाला कदम करार दिया है। ईरान ने संयुक्त राष्ट्र की सदस्य देशों से प्रस्तावित प्रस्ताव का समर्थन न करने की अपील की है। अमरीका, बहरीन, सऊदी अरब, यूएई, कुवैत और कतर द्वारा समर्थित इस मसौदा प्रस्ताव का उद्देश्य होर्मुज जल डमरू मध्य से आवागमन सुगम बनाना है। अमरीका ने ईरान पर वाणिज्यिक जलमार्ग को रोकने और समुद्री यातायात को अस्थिर करने का आरोप लगाया है। इस बीच ईरान की सेना ने कहा है अमरीकी रक्षा बलों ने यूएई के फुजरा बंदरगाह के पास एक ईरानी तेल टैंकर और एक अन्य जहाज को निशाना बनाया। पश्चिमी तेहरान के ऊपर ईरानी वायु रक्षा प्रणालियां भी सक्रिय थीं। वहीं अमरीकी सेना ने कहा कि होर्मुज जलडमरू मध्य में उसकी नौसेना को ईरानी बलों द्वारा मिसाइल, ड्रोन और तेज नावों से हमलों का सामना करना पड़ रहा है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
1: अमेरिका ने 10 व्यक्तियों और कंपनियों पर प्रतिबंध लगाए हैं, जिनमें चीन और हांगकांग की कंपनियां भी शामिल हैं। अमेरिका का आरोप है कि ये लोग और कंपनियां ईरान को हथियार बनाने और ड्रोन तथा बैलिस्टिक मिसाइल के लिए आवश्यक सामान जुटाने में मदद कर रही थीं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। सोमनाथ अमृत पर्व का आधिकारिक रूप से कल से शुभारंभ हो गया है, जो मंदिर के पुनर्निर्माण की 75वीं वर्षगांठ का प्रतीक है। 5 दिवसीय इस उत्सव ने मंदिर परिसर को वैदिक मंत्रों और दिव्य ऊर्जा के केंद्र में बदल दिया है, जो देश भर से श्रद्धालुओं को आकर्षित कर रहा है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: सोमनाथ अमृत पर्व के पावन अवसर पर कल से पाठात्मक अतिरुद्र का विधिवत प्रारंभ किया गया, जिसमें अगले 5 दिनों तक निरंतर रुद्र पाठ किया जाएगा। मंदिर में आज से 3 दिवसीय होमात्मक महारुद्र यज्ञ का भी आयोजन होगा, जिसमें लगभग 1,25,000 आहुतियां अर्पित की जाएगी। इस महायज्ञ का मूल उद्देश्य वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों में शांति की स्थापना और मानव कल्याण सुनिश्चित करना है। अमृत पर्व का मुख्य आकर्षण 11 मई को होगा, जब मंदिर के शिखर पर 11 पवित्र तीर्थों के जल से कुंभाभिषेक किया जाएगा। इसे ऐतिहासिक क्षण का साक्षी बनने के लिए देश के कोने कोने से श्रद्धालुओं का सैलाब सोमनाथ उमड़ पड़ा है। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: आकाशवाणी समाचार के विशेष कार्यक्रम पीपल्स पद्म के अंतर्गत अगली कड़ी में हम भारत में रेडियो प्रसारण के क्षेत्र में अग्रणी रहे डॉक्टर राममूर्ति श्रीधर से बातचीत करेंगे। उन्हें प्रतिष्ठित पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा।
4: In 1991 to 1993, exactly 35 years back, which I conceived and designed and did it, called Manav Ka Vikas or Human Evolution, which was 144 episodes broadcast from radio station. Today, following that model example, 550 radio stations are functioning in this country. Content writers, script writers, creative people, AI is going to help you.
1: ये कार्यक्रम आज सुबह 9:10 पर आकाशवाणी गोल पर प्रसारित किया जाएगा। राष्ट्रीय विधि सेवा प्राधिकरण आज देशभर में इस वर्ष की दूसरी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन करेगा। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में प्राधिकरण के सदस्य सचिव संजीव पांडे ने बताया कि इस पहल का उद्देश्य सहभागी और जन केंद्रित तंत्रों के माध्यम से विवादों का सौहार्दपूर्ण निपटारा करना और अदालतों पर बोझ कम करना है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन के लिए केरला, माहे, लक्षद्वीप, दक्षिण कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की है। इस बीच बिहार में बिजली गिरने और तूफान से संबंधित अलग अलग घटनाओं में 7 लोगों की मृत्यु हो गई। खेलों में भारत की महिला फुटबॉल टीम एएफसी 17 एशिया कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। भारत ने 2005 के बाद इस टूर्नामेंट में अपनी पहली जीत दर्ज की। वहीं आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने कल रात दिल्ली कैपिटल्स को 8 विकेट से हरा दिया। प्रतियोगिता में आज राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला गुजरात टाइटंस से होगा। ये मैच जयपुर में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
5: धन्यवाद फरहत। सभी समाचार पत्रों ने आज पश्चिम बंगाल में शुभेंदु अधिकारी के भाजपा के विधायक दल का नेता चुने जाने की खबर प्रकाशित की है। दैनिक जागरण लिखता है, बंगाल में सत्ता के शुभेंदु अधिकारी, नए अध्याय की शुरुआत, भाजपा के पहले मुख्यमंत्री के रूप में आज लेंगे शपथ। लोक सत्ता ने तमिलनाडु में सत्ता का संग्राम नहीं थमने पर खबर प्रकाशित की है। विजय के शपथ ग्रहण पर फिर लगा ग्रहण, राज्य में सरकार पर फिर सस्पेंस, सियासत बदली। कांग्रेस के शीर्ष कमान पर अब केरलम के अगले मुख्यमंत्री को चुनने की जिम्मेदारी। राज्य में सरकार गठन को लेकर तैयारियां तेज, पर्यवेक्षक ने खड़गे को सौंपी रिपोर्ट, दिल्ली में होगा फैसला, देशबंधु की सुर्खी है। गर्म होते हिमालय में ऊंचाई पर आवास बना रहे जानवर, हिंदुस्तान की खबर है। पत्र लिखता है, जलवायु परिवर्तन की वजह से निचले इलाकों में रहने वाला हिमालयन बीजल पहली बार 3,500 मीटर की ऊंचाई पर नजर आया। अमर उजाला ने अपने संपादकीय पन्ने पर एआई समय शीर्षक से लेख प्रकाशित किया है। पत्र लिखता है, चैटबॉट है नई पीढ़ी के असली दोस्त। बेशक एआई चैटबॉट ने युवाओं की अभिव्यक्तियों का नया मंच दिया है, लेकिन इसके कुछ गंभीर खतरे सामने आने लगे हैं। जान जमा पूंजी छीन रहा गेमिंग ऐप का जुनून, ऑनलाइन गेमिंग में 2025 में लोगों ने 20,000 करोड़ रुपए गंवाए, हिंदुस्तान की खबर है। नवभारत टाइम्स सहित सभी समाचार पत्रों ने सोमनाथ मंदिर के पुनरुत्थान होने का समाचार भी प्रकाशित किया है। नमामि गंगे की डॉल्फिन एम्बुलेंस ने 4 महीने में 8 डॉल्फिन को बचाया, जनसत्ता ने अभियान शीर्षक से एक खबर प्रकाशित की है।
1: धन्यवाद मुकेश। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। शुभेंदु अधिकारी आज सुबह पश्चिम बंगाल के पहले भाजपा मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। तमिलनाडु में सरकार गठन को लेकर अनिश्चितता बरकरार। लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमणि भारत के नए प्रमुख रक्षा अध्यक्ष नियुक्त। अगले 2 दिन में केरलम, दक्षिण कर्नाटक, तमिलनाडु और पुदुचेरी में तेज बारिश का पूर्वानुमान। और फुटबॉल में भारत ने एएफसी अंडर 17 महिला एशियाई कप के क्वार्टर फाइनल में पहली बार प्रवेश कर इतिहास रचा। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: श्रोताओ नमस्कार। मां बनना एक बहुत सुखद और अद्भुत अनुभव होता है, पर यह सुरक्षित भी हो इसके लिए जरूरी है गर्भधारण से लेकर प्रसव तक हर छोटी से छोटी बात का ख्याल रखना, जिससे जच्चा और बच्चा दोनों सुरक्षित रहें। इसी विषय पर विस्तार से जानकारी देने के लिए आज हमारे स्टूडियो में आमंत्रित हैं स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कमलजीत, जो श्री सत्य साई माँ एवं बाल अस्पताल में अपनी सेवाएं दे रही हैं। मैम, स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में।
1: धन्यवाद।
0: सबसे पहले तो आपसे हम यही जानना चाहेंगे कि गर्भधारण की आदर्श आयु क्या होती है?
1: आइडियल एज जो होती है प्रेगनेंसी की, वो 20 साल से 35 साल का होता है। अगर 20 साल से कम आयु है तो महिला उस समय उतनी प्रिपेयर्ड नहीं रहती है, एंड 35 साल से बहुत सारे अदर कॉम्प्लिकेशंस आते हैं। सबसे पहला कॉम्प्लिकेशन है कि 35 साल के बाद उसको गर्भ धारण करने में ही दिक्कत आती है। जैसे कि जो एक फीमेल में क्या रहता है कि हमारी AMH वैल्यू, हमारे जो अंडे होते हैं फीमेल्स के, वो फिक्स्ड होते हैं, ठीक है। फिर उसके अगर 35 ईयर के बाद जो एज लिमिट होती है उसमें उसके अंडे की भी एजिंग होने लग जाती है, उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों में प्रभाव पड़ता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 35 के बाद प्रेगनेंसी प्लान करना खुद में ही एक चुनावदायी चीज होती है, एंड देन अगर वो प्रेग्नेंट हो जाती है 35 साल के बाद तो उसमें अदर कॉम्प्लिकेशंस आते हैं, जैसे BP का बढ़ जाना, एनीमिया, डायबिटीज, जेस्टेशनल डायबिटीज, जो प्रेगनेंसी के दौरान जो डायबिटिक जो हो जाती हैं फीमेल्स, और प्लस जो इनका नेचुरली जो बॉडी में जो चेंजेस आते हैं वो अदर एज लिम फैक्टर से अलग रहते हैं। तो जो आइडियल एज होती है वो 35 होती है, 35 के पहले होती है।
0: अच्छा,
1: तो इसमें क्या रहता है, अदर कंजेनाइटल जेनेटिक डिसऑर्डर्स भी बढ़ते हैं बच्चों में। अगर माँ 35 के बाद प्रेग्नेंट हो रही है तो उसमें हाई चांसेस होते हैं कि जेनेटिकली या कंजेनाइटली मालफॉर्म्ड डिफॉर्मिटीज आ सकते हैं। तो बेस्ट है कि आप 35 के पहले ही प्लान कर लीजिए। ऐसा नहीं है कि 35 के बाद आप नहीं प्लान कर सकते, बट हाई रिस्क थोड़ा बढ़ जाता है, लेकिन स्टिल वी कैन गो फॉर इट। जब माँ रेडी है वो तब प्रेग्नेंट हो सकती है।
0: जी जी। तो पहली बार जो महिलाएं माँ बनने वाली होती हैं उनकी देखभाल में किस तरह की चुनौतियां होती हैं?
1: जो पहली बार माँ बनती हैं वो महिलाएं अक्सर, उनको समझ नहीं आता है कि क्या मेरे लिए सही है क्या गलत है।

0: वो अपने मतलब उनको एक तो वो हर चीज घर परिवार में अलग सलाह मिलती है उनको, वो उनके बॉडी में अलग चेंजेस आते हैं,
1: जी
0: तो उनको शारीरिक जो बदलाव आते हैं जैसे थकान लगना, शाम के समय बुखार जैसा लगना, उल्टी घबराहट लगना, वो इस चीजों को समझ नहीं पाती कि इसको कैसे डील करें। तो इनके लिए सबसे पहले तो हमको ये डर को हटाना है, ये असहजता को हटाना है कि ये सब चीजें जो उनके साथ हो रही हैं ये फिजियोलॉजिकल चेंजेस है, ये नॉर्मल चेंजेस है जो प्रेगनेंसी के हार्मोन्स की वजह से है। प्रेगनेंसी जब हमको कंसीव होती है तो एक प्रोजेस्ट्रॉन करके एक हार्मोन होता है जो बहुत पीक लेवल मतलब जो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से हमारा सारा उल्टी आना, चक्कर आना, थोड़ा सा घबराहट जैसा लगना।
1: जी
0: तो इसके लिए इनको डरने की बात नहीं है, इसमें बॉडी में खाने में या फिर अपने जो डे टू डे लाइफ है उसमें चेंजेस करने होते हैं। जैसे हम दिन में 3 बार खाते हैं तो इनको फ्रिक्वेंट स्मॉल मील लेना, इनको कम से कम हर 2 घंटे में कुछ ना कुछ करके खाना है। अगर ये बहुत देर खाली पेट रहती है तो दिक्कत की बात है, और अगर ये पेट भर के खाती है तो इनको उल्टी और वॉमिटिंग होगा ही। अगर खाली पेट रहेंगी तो एसिडिटी बनती है, तो हाइपर एसिडिटी की वजह से वो और नौजिया और वॉमिटिंग्स होते हैं। अगर पेट भर के खा लेते हैं तो फिर वो फिर पछतानी है, वो फिर उल्टियाँ हो जाती है। तो एक फ्रिक्वेंट एक मील डिसाइड रखना है कि मुझे हर 2-2 घंटे में, हर 3-3 घंटे में लाइट खाना खाना है, और जो भी खा रहे हैं वो फ्रेश बना होना चाहिए, बाहर का बिल्कुल अवॉइड करना है, स्पाइसी कम खाना है, और जो पसंद है वो सब खा सकते हैं। ऐसा नहीं मुझे ये नहीं खा सकती, मैं वो नहीं खा सकती। जो आपको अगर आपको दूध नहीं पसंद है तो जरूरी नहीं आपको प्रेगनेंसी में दूध पीना ही है, लेकिन आप कोशिश करिए आप उसको लें, लेकिन आपको दूध पीने से तुरंत उल्टी हो जा रही तो थोड़े 3 महीने के लिए या 4 महीने के लिए थोड़ा कंट्रोल कर मत लीजिए। दूसरी बात यह है कि शाम के समय जो थकान लग रही है, जो चीजें हो रही हैं, वो चीजें नॉर्मली अडेप्ट हो जाएंगी। इनिशियली क्या रहता है कि शुरुआत के 2-3-4 महीनों में ये सारे सिम्टम्स ज्यादा रहते हैं, लेकिन ग्रेजुअली वो धीरे धीरे कम हो जाते हैं। तो इसमें क्या है कि और महिलाओं का सबसे बड़ा डर रहता है कि मेरा वजन नहीं बढ़ रहा है, तो शुरुआत के समय में वजन नहीं बढ़ता क्योंकि ऑलरेडी वो खाने में परहेज कर रही हैं, ऑलरेडी उनको उल्टियां हो रही हैं, तो उस समय वजन बल्कि थोड़ा कम रहता है, या बढ़ा तो 1 से 2 किलो बढ़ेगा, लेकिन बच्चे की वजह से वो वजन उनको अभी नहीं बढ़ाना या बढ़ाने की जरूरत नहीं, उनको बस एक साधारण घर का खाना खाना है जिसमें वो थोड़ा प्रोटीन इंटेक ज्यादा ले, या जो नॉर्मल घर का खाना है सिर्फ वो भी सेवन कर सकती हैं, उसमें कोई फल और जो जो चीज उनको पसंद है, जो चीज उनको खाने में भा रही है या फिर वो खा सकती है, उससे उसको दिक्कत नहीं हो रही है, वो सब चीजें वो ले सकती हैं। बस इसमें ये रखना है कि बहुत ज्यादा ट्रैवलिंग करना, अभी नीचे झुकना, वजन उठाना, ये सब चीजें अवॉइड करनी रहती हैं।
1: कोई ऐसी चीज भी होती है जो गर्भवती महिलाओं को नहीं खानी चाहिए गर्भावस्था के दौरान?
0: देखिए यूजुअली जो पपाया होता है, पपाया में एंजाइम्स होते हैं जो यूट्रस को कॉन्ट्रैक्शन दे सकते हैं, तो हम लोग डेंटली वो अपना प्रेगनेंसी आगे डील करती है। तो एएनसी विजिट यूजुअली तो 8 होना चाहिए, मतलब WHO के अभी न्यू गाइडलाइन के हिसाब से, लेकिन मिनिमम 4 विजिट तो उसको करना चाहिए। जो पहला 3 महीना होता है जैसे ही वो प्रेगनेंसी कंसीव की, और 12 हफ्ते तक का, तो ये जो समय रहता है इसमें हम फर्स्ट मदर को हम बुलाते हैं, उसमें हम उनकी सबसे पहले बेसिक ANC प्रोफाइल मतलब जिसमें सारे ब्लड टेस्ट होते हैं, जिसमें उसका HB कितना है, उसके वायरल मार्कर्स कैसे हैं, उसके यूरिन कैसा, यूरिन टेस्ट हुआ जाता है, इसमें प्रोटीन्स या यूरिन में इन्फेक्शन तो नहीं है, देन ये सारी सिकलिंग वगैरह, क्योंकि छत्तीसगढ़ में सिकलिंग भी बहुत प्रोन है, तो ये सारी चीजें हम रूल आउट कर लेते हैं। ठीक है, इससे ये रहता है कि एक बेसलाइन हम शुगर भी चेक करते हैं मदर का उसी में, क्योंकि जब अगर बेसलाइन शुगर नॉर्मल है उसका और अगर 20 हफ्ते बाद शुगर बढ़ रहा है तो इसका मतलब है कि मदर डायबिटिक नहीं है, वो जेस्टेशनल डायबिटीज के साइड जा रही है, मतलब वो गर्भ के बाद जो डायबिटीज होता है उसके साइड जा रही है। तो बेसलाइन हमारे पास एक सारे जांच होने चाहिए जो हम ANC प्रोफाइल जो फर्स्ट विजिट में हम कराते हैं। दूसरी चीजें हम लोग ये कराते हैं जो फर्स्ट 3 महीने का रहता है, उसमें एक NT-NB स्कैन होता है जो 11 से 13 हफ्तों के बीच में होता है। वो NT-NB स्कैन बहुत ज्यादा जरूरी स्कैन है, उसमें बच्चे की नाक की हड्डी देखा जाता है कि प्रेजेंट है या एब्सेंट है, और बच्चे के गले के पीछे का एक थिकनेस मेजर किया जाता है, एंड उसके अकॉर्डिंगली एक डबल मार्कर का रिपोर्ट बनता है। डबल मार्कर में ये पता चलता है कि उस बच्चे को कोई कंजेनाइटल या जेनेटिक डिसऑर्डर तो नहीं है। तो ये इनिशियली पहला मतलब ये स्क्रीनिंग होता है जो हम 3रे महीने में करते हैं। तो ये तो आपका फर्स्ट हुआ। उस पर हम मदर को फॉलिक एसिड लेने बोलते हैं एंड मदर को एक विटामिन डी का सप्लीमेंटेशन प्लस मैंने देते हैं। अगर उसको बहुत उल्टियां हैं तो हम उसको खाने के बारे में सिखाते हैं, हम उसको सिखाते हैं कि बॉडी तुम्हारी नेचुरली कैसे अब तुमको आगे डील करना है। तो फर्स्ट विजिट बहुत इम्पोर्टेंट रहती है। सेकेंड विजिट जो रहती है वो हमारा जो सेकेंड ट्राइमेस्टर से चालू होता है, तो उसमें हम एक एनिमली स्कैन करते हैं जो 18 से 20 हफ्ते के बीच में होता है। वो एनिमली स्कैन में हम बेबी को हेड टू टो स्क्रीनिंग किया जाता है कि बच्चे में सब चीजें ठीक है, कभी लाइक उसके लेंसेस कैसे हैं, उसके आईज से लेके उसके हाथ, उसके टो, उसके फिंगर्स, एवरीथिंग उसमें स्क्रीनिंग होती है कि बच्चे में कहीं डिफेक्ट तो नहीं है, कोई भी कंजेनाइटल प्रॉब्लम्स तो नहीं है। और इसमें क्या रहता है, जिन्होंने 3 महीने की सोनोग्राफी नहीं करवाई है वो अब इसमें क्वाड्रपल मार्कर में करवा सकते हैं 18 से 20 हफ्तों के बीच में। तो क्वाड्रपल मार्कर भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है टू रूल आउट द जेनेटिक और क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। लेकिन जिनका ऑलरेडी डबल मार्कर हो गया है वो जरूरी नहीं कि क्वाड्रपल मार्कर भी करवाएं। और अगर 5th मंथ में अगर कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं तो 20 वीक्स तक हम डिसाइड कर सकते हैं कि बेबी को आगे कैसे हमको प्लांट आउट करना है। और उसके अकॉर्डिंगली अगर कुछ हमको लगता है कि क्वाड्रपल मार्कर में हाई रिस्क आया है तो हम उसके आगे का टेस्ट कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल एनआईपीटी या एम्नियोसेंटेसिस। एनआईपीटी मदर का ब्लड लेकर टेस्ट होता है जिसमें मां का ब्लड निकालकर उसको जेनेटिकली और क्रोमोसोमल स्क्रीनिंग किया जाता है। एंड एमनियो, अगर हमको 100% कन्फर्मेटरी चाहिए कि बच्चे में कोई जेनेटिक या क्रोमोसोमल डिफॉर्मिटी नहीं है तो हम लोग फिर एम्नियोसेंटेसिस करते हैं। उसमें मां के आसपास का जो पानी होता है उसको सिरिंज के द्वारा निकाला जाता है, सोनोग्राफी गाइडेड रहता है ये। तो उसमें हमको ये समझ में आ जाता है कि बच्चे को जेनेटिकली इश्यूज नहीं है या क्रोमोसोमली बच्चा फिट है, अकॉर्डिंगली फिर हम प्लान करते हैं। तो सब एक एक स्टेप्स का, एक एक विजिट का उनका बहुत इम्पोर्टेंस है। फिर बेबी का ग्रोथ आता है कि बेबी ग्रो कैसे कर रहा है, बेबी की ग्रोथ कैसे हो रही है। अल्ट्रासाउंड से हम देखते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर 6 महीने का बच्चा है तो उसको 600 ग्राम प्लस ऐसा रहना चाहिए, कितना उसकी लैग हो रही है। फिर 32 वीक्स अगर हो रहे हैं तो उसमें 2 kg के अराउंड आ रहा है, 1.7 to 2 kg। तो इनिशियली फिर हम ग्रोथ मॉनिटर करते हैं एंड इसी बीच में हम टेटनस या वैक्सीनेशन का भी इंक्लूड करते हैं जो विजिट्स आते हैं। तो वैक्सीनेशन के बारे में अगर आप बोलोगे तो बेसिकली 2 वैक्सीनेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट टीटी का जो वैक्सीनेशन लगता है टेटनस का, वो 3 महीने में लग जाना चाहिए।
1: पहला टीका
0: 3 महीने में,
1: ठीक है।
0: और दूसरा टीका जो रहता है वो 1 महीने बाद लगता है जो फर्स्ट टीका लग गया है। लेकिन सबसे अच्छा है कि आप पहला टीटी का टीका ले लीजिए और जैसे 28 वीक्स हो गया, 7वां महीना लग जाए, तो टीडैप करके एक वैक्सीनेशन होता है वो मोर सब एफिशिएंट रहता है। उसमें टेटनस भी कवर होता है, डिप्थेरिया भी कवर होता है और पर्ट्यूसिस भी कवर होता है बेबी का, ठीक है। तो उसमें माँ और बेबी दोनों का टेटनस का, माँ का कवर हो गया, पर्ट्यूसिस डिप्थेरिया बच्चे का भी कवर हो जाता है। तो जिसके लेकिन अभी ये गवर्नमेंट में नहीं है तो हम टेटनस का 2 डोज इजिली लगा सकते हैं।
1: तो कम से कम 2 टीके बहुत
0: जरूरी है जी, क्योंकि क्या अगर हम टेटनस का टीका नहीं लगाएंगे तो क्लॉस्ट्रेडियम टेटनी करके एक ऑर्गेनिज्म है, वो अगर उससे वो क्या रहेगा, कल को अगर डिलीवरी हो रही है कुछ भी इंस्ट्रूमेंट से कुछ ये इन्फेक्शन फैल गया तो उसमें मदर के लिए वो जानलेवा भी आगे बन सकता है। तो टेटनस मस्ट है लगाना
1: जी। जी ये बताइए कि संस्थागत प्रसव यानी अस्पताल में प्रसव कितना जरूरी है?
0: इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। कभी कभी क्या रहता है, एक्चुअली मैं आपको एक अपने पर्सनल अनुभव बताऊं तो मेरी मम्मी जो सिंगल चाइल्ड थी एंड मेरी नानी, मतलब मेरी मम्मी की जो मदर, शी डाइड बिकॉज ऑफ द पोस्टपार्टम हेमोरेज। उन्होंने घर पे डिलीवरी हुआ एंड दैट लॉन्ग बैक एंड उनको बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हुई, वो वहीं कोलैप्स हो गई। तो घर पे डिलीवरी कराना बहुत बहुत खतरे वाली चीजें हैं। हमारे पास इंस्टीट्यूशनल में हर सुविधा है मां और बच्चे को बचाने के लिए। पहली बात तो मां को शुरुआत से ही इंस्टीट्यूशनल में आके अपनी सारी जांचें, HB, BP, शुगर सारे चेक कराते रहना चाहिए, जिसमें वो स्मूथली 9 महीने तक अच्छे से स्वस्थली खींच सके, फिर वो स्वस्थ बच्चे को भी जन्म दे सके। और इंस्टीट्यूशनल में डिलीवरी कराने से बहुत सारे फायदे हैं कि अगर बच्चा फर्स्ट है या माँ को प्रसव होने के बाद बहुत ब्लीडिंग है तो हम उन सबको ट्रीट कर सकते हैं, हम माँ की जान को बचा सकते हैं तुरंत। तो मैम मेरे हिसाब से हर एक डिलीवरी इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी होनी चाहिए।
1: बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा आपने। बातें और भी हैं, सवाल हमारे पास और भी हैं। फिलहाल आपकी पसंद का एक गीत सुन लेते हैं।

0: कौन सा गीत सुनवाना चाहेंगी आप आज हमारे श्रोताओं को?
1: मैम, मुझे डियर जिंदगी का लव यू जिंदगी गाना बहुत पसंद है। वो इतना एनर्जेटिक है एंड वो एक मोटिवेशनल सॉन्ग भी है, तो मुझे वो सॉन्ग तो पसंद है।
0: चलिए आपकी पसंद पर ये गीत सुनते हैं।

0: डॉक्टर की सलाह कार्यक्रम में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कंवलजीत को। मैम आपसे जानना चाहेंगे हम, गर्भावस्था के दौरान गर्भवती स्त्री को अपने खान पान पे किस तरह का ध्यान रखना चाहिए, कौन कौन सी चीजें शामिल करनी चाहिए जो उनके लिए, जो उनके स्वास्थ्य के लिए बेहतर साबित हों।
1: देखिए, प्रेगनेंसी में मैंने पहले भी बताया कि जैसे हम सुबह दोपहर रात को खाते हैं, जो इंडियन सिनेरियो के हिसाब से रहता है कि, तो वो ऐसा नहीं खाना है। हमको फ्रीक्वेंट स्मॉल मील लेना या उस मील को 5 से 6 में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो हर 2-2 घंटे में कुछ ना कुछ खाते रहना है। उसमें हमको कार्बोहाइड्रेट्स भी चाहिए, प्रोटीन्स भी चाहिए और विटामिन्स भी चाहिए और हेल्दी फैट्स भी चाहिए, ठीक है। तो शुरुआत में जो जब प्रेगनेंसी कंसीव होता है तो उसमें सिर्फ नॉर्मल न्यूट्रिएंट्स वाले जो घर के जो खाने वो भी भरपूर रहते हैं, उसमें आप दही ऐड कर लीजिए, उसमें आप एक ग्लास दूध ऐड कर लीजिए, जैसा भी आपको अगर उल्टियां नहीं हो रही है या फिर आपको उससे दिक्कत नहीं हो रही है, आप वैसा खाना खाइए। लेकिन फिर जब सेकेंड ट्राइमेस्टर, जब आप 14 वीक्स के बाद, 14 हफ्ते के बाद जब आप पहुंचती हैं, तो ये सब सिम्टम्स कम हो जाते हैं। तो उसमें आपको प्रॉपर डाइट मेंटेन करना पड़ता है जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स रहते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स एनर्जी के लिए हैं, तो उसमें राइस, चावल, पोहा, ओट्स सारी चीजें आती हैं, ठीक है। एंड देन प्रोटीन्स की बात आए तो प्रोटीन्स बेबी के ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें अगर कोई मांसाहारी नहीं खा सकता तो फिर वो पनीर खाए और सोयाबीन खाए एंड दाल, स्प्राउट्स, ये सारी चीजें। में जो मूंग दाल का जो ओवरनाइट सोक, रात भर आप मूंग दाल को भिगो कर रख दिए, फिर वो अंकुरित दाल को कच्चा नहीं खाना, उस अंकुरित दाल को या तो थोड़ा स्टीम कर लेना है या फिर उसका कोई चीला बनाकर खाना है। उस चीला भी जो आप बना रहे हैं उस अंकुरित मूंग के दाल से, उसमें आप कुछ और ऐड कर दीजिए, जैसे कुछ गाजर हो गया, कोई चुकंदर हो गया। चुकंदर तो बहुत अच्छा है खाने के लिए, वो ब्लड भी बढ़ा रहा है, तो उसमें गाजर, चुकंदर, कुछ पालक वगैरह पीस कर डाल दिया तो वो एक हेल्दी बन जाता है। तो कार्बोहाइड्रेट्स हो गया, प्रोटीन्स हो गया, देन कुछ एनर्जी के लिए हेल्दी फैट्स भी इम्पॉर्टेंट है। तो उसमें आप घी थोड़ा मात्रा में लेना जरूरी है, घी और ऑयल हल्का मात्रा में लेना जरूरी है। एंड विटामिन्स एंड मिनरल्स की बात करें तो इम्यूनिटी डेवलपमेंट के लिए हमको ये जरूरत है, तो उसमें आप फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जो भी आपके पास फ्रेश अवेलेबल है, और सुबह के समय आप थोड़ा ड्राई फ्रूट्स ले लिए, जिसमें आप अखरोट रख सकते हैं, बादाम रख सकते हैं, किशमिश रख सकती हैं। जो काले किशमिश होते हैं वो शायद कॉन्स्टिपेशन के लिए मतलब अच्छे रहते हैं, वो उसमें हेल्प आउट करते हैं। तो हर थोड़े थोड़े देर में आप थोड़ा खाइए, जरूरी नहीं आप एक साथ 3 रोटियां एक साथ खा रही हैं, नहीं होगा। तो आप एक ही रोटी खाइए, फिर 2 घंटे बाद फिर थोड़ा कुछ खाइए, या फिर 2 घंटे बाद फिर से रोटी खाइए। तो वैसे आपको फ्रीक्वेंटली स्मॉल और हेल्दी डाइट लेना, क्वांटिटी इम्पॉर्टेंट नहीं है, क्वालिटी होना चाहिए फूड का। जैसे आप डेली बस चीला खा रही हैं तो उसमें आपके शरीर को कुछ नहीं मिल रहा, सिर्फ कार्बोहाइड्रेट मिल रहा। आप उस चीला में इंक्लूड कर दीजिए गाजर, चुकंदर या हरी सब्जियां या हरी भाजी, या दाल बना रही है तो दाल के अंदर इंक्लूड सोयाबीन कर दीजिए, दाल या सोयाबीन को मिलाइए, या सोयाबीन के साथ कुछ और रख लीजिए, सोयाबीन को ग्रेट करके उसका आप भुर्जी जैसा खा लीजिए। तो एक बाउल हमेशा अपने पास रेडी रखना है कुछ हेल्दी चीजों का। कुछ नहीं समझ में आया तो एक बनाना ले लीजिए, एक फ्रूट्स डेली इंक्लूड करना है, ठीक है। अगर आपको दूध पसंद नहीं है तो आप दही के फॉर्म में ले लीजिए, अगर आपको दही भी नहीं पसंद है तो आप पनीर के रूप में ले लीजिए।
0: एक सवाल ये भी आता है कि क्या गर्भावस्था के दौरान व्यायाम और योग गर्भस्थ महिला के लिए आवश्यक है?
1: बिल्कुल आवश्यक है। योगा यूजुअली सबके लिए इम्पोर्टेंट है, लेकिन गर्भावस्था में वो ज्यादा रोल प्ले करता है। मदर ऑलरेडी एंजाइटी, फियर, मतलब एंजाइटी और सब घबराहट से उभरती रहती है, तो उसके लिए योगा करना, उसके लिए थोड़ा मन को शांत रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। स्ट्रेस हार्मोन्स कम करना बहुत ज्यादा जरूरी है, जिसका प्रभाव गर्भ पर भी पड़ता है। इसीलिए आजकल शायद गर्भ संस्कार के बारे में भी बहुत चर्चा हो रही है, कि जिसमें 7वें महीने में गर्भ में जो बच्चा रहता है उसमें सुनने की शक्ति आती है। तो माँ जो पढ़ रही है, माँ जो देख रही है, माँ जो फील कर रही है, माँ स्ट्रेस को जो रिलीफ कर रही है, तो उसमें बेबी के ऊपर भी बहुत पॉजिटिव प्रभाव पड़ता है। और योगा तो ट्राइमेस्टर के हिसाब से, ऐसा नहीं कि आप पहले दिन से ही योगा करी कि मुझे नॉर्मल डिलीवरी कराने के लिए योगा करना, ऐसा नहीं होता। हर योगा का भी अलग पैटर्न्स होते हैं। फर्स्ट जब पहला समय चल रहा है, जब फर्स्ट ट्राइमेस्टर चल रहा है, तो आपको ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करनी है, आपको सांस लेने छोड़ना, उसमें अनुलोम विलोम ये सब चीजें करनी है ताकि आपका माइंड रिलैक्स रहे, एंड उसमें आपको हैवी एक्सरसाइजेस नहीं करनी है। लेकिन जैसे जैसे आप थर्ड ट्राइमेस्टर सेकंड ट्राइमेस्टर क्रॉस करते हैं, तब आपको कुछ फ्लोरिंग एक्सरसाइजेस आप कर सकती हैं। तो शुरू से ही एकदम हैवी एक्सरसाइजेस वर्कलोड वगैरह नहीं करना।
0: स्तनपान शिशु के लिए कितना आवश्यक है?
1: स्तनपान शिशु के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है, क्योंकि वो सबसे पहला तो एक माँ और बच्चे के बीच में बॉन्डिंग बनाता है। ठीक है, स्तनपान माँ के लिए भी नया रहता है, बच्चे के लिए भी वो चीजें उतनी ही नई रहती हैं, तो माँ बहुत जल्दी एग्जॉस्टेड हो जाती है। इसमें सबसे ज्यादा रोल आता है हेल्थ केयर वर्कर्स का, कि वो माँ को सिखाए, प्रॉपर टेक्निक सिखाए, प्रॉपर तरीका बताए, कितनी बार दूध

0: आना है वो समझाए। और जो पहला मिल्क होता है जिसको कोलेस्ट्रम बोलते हैं, वो तो इम्यूनिटी बूस्टर रहता है, वो सबसे ज्यादा जरूरी रहता है बच्चों के लिए। तो अगर बच्चे को स्वस्थ रहना है, बच्चे की इम्यूनिटी डेवलप करनी है, तो माँ का दूध ही उसे पिलाना है, क्योंकि माँ के दूध में जो एसेंशियल विटामिन्स, एसेंशियल मिनरल्स है, इम्यूनोग्लोबुलिन्स है, वो आपको बाहर के गाय के दूध में या फिर किसी डब्बे के दूध में नहीं मिलेगा। बच्चे के ब्रेन डेवलपमेंट से लेके हर चीजों के लिए माँ का दूध जरूरी है। दूसरी बात यह है, एक तो बॉन्डिंग रहती है, दूसरा बच्चे के लिए, तीसरा इससे ये एक बैरियर का भी, मतलब कॉन्ट्रासेप्शन का भी काम करता है। जब तक माँ दूध बच्चे को पिला रही है, तब तक कम चांसेस रहता है उसकी प्रेगनेंसी दोबारा से होने का, तो एक उसके लिए भी जरूरत है। दूसरा, इसका बहुत सारे माँ के ऊपर, शरीर के ऊपर भी देखा गया है कि ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेस वगैरह सब बहुत कम रहते हैं अगर माँ दूध पिला रही है बच्चे को।
1: जी, क्या स्तनपान न करवाने से माँ को कोई शारीरिक व्याधि हो सकती है?
0: देखिए, बहुत सारी माँ को ऐसा लगता है कि दूध तो आ रहा है लेकिन वो सही तरीके से नहीं पिला सकती, नहीं पिला पाती हैं, तो उनको लगता है कि बच्चा पी नहीं रहा है, लेकिन दूध इकट्ठा हो रहा है, दूध जम रहा है, तो उससे क्या होता है कि माँ को एक समय के बाद वो ब्रेस्ट में लम्प्स बन जाता है, तो उससे उसको पीड़ा, दर्द होना, बुखार आना, ये सारी चीजें दिक्कत आती हैं। तो माँ को पहले टेक्निक सही पता होना चाहिए कि कैसे बच्चे को सन से लगाना है और कितने बार दूध पिलाना, और दूध को वहां जमने नहीं देना है, उससे इन्फेक्शन का भी सोर्स होता है, इन्फेक्शन भी हो सकता है। तो ये तो इनिशियल स्टेज में, लेकिन अगर लॉन्ग प्रोलॉन्ग देखा जाए तो इसमें ब्रेस्ट कैंसर भी प्रिवेंट होता है। अगर आप बच्चे को प्रॉपरली पिला रहे हैं, प्रॉपरली उसको देख रहे हैं, तो इसमें ब्रेस्ट कैंसर होना, ओवेरियन कैंसर होना, बहुत सारी चीजों में ये सब प्रिवेंशन का रोल फॉलो करते हैं।
1: आज हम चर्चा कर रहे हैं गर्भवती स्त्री के स्वास्थ्य के बारे में। ये बताइए कि एनीमिया और कुपोषण हमारे राज्य की महिलाओं में एक प्रमुख और ज्वलंत समस्या है। इसे दूर करने के लिए क्या कदम उठा सकती हैं महिलाएं?
0: एनीमिया और कुपोषण आज भी हमारे जो भारत में है वो बहुत ज्यादा है, गर्भवती महिलाओं में देखा गया है। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि जैसी महिला प्रेग्नेंट हो रही है, गर्भवती हो रही है, तो स्क्रीनिंग बहुत जरूरी है कि कौन एनीमिक है। तो जो पहली बार जब हम माँ को मिल रहे हैं, जब वो प्रेग्नेंट हो रही है, हम उसी समय ही डिटेक्ट कर लेते हैं कि मदर को एनीमिया है या नहीं। एनीमिया मतलब कि ब्लड 10 ग्राम से कम होना, और सीवियर एनीमिया मतलब 7 ग्राम से कम होना। तो अगर वैसा रहता है तो माँ को शुरुआत से ही ट्रीटमेंट दिया जाता है, शुरुआत से ही उसको आयरन सप्लीमेंटेशन, अगर वो नहीं डील कर पाती, अगर 7 ग्राम से ब्लड कम है, तो डायरेक्टली हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी करते हैं। और एनीमिया अगर कैरी ऑन करेगी तो वो माँ के लिए तो नुकसानदायी है, वो बच्चे के ऊपर भी असर करता है। तो एनीमिया को ट्रीट करना एक बहुत बड़ी चुनौती भी है, और इसको स्क्रीनिंग किया जाए तो ये इजीली हम इसको ट्रीट प्रिवेंटेबल कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि एनीमिया जो मदर में है वो बहुत कॉमन देखा जाता है, उसके लिए डिवॉर्मिंग होती है, मतलब कि अंदर पेट में अगर कीड़े हैं तो हम लोग सेकंड ट्राइमेस्टर में डिवॉर्मिंग की टैबलेट्स जो आंगनवाड़ी में भी मिलती है एल्बेंडाजोल के नाम से, तो आंगनवाड़ी वर्कर्स भी देते हैं। इनफैक्ट लाइक हर गवर्नमेंट सेटअप में वो डिवॉर्मिंग हुआ जाता है माँ का, तो उससे भी जो आयरन एब्जॉर्प्शन नहीं हो पा रहा है वो उसमें हेल्प होती है। प्लस आयरन एंड फॉलिक एसिड की जो टैबलेट सप्लीमेंट्स हम देते हैं, अगर आयरन टैबलेट्स वो नहीं टॉलरेट कर पा रही है, उससे नहीं हो पा रहा है, वो उल्टियां हो जा रही है, या आयरन से उसको बहुत सीवियर पेन हो रहा है, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो रही है, मदर आयरन नहीं ले रही है, तो फिर हम उसको इंजेक्टेबल आयरन के रूप में भी दे सकते हैं, जिसमें हमारे पास आयरन सुक्रोज रहता है, फेरिक कार्बोक्सी माल्टोज का ऑप्शन है। तो ये सब चीजें जो हमारे पास मेडिकल सारी सुविधाएं हैं जिससे हम एनीमिया को प्रिवेंट कर सकें और बच्चे को भी प्रोटेक्ट कर सकें। एक चीज मैं और इम्पोर्टेंट बताना चाहती हूं कि टैबलेट्स कैसे लेने होते हैं आयरन के। आयरन की टैबलेट्स कभी भी दूध या दूध से बने हुए प्रोडक्ट से नहीं लेते, या चाय के साथ जो अल्कलाइन चीजें होती हैं उसके साथ नहीं लिया जाता, उसको एब्जॉर्ब होने के लिए विटामिन सी की जरूरत पड़ती है। तो आयरन की टैबलेट्स आप जब भी ले रही हैं उसके साथ एक नींबू का पानी ले लीजिए, या पहले से एक विटामिन सी की एक च्यूएबल टैबलेट ले लीजिए, ताकि आयरन का रेट का एब्जॉर्प्शन अच्छा बढ़ जाए। अगर आप दूध के साथ, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए हैं क्योंकि लोगों को पता नहीं होता कि आयरन की टैबलेट्स लेनी कैसी है। फर्स्ट ऑफ ऑल, आयरन की टैबलेट दिन मत लीजिए, थोड़ा शाम के समय या रात के समय सोते समय लीजिए, ताकि आपको जो हल्का फुल्का क्रैम्स आए वो आप डील कर सकें, क्योंकि थ्रू आउट आप दिन भर आपको अनइजीनेस लगेगा तो फिर आप आयरन टैबलेट वैसे ही लेना बंद करेंगी। तो आप एक پرٹیکولر ایک سوٹیبل اپنا ٹائم لے لیجئے کہ مجھے اتنا سمے آئرن کی ٹیبلٹ لینی ہے, رات کو سوتے سمے میں لوں گی ایک نیبو کے پانی سے یا پھر ایک اورنج جوس کے ساتھ یا پھر وٹامن سی کے ساتھ, تو اس کا ایبزارپشن ریٹ کافی اچھا رہتا ہے.
1: ڈاکٹر کنول جیت, آج آپ ہمارے اسٹوڈیو میں آئی, آپ نے ہماری شروتاؤں کو اتنی مہتوپورن جانکاری دی, آپ کا بہت بہت دھنیہ واد.
0: تھینک یو, دھنیہ واد.

0: समन्वित कार्यक्रम डॉक्टर की सलाह में अभी आप सुन रहे थे गर्भावस्था के दौरान सावधानियों पर स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कमलजीत से ली गई भेंट वार्ता। भेंटकर्ता थी प्रीति यादव। आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। 9 बजे हैं बातों बातों में, इसमें सुनिए जनगणना 2027 पर छत्तीसगढ़ के जनगणना निदेशक कार्तिकेय गोयल से ली गई भेंटवार्ता। प्रस्तुति विकल्प रंजन शुक्ल की है।
1: श्रोताओं नमस्कार। समसामयिक विषयों पर आधारित हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम बातों बातों में के आज के अंक के साथ मैं विकल्प शुक्ला। श्रोताओं, छत्तीसगढ़ में जनगणना 2027 के तहत 1 मई से मकानों के सूचीकरण और गणना का काम शुरू हो गया है। प्रगणक घर घर जाकर लोगों से जानकारी एकत्र कर रहे हैं। इस दौरान सभी परिवारों से 33 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ये प्रश्न मुख्य रूप से मकानों की स्थिति, परिवारों को उपलब्ध सुविधाएं और परिसंपत्तियों से संबंधित हैं। इस दौरान प्रगणक मोबाइल ऐप के माध्यम से जानकारी एकत्र कर रहे हैं। जनगणना कार्य में लगे सभी फील्ड कर्मचारियों को फोटो युक्त पहचान पत्र जारी किए गए हैं। श्रोताओं, इससे पहले 16 अप्रैल से 30 अप्रैल तक स्वगणना का कार्य किया गया, जिसमें नागरिकों को पोर्टल के माध्यम से स्वयं जानकारी दर्ज करने की सुविधा दी गई थी। इस दौरान छत्तीसगढ़ में करीब 1,38,000 परिवारों ने इस सुविधा का लाभ उठाया। श्रोताओं, जनगणना के तहत दी गई सभी व्यक्तिगत जानकारियां पूरी तरह से गोपनीय रखी जाएंगी, इन्हें किसी से भी साझा नहीं किया जाएगा, यहां तक कि टैक्स, पुलिस या किसी तरह की जांच में इस जानकारी का उपयोग नहीं किया जा सकता और ना ही इसका उपयोग किसी भी प्रकार के साक्ष्य के रूप में किया जा सकता है। इन आंकड़ों का उपयोग केवल नीति निर्माण और जन कल्याणकारी योजनाओं के लिए ही किया जाएगा। यह उल्लेखनीय है कि यह भारत की पहली ऐसी जनगणना है जिसमें आंकड़ों का संग्रहण डिजिटल उपकरणों और माध्यमों से किया जा रहा है। इससे न सिर्फ पूरी प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और तेज हुई है, बल्कि इससे आंकड़ों की विश्वसनीयता और गुणवत्ता भी सुदृढ़ हो रही है। श्रोताओं, जनगणना से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से जानकारी हासिल करने के लिए हमने बात की छत्तीसगढ़ के जनगणना निदेशक कार्तिकेय गोयल से। पेश है इस बातचीत के मुख्य अंश। गोयल साहब, आकाशवाणी समाचार के इस विशेष कार्यक्रम में हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं।
2: बहुत बहुत धन्यवाद सर।
1: सर, ये जो जनगणना की प्रक्रिया है, जनगणना 2027 की, इसके बारे में हमारे श्रोताओं को बताएं कि जो जनगणना 2027 हो रही है, इसकी विशेषताएं क्या हैं? भारत में जो इससे पहले जो जनगणना हुई है उससे यह किस तरह से अलग है?
2: भारत की जनगणना वर्ष 2027 नाम से जो हो रही है, ये दो चरणों में होगी। पहला चरण वर्ष 2026 के मई महीने में और द्वितीय चरण फरवरी 2027 में होकर मार्च के 5वीं तारीख 2027 तक पूर्ण हो जाएगा हमारे भारत में जनगणना। यह जनगणना पूर्व की जनगणनाओं की भांति उनके नियम कानून जो बने हुए हैं उनकी तरह ही की जा रही है, परंतु इसमें कुछ विशेषताएं। सबसे पहली तो ये कि यह जनगणना प्रथम बार इस देश के इतिहास में पूर्णतः डिजिटल माध्यम से होने वाली है। इसका मतलब जो हम कागज में लंबे लंबे फॉर्म लोगों के पास ले जाकर भरते थे, फिर उन फॉर्म को एक जगह वापस लाते थे, फिर उनके आधार पर डेटा कंप्यूटर में एंट्री करते थे और फिर इन फॉर्म्स को एक जगह एकत्रित करके सुरक्षित रखा जाता था, वो अब आवश्यक नहीं होगा। पूरी जानकारी डिजिटल माध्यम से ही आपके सामने एकत्रित की जा सकेगी और इसकी वजह से जो हमारे डेटा एनालिसिस है वो बड़ी तीव्र और तेज हो जाएगी। दूसरी विशेष सुविधा इस बार जो इस जनगणना में है वो यह है कि भारत के नागरिक को स्वयं अपने स्वगणना करने का विकल्प मिल रहा है। यह डिजिटल माध्यम और तकनीक की वजह से संभव हुआ है। तीसरी विशेषता वो यह है इस जनगणना की कि पहली बार भारत में कास्ट सेंसस जो होने जा रहा है वो इस जनगणना का भाग है, हालांकि वो इस जनगणना के दूसरे चरण में आएगा, न कि जनगणना के प्रथम चरण में। इस प्रकार इस बार की जनगणना तीन रूप में इसकी विशेषताएं हैं और अन्य रूपों में हर जनगणना की तरह ये बड़ा महत्वपूर्ण जनगणना है। 16 साल के बाद ये जनगणना हो रही है। सामान्य तौर पर हर 10 साल में होनी थी, लेकिन कोविड के चलते 2021 में नहीं हो पाई। जनगणना हमारे देश का मूलभूत आंकड़ा होता है और हमारे अगले 10 साल जो भी बुनियादी सुविधाएं या हमें प्लानिंग करनी है उसका मूलभूत आधार इन्हीं जनगणनाओं का आंकड़ा होता है, इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण है।
1: सर, स्वगणना के बाद 1 मई से मकान सूचीकरण का कार्य शुरू हो गया है। जो लोग स्वगणना के तहत पोर्टल में अपनी जानकारी दर्ज कर चुके हैं उनके घर जब प्रगणक आएंगे तो उन्हें क्या करना होगा?
2: 1 मई से 30 मई के बीच जब प्रगणक आपके घर आएगा तो सबसे पहले पूछेगा कि सर या मैडम आपने स्वगणना करी है या नहीं करी है। अगर आप कहते मैंने नहीं करी तो फिर वो कोई बात नहीं, वो आपका गणना आपके सामने कर देगा। और यदि आप कहते हैं कि आपने स्वगणना करी है तो वो आपसे SEID मांगेगा। ध्यान रखें, वो आपसे OTP नहीं मांग रहा, वो आपसे आपका SEID मांग रहा है जो 11 डिजिट का है, जो कि आपको SMS से मिला है। हमारा प्रगणक, वैसे बता दूं, जो भी आता है वह एक फोटोयुक्त आईडी कार्ड जो कि जनगणना से जारी किया जाएगा लेकर आएगा। जब ऐसा व्यक्ति आपके सामने आता है उसको और आपको SEID पूछता है, आप उसे SEID दीजिए, वो अपने ही मोबाइल पर आपके सामने आपका SEID एंटर करेगा और यदि SEID आपका सही है तो वह आपके द्वारा भरी गई जानकारी उसके मोबाइल पे प्रदर्शित होगी। वो आपको एक बार फिर से दिखा देगा, अगर आपको कोई संशोधन करना है, यदि त्रुटिपूर्ण कोई पूर्व में एंट्री हो गई है, कोई संशोधन करना है तो आप फिर कर सकते हैं। यदि आप कहते हैं नहीं मैंने जानकारी सही भर दी है, मैं संतुष्ट हूं, तो वह आपके सामने स्वीकार का बटन दबाएगा। स्वगणना का विकल्प देने का उद्देश्य यह है कि भारत के नागरिकों को अपनी जनगणना में भाग लेने का एक अवसर भी मिलेगा, हमारे प्रगणक के लिए डेटा एंट्री करना कम रहेगा और आप स्वयं अपना नाम भरेंगे तो उसमें स्पेलिंग एरर इत्यादि कम रहेंगे।
1: श्रोताओं, हम बात कर रहे हैं कार्तिकेय गोयल साहब से, जो IAS हैं और इस समय छत्तीसगढ़ में जनगणना निदेशक हैं। गोयल साहब, जनगणना निदेशालय द्वारा जो नियुक्त कर्मचारी हैं वे लोगों के घर घर जाएंगे तो किस तरह की जानकारियां उनसे मांगी जाएंगी?
2: जनगणना के जो लोग आपके घर आएंगे उन्हें प्रगणक कहते हैं। प्रगणक सामान्यतः आपके क्षेत्र के ही टीचर्स होंगे, सरकारी स्कूल के टीचर होंगे। शहरी क्षेत्रों में वो टीचर के अलावा कुछ सब इंजीनियर या हमारे नगरीय निकायों के कर्मचारी भी हो सकते हैं। वो जब आएंगे तो वो आपसे केवल 33 सवाल पूछेंगे। ये 33 सवाल अलग अलग तरह के हैं। एक तो पहला आपके परिवार से संबंधित है, आपका मकान से कुछ संबंधित सवाल पूछेंगे कि यानी आपका मकान की छत पक्की है या नहीं, आपके घर में जो फर्श है वो पत्थर की है या मिट्टी की है या टाइल्स की है इत्यादि। इस प्रकार की सामान्य जानकारियां जिससे कि हमें हमारे देश के मकानों में किस तरह के बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध हैं, यानी आपके पास पीने का पानी है कि नहीं, शौचालय का विकल्प है या नहीं, इस तरह की जानकारी साझा करने का प्रयास सांख्यिकीय रूप से किया जाता है। इसका उद्देश्य यह है कि भारत में एक क्षेत्र में कितने लोगों के पास पीने का जल का स्रोत नहीं है या कितने लोगों के पास अभी भी टॉयलेट नहीं। सांख्यिकीय आंकड़ों का एकत्रण किया जा रहा है, ना कि व्यक्ति विशेष आंकड़ों का। व्यक्ति विशेष ना आपके कोई स्वत्व कटेंगे ना आपके कोई स्वत्व जुड़ेंगे।
1: एक बात और, जब भी इस तरह की प्रक्रिया होती है, क्योंकि अब क्या है कि धोखाधड़ी के मामले भी काफी बढ़ रहे हैं देश में, तो व्यक्ति के अंदर एक डर होता है कि जो प्रगणक आया है वो कितना वैध है, कि क्या वो वाकई सरकारी कर्मचारी है या कोई फर्जी व्यक्ति उसके द्वार पर आ गया है, और क्या उस समय, इस प्रक्रिया के समय जो परिवार के लोग हैं उनको कोई दस्तावेज दिखाना है या इसका कोई शुल्क देना है, इसके बारे में बताएं।
2: आपने बहुत बढ़िया सवाल पूछा। मैं स्पष्ट कर दूं, पहले तो जनगणना आपके लिए मेरे लिए पूर्णतः निःशुल्क है। नागरिक होने के नाते हमारा अधिकार है कि निःशुल्क जनगणना हमारी हो, तो जनगणना में किसी प्रकार के शुल्क, फीस, पैसे इत्यादि, फाइन, कुछ भी नाम कह लो, कोई पैसे आपको कभी नहीं देने, आज ही नहीं कभी नहीं देने। दूसरी चीज, आपको अपने जनगणना में दी जाने वाली जानकारी के प्रमाणीकरण में एक भी दस्तावेज नहीं दिखाना है। ये दो चीजें मैं चाहूंगा आपके सारे श्रोता ये मन में बिठा लें कि जनगणना निशुल्क है और दस्तावेजों के आधार पर प्रमाणीकरण की आवश्यकता नहीं है। जहां जो व्यक्ति आपके पास आ रहा है वो हमारे द्वारा एक फोटोयुक्त आईडी कार्ड लेकर आएगा, इसमें QR कोड भी होगा। तो जो श्रोताओं को लगता है कि उन्हें और सावधानी बरतनी है, जो वो आपको अपना परिचय पत्र दिखाएगा, पहचान पत्र दिखाएगा, उसमें जो QR कोड है उसे स्कैन कर लीजिए और वो स्कैन्ड QR कोड आपको दिखा देगा कि उस आदमी का नाम इत्यादि क्या है। अगर कोई फर्जी आदमी आता है

0: है तो ना तो वो QR कोड दिखा पाएगा, या QR कोड दिखाता है तो उसका QR कोड आपके द्वारा स्कैन किए जाने पर कोई भी हमारे डेटाबेस से डेटा रिफ्लेक्ट नहीं होगा।
1: एक सवाल और है गोयल साहब कि जब भी कोई व्यक्ति जानकारी देता है तो उसके अंदर कहीं ना कहीं ये संशय भी होता है कि इसके द्वारा दी जाने वाली जानकारी की निष्ठा का तो उसका हनन नहीं होगा या उसकी जानकारी का दुरुपयोग तो नहीं होगा, तो इसमें गोपनीयता किस तरह से बरकरार रखी जाएगी?
0: जनगणना में दी जाने वाली जानकारी की गोपनीयता दो आधार पर टिकी है। सबसे पहले विधिक आधार। जनगणना अधिनियम की धारा 15 कहता है कि आपके या मेरे द्वारा दी गई कोई भी जानकारी जनगणना में पूर्णतः गोपनीय है और यह जानकारी किसी भी पुलिस, इनकम टैक्स, किसी भी RTI, कोर्ट, चाहे कोई न्यायालय हो, किसी में साझा कभी नहीं की जा सकती। यह धारा 15 हमारे सेंसस अधिनियम के तहत पूर्णतः सुरक्षित है। अभी नहीं, आजादी के समय से यह धारा उसमें है। तो सबसे पहले है विधिक गारंटी कि आपकी जानकारी कभी साझा की नहीं जा सकती। दूसरी बात तकनीकी, क्योंकि हम इंटरनेट पे ये सब काम कर रहे हैं, मोबाइल पे पहली बार डिजिटल कर रहे हैं, तो मैं आपको आश्वस्त करना चाहूंगा सभी को कि भारत में अब आधार का डेटाबेस हो गया, UPI हो गया, इन सब के चलते हमारे देश में सरकारी तंत्र को डिजिटल डेटाबेसेस को चलाना और उनकी सुरक्षा तंत्र बनाए रखने का अनुभव हो गया है। उसी के तर्ज पर जनगणना में जो डेटाबेस है उस डेटाबेस को भी हमने काफी सुरक्षित बनाया है। सर्वप्रथम जो मोबाइल पे हमारा प्रगणक डेटा ले रहा है वहां पर सुरक्षा का एक लेयर है। सेकंड, जो डेटा उसके मोबाइल से ट्रांसमिट हो रहा है हमारे सर्वर में उसमें हमने इंक्रिप्शन डाल रखा है और अन्य सुरक्षा की उसमें फीचर्स हैं। तीसरी चीज, जो हमारे सर्वर स्वयं है वो सर्वर भारत की सर्वोत्तम तकनीकी संस्थाएं यथा CERT हो गया, CDAC हो गया, इनके सारे तकनीकी मापदंडों को पार करके बहुत बड़े सुरक्षित तरह से रखा जा रहा है। तो आपकी हमारी जानकारी नॉट ओनली सुरक्षित है बल्कि सुरक्षित रहेगी, इसके बारे में विधिक रूप से और तकनीकी रूप दोनों से प्रावधान किए गए।
1: गोयल साहब, जो भारत देश है वो विश्व में सबसे ज्यादा आबादी वाले देशों में से एक है और जो जनगणना का काम होगा निश्चित रूप से बहुत ही व्यापक और विराट कार्य है, तो इस कार्य को अंजाम देने के लिए सही तरीके से जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, जो प्रगणक हैं, उनको किस तरह से प्रशिक्षित किया गया है?
0: जैसा आपने सही कहा, इतने व्यापक चीज को बिना अच्छी ट्रेनिंग और प्रशिक्षण के नहीं किया जा सकता। हमारी प्रशिक्षण अभी से नहीं, पिछले 3 महीनों से चालू है। मैं आपको जानकारी दे दूं कि छत्तीसगढ़ राज्य में लगभग 62,000 से भी ऊपर प्रगणक और पर्यवेक्षक चुने गए हैं और इनके डाउट क्लियरेंस के लिए भी 3 लेयर पे डाउट क्लैरिफिकेशन के टीम्स बनाए गए हैं। जब हमारे प्रगणक फील्ड में जाएंगे अवश्य रूप से कोई स्वाभाविक तकनीकी विषय उठेंगे, किसी प्रकार के संदेह संशय उठेंगे, उसके लिए 3 स्तर पर, जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर, केंद्र स्तर पर, तीनों स्तर पर क्विक रेस्पॉन्स टीम बनी हुई है, व्हाट्सएप के ग्रुप बने हुए हैं। इसके अलावा टोल फ्री नंबर, सबको मैं जानकारी देना चाहूंगा आपके माध्यम से कि 1855 1855, ये हमारा नेशनल टोल फ्री नंबर है। कोई भी आम नागरिक, कोई भी व्यक्ति जनगणना से जो जुड़ा हुआ जानकारी चाहता है, आप इस पे फोन करके हम आपके डाउट्स भी क्लियर कर देंगे। 30 मई तक हम अपनी पूरी छत्तीसगढ़ की आबादी की जनगणना का पहला चरण पूर्ण कर लेंगे।
1: एक अंतिम बात कि कोई भी अभियान होता है, मिशन होता है, उसमें जो सरकार है वो तो अपना पूरा जोर लगाती है, उसकी पूरी तैयारी होती है। जैसा आपने बताया कि एक शानदार सा प्रशिक्षण दिया गया है सभी प्रगणकों को, जो भी इससे संबद्ध लोग हैं उन्हें, लेकिन किसी भी अभियान की जो सफलता है वो तभी सुनिश्चित होती है जब उसमें जनता की भी वैसी ही सहभागिता हो, उसका भी सहयोग मिले। तो इस समय जो हमारे श्रोता इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, उन्हें आप क्या संदेश देना चाहेंगे, वो इस जनगणना के कार्य में किस तरह से अपना सहयोग करें?
0: भारत के नागरिक होने के नाते मेरा अन्य भारतीय नागरिकों से, जो आपके श्रोतागण हैं, उनसे अपील है कि जनगणना हमारे देश की अगले 10 साल की आधारभूत संरचनाएं और नीतिगत निर्णयों का बेसिस या आधार बनती है। इसीलिए आप सबसे विनम्र अनुरोध है कि जनगणना में अवश्य अपनी सही जानकारी दें, किसी भी भ्रम में ना आए। तो जब जनगणना का प्रगणक आपके घर द्वार आए तो उसको आमंत्रित करिए, उसे जानकारी अपने सर्वोच्च जानकारी के हिसाब से, आपके ज्ञान के हिसाब से जो जानकारी आपके पास है कृपया उससे साझा करें और हमारे देश, हमारे क्षेत्र की उन्नति प्रगति का भाग बने। जनगणना को एक सेल्फी के रूप में समझिए। जनगणना अपने देश की एक सेल्फी है। इस सेल्फी में आपकी फोटो आ जाए, इसके लिए मैं आप सबसे अनुरोध करता हूँ कि जनगणना में भाग लेना सुनिश्चित करें।
1: बहुत सुंदर बात, आपने बहुत विस्तार से जानकारी दी और निश्चित रूप से जो जनता है वो भी सहभागी बनेगी और इस कार्य को सफल बनाया जाएगा। आपको इस कार्य के लिए भी बहुत सारी शुभकामनाएं और आपने हमें विस्तार से हमारे श्रोताओं को जानकारी दी, उसके लिए आकाशवाणी समाचार की ओर से हम आपका हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं।
0: आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।
1: तो श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे छत्तीसगढ़ के जनगणना निदेशक IAS श्री कार्तिकेय गोयल से ली गई भेंटवार्ता के मुख्य अंश। अगले हफ्ते एक नए विषय के साथ हम फिर हाजिर होंगे। अब हम आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार।
2: बातों बातों में जनगणना 2027 पर छत्तीसगढ़ के जनगणना निदेशक कार्तिकेय गोयल से ली गई भेंटवार्ता सुन रहे थे। प्रस्तुति विकल्प रंजन शुक्ल की थी। आकाशवाणी का ये
3: बातों बातों में ये कार्यक्रम अभी हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से रिले कर रहे थे। मीडियम वेव और FM बैंड पर हम आकाशवाणी के जगदलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय सुबह के 9:15 हुए हैं। पेश है फिल्म संगीत। कार्यक्रम का पहला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म द ग्रेट गैम्बलर से किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाज में। आनंद बख्शी के लिखे इस गीत को संगीतबद्ध किया है RD बर्मन ने।

आशा भोसले की आवाज में पेश है फिल्म इजाजत का गीत। गीत है गुलजार का, संगीत है आर डी बर्मन का।

आशा भोसले की आवाज में अब लीजिए सुनिए फिल्म लावा का गीत। गीत रचना है आनंद बख्शी की, संगीत निर्देशन है आर डी बर्मन का।

0: इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम अब समाप्त होता है। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी जगदलपुर है। इस समय सुबह के 9:30 हुए हैं।
1: सुनो ना।
2: हाँ?
1: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
2: तो रोका किसने है? हाँ?
1: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगू।
2: मुझसे।
1: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
2: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
1: पर उससे मेरा क्या फायदा?
2: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ।
1: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
2: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700001424।
1: ओ 8700001424। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700001424 पर।

पेश है कार्यक्रम एक ही फिल्म से। आज इस कार्यक्रम के अंतर्गत हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म न तुम जानो न हम के गीत। फिल्म न तुम जानो न हम 10 मई सन 2002 को प्रदर्शित हुई। फिल्म के निर्माता और निर्देशक हैं अर्जुन सबलोक। अर्जुन सबलोक द्वारा निर्देशित भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक ड्रामा फिल्म है न तुम जानो न हम। कार्यक्रम की शुरुआत में लीजिए सुनिए इस फिल्म का ये पहला नगमा उदित नारायण और पामिला जैन की आवाजों में। गीत है आनंद बख्शी का, संगीत है राजेश रोशन का।

फिल्म का नाम ऋतिक रोशन की पहली फिल्म कहो ना प्यार है के गाने न तुम जानो न हम से लिया गया है। रोमांटिक ड्रामा फिल्म न तुम जानो न हम फिल्म के निर्माता निर्देशक अर्जुन सबलोक के अभिभावकों की सच्ची प्रेम कहानी से प्रेरित है।

फिल्म ना तुम जानो ना हम में फिल्म की कहानी में ईशा यानी ईशा देवल जो एक संवेदनशील और दयालु लड़का राहुल ऋतिक रोशन से बात करती है, लेकिन उनकी मुलाकात कभी नहीं हुई। वो पत्र के माध्यम से ही एक दूसरे को जानते हैं और उनके बीच मोहब्बत हो जाती है। कहानी में नाटकीय मोड़ तब आता है जब अक्षय यानी सैफ अली खान भी ईशा से मोहब्बत करने लगता है। कहानी के अगले पड़ाव में काफी उलझन पैदा होती है, लेकिन अंत में कहानी का सुखद अंत होता है।

इस फिल्म के सभी गीतों की रचना की आनंद बख्शी ने, धुन तैयार की राजेश रोशन ने। फिल्म में मुख्य भूमिकाएं निभाए ऋतिक रोशन, सैफ अली खान और ईशा देवल ने। कार्यक्रम के आखिर में लीजिए सुनिए इस फिल्म का यह अगला नगमा।

इस गीत के साथ ही कार्यक्रम एक ही फिल्म से अब समाप्त होता है। आज इस कार्यक्रम के अंतर्गत हम आपको सुनवा रहे थे फिल्म न तुम जानो न हम के गीत।

मीडियम वेव और एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। सुबह के 9:55 होने वाले हैं। प्रादेशिक समाचार एकांश अब हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से रिले करेंगे।

ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। नगरीय निकायों और त्रिस्तरीय पंचायतों के चुनाव के लिए कार्यक्रम जारी। मतदान 1 जून को और परिणाम 4 जून को घोषित किए जाएंगे। आज राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है और नगरीय प्रशासन विभाग ने सभी निकायों को हैंडपंप, बोरवेल और अन्य जल प्रदाय प्रणालियों की 1 सप्ताह में जांच कर मरम्मत करने को कहा है। और अब समाचार विस्तार से। छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग ने नगरीय निकायों और त्रिस्तरीय पंचायतों के आम तथा उपनिर्वाचन का कार्यक्रम जारी कर दिया है। निर्वाचन प्रक्रिया 11 मई से शुरू होकर 4 जून तक चलेगी। मतदान एक ही चरण में 1 जून को होगा, जबकि परिणाम 4 जून को घोषित किए जाएंगे। नगरीय निकायों में अध्यक्ष के 5 और पार्षद के 77, कुल 82 पदों पर चुनाव होगा। वहीं त्रिस्तरीय पंचायतों में जनपद पंचायत सदस्य के 10, सरपंच के 82 और पंच के 1136, कुल 1228 रिक्त पदों पर मतदान कराया जाएगा। नामांकन 11 से 18 मई तक भरे जाएंगे। नामांकन पत्रों की जांच 19 मई को होगी और 21 मई तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। राज्य निर्वाचन आयुक्त अजय सिंह ने बताया कि नगरीय निकाय चुनाव ईवीएम से दलीय आधार पर और पंचायत चुनाव मतपेटी के माध्यम से गैर दलीय आधार पर कराए जाएंगे। चुनाव वाले क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। देशभर सहित छत्तीसगढ़ में आज राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान न्यायालय में लंबित मामलों का आपसी सहमति से निराकरण किया जाएगा। इसमें लंबित आपराधिक प्रकरणों के साथ ही मोटर दुर्घटना प्रकरण, विवाह संबंधी विवाद, जलकर, संपत्ति कर, राजस्व संबंधी प्रकरण, ट्रैफिक चालान, बैंक और विद्युत संबंधी प्री लिटिगेशन के अलावा आबकारी से संबंधित मामलों का निराकरण किया जाएगा। वहीं 21 से 23 अगस्त के बीच सर्वोच्च न्यायालय परिसर में विशेष लोक अदालत के माध्यम से भी लंबित मामलों पर सुनवाई की जाएगी। पक्षकारों को अपने लंबित मामलों को विशेष लोक अदालत में शामिल करने के लिए जानकारी सर्वोच्च न्यायालय की वेबसाइट पर 31 मई तक गूगल फॉर्म में देना होगा। अधिक जानकारी के लिए बार रूम के वन स्टॉप सेंटर या जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रायपुर से संपर्क किया जा सकता है। नगरीय प्रशासन और विकास विभाग ने सभी निकायों को पेयजल संकट के निवारण के निर्देश दिए हैं। विभाग ने सभी निकायों को हैंडपंप, बोरवेल और अन्य जल प्रदाय प्रणालियों की 1 सप्ताह में जांच कर मरम्मत करने को कहा है। साथ ही पाइपलाइन में लीकेज या टूट फूट को तत्काल सुधारने तथा नालियों से होकर गुजरने वाली पाइपलाइनों और हाउस सर्विस कनेक्शन को स्थानांतरित करने के भी निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत कल प्रदेश भर में आयोजित सामूहिक विवाह समारोह में 1385 जोड़े परिणय सूत्र में बंधे। राजधानी रायपुर सहित सभी जिलों में पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ विवाह कार्यक्रम आयोजित किए गए। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने नवविवाहित जोड़ों को शुभकामनाएं दी और कहा कि यह योजना जरूरतमंद परिवारों की बड़ी चिंता दूर कर रही है। महिला और बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने बताया कि योजना के तहत प्रत्येक नवदंपत्ति को 35,000 रूपये की

0: सहायता दी जाती है। विश्व रेडक्रॉस दिवस पर कल रायपुर में राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया। मुख्य अतिथि स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने कहा कि निस्वार्थ भाव से मानव सेवा करना ही सबसे बड़ा धर्म है और यही रेडक्रॉस की असली पहचान है। इस अवसर पर जूनियर और यूथ रेडक्रॉस सम्मेलन भी आयोजित हुआ। लोक नृत्य, चित्रकला और नाट्य प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कृत किया गया। बालोद जिले के डौंडीलोहारा थाना क्षेत्र में आज एक भीषण सड़क हादसे में 3 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस के अनुसार ये युवक मोटरसाइकिल पर सवार होकर देवरी से डौंडीलोहारा की ओर जा रहे थे, तभी खैरीडीह गांव के पास विपरीत दिशा से आ रही कार ने इन्हें टक्कर मार दी। ये टक्कर इतनी भीषण थी कि तीनों युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। नगरीय निकायों और त्रिस्तरीय पंचायतों के चुनाव के लिए कार्यक्रम जारी। मतदान 1 जून को और परिणाम 4 जून को घोषित किए जाएंगे। आज राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है और नगरीय प्रशासन विभाग ने सभी निकायों को हैंडपंप, बोरवेल और अन्य जलप्रदाय प्रणालियों की 1 सप्ताह में जांच कर मरम्मत करने को कहा है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक हिन्दी समाचार बुलेटिन 11:55 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।
1: मीडियम वेव और एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। इस समय सुबह के 10 बजे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम आजी शो सगा। इसमें आज आप सुनेंगे बलबीर सिंह कच्छ से भेंट वार्ता। भेंट करता है भरत कुमार गंगादित्य।
2: आजी चो सगा कार्यक्रम सुनतो जमाए दादा दीदी मन के खूबे खूबे जुहार। और दादा दीदी मन तुम्हें तो जाना आश्चे कि ये कार्यक्रम ने आमी बेरा पस्ता कई एक झन सगा मन के हाक देऊ से और हुन मंचो अनुभव के हुन मंचो जीवनाने काय करला कसन एबे काय करसो और कसन करून हुन मन आपलो नाव कमाला ये सफाई गोट के आमी सुनाते रहू से। तो उसने आजी आमचो लगे अमरला से एमन चो परिचय के मैं पूछे देता आले दादा सांगुन दिया।
3: तो भरत खूब खूब जुहार
2: जुहार
3: जसन की टीबल जानिस। हाँ। आरु रेडियो सुन तो लोग बोले
2: जानत
3: कि मोचो नाम बलबीर सिंह कच है।
2: हाँ।
3: आरु आकाशवाणी ने गोटो करेक्टर बोले मिलू रे
2: बुटू
3: बोले
2: बुटू
3: है कि नहीं।
2: हाँ, हाँ, हाँ।
3: तो मैं आकाशवाणी ने बोले 33 साल 3 महीना आसन बोले नेता सेवा दी ले। आरु 2025 फरवरी ने बल्ले ने सेवानिवृत्त होले
2: सेवानिवृत्त
3: रिटायरमेंट होले।
2: हाँ। तो परिचय बोलो ने जन्म ले धरून। हाँ। बार तो और पढ़ाई लिखाई ये सब के सांगु दिलो ना।
3: अच्छा, मचो जन्म आए बोलू बे गांव बड़ियारापुर विकासखंड तोकापाल।
2: हाँ।
3: जिला बस्तर ने होली। आरु मचो बुआ चो नाम बाकुड़ो राम कच है। आरु मचो माए चो नाम है पुनाय कच। आरु मचो पत्नी बदले मचो बाई चो नाम है उमा कच। मचो जो पढ़ाई आए बोलू बे मोरले बोलू बे पहले ले धरुन बाती 5वीं तक।
2: हाँ।
3: गांव बड़ियारापुर नचे होली।
2: अच्छा।
3: आरु उताले 6वीं ले धरुन बाती 9वीं तक मैं पढ़ले तोकापाल बोले ने आम चो गांव ले 3 किलोमीटर आसे। तो 3 किलोमीटर आमी रोजे आना जाना पड़ोक लाए ये हूँ।
2: हाँ।
3: तो फिर उतलो ने मैं 10वीं आरु 11वीं बल्ले ने बकावण हाई स्कूल ने उता पढ़ लेता हॉस्टल ने रोन बात पढ़ ले। पासे फिर उतलो ने कॉलेज तो मैं यता धर्मपुरा डिग्री कॉलेज में
2: सहरे
3: सहरे मतलब स्नातक बीए आर्ट कला ने कर ले। आरु ये मंजिगते बोलू बे 1983 ने।
2: हाँ।
3: मैं मैट्रिक पास होले 11वीं।
2: अच्छा।
3: पास होले बोर्ड परीक्षा।
2: हाँ।
3: आरु अंदाजन मतलब उन्नीस साल 1983 ने ची सितंबर महीना ने मुके समाज कल्याण विभाग ने।
2: हाँ।
3: बोले ने कला पथक कलाकार उता गोटुक पद निकरू रे।
2: अच्छा।
3: तो मैं उता आवेदन कर रहे तो उता मचो सिलेक्शन होली। तो बोले ने उता चो काम असन है कि जितले बोले सरकार चो जो योजना मनाए वाट मनाए उनके गीत आए कहानी आए नाल असनी ठसा आए नाल असन हासी आए नाटक आए ये ने कहा कि गांव गांव ने जौन बाती बोले ने लोग मन के उन मन के सांग तोर
2: समझातोर
3: योजना मन के।
2: हाँ।
3: तो ये उता चो काम रहे। और वो महीना ने 15 दिन असन रहे और बाकी दिन का है कि

0: आकाशवाणी गोटक अखिल भारतीय लोक और सुगम संगीत जो कार्यक्रम हो से ने,
1: हाँ।
0: तो एताने उनताने पूरा देश चो अलग अलग कलाकार मन चो चुनाव है से,
1: हाँ।
0: आगे का है कि पठाव पड़े से
1: हाँ।
0: कि
1: हाँ।
0: उन गीत आए नृत्य आए कसन
1: हाँ।
0: आए उन चो पूरा पूरा बायोडाटा आसन बल्ले ने
1: पठौक लागे
0: पठौक लागे से, फिर उनका चयन हो से, चयन होली बोले ने कहा कि फिर उन पटाए सो मतलब कार्यक्रम दे तो काजे, तो मैं चेन्नई ने एक हार जाऊ रहे पूरा पार्टी धरून बाती और भोपाल ने बोले
1: तो काय काय दखत रहले होता
0: होता ने मैं ये आमचू विवाह संस्कार चो पूरा रसम के मैं
1: रसम
0: दखाले
1: गीत गाओ तो और पूरा
0: रसम के
1: रसम
0: दखा
1: पूरा दखा तो
0: पूरा दखा तो
1: मुरली धरून सरासरी।
0: हाँ हाँ आर फिर उनका खेल गीत बोले गाउन बाती
1: अच्छा खेल गीत बोले
0: खाल
1: रहे।
0: में दावले और फिर भोपाल बोले होली हेता भोपाल ने मैं परब नृत्य
1: अच्छा परब नृत्य रहे।
0: परब नृत्य कर रहे
1: पूरा दल के धरून भाती
0: पूरा दल के
1: जातर।
0: धुन माती आरु रायपुर ने बोले आर खोरली, तो एता बोले मैं कहा कि ये विवाह संस्कार विति कर ले आर फिर एचोले बोले ने आगे मैं ग्वालियर बोल जाऊ रले रायगढ़ जाऊ रले आरु मैं खैरागढ़ जसन की बोले से एता तो मैं शिक्षा बल धरले से
1: संगीत विश्वविद्यालय।
0: तो एता बोल कहा कि मचो जो कार्यक्रम
1: होता बोले
0: होते
1: होली।
0: होते रहे आरु बोले ने एच संग संग कहा कि खैरागढ़ ने जुड़ तो के बोले कई हार में उता परीक्षा बल धरुक गेले प्रायोगिक परीक्षा बोले
1: ये
0: आर
1: काय
0: ऐसा
1: तो जैसन लोक संगीत ने एमए होलो पाछे।
0: पाछे प्रायोगिक परीक्षा बल धरुक जाते रहे और पेपर बोले जाते रहे आरु कहीं शोध पत्र जोन बोल सत नहीं उन बोले कौन कौन मेरा हाक देव अंतर्राष्ट्रीय शोध पत्र बोले पढ़तो काजे तो मैं असन बस्तर चो कई रीति नीति रुसन शोध पत्र बोले उता
1: पढ़ते
0: पढ़तो
1: बोले
0: मौका मिलते रहे, तो असन किस्म का है कि मैं बोले ना आकाशवाणी ने पूरा बोले ना काम करते गेले आरु जैसन कि मैं सांगले कि 2025 फरवरी में सेवा निवृत्त होले तो एता ये तो के काय कि बल्ले ने मचो जीवना पूरा परिवर्तन होली बोलू गए बल्ले ने ता एक से एक लोग मन से के मुलाकात होता
1: मुलाकात
0: है नानी पीला ले धरुन बड़े और नानी चपरा चिल धरुन बड़े अधिकारी तक बल्ले सब चो मुलाकात सब चो अनुभव के जानतो के सुनतो के बल्ले ने काय कि कनेक अच्छा
1: नहीं और एक अम्बल दखते एवं से
0: हाँ हाँ
1: काय का जे की जसन मैची बोले दखलो ने
0: हाँ
1: के नाटक कलाकार चो हिसाब ने बोले था इले से और गायक हिसाब ने हो कि आम चो गांव कार्यक्रम प्रस्तुति पेरा बोले तुम चो जितरो बोले काय करतो राय कसन करतो राय कौन कार्यक्रम के कसन देतो राय ये बिल्कुल सपाय जितरो ग्रामीण कंपियर मन के बिल्कुल मिरते गेली। और मच बोले अनाउंसर बनलो पाछे बोले तुम चो पूरा मार्गदर्शन बराबर मिलते गेली से तो जितरो बोले यथा बस्तर चो ग्रामीण कंपियर हो कि आम चो उद्घोषक मन हो खिड़िक तो असन बलुचियात कि बलवीर साहब रलो ने खिड़िक अच्छा लागते रहे और खिड़िक सिम नाय बोल लागे से बोलू बलुचियात
0: मानतर भरत असन है मैं गोटो की बोल सांगू चाहे से कि आमी बल्ले ने गांव ने जोन पीला बेरा बोलू आमचो घर बोले गरीब घर रली बोले ने उतलो आमचो मचो माय बाप बोले पढ़ा लिखा नहीं रो बोले ने मैं एकदम पूरा कठिन परिस्थिति ने पढ़ाई कर ली
1: पढ़ाई होली
0: शुरू ले काहे कि उतलो पढ़तो आमचो माय बाप के उतलो ज्ञान नहीं रहे बोलू अनपढ़ होते कारण बोले ने उनमन किनिक बोले शिक्षा चो महत्व को जानते रहे ने उनमन पढ़ाता बोले है कि नहीं तो उनमन तो जानते ही नहीं रहो तो घरे बोल का है कि बोले ने खातो पीतो उनकी नहीं तकलीफ रहे तो बोले ने पढ़ाई छाड़ उन बोले का है कि कौन कौन बेरा कुली बुती
1: हसन बोले
0: जाओ
1: जातो
0: पड़े
1: होली से
0: जैसन की काय तो निंजाई करुक जाता रहा है ना फिर कट तो बिताने जाता रहा है गाँव ने कुली बुती नाले पर कहीं दूसर काम में हो तो उदलाय नानी नहीं रहो तो उदलाय कहाँ नानी पीला लोग के दुई सोली धान देवत नाले 10 पैसा 20 पैसा
1: देवत
0: पैसा देवत बिहान जाओन बाती 2 बजे तक काम करता है सुबह 6 बजे जाओन बात 2 बजे तक काम करता है कठिन
1: खूबे कष्ट ने और खूबे दुख दंड ने पढ़ाई लिखाई होली से पीला बेरा और कसन गरीबी स्थिति ले ऊपरे उठुन भाती ये गोटोक ठान बना तो हिसाब बोलो ने ये गोटोक प्रेरणा भी
0: है और एक साल तो का है कि जैसन कि मैं 8वीं पास होले नहीं 8वीं पास हो तो के तोकापाल ले पोड़ुक जाते रहे उतन का है कि 9वीं का है कि उन हाई स्कूल होते रहे उन दूसर होते रहे तो उता मके बोले ने ड्रेस का जो का है कि उतना पैसा कौड़ी बोल नहीं रहे ड्रेस

0: है बिल्कुल बिल्कुल
1: फिर ये आए मार्च 25 मार्च
0: हाँ
1: 2023 के
0: हाँ
1: एचओ जोन उद्घाटन आए बोले वे गृह मंत्री अमित शाह
0: हाँ हाँ
1: बोले काबरा बटालियन
0: हाँ
1: करमपुर
0: ये
1: नेवरोट
0: करणपुर ने
1: हाँ
0: और
1: तो
0: उदल दाएं होली
1: उदल दाए होता उनचो उद्घाटन होली हल्बी
0: हाँ
1: समाचार
0: हल
1: से
0: भी समाचार बोले
1: ये
0: लेकिन और उन्हें भी सर लगा चलते थे
1: सर
0: जाए से
1: लगा चलते जाए से फिर घोंडी चो काजबल में किन प्रयास कर ले कि घोंडी समाचार काज बोले मानतर का है कि मुख्य कठिन ये हो रहे कि घोंडी हल भी तो मिरला
0: हाँ
1: लेकिन घोंडी समाचार पर तो काजे
0: लोग नहीं मिलते
1: लोग
0: वाला
1: मृत नहीं मरते ला तो मैं
0: हाँ
1: कई मतलब का है कि व्यक्तिगत रुचि धरुन बाती
0: अच्छा
1: फिर
0: डगराव
1: डगराव पढ़ ले
0: निकल
1: क्योंकि घोंडी जान तो लोग थे
0: हाँ
1: बोले ने कम से कम ये हमें सिखाएं दे सांगे दे
0: हाँ
1: कसन लिख तो
0: हाँ
1: रहा है कसन पढ़ तो रहा
0: पढ़ तो रहा
1: है
0: है
1: कि नहीं
0: हाँ
1: ये चुपल का है कि ऑडिशन हो ऐसे
0: हाँ हाँ
1: तो बोले ने उन्होंने कहा कि ट्रेनिंग दी ले
0: हाँ
1: और फिर प्रस्ताव अपना बाती फिर पठा ले तो
0: हाँ
1: हुन बोले स्वीकृत होली
0: हाँ
1: अरे सबके बाले कुता समाचार एकांश चो आमचो साहब लो रायपुर ले तो उन मंच पूरे का है कि ऑडिशन बोल होली
0: हाँ
1: तो तान बोल पान छान पास होला
0: हाँ
1: ये
0: गोंडी ने
1: गोंडी ने बोले
0: हाँ
1: तो असन किसम का है कि गोंडी समाचार बोले ने ये होली 21 मई 2023 के
0: अच्छा
1: ये राजभवन रायपुर ने
0: हाँ होता हो ये गोंडी
1: राजभवन
0: समाचार मोर होली
1: मोर मतलब हाँ
0: हाँ
1: उताले मोर कर लू उच्च उद्घाटन उदले
0: हाँ
1: राज्यपाल रहे
0: हाँ
1: डॉक्टर विश्वभूषण हरिचंदन
0: अच्छा हंचो हाथे होली
1: उनचो हाथे का है कि राजभवन ले मोर कर लू
0: हाँ हाँ
1: उताले फिर पूरा छत्तीसगढ़ ने उनचो प्रसारण
0: उन्हें
1: होली
0: भी चले से
1: चले से उन बोले भी
0: हाँ
1: चले से तो हन
0: हाँ
1: बोले दाए सप्ताह ने
0: दुई हार
1: दुई
0: चले
1: आर
0: से
1: चले से
0: बुधवार दिने और आइतवार दिने
1: ऐतवार तो ये चल का है कि लोग मन एदाई के समाचार बोले आमचो बोली भाषा ने
0: हाँ ऐसे
1: ऐसे बोले सुन सो जान
0: सुन सो
1: सो
0: जान सो
1: देश विदेश जो खबर मनाए सरकार चो बोले जितनो नीति नीति आए समाचार ने बोले काय काय घटना हो ऐसे ये सब की जान सो
0: जान सो
1: तो
0: जान
1: ये
0: सो
1: बोल का है कि मचो का जे खूबे बड़े भारी उपलब्धि आए बोले
0: उपलब्धि आए
1: क्योंकि
0: बिल्कुल सत्य
1: है कि नहीं
0: बताए
1: लोग मन
0: आए
1: चुका जे कर ले
0: आए आए
1: गोटक यही चीज बाछली कि
0: हाँ
1: ये जो समाचार किया है
0: हाँ
1: मुझे तो सेवानिवृत्ति होली
0: हाँ
1: एक मतलब ने रोज दिने कर तो
0: हाँ
1: वाट
0: आए
1: मुझे रोली
0: आगे
1: वहाँ
0: उसने
1: वाला ले
0: रहे
1: हाँ
0: वाट रहे
1: वाट रहे मंत्र ये भी बोल का है कि मैं गोट बात करें से बोले रिटायरमेंट
0: हाँ
1: होली मंत्र
0: हाँ
1: ऊपरे मैं गोट बात करें से
0: बोलो नहीं ये तो समय ने रोजे दिना बोले हो सो
1: होकला सके
0: हाँ
1: ये भी चले से
0: ये अच्छा
1: प्रयास
0: बात
1: आसे
0: हाँ हाँ
1: जे चोल का है कि कम से कम आम चो बस्तर चो लोग
0: लोग
1: समाचार के बोले सुनो देश विदेश चो घटना के जानोत कम से जागरूक होत और मुख्य धारा ने जुड़त ये
0: जुड़ो
1: मोचो
0: जुड़ो
1: सोच है
0: बिल्कुल
1: और
0: बिल्कुल
1: मोचो जीवन आए अस्थिर
0: अस्थिर नहीं रहो
1: रहो
0: तो फिर आज ये तुम चो पाए गोट के आम्ही गोठियालू
1: आज ये था इतना अच्छा कि नहीं गोट बात कर लू आए कि नहीं और मोचो जीवन आ चो गोट के बोले हम चो रेडियो सुन तो लोग मैंने सुन ला आए कि नहीं
0: आओ
1: आए कहीं अड्रा बोल ले कि नगद बोल ले उन्हें मन जानत वे आए कि नहीं
0: नहीं नहीं अड्रा खाए का जो नंगे तुच रहे
1: नगत रहे सालना
0: हाँ
1: जुआर
0: तो सुन तो लोग मन के बोले जुआर
1: जुआर
2: कार्यक्रम आजी जो सगा में अभी आप सुन रहे थे बलबीर सिंह कच्छ से भेंट वार्ता भेंट कर रहे थे भरत कुमार गंगादित्य। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है।
3: मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सह कर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
4: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट 64 सालों की बुनियाद के साथ चेटिनाड सीमेंट द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
5: किसान भाई बहन मन का जे नुआ उवाट एदाए रोजे शनिवार के सांझ बेरा 7:30 बजे ले 8 बजे तक सुना फोन इन किसान वाणी यथा कृषि महकमा चो विशेषज्ञ बल्लो ने खोजाकारी दादा दीदी दे दे आपन मन चो खेती कमाने लिए जुड़ लो सपाए समस्या चो समाधान बीज ले धरून हाट बाजार तक हर सवाल चो जवाब सीधा आपन मन के मिरे दे। और हाँ ये कार्यक्रम चो रिकॉर्डिंग होय से रोजे मंगलवार अड़ौ पहाड़ 3:30 बजे ले 4 बजे तक तो आपन मन सपाए सुना और आप लोग सवाल सीधा आम के फोन ने सांगा। आमचो फोन नंबर आए 07782222666। फोन इन किसानवाणी आपन मंचो सवाल आपन मंचो कहानी खेती बाड़ी चो जुबानी आकाशवाणी जगदलपुर ने।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: मीडियम वेव और एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। कार्यक्रम गुरदुम में अब लीजिए सुनिए केदार यादव और साथियों का गाया छत्तीसगढ़ी गीत।

आकाशवाणी के जगदलपुर केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गुड़दुम। इसमें आज आप सुन रहे हैं केदार यादव और साथियों का गाया छत्तीसगढ़ी गीत।

0: गुरुदुम कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे केदार यादव और साथियों के गाए छत्तीसगढ़ी लोकगीत। मीडियम वेव 396.82 मीटर अर्थात 756 किलो हर्ट्स, एफएम बैंड 100.1 मेगा हर्ट्स और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। इस समय सुबह के 11 बजे हैं।
1: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
2: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
1: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
2: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
1: डायल कीजिए 870-001-4242।
2: नंबर एक बार फिर नोट करें 870-001-4242।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: किसान भाई बहनों के लिए आकाशवाणी जगदलपुर की नई पहल, अब हर शनिवार को शाम 7:30 बजे से 8 बजे तक सुनिए फोन इन किसान वाणी, जहां कृषि विशेषज्ञ देंगे आपकी खेती से जुड़ी हर समस्या का आसान समाधान। बीज से लेकर बाजार तक हर सवाल का जवाब सीधे आपके लिए। और हाँ, इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी हर मंगलवार दोपहर 3:30 बजे से 4 बजे तक, तो आप भी जुड़िए और अपने सवाल हमें सीधे फोन पर बताइए। हमारा नंबर है 07782222666। फोन इन किसान वाणी, आपकी आवाज़ आपकी कहानी आपके खेतों की जुबानी।

एक भारतीय पार्श्व गायक जिनका जन्म आंध्र प्रदेश के नेल्लोर में हुआ था। उन्हें तेलुगु फिल्म श्री श्री श्री मर्यादा रमन्ना में अपने गायन की शुरुआत की। आइए सुनते हैं उन्हीं का गाया फिल्म सागर का ये गीत।

0: एसपी बालसुब्रमण्यम ने 1981 में एक दूजे के लिए से हिंदी फिल्मों में पदार्पण किया और 16 भाषाओं में लगभग 40,000 से अधिक गाने गाए। लीजिए सुनिए फिल्म एक दूजे के लिए का ये गीत। स्वर दिया है एसपी बालसुब्रमण्यम और लता मंगेशकर ने।
1: बीच में क्यों रोक दी?
2: तुम्हारा साथ ज्यादा हिंदी कविता है ना, सूरत जिद्दी।

0: शोदे
1: भूल गए
0: जानी मेरा नाम
1: अच्छा
0: चोरी मेरा काम जानी मेरा नाम और चोरी मेरा काम राम और श्याम
1: बंडल बाज
0: लड़के मिलन गीत गाता चल
1: बेशरम
0: प्यार का मौसम
2: श्रोताओं फिल्म एक दूजे के लिए के गीतों के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी मिला।
0: मेरे जीवन साथी प्यार किए जा
1: चाचा

आकाशवाणी के जगदलपुर केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक ही कलाकार। आज का कार्यक्रम केंद्रित है पार्श्व गायक एसपी बालसुब्रमण्यम पर। एसपी बालसुब्रमण्यम मुख्य रूप से तेलुगु, तमिल, कन्नड़, मलयालम, हिंदी सहित लगभग 16 भाषाओं में प्लेबैक सिंगिंग की। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के अनुसार उन्होंने 40,000 से अधिक गाने रिकॉर्ड किए। सन 1989 में मैंने प्यार किया, साजन जैसी फिल्मों के माध्यम से सलमान खान की आवाज़ के रूप में पहचान बनाई। लीजिए सुनिए फिल्म साजन का ये गीत।

साथ ही तमिल में 19 और हिंदी में 16 गाने की रिकॉर्ड भी उनके नाम में है। आइए सुनते हैं उनका गाया फिल्म वंश का ये गीत।

गीतों में वापसी की बात यदि हम एसपी बालसुब्रमण्यम की करें तो सन 2013 में लगभग 15 साल के अंतराल के बाद चेन्नई एक्सप्रेस का शीर्षक गीत उन्होंने गाया। कोविड 19 के दौरान इलाया राजा द्वारा रचित भारत भूमि में भी इन्होंने अपनी आवाज दी। 1965 से 2020 तक लगभग 54 वर्षों का उनका सफल कैरियर रहा। श्रोताओं, यदि हम पुरस्कार की बात करें तो एसपी बालसुब्रमण्यम को पद्म भूषण, पद्मश्री और 6

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम एक ही कलाकार। श्रोताओं, आज का कार्यक्रम केंद्रित था पार्श्व गायक एसपी बाल सुब्रमण्यम पर। मीडियम वेव पर यह आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। इस समय सुबह के 11:30 हुए हैं। पेश है गैर फिल्मी गीतों और गजलों का कार्यक्रम गुलदस्ता। पहली गजल अशोक खोसला की आवाज में, शायर हैं कातिल शिफाई।

कलाम था अकबर हैदराबादी का और इस गजल को अपनी आवाज दी थी ए हरिहरन ने। आकाशवाणी के जगदलपुर केंद्र से आप सुन रहे हैं गैर फिल्मी गीतों और गजलों का कार्यक्रम गुलदस्ता। गीत रचना रईजुर रहमान की, आवाजें हैं आशा भोसले और अदनान सामी की।

0: सुनो ना।
1: हाँ?
0: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
1: तो रोका किसने है? हाँ?
0: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
1: मुझसे।
0: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
1: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
0: पर उससे मेरा क्या फायदा?
1: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
0: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
1: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो 8700014242।
0: ओ 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर।
2: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सहकर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
3: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ। चेटिनाड सीमेंट, द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
4: आकाशवाणी के जगदलपुर केंद्र से आप सुन रहे हैं गैर फिल्मी गीतों और गजलों का कार्यक्रम गुलदस्ता। कलाम जमीर काजमी अली के। इस गजल को अपनी आवाज दी है पंकज उदास ने।

अभी आप सुन रहे थे गैर फिल्मी गीतों और गजलों का कार्यक्रम गुलदस्ता। मीडियम वेव पर ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। इस समय सुबह के 11:55 होने वाले हैं। थोड़ी ही देर में प्रादेशिक समाचार एकांश हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से रिले करेंगे।

4 जून को घोषित किए जाएंगे। नगरीय निकायों में अध्यक्ष के 5 और पार्षद के 77, कुल 82 पदों पर चुनाव होगा। वहीं त्रिस्तरीय पंचायतों में जनपद पंचायत सदस्य के 10, सरपंच के 82 और पंच के 1136, कुल 1228 रिक्त पदों पर मतदान कराया जाएगा। नामांकन 11 से 18 मई तक भरे जाएंगे। नामांकन पत्रों की जांच 19 मई को होगी और 21 मई तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। राज्य निर्वाचन आयुक्त अजय सिंह ने बताया कि नगरीय निकाय चुनाव ईवीएम से दलीय आधार पर और पंचायत चुनाव मतपेटी के माध्यम से गैर दलीय आधार पर कराए जाएंगे। चुनाव वाले क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। देशभर सहित छत्तीसगढ़ में आज राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। इस दौरान न्यायालय में लंबित मामलों का आपसी सहमति से निराकरण होगा। इसमें लंबित आपराधिक प्रकरणों के साथ ही मोटर दुर्घटना प्रकरण, विवाह संबंधी विवाद, जलकर संपत्ति कर राजस्व संबंधी प्रकरण, ट्रैफिक चालान, बैंक और विद्युत संबंधी प्री लिटिगेशन के अलावा आबकारी से संबंधित मामलों का निराकरण किया जा रहा है। नगरीय प्रशासन और विकास विभाग ने सभी निकायों को पेयजल संकट के निवारण के संदेश दिए हैं। विभाग ने सभी निकायों को हैंडपंप, बोरवेल और अन्य जल प्रदाय प्रणालियों की एक सप्ताह में जांच कर मरम्मत करने को कहा है। साथ ही पाइपलाइन में लीकेज या टूट फूट को तत्काल सुधारने तथा नालियों से होकर गुजरने वाली पाइपलाइनों और हाउस सर्विस कनेक्शन को स्थानांतरित करने के भी निर्देश दिए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल 10 मई को नई दिल्ली में देश में संभावित बाढ़ और ग्रीष्म लहर से निपटने की तैयारियों की समीक्षा करेंगे। इसमें केंद्र और राज्य सरकार की एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय, एनडीआरएफ को सुदृढ़ बनाना और प्राकृतिक आपदाओं के दौरान शून्य जनहानि के दृष्टिकोण पर निरंतर ध्यान केंद्रित करना शामिल है। नारायणपुर जिले के अबूझमाड़ क्षेत्र में सुरक्षा बलों को नक्सल विरोधी अभियान में बड़ी सफलता मिली है। तोके क्षेत्र के जंगल में चलाए गए संयुक्त सर्च अभियान के दौरान जवानों ने भारी मात्रा में हथियार, गोला बारूद और आईईडी बनाने की सामग्री बरामद की है। जब्त सामग्री में 315 बोर राइफल, 12 बोर राइफल, रॉकेट लॉन्चर और जिंदा कारतूस शामिल हैं। अधिकारियों ने बताया कि यह सामग्री सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से जंगल में छिपाकर रखी गई थी। बालोद जिले के डोंडी लोहारा थाना क्षेत्र में आज एक भीषण सड़क हादसे में 3 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस के अनुसार ये युवक मोटरसाइकिल पर सवार होकर देवरी से डोंडी लोहारा की ओर जा रहे थे, तभी खैरीडी गांव के पास विपरीत दिशा से आ रही कार ने इन्हें टक्कर मार दी। ये टक्कर इतनी भीषण थी कि तीनों युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। नगरीय निकायों और त्रिस्तरीय पंचायतों के चुनाव के लिए कार्यक्रम जारी। मतदान 1 जून को और परिणाम 4 जून को घोषित किए जाएंगे। आज राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है और नगरीय प्रशासन विभाग ने सभी निकायों को हैंडपंप, बोरवेल और अन्य जल प्रदाय प्रणालियों की एक सप्ताह में जांच कर मरम्मत करने को कहा है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन छत्तीसगढ़ी में होगा, जिसे शाम 6:10 पर सुना जाए।

0: सकता है। नमस्कार। आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। थोड़ी ही देर में आप हमारा
1: मीडियम वेव 396.82 मीटर अर्थात 756 किलोहर्ट्ज़, एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज़ और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। इस समय दोपहर के 12 बजे हैं। प्रस्तुत है फरमाइशी लोकगीतों का फोन इन कार्यक्रम लोकरस। संयोजक हैं चंद्र ऋषि ठाकुर। प्रस्तुति है डमरू राम मंडावी की।
2: फोन इन लोकरस कार्यक्रम सुनतो सपाय दादा दीदी मन के जुहार। आले सुनून दकू पहिल फोन कौन करे से।
3: हेलो कौन इन लोकर
4: दादा जुआर ना
3: जुआर दादा जुआर कौन बोल सी दादा
4: भागेश्वर मंडाई बोलू से ना फरस गाँव जिला कोंडा गाँव ले
3: काय काय काम होता दादा आजकल
4: आजकल तो दादा बिहाव भी सरली से ना बिहाव होता चलते रहे आजकल तो पानी मारे से दादा
3: हाँ हाँ पानी मारे से बेटा खड़ा के नांगर जो पुक मुरे आला
4: अभी तो ना जुन ना दादा
3: अच्छा अल्ला को जो गीत के मन कर लिए सांगू तक
4: लखे सर खुज नाम तो हल्दी बीती सुना मुझे
3: दादा तुझे मन कर लो गीत के हमारा से खुबे खुबे जुआर पे
4: जुआर ना सेवा जुआर ना
3: सेवा जुआर।

0: हेलो फोनिन लोकरस।
1: हेलो
0: दादा जुआर।
1: नमस्कार सर।
0: कौन बोलता दादा?
1: नारायण साहू सागरा सोमनी राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से बोलत हूँ सर।
0: काय के काम होता दादा?
1: मैं सुरक्षा कर्मी हूँ, कंपनी में सुरक्षा गार्ड हूँ सर।
0: अच्छा सुरक्षा गार्ड है।
1: हाँ हाँ।
0: और नारायण दादा और कहीं बुता?
1: हाँ अभी गर्मी बारिश बदरहा खराब है, अब बारिश के दिन आने वाला है, अब गर्मी खूब भी बढ़ा है सर।
0: हाँ।
1: आपके यहाँ तो ठंडा पड़ा हुई, आपके वनांचल क्षेत्र पर थे।
0: तो घरे सब नंगत नंगत दादा?
1: हाँ गीत सुना दो, जर्गे मंजनिया के घाम आमतरी डोला लुटा दो, ममता चंद्रा करके सुना दो सर।
0: हाँ हाँ अरे ठीक है दादा, तुम चुमन कर लो गीत के हमरा उन्हें। खूबे खूबे जोहार।
1: हाँ जय जोहार सर।

0: भाई साहब, आपके यहाँ कपड़ों पे 25% छूट अभी भी चल रही है ना?
1: हाँ हाँ जरूर, आपको किसने बताया?
0: मेरे रेडियो ने, वरना मैं तो इस डिस्काउंट से वंचित रह जाता।
2: विज्ञापन बुक करवाने आकाशवाणी आई है।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: हेलो मॉर्निंग लोकर।
2: हेलो
1: दादा जुआर।
2: जुआर
1: सांगा दादा कौन बोल सा?
2: मैं मुन्ना लाल पटले बोला था, डोंगरी मलाखेन जिला बालाघाट मध्य प्रदेश। हाँ भैया।
1: तो और काय का काम होता दादा हूँ बाटे?
2: बस खेती बाड़ी चलत है भाई। और का है पत्ता सीजन है भैया, तेंदू पत्ता थोड़ा थनगा।
1: और सब घरे नगद दादा?
2: हाँ सब बढ़िया।
1: और काम होता कहीं दादा?

0: तेंदूपत्ता चोला
1: हाँ
0: का।
1: तो शादी भी आए घर चले थे अभी। हाँ
0: अरे
1: शादी भी आए। हाँ
0: तुम जो मन कर लो गीत सांगू दगा दादा, कुछ गीत के मन कर ला।
1: केदार यादव की गीत सुना दो।
0: अरे तुम जो मन कर लो गीत के सुना है इस पर आए खूबे खूबे
1: नहीं
0: जुआ।
1: नहीं हाँ।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: आपके सपनों को साकार करने और हर इम्तिहान में आपके साथ चेट्टीनाड सुपर ग्रेड सीमेंट, मजबूत नींव बनाने के लिए एक ही नाम चेट्टीनाड सीमेंट।
2: हेलो कौन इन लोग रहे?
3: हेलो कौन?
2: दादा जुआर ना?
3: जुआर
2: कौन बोलती दादा?
3: मैं लालू राम को आया।
2: कौन गांव ले दादा? कौन गांव?
3: बड़े सोंग अंदर का।
2: कौन जिला पड़े दादा?
3: कोंडागांव जिला पड़े।
2: हां लालू राम को आया दादा, काय का बता मैंना?
3: काय शुरुआत आजकल बियाह हो रहे
2: थे। अच्छा बियाह मन चले से और सब घरे ना कतना का दादा?
3: हां सब अच्छा
2: आसे तुम जो मन कर लो की संग दादा कुछ की सुनवा।
3: बियाह
2: की सुनाऊं दे मैं काय? मैं डमरू मंडा भी बोले दादा। हां तुम जो मन कर लो की सुनाए खूब खूब जुआर।

¡Suscríbete al canal!

0: आपके सपनों को साकार करने और हर इम्तिहान में आपके साथ चेट्टीनाड सुपर ग्रेड सीमेंट, मजबूत नींव बनाने के लिए एक ही नाम चेट्टीनाड सीमेंट।
1: हेलो कौन इन लोग
2: दादा
1: जी आर कौन बोल दादा?
2: ये मैं अनिल मंडावी बोले दादा, पटेल पारा माजी बोरंड जिला कोंडा गाँव ले।
1: और सब नंगत नंगत दादा?
2: हाँ दादा सब तो अच्छा है, सब नंगत नंगत है।
1: तो
2: आजकल अचानक से मौसम का चेंज हो गई से।
1: हाँ हाँ मौसम चेंज हो गई दादा, पानी काम हो ऐसे ने।
2: हाँ ये जोंदर अंदर जो नुकसान आ जाता, मतलब आजकल जोंदर अंदर फसल हो गई सुन चुका है।
1: पीला मन के बोल दादा, ये गांव ने बोलो तो रोक देते रहना है और पानी बोले बेच पानी बीजुक देते रहना है। तो और सब घरे नगद का दादा?
2: हाँ दादा सब नगद नगद आते गोटो गीत सुंदर ले दादा।
1: हाँ ले सांगू दादा, तुम जो मन कर लो गीत चुनाव
2: एक गोटो के पीला मना तो बीच आते दादा, लोरी गीता हल्दी बीती फूल फूटे फूटो ने बिकसे बिकसो ने बाती जड़ आसन बीती आसन के आसन से बोल दादा। हाँ
1: फूल फूटे फूटो ने बिकसे ने।
2: हाँ
1: ठीक है दादा, तुम जो मन कर लो गीत के सुनाओ ने समय।
2: हाँ तो जुआर दादा।
1: हाँ जुआर।
3: ए आया मुके जुमा नहीं लागे से गोटो गीत गाइस ने
4: गाय से दोनों।

0: किसान भाई बहन मन का जे नुआ उवाट एदाए रोज शनिवार के सांझ बेरा 7:30 बजे ले 8 बजे तक सुना फोन इन किसान वाणी यथा कृषि महकमा चो विशेषज्ञ बल्लो ने खोजाकारी दादा दीदी दे दे आपन मन चो खेती कमाने ले जुड़लो सपाय समस्या चो समाधान बीज ले धरून हाट बाजार तक हर सवाल चो जवाब सीधा आपन मन के मिरे दे। और हाँ, ये कार्यक्रम जो रिकॉर्डिंग होए से रोजे मंगलवार अड़ौ पहार 3:30 बजे ले 4 बजे तक तो आपन मन सपाय सुना और आप लोग सवाल सीधा आम के फोन ने सांगा। आमचो फोन नंबर आए 07782222666। फोन इन किसान वाणी आपन मंचो सवाल आपन मंचो कहानी खेती बाड़ी चो जुबानी आकाशवाणी जगदलपुर ने।
1: हेलो, फोन इन लोग रस।
2: हाँ, राम राम भैया।
1: दादा जुआर, कौन बोल सी दादा?
2: बलराम सेन, दंतेवाड़ा बचेली से।
1: बलराम सेन,
2: तुम तो नाम दादा?
1: मचना डमरू मंडावी दादा।
2: हाँ दादा, जो हाँ ना
1: जोर जोर बलराम सेन दादा। हाँ दादा, दंतेवाड़ा बोल रहा दादा ने।
2: हाँ बचेली।
1: हाँ, क्या क्या बोता दादा?
2: मोर सैलून दुकान है बचेली में।
1: अच्छा, सैलून दुकान से।
2: हाँ, बाल काटो में। हाँ
1: हाँ, नंगत तो बोता है दादा।
2: हाँ
1: तो दादा, सब घरे नंगत नंगत का?
2: हाँ, सब बने बने हवन।
1: अरे तुम जो मन कर लो गीत के संग का दादा।
2: कौन वाली हल्दी गीत?
1: हाँ ठीक है फिर दादा, तुम जो मन कर लो गीत के हम रहा हूँ। खूबे खूबे जुआ
2: जो है ना।
1: हाँ

0: हेलो, कौन इन लोग रहे?
1: हेलो, गंडई टिगरी पारा छत्तीसगढ़ से जागेश्वर देवांगन बोल रहा हूँ।
0: हाँ देवांगन दादा
1: जी,
0: तो काय क्या काम होता दादा?
1: जब मैं किसी कार्य करता हूँ भैया।
0: अच्छा, ये काय फसल है दादा?
1: अभी वो मूंग उड़द की दब लगा है।
0: अच्छा अच्छा, फसल सब अच्छा है दादा?
1: हाँ अच्छा है। लेना है कल परसों दो दिन यहाँ लगातार।
0: अच्छा अच्छा, और सब नंगत नंगत दादा? आल तुम जो मन कर लो इसके संगा दादा।
1: हम मर काम के बजा दो जो भी जो दूसरी ममता चंद्रा करे।
0: हाँ हाँ, आले तुम जो मन कर लो गीत के हमारा उससे दादा। खूबे खूबे जुआ रहे। हाँ जुआ।

0: हेलो पोनी लोकरस।
1: हेलो
0: जुआर ना
1: राम कुशल पटेल मेघा पारा लोरमी से।
0: पटेल दादा काय काय बुताना?
1: गर्मी के मौसम चल रहा है इधर को अभी।
0: और बुता पाए ना दादा?
1: हाँ बुता खाली है अभी तो गर्मी में।
0: और सब घरे नगद नगद दादा?
1: हाँ
0: हाले तुम जो मन कर लो गीत के संगे दादा।
1: ममता चंदा का कोई भी गीत।
0: हाल ठीक है दादा, तुम जो मन कर लो गीत के सुनाओ। देश को भी जुआ रहे।
1: धन्यवाद धन्यवाद।

0: दादा दीदी मन पोनिन लोकरस चोरी काटिंग रोजे लखीनवार दिन 3 बजे ले 3:30 बजे तक हो से तुम्ही भले आप लो मन कर लो गीत के सुन तो काजे फोन करुक सकास हम चो फोन नंबर आए 222-666 और गोटक नंबर आए 222-160 फोन कर दो पहिल जगदलपुर चो एसटीडी कोड नंबर लगाओ लाए नी भूल का एसटीडी कोड नंबर आए 077782 अदाय मचो जातो समय बोले होली फोन इन लोकरस कार्यक्रम सुन तो सपाय दादा दीदी मन के जुहार।
1: अभी आप सुन रहे थे फरमाइशी लोकगीतों का फोन इन कार्यक्रम लोकरस, प्रस्तुति थी डमरू राम मंडावी की, संयोजक थे चंद्र ऋषि ठाकुर। मीडियम वेव 396.82 मीटर अर्थात 756 किलोहर्ट्स, एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्स और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है।

0: मीडियम वेव पर यह आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। इस समय दोपहर के 1 बजने वाले हैं। थोड़ी ही देर में हिंदी में समाचार हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवली निगम।

0: शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। राज्य में पहली बार भाजपा की सरकार बनी है। कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में राज्यपाल एन एन रवि ने श्री शुभेंदु को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई।
1: आमी शुभेंदु अधिकारी ईश्वर नामे शपथ करते जे विधि द्वारा स्थापित भारत संविधान प्रति आमी अकृत्रिम निष्ठा और आनुगत्य पोषण करिब। आमी भारत सार्वभौमत्व और अखंडता रक्षा करिब।
0: मुख्यमंत्री के साथ पांच कैबिनेट मंत्रियों ने भी शपथ ली। इनमें दिलीप घोष, अग्निमित्रा पॉल, अशोक कीर्तनिया, निशित प्रमाणिक और खुदीराम टूडू शामिल हैं। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन, केंद्रीय मंत्री और एनडीए शासित सभी राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल रहे। इससे पहले प्रधानमंत्री ने ब्रिगेड परेड ग्राउंड पहुंचने से पहले एक रोड शो भी किया। भाजपा ने विधानसभा चुनावों में ऐतिहासिक जीत दर्ज करते हुए तृणमूल कांग्रेस के 15 साल के शासन का अंत किया है। आज पौचिशे बैशाख के अवसर पर गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की जयंती है, इसलिए शपथ ग्रहण समारोह के लिए ये शुभ दिन चुना गया। कार्यक्रम की शुरुआत गुरुदेव को पुष्पांजलि अर्पित करने के साथ हुई। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुदेव की 165वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि गुरुदेव टैगोर का योगदान साहित्य के क्षेत्र से कहीं अधिक व्यापक था और आने वाली पीढ़ियों पर उनका अमिट प्रभाव रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि गुरुदेव असाधारण प्रतिभा के धनी लेखक, विचारक और कवि थे। उधर तमिलनाडु में टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय के नेतृत्व में सरकार गठन को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। आईयूएमएल ने टीवीके को सरकार बनाने में समर्थन देने वाली खबरों को खारिज कर दिया है। खबरों के अनुसार आज शपथ ग्रहण समारोह नहीं होगा। इससे पहले टीवीके ने दावा किया था कि विजय सरकार बनाने के लिए पूरी तरह तैयार है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और अटल पेंशन योजना ने 11 वर्ष पूरे कर लिए हैं। वित्त मंत्रालय ने कहा कि सामाजिक सुरक्षा की इन योजनाओं का उद्देश्य सभी को, विशेष रूप से समाज के वंचित और कमजोर वर्गों को किफायती वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत 27 करोड़ से अधिक नामांकन, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में 58 करोड़ और अटल पेंशन योजना में 9 करोड़ नामांकन हो चुके हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने धन शोधन से जुड़े मामले में हैम्पटन स्काई रियलिटी लिमिटेड और उसके प्रमोटर संजीव अरोड़ा के दिल्ली, गुरुग्राम और चंडीगढ़ में 5 स्थानों पर छापेमारी की। ये कार्रवाई धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 के आपराधिक धाराओं के अंतर्गत की गई। ये मामला 100 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य के मोबाइल फोन की फर्जी जीएसटी खरीद और उसके बाद दुबई से भारत में अवैध रूप से धन के आदान प्रदान से संबंधित है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने भारत तथा ट्रिनिडाड और टोबैगो के बीच पारंपरिक संबंधों की सराहना की है। ट्रिनिडाड और टोबैगो के विदेश मंत्री कैरिकॉम मामलों के मंत्रालय के समारोह में डॉ जयशंकर ने दोनों देशों के बीच गहरे सांस्कृतिक संबंध और ऐतिहासिक जुड़ाव का उल्लेख किया। डॉ जयशंकर ने प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर से मुलाकात में द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने के बारे में चर्चा की। होर्मुज जलडमरू मध्य के पास कल एक नौका में आग लगने से एक भारतीय नागरिक की मौत हो गई और 4 अन्य झुलस गए। सरकारी सूत्रों ने बताया कि एक जहाज के चालक दल ने नौका में सवार लोगों को बचा लिया। घायलों का दुबई में इलाज चल रहा है और वे सुरक्षित हैं। आग लगने के कारण का पता लगाया जा रहा है। भारतीय वाणिज्य दूतावास के अधिकारियों ने बचाए गए भारतीय नागरिकों से मुलाकात की। वाणिज्य दूतावास नौका के मालिक के संपर्क में है और हर संभव सहायता प्रदान कर रहा है। राष्ट्रीय विधि सेवा प्राधिकरण आज देश भर में इस वर्ष की दूसरी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन कर रहा है। इस पहल का उद्देश्य सहभागी और जन केंद्रित तंत्रों के माध्यम से विवादों का सौहार्दपूर्ण निपटारा करना और अदालतों पर बोझ कम करना है। आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला गुजरात टाइटंस से होगा। अंक तालिका में राजस्थान चौथे और गुजरात पांचवें नंबर पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियम वेव 396.2 मीटर अर्थात 756 किलोहर्ट्ज, एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। समय दोपहर के 1:05 हुए हैं। प्रस्तुत है कृषि सामयिकी बेड़ा खड़ा चुगोट।
3: काश्तकार भाई बहन मन, साग ने नंगत स्वाद काजे, चटनी काजे, संधान काजे, दवाई ओखत और आमट काजे बोले लागे से लसुन इतरे काय पीला मन के पेट छेक तो काजे, जुड़ खोकली जुगे होली से बल्लो ने माला बनावन पिंधा तो काजे बोले लागे से लसुन। तो भाई बहन मन, इतरो गुण बीती लसुन चो नंगत कमानी कसन करतो राय एक ही मैं सांगे से। लसुन के घाम और शीत दोनों समय ने कमासोत, मात्र शीत समय एचो कमानी काजे नंगत आए। नंगत पानी निकरतो बीती दुई मटिया भूई लसुन कमानी काजे नंगत आए। एचो आगर उपजन काजे माटी जाँच करतो जरूरी आए। माटी जाँच नहीं होलो ने गोबर खत 20 टन, यूरिया 260 किलोग्राम, सिंगल सुपर फास्फेट 280 किलोग्राम और पोटास 60 किलोग्राम देतो रहे। फास्फोरस पोटास सफाई के और नाइट्रोजन चो आधा भाग के बुन तो पहल बेड़ा ने देतो रहे और बाचलो नाइट्रोजन के बुनलो एक महीना पाछे ट्रॉप ड्रेसिंग असन भूई ने नगत मिसातो रहे। एचो किसम मनाए आईसी 49381 एग्रीफाउंड व्हाइट यमुना सफेद, जी 282 एग्रीफाउंड पार्वती, आईसी 42891। भाटा बाटे ए समय ने बुनुक सकोत। लेन ले लेन चो दूरी 15 ले 20 सेंटीमीटर और बूटा ले बूटा चो दूरी 7 ले 10 सेंटीमीटर और खुदरा 5 सेंटीमीटर हो तो रहा। 2.5 एकड़ ने 3.5 ले 5 क्विंटल बीज लागे से। बुनाई चो पहल लसुन के रिमन के डायथेन एम 45.3 ग्राम के 1 लीटर पानी चो घोर ने उपचार करून पाछे बुनतो रहा। बुनाई पाछे पानी देतो रहा। एचो पाछे 10-15 दिन चो अंतर ने और जेठ बेरा हफ्ता भर ने एक हार पानी देतो रहा। गठ नगत होतो तक भूई ने नगत ओल रहतो रहा। पाकतो असन दखा दिलो ने पानी देतो नुहा। जुगे पानी होलो ने कांदा कुहुआ। साइकोसिल 500 PPM NAA नहाले इथेल के रोपलो 60 और 80 दिन पाछे स्प्रे करुक सकोत। बुन लो 20-25 दिन पाछे मिंजाई करतो रहा और 10 हफ्ता पाछे निंजाई गुड़ाई करतो नुहा। फसल 4-4.5 महीना ने तैयार हुआ तेवे पाना मन हरदिया होन सुख हुआ। असन होलो ने कांदा के बूटा संगे झिकुन पाना मन संगे बांधुन 2-3 दिन सुखालो पाछे ऊपर भाग के काटतो रहा। नगद कांदा बीती लसुन मिरे दे जोन खातो काजे नगद तो हो दे ची मोल भाव बोले नगद मिरे दे।
2: अभी आप सुन रहे थे कृषि सामयिक की बेड़ा खड़ा चुगोट। मीडियम वेव 396.2 मीटर अर्थात 756 किलोहर्ट्ज़, एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज़ और न्यूज़ ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है।

मीडियम वेव 396.82 मीटर अर्थात 756 किलोहर्ट्ज़, एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज़ और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। इस समय दोपहर के 1:10 हुए हैं। पेश है फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम श्रोता सुमन। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना न अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। जी हां श्रोताओं, ये पंक्तियां हैं सोहनलाल द्विवेदी की और आज आपके फरमाइशी खतों के साथ मैं हूं शिबा सिंह। स्वीकार करें मेरा अभिवादन, नमस्कार। कार्यक्रम में आप सब ने सुनना चाहा है फिल्म ताजमहल का गीत। इस गीत को स्वर दिया है मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर ने, गीत लिखा है साहिर लुधियानवी ने और संगीत से सजाया है रोशन ने। इस गीत को सुनना चाहते हैं आप सब। मेघापारा से आप हैं कृष्ण कुमार साहू, धनंजय मनोज कुमार साहू। उत्तर बस्तर कांकेर से आप हैं प्रकाश तिरसुनिया, विकास तिरसुनिया, मनोहर निषाद। डूमरगांव से आप हैं वली अल्लाह अंसारी, अरमा नाज अंसारी। खंडवा से श्रवण सिंह गिन्नारे, श्रीवास खंडले, सुभाष राजेश कुमार, मंदा खंडला खांडले, अंजलि संदीप पिंटू। खंडवा से ही आप हैं दुर्गा प्रसाद सैनी, अनीता गौरव, राधिका दीपिका। नागर कोहरा राजनांदगांव से आप हैं छग्गर राम साहू, जामुन देवी साहू, प्रेम साहू, पूजा देवी साहू, लल्ला दुष्यंत साहू, प्रांजल समीक्षा साहू। फ्रेंड्स कॉलोनी करनाल से आप हैं गुरविंदर सिंह पांधा, इंद्रजीत कौर, मनमीत जी एस रामगढ़िया, मनविंदर पांधा, गोलू काकू। कुंदानगर खरगोन से आप हैं ध्रुवास सोनवाड़े, सुनीता आशीष, खुशी प्रियांश, पूनम कृष्णा, शुभम। छत्रपति साहू नगर हिंगोली से आप हैं रामचंद्र इंगोले, सिद्धांत, रिंकू, रमाबाई, सुरेंद्र, मयूरी, सुरभि, मंजूषा, गौतम इंगोले। अशोकनगर से आप हैं पार्वती, सखाराम, दीपाली, राजू, रोहित, सोनू, मोनू। भाटापारा दतरेंगी से आप हैं द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार, दीपक कुमार, झावेंद्र कुमार वर्मा। मोखा से आप हैं भाई कारी राय, मीनाकारी, पुसरांज आयरन, आरती आकर्षण, जयश्री, पिंकी, रिंकी, नीतू। महोबा से आप हैं देवी दीन अहिरवार, सुनीता, दिनेश, कपिल, पूजा। ओंकेश्वर से आप हैं राकेश पप्पू, धर्मेंद्र सेन, मुकेश सेन, पिंकी सेन। बिलाईगढ़ से आप हैं खीकराम देवांगन, रेणु देवांगन। राजनांदगांव से आप हैं योगेश सारवा, आशा, नीरज, नीलेश, अंजलि। सिहावत से आप हैं मिथलेश देवांगन, मधु देवांगन, हिमांशु, अंकित देवांगन। कोरदा लवन से आप हैं भूधर प्रसाद वर्मा, घनश्याम प्रसाद, गुलशन कुमार, शिवकुमारी। पन्ना से आप हैं कौशल, किशोर मट्टू, हर्षित, वैभव मट्टू। जालून से आप हैं दीपक गुर्जर, सत्यम गुर्जर, अंशराज। उदयनगर से आप हैं मोहित, रत्न पारखी, स्वाति, मिष्टी, मनस्वी। हमीरपुर से आप हैं मनीराम पाल, मलखान सिंह पाल, सुधांशु पाल, प्रांशी, ज्योति, मानसी, सुदीपा, सुशीला। गन्नौर से आप हैं हरवेश कश्यप, अर्जित कश्यप, दिव्यांश गायत्री। भाटापारा से भोवेंद्र कुमार साहू, लक्की, हर्षित, सुमित्रा साहू। जमशेदपुर से आप हैं हरजिंदर सिंह भाटिया, एंजल भाटिया, नवनीत, पप्पी भाटिया। सावरगांव से आप हैं रघुनाथ नारे, पुष्पाताई नारे, श्रीधर नारे, मीनल नारे। पानीपत से आप हैं नरेश मल्होत्रा, नीटू, लक्ष मल्होत्रा, कोयल, कुनिका, जानकी चंद्र मल्होत्रा। पणत से आप हैं गोपाल पाटिल, मंगला बोचे, विष्णु साकेत बोचे। नेवधा से सेवकराम यादव, टुपेंद्र कुमार यादव, तुलेंद्र कुमार यादव, देव कुमार। खंडवा से राजेश कुमार धनजे, राहुल कुमार, विशाल कुमार, शीला गायत्री धनजे। देवास से आप हैं नवीन वर्मा, बबलू वर्मा।
हरदा क्रमांक दो से आप हैं कमलेश साहू, जितेंद्र पायल साहू, इंदौर से बबीता, शोभा, पूजा, रेखा, रघुवंशी, स्वाति, प्रयाग चौधरी, परी, ललिता, गणेश, कार्तिक नारायण। अनूपपुर मध्य प्रदेश से आप हैं जयमंत्री केवट, अंजलि केवट, रुद्राणी केवट, कृष्णा केवट। मुरादाबाद से आप हैं मुकेश कुमार, सोनू, सुरेश, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य, मोहनी, सोनी। मुंगेली से आप कृष्ण कुमार साहू, धनंजय, मनोज, सत्यम, शिवम, गायत्री। तरपोंगी से आप हैं संतोष गुप्ता, हितेश, होमेश, लक्ष्मी, प्रतिभा गुप्ता। जगराहू से आप हैं सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, आशीष मल्होत्रा, स्वीटी जयपाल। आदर्श नगर मलोट पंजाब से आप हैं राज वर्मा, मीना वर्मा, योगेश शर्मा, सौरभ शर्मा। कबीरधाम से आप हैं कमलकांत गुप्ता, दीपा गुप्ता, रिमझिम गुप्ता। बनियापारा धमतरी से सविता माखीजा, स्वाति माखीजा, माही छुटकी। शिवाजी चौक राजीम से आप हैं अनिल कुमार, अंजू लता, आदित्य कुमार, कृष श्रीवास्तव। आप सब ने सुनना चाहा है ताजमहल फिल्म का ये गीत मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ में।

अगला गीत आप सबने सुनना चाहा है फिल्म गुलाम का ये गीत। आवाजें हैं कुमार शानू और अलका याग्निक की। गीत रचना समीर की, संगीत से सजाया है जतिन ललित ने। और इस गीत को सुनने के लिए हम तक अपनी फरमाइश भेजी है आप सबने। डबवाली से आप हैं राजेंद्र नारंग, अंजू मोहित। अंडगांव से आप हैं किशोर धूले, वंदना धूले, शिवाजी।

धमतरी से आप है रामचंद माखीजा, शंकरलाल माखीजा, राहुल कुमार माखीजा। उज्जैन से आप है विनोद कुमार मूढ़त, नेहा, दीपक, मयंक, चेतन नाहटा, दीक्षा, कुश, दिलीप साह। खंडवा से आप है अनिल विचुलकर, मंगला विचुलकर, शोभित विचुलकर। मोहदी से आप है नारद साहू, हेमलता साहू, पवन साहू, खुशबू साहू। नांदघाट से आप है माखन वर्मा, चांदनी, राहुल, गोपी, भूपेश, दीपेश। महासमुंद से आप हैं अदालत दास, वैष्णव, मानस, सतीश, रिची, गायत्री। महोबा से आप हैं उदयभान पाल, दीक्षा, जय हिंद, प्रतीक्षा, विमलेश। नागलोई दिल्ली से आप हैं मदन चक्रवर्ती, राजेंद्र चड्ढा। बंदर कच्छ से आप हैं जगदीश जोहरी, पूजा जोहरी, जैनिश। गाछी से आप हैं मुन्ना भगत, गुड्डी भगत। कैदीमुड़ा रायगढ़ से आप हैं पुरुषोत्तम सिंह, उषा सिंह, प्रियंका, पूजा, लीलू, रितु, ऋषभ। मोवा से आप हैं गोपेंद्र कुमार साहू, मंजू साहू। भंडार सिवनी से आप हैं सुभाष सिंह चक्रधारी, कविता मुस्कान, अनुष्का चक्रधारी। रायपुर से विनोद वंडलकर, वीणा, विविधा। भाटापारा से सोहन जोशी, अर्चना जोशी, बानी चावला। हमीरपुर से आप हैं रामशरण विश्वकर्मा, साहिल, संजू, रंजना, वंदना, प्रियल, दिव्यांशी विश्वकर्मा। अकोला से आप हैं रमेश कटनकर, वैशाली। उमरखेड़ से आप हैं अभिजीत गवहाणकर, सरिता, सिद्धांत। दौलतबाग से आप हैं जाफर हुसैन, नईमा बेगम, कासिम अली, नदीम अली, जुनैद अब्बासी। कांकेर से आप हैं नरसिंह थापा, बीर सिंह थापा। दिल्ली मेरीगेट से आप हैं कन्हैया लाल, रीता देवी, शिल्पा रानी, आकाश कुमार। महोबा से आप हैं शिवनारायण, अनुज, गुड्डी, देवनारायण, अंकुश, लक्ष्मी प्रसाद, मोहित, प्रीतु, नीतू, विनय, सत्या, मोहिनी, पवन। मलोट से आप हैं छिंदर सिंह छिंदा, सतनाम कौर, दिलप्रीत, गगनदीप कौर। देवास से प्रकाश चंद जसवानी, पंकज, सनी जसवानी। नवागढ़ से नारायण प्रसाद वर्मा, चंद्रकांत वर्मा, सीमा, शारदा, दामिनी वर्मा। लोरमी से राजकुमार साहू, लव कुश, गौरी साहू। झारखंड से उत्तम कुमार भगत, श्वेता भगत, कीसु तासु, अनरव आनंद, सत्यम आनंद। खंडवा से संजय पंचोलिया, प्रियंका पंचोलिया, गुनगुन, संप्रीत, सुशील देवांकन, शशिकला शायर। बिलासपुर से छंडूलाल श्रीवार, अनीता, पुष्पा श्रीवास, संजन, रज्जन साहू, सुशील देवांगन, शशिकला शायर। सोनाडे से आप हैं सुब्रत चौधरी, अनीशा, नीलू, मेघ, वंदना कुमार। उमरिया से आप हैं संतोष कुमार राव, भारती राव, बेलाबाई, ओम प्रकाश सिंह, विकास सिंह। तो लीजिए सुनिए आप सबकी अनुरोध पर फिल्म गुलाम का ये गीत।

इसी गीत को सुनना चाहते हैं। सोनाडीह से आप हैं सुब्रत चौधरी, अनीशा, नीलू, मेघ, वंदना कुमार। उमरिया से संतोष कुमार राव, भारती राव, बेलाबाई, ओम प्रकाश सिंह, विकास सिंह। इंदौर से संतोष रघुवंशी, शोभा, भूपेंद्र, बबीता, सुरेंद्र, पूजा, विक्की, स्वाति। फतेहपुर से आप हैं रोहित सिंह यादव, बेटा यादव, अंगद, आयुष, आर्यन, आदर्श। सागर से चंद्रेश गौहर, वंदना गौहर, मयंक, तन्वी गौहर। सब्जी मंडी बुल्ढाना से आप हैं शब्बीर हुसैन, शहजाद हुसैन, मुंजू बाबा, आयाज अमन। अमरपुर पिंडरा से दीपक कुमार, रोशन कुमार, बंशीलाल, रेखा देवी, श्वेता देवी, दिशा, लवि श्रीवास्तव। गौरीनगर इंदौर से आनंद कुमार कामले, रेखा कामले, राखी, पारस, तपस्या, करिश्मा कामले। अमरपुर पिंडरा से दीपक कुमार, रोशन कुमार, बंशीलाल, रेखा देवी। ग्राम सुपई साई से आप हैं देवेंद्र ताती, राकेश ताती, निशा प्रकाश, दोवेंद्र जी।

0: स्वस्थ तन स्वस्थ मन जीवन का है अनमोल धन। कैसे रहें बीमारियों से सुरक्षित, कैसे करवाएं किसी स्वास्थ्यगत समस्या का उपचार, क्या है स्वस्थ रहने का आधार, जानिए बेहतर स्वास्थ्य के लिए विशेषज्ञों की सलाह। सुनिए आकाशवाणी रायपुर के प्राइमरी चैनल और छत्तीसगढ़ के अन्य आकाशवाणी केंद्रों से हर शनिवार सुबह 8:30 बजे डॉक्टर की सलाह।
1: किसान भाई बहनों के लिए आकाशवाणी जगदलपुर की नई पहल, अब हर शनिवार को शाम 7:30 बजे से 8 बजे तक सुनिए फोन इन किसान वाणी, जहां कृषि विशेषज्ञ देंगे आपकी खेती से जुड़ी हर समस्या का आसान समाधान। बीज से लेकर बाजार तक हर सवाल का जवाब सीधे आपके लिए। और हाँ, इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी हर मंगलवार दोपहर 3:30 बजे से 4 बजे तक, तो आप भी जुड़िए और अपने सवाल हमें सीधे फोन पर बताइए। हमारा नंबर है 07782222666। फोन इन किसान वाणी, आपकी आवाज़ आपकी कहानी आपके खेतों की जुबानी।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: जीएसटी से जुड़ी नई खबर ने आम लोगों और निवेशकों दोनों को राहत दी है। सबसे बड़ी राहत खाने पीने के सामान पर दी गई है। ब्रेड, रोटी और छेना पनीर पर अब कोई जीएसटी नहीं लगेगा। इसके अलावा 33 जरूरी दवाइयों के दाम कम कर दिए गए हैं, जिससे इलाज का खर्च भी घटेगा। लाइफ इंश्योरेंस पर भी पूरी तरह जीएसटी छूट दी गई है, जिससे पॉलिसी खरीदना अब और सस्ता हो जाएगा। छोटी कारों और 350 सीसी तक की बाइक पर जीएसटी 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है। इसका मतलब है कि गाड़ी या बाइक खरीदने का सपना अब पहले से सस्ता हो सकता है।

0: जाए निखार।
1: इफको नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
2: आकाशवाणी के जगदलपुर केंद्र से आप सुन रहे हैं फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम श्रोता सुमन। कल्याण जी आनंद जी के संगीत निर्देशन में आप सबने सुनना चाहा है फिल्म सफर का गीत। इस गीत को स्वर दिया है मुकेश ने। हम तक पत्र भेजे हैं आप सबने। सरगुजा से आप हैं रामचंद गुप्ता, पांडेराम राजवाड़े। बिजनौर से मोहम्मद वक्कार फरीदी, मोहम्मद इकबाल, सितारा बेगम, साजदा रानी, नसरीन परवीन हिना, रोजी परवीन बिट्टू। दुबिहा से प्रतीक राय, रोशनी राय प्रांजल। रायपुर से मोहम्मद इमरान, इरशद परवीन, मोहम्मद हुसैन रजा। दुर्गापुर से आप हैं गजालन येले, नवदीप येले। पंडरिया से दरिया नामल, अनीता मोटवानी। राजनांदगांव से गुलशन साहू, ग्वाला प्रसाद यादव। दल्ली राजरा से ललित यादव, श्रीनिवास, सुरेश नागवंशी, पुनीत सेन। कातियापारा जूना बिलासपुर से आप हैं सुशील देवांगन, अखिलेश, लोकेश देवांगन, आशीष, रवि, मोनू, सोनू, कान्हा, आदित्य। बमहर चाटीडीह से आप हैं गंगा देवी देवांगन, पूनम धनेश्वरी, महेश्वरी, मिल्की, मीनाक्षी, निधि देवांगन। लोरमी गोलबाजार से आप हैं संतोष कुमार सोनी, खिलेश, सुनीता, पीहू, दानिश, छोटी दीक्षा, नेहल, संजय, पूजा, रामा, पूर्वी। हरपुरा टीकमगढ़ से आप हैं इंद्रपाल सिंह राजपूत, देवी सिंह, नारायण दास, चंद्रपाल सिंह, उम्मीद कुंवर। भाटापारा से अमृता यादव, पार्वती यादव, ईश्वरी यादव, लक्ष्मी, प्रेरणा डिम्पी। खंडवा से अब्दुल रहमान डाबर, अब्दुल कादर डाबर, अब्दुल रशीद खत्री। बिलाईगढ़ से रोशन देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता देवांगन, डिम्पल देवांगन। धमतरी से कोमल सेन, तोषण सेन, पिंकी सेन, रीमा सेन। अकोला महाराष्ट्र से आप हैं सनानंद मंदुनकर, सुशीला मंदुनकर। रानीगांव नगरी से आप हैं खिलेश कुमार साहू, चित्ररेखा साहू, शुभम सेजल साहू। खंडवा से विजय महोबिया, संजय, विवेक, कविता, सपना, विशाल सलोनी। शेरी बड़नेर से आप हैं बलदेव दामोदर, अरुण दामोदर, अनामिका दामोदर। भाटापारा से बचकामल मोतीलाल यादव, बसंत भृगु, विनय ठाकुर। राजनगर मधुबनी से आप हैं नवीन सिंह, ज्योति सिंह, श्वेता ख्याति, सुशांत, चुलबुल रानी। भटिंडा से आप हैं जगमाल सिंह डागला, हैप्पी डागला, जेएस नायक, शोभा नायक। सूरजपुर से मानिक राम प्रजापति, जानकी प्रजापति, घनश्याम राम प्रजापति, रत्नेश घनश्याम। तो लीजिए सुनिए आप सबकी पसंद पर फिल्म सफर का गीत।

इसी गीत को सुनना चाहते हैं आप सब। शांतिनगर वार्ड से आप हैं श्रीमती लतिका जॉन, क्षितिज जॉन, श्वेता जॉन, रजनीश जॉन, मनीषा जॉन, ललित यादव, महक यादव, मोहित यादव, जिया लिया शारूम। शांतिनगर से ही आप हैं श्री जी बी वेस्ली, श्रीमती कनकलता वेस्ली, आशीष वेस्ली, सुशील थॉमस, भावना थॉमस, सना सनिका थॉमस, शमन थॉमस। महारानी वार्ड से आप हैं अखिलेश बेंजामिन, अलका बेंजामिन, सोनू मोनू, कोमल और अपेक्षा बेंजामिन, रत्नेश बेंजामिन, विनीता बेंजामिन, रौनक और

गीत रचना योगेश की, संगीत सलील चौधरी का। इस गीत को स्वर दिया है मन्ना डे ने। फिल्म का नाम है आनंद। सुनना चाहते हैं आप सब। सुदामा नगर से आप हैं हर्षिता रामेश्वर, कान्हा सफलता, कपिल मीनाक्षी, सत्यनारायण प्रभुलाल बागरी। औरंगाबाद से आप हैं प्रकाश बोरगांवकर, सुषमा प्राजक्ता, प्रांजलि, सोहम, सुवर्णा, योगिता। मुंगेली से आप हैं उत्तरा दिवाकर, परमेश्वरी दिवाकर, योगिता, नितिन, वंशिका। हमारी यशोता हैं लक्ष्मण कुर्राम, प्यारीदास मानिकपुरी, कोमल सेन, फागेश्वर मंडावी। सारंगपुरी उमरगांव से आप हैं दीपक कुमार साहू, अश्विनी बाई साहू, उमा शंकर, थामेश्वरी, रागिनी। नेपानगर से सुदर्शन शाह, पल्लवी, प्रखर, कुशल, नीति। फतेहगढ़ से विनोदपुरी, अशोकपुरी, सुशीलपुरी, बी के कैलाश, अनीता, गगन कपूर। सनावत से यूनुस खत्री, शफी खत्री, इर्दिश, नूर मीना, इरफान, काशिफ मीना। भाटापारा से लोकेश जोशी, पायल, धनेश्वरी, सावन नायक, अंकिता, वैदही जोशी। कामटी नागपुर से आप हैं कैलाश प्रसाद, किरण वर्मा, आशीष कुमार शर्मा, अमृता शर्मा। दतरेंगी से विश्राम यदु, पार्वती यदु, प्रतिमा, रीना, लक्ष्मीना। महाराष्ट्र से श्रीकृष्ण बाठे, संदीप बाठे, अमूल्य बाठे। महोबा से जयपाल यादव, इंद्रपाल यादव, राघवेंद्र, अरविंद, रागिनी, रिया, रेणुका यादव। सारनाथ से बाबू यादव, मंशा यादव, दुर्गेश, सीमा यादव, अन्नू, अरुणेश। इंदौर से प्रयाग चौधरी, मालती चौधरी, गणेश कार्तिक, संजना परी, ललिता। देवरिया से आप हैं उदिता विश्वकर्मा, सुजीता विश्वकर्मा। रिंगनी से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा। कुरावली से रशीद हुसैन अंसारी, नसरीन अंसारी, नौरीन, आसमा, मोहम्मद कैफ। तो लीजिए सुनिए आप सबकी अनुरोध पर आनंद फिल्म का गीत मन्ना डे की आवाज़ में।

0: कभी तो हंसाए।
1: आकाशवाणी के जगदलपुर केंद्र से आप सुन रहे हैं फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम श्रोता सुमन। किशोर कुमार की आवाज में अब सबने सुनना चाहा है जांबाज फिल्म का गीत। संगीत दिया है कल्याण जी आनंद जी ने। सुनना चाहते हैं आप सब। चूड़ी लाइन मुंगेली से आप हैं मोहम्मद इसहाक, खातिजा बेगम, मोहम्मद अशफाक, फातिमा, आफरीन बेगम, अल्ताफ, नीलोफर। टीकमगढ़ से आप हैं उर्मिला, नेहा, अंकिता, अविता, आरुषि, अभी। गांधीग्राम से आप हैं प्रवीण सोनी। खंडवा से अब्दुल कादर डाबर, मोहम्मद हमजा डाबर, अब्दुल हक डाबर, जियाउल हक डाबर। दिल्ली से आप हैं रविंद्र छाबड़ा, इंद्रजीत कौर छाबड़ा, स्वीटी छाबड़ा। हिल्स नागपुर से आप हैं नाना डोंगरदीवे, रमाताई डोंगरदीवे, सीमाताई, रीमाताई, राहुल डोंगरदीवे। उज्जैन से गोपाल बागवान, गोविंद, सलाम राम, दशरथ बागवान। निजामाबाद से आप हैं शेख अल्लाह बख्श, राबिया शेख, रहीम मुन्ना शेख, वाहम नूरजहां शेख, इकबाल। सहारनपुर से आप हैं सैयद मसरूर, अजहर हसन, इब्राहिम, नाजिया आफिया। पुणे से पंकज कुमार आर्या, प्रियंका वाड़ोदे, बाबा साहेब वाड़ोदे, चंद्रप्रभा वाड़ोदे। राजस्थान से कृष्ण कुमार डाबी, भूपत डाबी, राधा डाबी, विक्रम, अर्चना डाबी। देवरी भाटापारा से गन्नूलाल रजक, के आर साहू, अश्विनी वर्मा, गणेश मिस्त्री। चारामा से हरिशंकर सलाम, भगवान सिंह सलाम, चैतराम नेताम, शिवराज। राजाराम नगर से आप हैं राजपूत अग्रवाल, मधु महाजन, राकेश अग्रवाल। कानपुर से पूनम सिंह, काजल सिंह। जालौन से सत्येंद्र कुमार चंदोलिया, आदर्श, सार्थक, अलौकिक चांसोलिया। मानपुर से विजय वैद, रानी वैद, महिमा, नीतू। धनबाद से अमित कुमार सिंह, प्रियंका सिंह, बेबी समृद्धि। पहलगाम से पीर ज्यादा, मेहरुजुद्दीन, कैसर उद्दीन। बालोद से चिंताराम साहू, नरबदिया साहू, दिनेश दुलार, उर्वशी। भिलाई से सुशील जैन, कल्पना जैन, सौरभ जैन, शुभम जैन। किशनपुर से आप हैं आलम दिलकश, शबाना नाज रिजवान, इमरान राजा, चांदनी नाज। गांधी चौक रोपड़ से आप हैं हरदेव मीका, बलबिंदर बीरक, जैतिक बीरक, मीका बीरक। तो लीजिए सुनिए आप सबकी फरमाइश पर फिल्म जांबाज का ये गीत।

कार्यक्रम का अंतिम गीत आप सबने सुनना चाहा है, फिल्म दीवाना का ये गीत। इस गीत को स्वर दिया है विनोद राठौर ने, गीत लिखा है समीर ने, संगीत समीर का। सुनना चाहते हैं आप सब। नांदेड़ से आप हैं प्रभाकर जोंधले, आरती जोंधले। वरुड़ से आप हैं महेंद्र सरकारे, विजय सरकारे, मिलिंद सरकारे। धरसीवा से आप हैं छेदूलाल यादव, श्रीमती सीता यादव, अर्चना, अरुणा यादव, अनुराधा, अल्पना यादव। रायपुर से आप हैं छंडूलाल यादव, अनुराग, अभिषेक, अलका, अनामिका, बलदाओ, कुमारी रानू, खुशी, प्रवीण साहू और सी एल यादव। मलोट पंजाब से आप हैं रमेश कुमार जाजोरिया, गीता रानी, गगनदीप, आरजू जाजोरिया। देवास से मुरलीलाल वर्मा, मनीष वर्मा, शिवम वर्मा। सहारनपुर से आप हैं सुरेश नारंग, आशु, पथिक, सोनाली। तिलदा से आप हैं हरीश, कमल, सेतपाल, भूमिका, सुशीला। बिहार से संजीव कुमार सिंह, पूजा सिंह, रवि, आरती सिंह। अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश, तारिणी ठाकुर, सूरज ज्योति, रियांश, गुड़िया ठाकुर। भाटापारा से आप हैं एम एल यादव, अजय कुमार यादव, अमित, अमीन, गिरीश, युवान, ढावेश यादव। सनावत से मोहम्मद सादिक, मोहम्मद शाकिर, मुश्ताक अहमद, मंतसा, रमेश गौड़, शादाब। बाबाकुटी रायगढ़ से आप हैं शिव कुमार चौहान, संक्रांति चौहान। लवन से कलीराम यादव। महाराष्ट्र से शाहजी बोखड़े, नंदा बोखड़े। बालोद से मंतुराम यादव, चित्ररेखा यादव, शिवम, साहिल, राकेश, रितेश, पोषण, केशव। औरंगाबाद से प्रकाश बोरगांवकर, सुदामा, प्राजक्ता, प्रांजलि, सोहम। बिहार से अकरम हुसैन, प्रिंस, इशरत, बासीम, आरिज, हुमैरा, सुमैरा। लक्षनपुर से जीवन लाल रजक, रामजी साहू। हिसार से राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार, सौरभ डूडी। रायगढ़ से शेख अब्दुल सलीम, बेगम, परमीन बानो, अब्दुल जमीर, मोहम्मद अलीम, असीम। मगरलोट से आप हैं पुनुराम साहू, तेजस्वरी, राजश्री, राजवीर। हरिद्वार से आप हैं ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर, साही, मेहराज जहां। तो लीजिए सुनिए आप सबकी अनुरोध पर कार्यक्रम का अंतिम गीत और आज के फरमाइशी फिल्मी गीतों के कार्यक्रम श्रोता सुमन से मुझे यानी शीबा सिंह को दें अनुमति। नमस्कार।

0: उपराष्ट्रपति ने कहा कि गुरुदेव टैगोर का योगदान साहित्य के क्षेत्र से कहीं अधिक व्यापक था और आने वाली पीढ़ियों पर उनका अमिट प्रभाव रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि गुरुदेव असाधारण प्रतिभा के धनी लेखक, विचारक और कवि थे। श्री मोदी ने कहा कि गुरुदेव ने एक दार्शनिक, शिक्षाविद, कलाकार और भारत की सभ्यतागत आत्मा की शाश्वत आवाज के रूप में अपनी छाप छोड़ी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि गुरुदेव ने एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को मजबूत किया और भारत की सांस्कृतिक विरासत को दुनिया के सामने प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि गुरुदेव टैगोर ने साहित्य, संगीत और दर्शन के माध्यम से स्वतंत्रता की भावना को नई दिशा दी। समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
1: संसद के सदस्यों, पूर्व सांसदों और लोकसभा के महासचिव उत्पल कुमार सिंह ने आज नई दिल्ली में संविधान सदन के केंद्रीय हॉल में गुरुदेव के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की। लोकसभा सचिवालय ने कहा कि गुरुदेव टैगोर की रचनाओं ने देशवासियों में देशभक्ति की भावना को प्रेरित किया। तमिलनाडु में बहुमत हासिल नहीं करने के कारण नई सरकार के गठन में और देरी हो रही है। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव

0: केरला में भी नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। यूडीएफ की प्रमुख पार्टी कांग्रेस कल तक नेता की घोषणा करेगी। कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि विधायक दल के नेता के बारे में राज्य में पार्टी पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय नेतृत्व निर्णय लेगा। वहीं असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रहा है। शपथ ग्रहण समारोह मंगलवार को होगा। पार्टी विधायक दल की बैठक कल होगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने भारत तथा त्रिनिदाद और टोबैगो के बीच पारंपरिक संबंधों की सराहना की है। त्रिनिदाद और टोबैगो के विदेश तथा कैरिकॉम मामलों के मंत्रालय के समारोह में डॉ जयशंकर ने दोनों देशों के बीच गहरे सांस्कृतिक संबंध और ऐतिहासिक जुड़ाव का उल्लेख किया।
1: भारत के त्रिनिदाद और टोबैगो के साथ परंपरागत रूप से मैत्रीपूर्ण संबंध रहे हैं और ये संबंध साझा इतिहास, उपनिवेश के खिलाफ हमारे संघर्ष और क्रिकेट के हमारे विशेष रिश्तों पर आधारित हैं। दोनों देशों के लोग पहनावे और खेलकूद से लेकर खान पान की आदतों और परंपराओं तक कई मामलों में एक दूसरे से समानता रखते हैं।
0: डॉक्टर जयशंकर ने प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर से मुलाकात में द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने के बारे में चर्चा की। यात्रा के दौरान पर्यटन, विदेश और कैरिकॉम मामलों के मंत्रालय के भवन का सौर ऊर्जा से संचालन, विभिन्न परियोजनाओं और आयुर्वेद केंद्र की स्थापना सहित कई समझौतों पर सहमति बनी। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण आज देश भर में इस वर्ष की दूसरी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन कर रहा है। प्राधिकरण के सदस्य सचिव संजीव पांडे ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि लोक अदालत में समझौता योग्य आपराधिक मामलों, चेक बाउंस और बैंक वसूली विवादों सहित कई प्रकार के मामलों की सुनवाई की जाती है।
2: आज राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन पूरे देश में एक ही समय पे किया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि न्यायालय में लंबित मामलों का बोझ कम किया जाए तथा जो मामले, जो विवाद न्यायालय में और प्री लिटिगेशन स्टेज पे लंबित हैं, उनको समझौते के आधार पर निस्तारित किया जाए।
0: श्री पांडे ने बताया कि वर्ष 2023 से 2025 के बीच 12 राष्ट्रीय लोक अदालतों का आयोजन कर 26 करोड़ मामलों का निपटारा किया गया। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और अटल पेंशन योजना ने 11 वर्ष पूरे कर लिए हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि सामाजिक सुरक्षा की इन योजनाओं का उद्देश्य सभी को, विशेष रूप से समाज के वंचित और कमजोर वर्गों को किफायती वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत 27 करोड़ से अधिक नामांकन, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में 58 करोड़ और अटल पेंशन योजना में 9 करोड़ नामांकन हो चुके हैं और जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत 21,500 करोड़ रुपए और पीएम सुरक्षा योजना के अंतर्गत लगभग 3,660 करोड़ रुपए के दावों का निपटारा किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल कर्नाटक के बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग की 45वीं वर्षगांठ समारोह में शामिल होंगे। श्री मोदी आर्ट ऑफ लिविंग इंटरनेशनल सेंटर में नवनिर्मित ध्यान मंदिर का उद्घाटन भी करेंगे। बाद में प्रधानमंत्री हैदराबाद में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। श्री मोदी हैदराबाद पणजी आर्थिक गलियारे पर गुड़ेबेलूर से महबूब नगर तक राष्ट्रीय राजमार्ग 167 के 4 लेन के निर्माण की आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री वारंगल में पीएम मित्र पार्क का भी उद्घाटन करेंगे। श्री मोदी हैदराबाद में अत्याधुनिक कैंसर अस्पताल का भी लोकार्पण करेंगे। सोमनाथ अमृत पर्व का आधिकारिक रूप से कल से शुभारंभ हो गया है। ये मंदिर के पुनर्निर्माण की 75वीं वर्षगांठ का प्रतीक है। 5 दिन के इस उत्सव ने मंदिर परिसर को वैदिक मंत्रों और दिव्य ऊर्जा के केंद्र के रूप में बदल दिया है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
3: सोमनाथ महादेव मंदिर में आज आस्था और भक्तिमय वातावरण छाया हुआ है। मंदिर में आज से ही 3 दिवसीय होमात्मक महारुद्र यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें से लगभग 1,25,000 आहुतियां अर्पित की जा रही है। यह महायज्ञ वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों में शांति और मानव कल्याण के लिए आयोजित किया जा रहा है। अमृत पर्व का मुख्य आकर्षण 11 मई को होगा, जब मंदिर के शिखर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 11 पवित्र तीर्थों के जल से कुंभाभिषेक किया जाएगा। इस ऐतिहासिक क्षण का साक्षी बनने के लिए देश के कोने कोने से श्रद्धालुओं का सैलाब सोमनाथ उमड़ पड़ा है। गुजरात के उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने आज सोमनाथ में उच्च अधिकारियों के साथ बैठक की और सोमनाथ अमृत पर्व की आयोजन की समीक्षा की। अपर्णा खूंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।

0: समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। हुरमुज जल डमरू मध्य के पास कल एक नौका में आग लगने से एक भारतीय नागरिक की मौत हो गई और चार अन्य झुलस गए। सरकारी सूत्रों ने बताया कि एक जहाज के चालक दल ने नौका में सवार लोगों को बचा लिया। घायलों का दुबई में इलाज चल रहा है और वे सुरक्षित हैं। आग लगने के कारण का पता लगाया जा रहा है। भारतीय वाणिज्य दूतावास के अधिकारियों ने बचाए गए भारतीय नागरिकों से मुलाकात की। दूतावास हर संभव सहायता प्रदान कर रहा है। पाकिस्तान मानवाधिकार परिषद ने देश में पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में हाल में की गई वृद्धि की कड़ी निंदा करते हुए इसे जनता पर सीधा हमला बताया है। मानवाधिकार संस्था ने सरकार से मूल्य वृद्धि तुरंत वापस लेने और जनता को राहत प्रदान करने का आग्रह किया। परिषद ने परिवहन किराए और आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में मनमानी वृद्धि पर रोक लगाने की भी मांग की। हिंद महासागर संवाद 10 कल नई दिल्ली में सम्पन्न हो गया। दो दिन के इस आयोजन का विषय था परिवर्तनशील विश्व में हिंद महासागर क्षेत्र। संवाद में इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन सदस्य देशों के वरिष्ठ अधिकारियों, नीति निर्माताओं, विद्वानों और विशेषज्ञों ने हिंद महासागर क्षेत्र में महत्वपूर्ण क्षेत्रीय घटनाक्रमों और उभरती चुनौतियों पर विचार विमर्श किया। लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमणि को अगला प्रमुख रक्षा अध्यक्ष CDS नियुक्त किया गया है। वे जनरल अनिल चौहान का स्थान लेंगे। उनका कार्यकाल 30 मई को समाप्त हो रहा है। इस बीच वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन को नौसेना प्रमुख नियुक्त किया गया है। आकाशवाणी की स्थापना के 90 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में देश भर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। पंजाब के जालंधर और पटियाला स्टेशन पर आज वॉकेथॉन का आयोजन किया गया। एक रिपोर्ट।
1: पंजाब में आकाशवाणी ने हरित क्रांति के दौरान एक अहम भूमिका निभाई है और आज भी कृषि पर विशेष रूप से तैयार किए गए कार्यक्रम के जरिए किसानों को जानकारियां उपलब्ध करवा रहा है। आज के वॉकथॉन के दौरान आकाशवाणी के श्रोताओं, पूर्व कर्मचारियों और अन्य लोगों ने FM स्टूडियो में एंकर द्वारा बजाए जा रहे बेहतरीन गानों के बीच सीधे प्रसारण के जरिए अपने अनुभव साझा किए। बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय के अपने आदर्शों पर खरा उतरते हुए यह राष्ट्रीय प्रसारक विभिन्न कार्यक्रमों और समाचार बुलेटिन के माध्यम से जानकारी, शिक्षा और मनोरंजन प्रदान करते हुए बीते 9 दशकों से देश की सेवा में तत्पर है। राजेश बाली, आकाशवाणी समाचार, जलंधर।
0: आकाशवाणी शिलांग में भी मैराथन का आयोजन किया गया। IPL क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला गुजरात टाइटंस से होगा। अंक तालिका में राजस्थान चौथे और गुजरात पांचवें नंबर पर है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री बने। उनके साथ 5 कैबिनेट मंत्रियों ने भी शपथ ली। तमिलनाडु में सरकार गठन को लेकर राजनीतिक गतिरोध जारी। TVK को अब तक बहुमत नहीं मिला। राष्ट्रीय विधि सेवा प्राधिकरण विवादों के सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए देश भर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन कर रहा है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के लिए त्रिनिदाद और टोबैगो के प्रधानमंत्री से मुलाकात की। और जयपुर में IPL क्रिकेट में आज शाम राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला गुजरात टाइटंस से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: मीडियम वेव 396.82 मीटर अर्थात 756 किलोहर्ट्ज, FM बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। इस समय दोपहर के 2:30 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम कला और कलाकार। दादा दादा दादा दादा दादा दादा।

कला और कलाकार कार्यक्रम संतोष सफाए गांवकारी दादा दीदी भाई भाई मन और संगजौरिया संगवारी मन के मैं कुलदर करें से जुआर। दादा दीदी मन आम के कहीं बोले काम बूता कर तो काजे सब ले आगे आम के ज्ञान हो तो रहे बोले ने पढ़ाई लिखाई ते भी हम कहीं बोले कला हो नाहली काम हो कहीं बोले बूता के हमें करुकलाई सीखवा। कला बोले ने आमचो जीवना ने कुबे बरन बरन बानीचो कला मना से जैसन कि ढोलक बजात बीतीबल कला आए बांसुरी बजात बीतीबल कला आए और जन गांव गांव ने बाजा मोहरी बल बजा सोते बल गोटो कला है ये चो काज बोले आम के सीकुकलाई पड़े से हाँ गुरु बल धरुक पड़े से ते भी ये बीती कला हम के सीकुकलाई होए से उसने जैसन कि कोनी बड़ी भाई मनोसोत काय सुंदर मूर्ति मन बल गढ़ सो तुन बल गोट कला है सब ले आगे भाई मन तो काहे बल जासो सीखू कलाए ते भी उन कला के उन मन बल सीखसो तारु काय मन जा चुक चुका बनासोत। उसने आम के दादा दीदी मन सीख तो काज तो आम के ज्ञान ना लो कहीं चीज के सुकुकलाई नहीं हो यार गुरु ना आलो ज्ञान पाउकलाई नहीं हो तो दादा दीदी मन कला बल लेने जैसन कि सुप टुकना बल गात तो भी थी कला होली तुम चो हांडी कुंडरी बनात भी थी बल गोट कला होली और जैसन की बड़ी दादा मन बना सो तो चौकट हो कपाट हो कहीं बोले बल गोट कला है। कला के सिकुर लेने इच्छु दुनिया में कहीं ना कहीं आम के काम कर तो यार काम डगरात का जे खुदुक नहीं पड़े कसन बोले नाम चल कला आसे बोले ने काम खुद ही आम से लगे लोग डगराते सोत की मके ये बीती बनाऊं देश सुन बीती बनाऊं देश असन कला मन के बल सीख तो रहा है और जान तो रहा है। तो हम चो दादा दीदी भाई बहन मन आसोत पढ़े लिखे असन कला मन के बल ये मन सीख उकलाए सकोत और सीख तो काजू आट करोत। कला बोले गोटुक गीत बोले आए गीत बल गोटुक कला हो से एक बोले कौन लय ने गाव तो राय कसन गाव तो राय बल गोट कला ची आए तो असन बीती मन के सीख तो काजे आम के कुबे आम चो भाई बहन मन बल प्रयास करोत और सीख तो काजे वाट करोत। तो आले दादा दीदी मन ये गोट के तू आले सांगले मैं आले मोडरा ने और गोट मन बल आसे मन बोले सुनो।

0: निखार। इफको नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
1: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सह कर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
2: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ। चेटिनाड सीमेंट, द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
3: क्या बात है उमेश, आजकल खूब छाए हो अखबार में नई नई रिपोर्टिंग के साथ।
4: हाँ यार, पत्रकार जो हूँ।
3: तो अब अगली रिपोर्टिंग किस पर कर रहे हो?
4: सुधीर, मुझे एक ऐसी 11 साल की लड़की के बारे में पता चला है जिससे एक परिवार वाले घर का सारा काम करवाते हैं और ऊपर से उस पर ज्यादती करते हैं। उसी पर एक स्टोरी बना रहा हूँ।
3: उमेश, स्टोरी बनाते समय इस बात का ध्यान रखना कि पीड़ित बालिका का नाम, पता, फोटो या स्कूल का पता या ऐसी कोई भी जानकारी सामने ना आए जिससे उसकी पहचान होती हो।
4: क्यों?
3: क्योंकि ऐसा करना बाल न्याय तथा बच्चों की देखभाल और उनके संरक्षण संबंधी संवैधानिक अधिनियम 21A का उल्लंघन है और इस बात का ध्यान हमारे सभी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकारों को भी रखना है।
5: बाल अधिकार हनन से पीड़ित बच्चों की पहचान उजागर करने वाली जानकारी का प्रकाशन या प्रसारण न करें, क्योंकि इससे पीड़ित बच्चों के सामाजिक और मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है।
6: तो दादा दीदी मान अली नंगत गोट की सुन लू तो बताएं मोडरानी आसे भेंट वार्ता। ये भेंट वार्ता भीतरी आसो श्री कमलेश मरकाम, ये आत भावसुरी वादक आर्यमन संघ बेठोला से जयराम प्रसाद कश्यप। तो गांव का दादा दीदी मन आली मंचो गोट बात के सुनो।

0: हाँ गांवकारी भाई बहन मन अपन मन नखा सुनला स्वती की ये बांसी बजा के आज ही आमताने कला और कलाकार ने गोटक बांसी बजाओ कलाकार आमचो लगे इला से तो सब ले आगे तुझो नाव सांगना दादा काय नाव है
1: मच नाव कमलेश मरकाम है दादा
0: कमलेश मरकाम
1: हाँ
0: अच्छा गांव कौन गांव है जाले
1: गांव कुकानार बकरावाड़ा ले आए मैं
0: अच्छा कुकानार बकड़ा वाला
1: हाँ
0: अच्छा ये छिंदगढ़ ब्लॉक पर ऐसे
1: हाँ सिंहगढ़ जिला का सुकमा जिला
0: अच्छा अच्छा कमलेश ये सांगना जैसन की तू ये बांसी जोन फुकुन बाती सुनालीस
1: जी
0: ये बोले कहाँ सीखलीस कसन सीखलीस
1: ये सर मैं केरला पाल ने छठवीं पढ़ गया ले तो उदल दे जो हॉस्टल लेखा मन कार्यक्रम देते रहत तो के मौके उन तने बांसी काय काय पुखते रहत
0: अच्छा
1: लोहा भी देते रहे
0: हाँ हाँ
1: तो छठवीं में तो मौके इंटरेस्टिंग लागली तो साथी बेराले मैं फिर फूक उक मोरे आले
0: अच्छा
1: उताले और आज तक का बांसुरी के बिल्कुल नीचे से आने
0: निछांडी
1: हाँ
0: हाँ हाँ बल्ले ने
1: और
0: उदला
1: शादी ब्याह ने
0: हाँ
1: मैं बजाऊ
0: बजाऊ
1: हाँ कोंटा बाते हो बीजापुर बाते हो
0: हाँ
1: जोन लगे बोले कार्यक्रम हुआ है
0: हाँ हाँ
1: तो मैं एक निशान दरुण से जाऊ और
0: अच्छा
1: बजा बोल सब
0: बजाऊ
1: जानत के थे बांसुरी
0: अच्छा
1: बजा रहे
0: हाँ
1: हो
0: हाँ बल्ले ने पढ़ तो बेरा पीला बेरा तू चो सीख
1: जी
0: लो
1: जी
0: रोली
1: जी जी
0: है कि नहीं
1: साथी बेरा
0: साथ ही बेरा ले हाँ हाँ तो ये भी बल्ले ने बिया है बजार आए मंडैया है ये सब तान तु बजाऊ आज बोलो
1: हाँ बजाओ
0: हाँ हाँ तो कमलेश दक बाउसी गोड बात करूँ हाँ मांतराले बिया बीती कोनी पाड़ तुम चो गोंडी हिसाब ने कौन कोनी समिया चो बोले बिया तान बोल तो कितनी पाड़ मनो ऐसे
1: हाँ
0: है कि
1: खूब
0: नहीं
1: पार मना
0: तो आल गोटो पाड़ के तु फोकुन बाती सुनो

0: तो कमलेश दक ये बोले नाचा भीती पाड़ रोली बोले
1: जी,
0: बोले
1: ये जो सगामन के बसन बसन बती काय काय जो बसा तो पाड़ है, बसा की
0: हाँ
1: दोनी पान लांदा पीतर मोत पीतर,
0: हाँ हाँ
1: ये बीते है रिकात
0: अच्छा
1: बीते
0: हाँ हाँ सगा इलो बेरा छे
1: सगा के बसा
0: बसात बे
1: बसन बती कैसे प्रिसी प्राणी बटोत
0: हाँ
1: है
0: हाँ
1: उन बीते
0: अच्छा
1: है।
0: तो कमलेश बोले ने जैसन की काय काय असन तियार बाहर बाजार मंडी ने ये बांसी बजातर हो जाल ना
1: तिहार ने जसन जसन 20 त्योहार होली, फिर आमोस बेरा आमोस त्योहार है, और ये फिर मंडे यात्रा ने उन्हीं जसन देव पाड़ देव
0: देव
1: दादी मोर्चो
0: हाँ हाँ
1: डोकरा देव से होली
0: हाँ हाँ
1: और डोकरी सो
0: अच्छा
1: ये पाड़ मन है।
0: अच्छा बोले बोल बांसुरी बजाओ कोई
1: बांसुरी ने डोकरा छो डोकरी छो बजाओ
0: ऐसा हाल कोनी बोले देव छो बजाऊं तक
1: डोकरा
0: हाल
1: सो
0: डोकराज बजा

0: तो कमलेश दक ये डोकरा देव पाड़ो जी एच संग फिर
1: डोकरी से
0: हाँ डोकरी से नहीं ये नंगरा बाजू है कि तुम चो?
1: नंगरा डोल
0: अच्छा
1: डोल भी थी
0: डोल बाजे
1: से जैसा गांव से दुर्वा डोल में नौ दिन है के ना साथ भी थे
0: अच्छा
1: अच्छा नंगरा ने बोल नंगरा बोल बाजू है
0: नंगरा बोल बाजू
1: है नंगरा बोल बाजू है डोल बोल बाजू है
0: अच्छा दोनों ने बाजे से
1: बोल बाजू है
0: हाँ हाँ तो माटी तैयार बेरा कसन काय जो पुख्तो रहे ना ये पिंजा पोड़ बोल काय बोल सो
1: विजा पांडव ने तो जैसे हम सो हम कुकाना ने दुर्वा मन सो काय तो ने हुआ उन्हीं मन गवाते
0: अच्छा
1: हाँ दुर्वा में
0: हाँ दुर्वा मन गाय सो तो उदला ये बाजा वगैरह मन चो जरूर नहीं
1: बाजा मन ये असने परब बाजा बजावाते उदलदा
0: अच्छा परब
1: वैसे परब बाजा
0: हाँ
1: हाँ हाँ मजा रहे दे
0: हाँ हाँ और तू चो फुक्त बीती और कौन समय आने वैसे जाले
1: मसो जसन हम सो बिया बेरा जसन लेका लेखी के जानकारी ने उन दिलो तो उनके सोपुन बती कई बुद्धि भरसा दे तो बीती ए गोटोक
0: अच्छा तो आले उदलाई सो गोटोक पुकुंदा

0: हाँ तो कमलेश मरकाम दख तो इतलो अच्छा फुकुन बाती सुनालीस ना बले ने फुक तो भी थी तो बले ने खूबे आसे
1: जी जी
0: मानता राम चुपल गोटोक समय रहे से
1: जी जी
0: तो उन समय हिसाब ने कहा कि फुक तो रहे से बजाता रहे से जातर
1: जी
0: बोले से
1: जी
0: तो फिर के भी असनी तुझ संग भेटघाट हुआ और बजाउन बाती फुकुन बाती सुना से
1: जी
0: तो आज ही काजे इताए ठेवा माल खूब खूब जुआर ना
1: जुआर
0: जुआर
1: जुआर
2: तो दादा दीदी मन काय सुंदर भाव।

0: બજાતો કલાકાર ભાઈ છો, ગોડ વાત કે સુન લાસ ને તો અદાય આમ છો મોડરાની આસે નગત ગોટમન બોલે આલી નગત ગોટમન બોલ સુનો
1: ઈદ બદલે મત્તાંક અચ્છા માનેડા ઇલાજ ચુડુન સસ્તા આતા સેંગેન વેટરનરી સર્જિકલ જાકી ઔરવેન્ટ સામાન કિન મોલવેન કમ મત્તાંક જનાવર કિન ઇલાજ તગવેન રાહત દોરકના દુમીદ મિંદે यू पूना मोलते ग्राहक लोर्क और व्यापारी लोर्क फायदा दोरकिता जीएसटी तक कोंडे पूना मोला 22 सितंबर 2025 तीना लागू आयना मिंदे
2: जीएसटी चो दर के कम करलो ने सोझे मनुख जीव चो इलाज खंडिक सस्ता नहीं होली से बल्कि जनावर मन चो इलाज बोले सस्ता हो तो भरसा आसे जीएसटी ले वेटनरी सर्जिकल चो समान सस्ता होली से नुआ कीमत ले समान बनातो लोग और घेंतो लोग दोनों के लाभ मिरे दे ये नुआ जीएसटी दर 22 सितंबर 2025 ले लागू होए दे
3: किसान भाई बहन मन का जे नुआ उवाड एदाए रोज शनिवार के सांझ बेरा 7:30 बजे ले 8 बजे तक सुना फोन इन किसान वाणी यथा कृषि महकमा चो विशेषज्ञ बल्लो ने खोजाकारी दादा दीदी दे दे आपन मन चो खेती कमाने ले जुड़ लो सपाय समस्या चो समाधान बीज ले धरून हाट बाजार तक हर सवाल चो जवाब सीधा आपन मन के मिरे दे और हाँ ये कार्यक्रम चो रिकॉर्डिंग होए से रोजे मंगलवार अड़ौ पहाड़ 3:30 बजे ले 4 बजे तक तो आपन मन सपाय सुना और आप लोग सवाल सीधा आम के फोन ने सांगा आम चो फोन नंबर आए 07782226666 फोन इन किसान वाणी आपन मन चो सवाल आपन मन चो कहानी खेती बाड़ी चो जुबानी आकाशवाणी जगदलपुर ने
0: तो दादा दीदी मन काय सुंदर झाला गोट मन बोल सुन लास तो ये गोट बात मन संगे आम की गोट गीत गोविंद बोलोलेन काय सुंदर लागू आए तो वाले दादा दीदी मन अले गीत की बोले सुनू ये गीत के गावला सो जलधर अरुण चो संगवारी मन

तो गांव का रही दादा दीदी मन गीत बली होली ने गीत के गौ रोत जलधर साथी अरुंचो संगवारी मन। तो दादा दीदी मन गीत गोविंद बलोली आलू जाते समय बल हो से जा तो पूरे कला और कलाकार कार्यक्रम संतो सफाए गांवकारी दादा दीदी भाई बहन मन और संगजौरिया संगवारी मन के मैं कुलदर करें से जुआर।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कला और कलाकार। मीडियम वेव 396.82 मीटर अर्थात 756 किलोहर्ट्स, एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्स और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। इस समय दोपहर के 3 बजे हैं। संध्याकालीन सभा के कार्यक्रमों के साथ शाम 5 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।

मीडियम वेव 396.82 मीटर अर्थात 756 किलोहर्ट्ज़, एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज़ और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। शाम के 5 बजे हैं, प्रस्तुत है हमारे केंद्र से प्रसारित और अनुप्रसारित किए जाने वाले आज के शेष और कल होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। पहले सुनिए आज के शेष कार्यक्रमों के बारे में। आज रात 9:30 पर साहित्य भारती कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा। आज शाम 5:05 पर देशभक्ति गीत। युवा श्रोताओं का कार्यक्रम युववाणी होगा शाम 5:10 पर। शाम 6:35 पर सुनिएगा भत्री नाटगीत। कलाकार होंगे मधुराम और साथी। कार्यक्रम बस्तर की स्वर प्रसारित किया जाएगा शाम 7 बजे। शाम 7:30 पर प्रायोजित कार्यक्रम फोन इन किसानवाणी। जोनी उजर में सुनिएगा भत्री नाटगीत। रात 8 बजे कलाकार होंगे नीलूराम और साथी। रात 8:30 पर प्रसारित किया जाएगा कार्यक्रम पिलामन काजे गोट। प्रस्तुति होगी बंसीराम की। आमचो रान आमचो जीवना कार्यक्रम आप सुनेंगे रात 9:15 पर। रात 10 बजे सुनिएगा आदिवासी लोकवादी धुन का कार्यक्रम पाड़। वादक कलाकार होंगे सोनारू और साथी। अब सुनिए हमारी कल की सभाओं में प्रसारित और अनुप्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त जानकारी। कल रात 9:30 पर शास्त्रीय संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हम रिले करेंगे। कल सुबह 7:10 पर हमारा विशेष कार्यक्रम देश की वाणी आकाशवाणी और शाम 6:05 पर जिले की चिट्ठी आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से रिले किया जाएगा। भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना सुबह 6:05 पर। सुबह 6:20 पर होगा कार्यक्रम प्रकाश किरण। वाचन स्वर दामोदर शास्त्री का। श्री रामचरित मानस का गायन आप सुनेंगे सुबह 6:25 पर। स्वर ए हरिहरन का। संगीत निर्देशन सतीश भाटिया का। सुबह 6:35 पर और दोपहर 1:05 पर कृषि स्वामी की बेड़ा खाड़ा चुगोट। होलुली में सुनिएगा रन्हा कासन पाड़। सुबह 6:40 पर वादक कलाकार होंगे धर्मू और साथी। सुबह 7:30 पर प्रसारित किया जाएगा हल्बी समाचार बुलेटिन। फिल्म संगीत का आनंद लेंगे आप सुबह 7:45 पर। सुबह 8:30 पर आप सुनेंगे विभिन्न बोलियों में लोकगीत का कार्यक्रम लोक मंजरी। नन्ही मुन्ने बच्चों का कार्यक्रम बालबाड़ी सुबह 9 बजे। सुबह 9:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम एक ही फिल्म से। गुलशन में सुनिएगा नए तराने सुबह 10 बजे। फरमाइशी फिल्मी गीतों का फोन इन कार्यक्रम चाहत प्रसारित किया जाएगा सुबह 10:30 पर। प्रस्तुति होगी गायत्री आचार्य की। संयोजक होंगी चंद्र ऋषि ठाकुर। गुड़दुम में आप सुनेंगे हल्बी लोकगीत सुबह 11:30 पर। दोपहर 12 बजे लोक गाथा की कार्यक्रम। रुसरुसा में सुनिएगा मैनामती रानी का भाग 7। गायिका होंगी कचराबाई और साथी। शहरी महिलाओं का कार्यक्रम घर आंगन दोपहर 12:30 पर। फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम श्रोता सुमन दोपहर 1:10 पर। दोपहर 2:30 पर कार्यक्रम कला और कलाकार। कल शाम 5:05 पर देशभक्ति गीत। युवा श्रोताओं का कार्यक्रम युववाणी होगा शाम 5:10 पर। शाम 6:30 पर गोंडी समाचार बुलेटिन। बस्तर के स्वर कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा शाम 7 बजे। शाम 7:21 पर ग्रामीण श्रोताओं का कार्यक्रम आमचो गांव। बालीफुल में सुनिएगा हल्बी लोकगीत रात 8 बजे। कलाकार होंगे दैमती नाग और साथी। रात 8:30 पर सुनिएगा कार्यक्रम पिलामन काजी गोट। रात 9:15 पर प्रसारित किया जाएगा कार्यक्रम पुरानी फिल्मों से। दौरा में सुनिएगा गोंडी लोकगीत रात 10 बजे। कलाकार होंगे बुधमन और साथी। ये थी हमारे केंद्र से प्रसारित और अनुप्रसारित किए जाने वाले आज के शेष और कल होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी। ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। शाम के 5:05 हुए हैं। प्रस्तुत है देशभक्ति गीत समूह स्वर में।

अभी आप सुन रहे थे देशभक्ति गीत समूह स्वर में। ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। पेश है युवा श्रोताओं का कार्यक्रम युववाणी।

0: ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਕੰਬਗਣੀ ਵਰਕਮ ਜੋ ਹਾਂ ਦੋਸਤੋ, ਆ ਗਏ ਹਮ ਵਾਪਸ ਆਜ ਕੇ ਇਸ ਸ਼ਾਮ ਕੋ ਔਰ ਵੀ ਮਧੁਰ ਵਹ ਹਸੀਨ ਮਨਾਨੇ
1: लेकर आप सभी के लिए आपके अपने पसंदीदा गीत, कुछ जानकारी भरी बातें और मनोरंजक कार्यक्रमों का साथ।
0: जी हाँ दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम यू वाणी में, जहाँ मैं हूँ आपके कंपेयर साथी शीतल बघेल
1: और मैं हूँ आपका कंपेयर दोस्त स्नेह श्रीवास्तव। स्वीकार कीजिए हमारा प्यार भर अभिवादन।
0: नमस्कार।
1: नमस्कार।
0: स्नेह,
1: हाँ,
0: आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे विषय की जो आजकल कई युवाओं के मन में सवाल बनकर रहता है।
1: और ये सवाल क्या है शीतल?
0: वो है करियर में गैप।
1: बिल्कुल शीतल। दोस्तों, कभी पढ़ाई की वजह से, कभी परिवार की जिम्मेदारियों से, तो कभी खुद को समझाने और संभालने के लिए जिंदगी में थोड़ा ठहराव आ ही जाता है।
0: लेकिन अक्सर लोग सही सोचने लगते हैं कि अब क्या होगा, क्या मेरा करियर पीछे रह गया है, ये वो है ना।
1: हाँ दोस्तों, पर हर ठहराव हार नहीं होता। कभी कभी जिंदगी में रुककर खुद को बेहतर बनाने का मौका देती है।
0: बिल्कुल दोस्तों, जैसे किताब में कॉमा आने से कहानी खत्म नहीं होती, वैसे ही करियर में गैप आने से सपने खत्म नहीं हो जाते।
1: वाह, क्या बात कही शीतल तुमने। और दोस्तों, सच भी यही है कि आज कई बड़े लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने जीवन में गैप लिया, दिशा बदली और फिर नई शुरुआत करके सफलता भी पाई।
0: बिल्कुल, इसने क्योंकि असली बात ये नहीं कि आप कितनी देर रुके, असली बात तो ये है कि दोबारा चलना कब शुरू किया है।
1: क्योंकि कहते हैं ना दोस्तों, रास्तों में ठहर जाना हार नहीं होता। हर अधूरी कहानी का अंत नहीं होता। कभी कभी वक्त भी सिखाता है जीना। हर गैप इंसान को बेकार नहीं करता।
0: वाह वाह, नहीं क्या बात कही तुमने। और दोस्तों, सच कहे तो आज की भागदौड़ में हर कोई किसी ना किसी मोड़ पर रुकता जरूर है। किसी का सपना छूट जाता है तो कोई खुद को संभालने के लिए थोड़ा वक्त लेता है।
1: हाँ शीतल।

0: ये बात तो तुमने सही कही।
1: बिल्कुल इसने, क्योंकि कहते हैं ना, जो गिरकर फिर संभल जाए वही असली खिलाड़ी है, जो मुश्किल में भी मुस्कुरा दे वही सबसे प्यारी कहानी है।
0: बिल्कुल शीतल, कई लोग करियर में गए पानी के बाद खुद पर शक करने लगते हैं। उन्हें लगता है कि अब शायद सब कुछ खत्म हो गया है।
1: बिल्कुल इसने, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि वक्त बुरा हो सकता है, इंसान नहीं। राहें रुक सकती है, अरमान नहीं। थोड़ा ठहर कर फिर चलना सीख लो, क्योंकि थकना गलत है, हार मानना नहीं।
0: वाह शीतल, क्या बात कही तुमने। सच में जिंदगी किसी रेस का नाम नहीं, ये तो एक सफर है जहां हर किसी की रफ्तार अलग होती है।
1: बिल्कुल दोस्तों, करियर में गैप आपकी पहचान नहीं होता, आपकी मेहनत और वापसी ही आपकी असली पहचान बनती है।
0: दोस्तों, अगर आपके करियर में भी कभी गैप आया हो तो खुद को कमजोर मत समझिए। उस समय में आपने बहुत कुछ सीखा है, धैर्य, जिम्मेदारी और खुद को समझना।
1: बिल्कुल इसने, और दोस्तों याद रखिए कि धीमी शुरुआत भी एक शुरुआत ही होती है।
0: चलिए दोस्तों, इसी के साथ चलते हैं हम अपने अगले कार्यक्रम हेलो युवाणी में और जानते हैं हमें पहला कॉल किसने और कहां से किया है। नमस्कार, हेलो युवाणी
2: सर नमस्कार।
0: जी। नमस्ते, किनसे बात हो रही हमारी?
2: दंतेवाड़ा बचेली से बलराम सेन।
0: बलराम जी, कैसे हैं बलराम जी आप?
2: बढ़िया सर जी, आप कैसे हो?
0: अच्छे हैं बलराम जी, हम भी। और बताइए अपने क्षेत्र के बारे में,
2: सर
0: मौसम?
2: यहाँ तो बहुत गर्मी पड़ रहा है सर, यहाँ बना दंतेवाड़ा बचेली में।
0: जी, बलराम जी आप अपनी फरमाइश बता दीजिए।
2: सर फिल्म का नाम है सर जीनियस। सर
0: जी, इस फिल्म का कौन सा गीत सुनना चाहेंगे आप?
2: सर गाने का बोल बताऊँ सर?
0: जी,
2: तेरा फितूर जब से चढ़ गया रे।
0: काफी प्यारा और हिट गाना चूज किया है आपने बलराम जी।
2: जी सर।
0: और बलराम जी आप क्या काम करते हैं?
2: सर मेरे दुकान सर सैलून दुकान हेयर कटिंग सर।
0: जी, चल रहा है अभी सब सही अच्छे से?
2: हाँ चल रहा है सर, अभी तो मैं गांव आया हूँ सर, अपना गांव पड़ता है महासमुंद।
0: जी,
2: अभी सर छुट्टी हूँ सर मैं भी।
0: जी अच्छी बात है। चलिए तो ठीक बलराम जी, हम सुनवाते हैं आपके पसंद के गीत। कॉल करने के लिए धन्यवाद।
2: ओके थैंक यू सर।

0: जाए निखार।
1: इफको नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
2: नमस्कार, हेलो युवाणी।
3: हेलो युवाणी
2: जी, मेरी किन से बात हो रही है?
3: ग्राम मामड़पाल दरवा बुला से गणपत बघेल बोल रहा हूँ मैडम।
2: गणपत बघेल जी?
3: जी मैडम।
2: गणपत जी, आप क्या करते हैं?
3: खेतीबाड़ी करते हैं मैडम।
2: खेतीबाड़ी करते हैं,
3: साथ में आप लोगों का कार्यक्रम भी सुनते रहते हैं।
2: अच्छा अच्छा, हमारी कार्यक्रम सुनते हैं। आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगता है?
3: अच्छा लगता है मैडम जी।
2: जी, आप रोज सुनते हैं?
3: जी मैडम।
2: अच्छा, तो आप बोले कि खेती बाड़ी करते हैं, तो अभी आप कौन सा फसल लगाए हैं?
3: अभी वही थोड़ा बहुत मक्का है मैडम जी, और बस वही है, मक्का ही है
2: मक्का।
3: अभी फिर बरसात आने वाला है, तो फिर अभी बरसात में धान लगाएंगे।
2: जी जी, अभी तो कुछ महीने के बाद बरसात चालू हो जाएगी।
3: जी जी, अभी भी पानी गिर रहा है मैडम जी हमारे तरफ।
2: अच्छा, उधर पानी गिर रहा है
3: जी?
2: दिन में तो काफी धूप रहता होगा, शाम शाम को मौसम बदल
3: जी, जी, रहा है। अभी अभी चालू हो गया है पानी।
2: जी जी, इधर जगदलपुर का हाल भी ऐसा ही है।
3: जी जी।
2: अच्छा गणपत जी, आप कौन सा गीत सुनना चाहेंगे?
3: दीवाना फिल्म का सुना देंगे मैडम जी।
2: दीवाना फिल्म का
3: पाए लिया करके गाना है, वाला गाना सुना देंगे।
2: अच्छा, तो गणपत जी हम आपका गाना जरूर सुनाएंगे। कॉल करने के लिए धन्यवाद।

0: नमस्कार, हेलो यू मैम।
1: हेलो।
0: नमस्कार सर।
1: नमस्कार मैम
0: जी, आप अपना शुभ नाम बताइए, थोड़ा आवाज क्लियर नहीं आ रहा है।
1: जीवन लाल पंडित बोल रहा हूँ, उड़ीसा भुवनेश्वर से।
0: अच्छा, जीवन लाल जी उड़ीसा से बोल रहे हैं। अच्छा जीवन लाल जी, भुवनेश्वर का मौसम कैसा है?
1: अगर ये यहाँ का बात आपको बताऊँ तो 8 दिन हो चुका है कंटिन्यू बारिश हो रहा है, आज भी अभी भी बारिश होने का चांस है।
0: अच्छा अच्छा, लगातार बारिश ही होते जा रहा है
1: जी। और आपके जगदलपुर में क्लाइमेट कैसा है अभी?
0: इधर का दिन में तो बहुत तड़ाके की धूप रहती है, लेकिन शाम होते होते ही जोरदार बारिश होती है
1: जी।
0: जी आपकी आवाज़ थोड़ी कट कट के आ रही है।
1: क्या है ना कि यहाँ पर अभी बारिश होने का चांस है ना, शायद उसी की वजह से सेल फोन में नेटवर्क इशू हो रहा है।
0: हाँ हाँ, उसी कारण नेटवर्क इशू होगा
1: जी।
0: ठीक है, कोई बात नहीं। जीवन लाल जी, आप कौन सी फिल्म का गाना सुनना चाहेंगे?
1: आज मुझे आप सुना दीजिए हिंदी फिल्म राजा हिंदुस्तानी से आई हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बन के, ये गाना सुना दीजिए। धन्यवाद इन्फॉर्मेशन के लिए आपको।
0: धन्यवाद आपका भी कॉल करने के लिए।

0: नमस्कार, हेलो युवाणी
1: हेलो।
0: जी, किनसे बात हो रही है हमारी? अपना शुभ नाम बताइए।
1: नमस्ते, मैं गंडई टीवी पार छत्तीसगढ़ से जागेश्वर दिवाकर बोल रहा हूँ।
0: जागेश्वर जी,
1: जी
0: जी कैसे हैं बताइए? और
1: बहुत अच्छे हैं हम लोग। और 2 दिन से यहाँ बारिश भी हो चुका है शाम शाम को।
0: जी, गर्मी आपने अच्छे से एंजॉय की
1: गर्मी
0: कि नहीं
1: थोड़ा
0: की?
1: शांत हो गया पानी गिरने के वजह से।
0: जी, राहत है। और क्या करते हैं जागेश्वर जी आप?
1: मेरा कृषि कार्य है, कृषि का काम है, खेती बाड़ी का। वैसे
0: जी, किस चीज की खेती करते हैं?
1: तो अभी मूंग और उड़द डाला हूँ।
0: जी, अभी तो जैसे अब तो मौसम चेंज होगा,
1: हाँ
0: बारिश का
1: जी
0: आएगी, तो बारिश की खेती की तैयारी वैयारी कर रहे हैं आप भी?
1: हाँ। उसके बाद फिर धान बोने से काम चालू होगा।
0: जी, और बताएं, चाहे कुछ संदेश देना चाहें श्रोताओं को?
1: गर्मी के दिनों में हमारे श्रोता भाइयों को एक ही बात बोलना चाहूंगा। गर्मी के दिनों में थोड़ा अभी गर्मी थोड़ा तेज है, कहीं भी निकले तो गमछा लेके निकले, पानी निकले के लेके निकले अपने हाथों से, और
0: जी,
1: गर्मी से बचत कीजिए। और मेरे मित्र लोग भी है, मुन्ना लाल पड्डे जी, धोरुआ राम साहू जी, करने वाला खाड़ से, ये मित्र लोग भी को इनको भी पसंद है, हमारा भी पसंद है।
0: जी
1: नाम बताऊं का?
0: जी बताइए, किस गीत की फरमाइश है आपकी?
1: दोस्ताना
0: दोस्ताना फिल्म का। जी
1: बने चाहे दुश्मन हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा।
0: जी काफी अच्छा गाना आपने बताया है।
1: ठीक है सर, नमस्कार।

0: नमस्कार
1: हेलो।
0: हरिवाणी
1: नमस्कार मैम
0: जी, हमारे श्रोताओं का शुभ नाम हम जान सकते
1: हैं? फागेश्वर मंडल, मैं फरत गांव जिला कोंडा गांव बस्तर छत्तीसगढ़ से।
0: अच्छा अच्छा, कोंडा गांव से बोल रहे हैं?
1: फरत गांव मैम, जिला कोंडा गांव।
0: फरत गांव, अच्छा अच्छा
1: जी।
0: आप क्या करते हैं फागेश्वर जी?
1: मैम मैं ड्राइवर हूँ और साथ ही साथ आर्टिस्ट भी हूँ, सोशल मीडिया के लिए काम करता हूँ, गीतकार हूँ, अपना जो क्षेत्रीय बोली हल भी है और गोंडी है उसके लिए काम करता हूँ।
0: अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो अच्छा, हलवी में गाना गाते हैं?
1: नहीं, लिखता हूँ मैम।
0: अच्छा, लिखते हैं
1: जी?
0: क्या बात है।
1: मैम मैं अधिकतर बस्तर के ऊपर ही गाना लिखा हूँ मैम।
0: अच्छा अच्छा,
1: और क्या बोलने से, मेरे जो सबसे ज्यादा एक सॉन्ग चला था बस्तर के ऊपर था।
0: हाँ, कौन सा?
1: हम तो सुंदर बस्तर, हम तो सुंदर बस्तर, टाटा मारी ऊपर भी एतवा से खूबे सुंदर, ऐसा करके सॉन्ग है।
0: हाँ, अच्छा, ये गाना आप लिखे थे?
1: जी मैम। और एक ए नोनी कोई तोरिन, तू चो खोपा चो कलगी, तू चो कर रहे तो कर धन, मचो मन के मोहे से, ऐसा करके गीत है मैम, उसको भी मैं लिखा हूँ।
0: वाह वाह, बहुत सुंदर है ये तो।
1: और एक बस्तर चो मैना करके गाना है मैम, उसको भी मैं ही लिखा हूँ।
0: अच्छा, आप तो बहुत अच्छे कलाकार निकले भागेश्वर जी।
1: मैम आकाशवाणी जगदलपुर का विशेष आभार है मैम मेरे ऊपर।
0: जी जी
1: जी मैम, मैं पढ़ाई जब से छोड़ा हूँ तब से रेडियो के ऊपर सबसे ज्यादा ध्यान दिया तो मैं सीख गया मैम।
0: अच्छा अच्छा, तो
1: जी
0: मतलब आप हमारा पूरा कार्यक्रम देखते हैं?
1: जी मैम, रेडियो सुन सुन के गीतकार बना हूँ मैम। मैं पहले से गीतकार नहीं था ना, पहले लिखता नहीं था।
0: हाँ,
1: जब मैं पढ़ाई छोड़ा उसके बाद रेडियो सुन सुन के लिखने सीखा हूँ मैं।
0: अच्छा अच्छा, ये
1: जी
0: तो बहुत अच्छी बात है। तो भागेश्वर जी, आप आज आपकी फरमाइश कौन सी गाने की है?
1: मैम, एक फिल्म है फटा पोस्टर निकले ही रहे, उसमें गीत है, मैं रंग शरबतों का तू मीठे गाठ का पानी, ऐसा करके गीत था मैं।
0: हाँ, ये तो बहुत अच्छा गाना सुना है आपने।
1: जी मैम
0: भागेश्वर जी, हम आपका पसंदीदा गाना हम जरूर सुनाएंगे। कॉल
1: जी
0: करने के
1: मैम
0: लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
1: जी, बहुत बहुत शुक्रिया मैम कार्यक्रम में शामिल किए और जगह दिए, इसलिए युवा प्रभाग का हृदय से आभार करता हूँ मैम।
0: जी, धन्यवाद धन्यवाद।

0: नमस्कार, हेलो युवाणी।
1: हेलो,
0: नमस्कार सर,
1: नमस्ते जी।
0: हम अपने श्रोता का शुभ नाम जान सकते हैं?
1: मैं मुन्ना लाल पटले बोल रहा हूँ, डोंगरिया मलाजखंड, जिला बालाघाट, मध्य प्रदेश।
0: अच्छा, मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं मुन्ना लाल जी। क्या
1: जी,
0: करते हैं अभी?
1: अभी शादी आए हैं
0: शादी आए हैं।
1: और वैसे पेशे से कृषि कार्य कर रहे हैं और छोटी सी स्वास्थ्य सेवा भी करता हूँ मैं।
0: अच्छा, स्वास्थ्य सेवा भी चलता है चलाते
1: जी,
0: हैं।
1: कौन बोल रहे हैं मैडम जी?
0: जी, मैं शीतल बघेल बोल रही हूँ।
1: अच्छा,
0: अच्छा, अभी शादी का माहौल तो बहुत चड़क भड़क चल रहा है, तो
1: जी
0: आप भी मतलब शादी एंजॉय कर रहे हैं।
1: हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी।
0: अच्छा मुन्ना लाल जी, आप कौन सी गीत सुनना चाहेंगे?
1: कुली नंबर वन का एक गीत है, मैं तो रास्ते से जा रहा था।
0: हाँ, जी, ये कुली नंबर वन तो बहुत फेमस फिल्म है।
1: सभी गीत अच्छे हैं उसके।
0: जी, आपने काफी अच्छा चुना है। तो
1: जी,
0: मुन्ना लाल जी, हम आपका पसंदीदा गीत जरूर सुनाएंगे।
1: मेरे मित्रों का नाम लेना चाहूंगा मैडम जी। लो,
0: जी, बोलिए ना।
1: कन्या दमोह से ध्रुवाराम साहू जी हैं, और गंडई से जागेश्वर देवांगन जी है, और छिंदवाड़ा से उदयभान ठाकरे, और बालाघाट से विनय श्रीवास्तव जी हैं।
0: जी, ये आपके
1: जी,
0: मित्र
1: ओके
0: हैं।
1: मैडम जी।
0: जी, धन्यवाद।

0: नमस्कार, हेलो युवाणी।
1: हेलो,
0: नमस्कार सर।
1: नमस्ते
0: जी, आप कहाँ से बोल रहे हैं?
1: बिरवा बांधा से बोल रहे हैं, योगेश योगेश जांगड़े
0: योगेश जांगड़े जी, इससे पहले
1: जी।
0: भी हमारी बातें हो चुकी है।
1: हाँ जी, हाँ जी,
0: इसका मतलब ये है कि आप हमारी हर प्रोग्राम सुनते हैं।
1: हाँ जी, हाँ जी,
0: तो योगेश जी, आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगता है?
1: बहुत अच्छा लगता है। लगभग 10-12 साल हो गए जुड़े हुए
0: अरे, आप तो काफी पुराने चाहने वाले हैं
1: जी।
0: जी। योगेश जी, आप क्या करते हैं अभी फिलहाल?
1: हमारा खेती बाड़ी का काम है।
0: अच्छा, खेती बाड़ी का काम है। तो बेमित्रा का मौसम कैसा है खेती के हिसाब से?
1: अभी तो गर्मी है बहुत
0: बहुत गर्मी है।
1: जी।
0: अच्छा, तो गर्मी में कौन सी फसल लगाए हैं आप?
1: अभी तो फसल नहीं है, सब खाली है खेत।
0: अच्छा, खाली रखे हैं।
1: हाँ जी, मतलब दो ही फसल लेते हैं, एक धान की और एक गेहूं की। फिर बरसात आएगा तो फिर धान लगाएंगे।
0: मतलब अभी से तैयारी चल रही होगी बरसात में
1: हाँ
0: लगाने
1: जी
0: की।
1: जी
0: अच्छा योगेश जी, आप आज कौन सी गाना सुनना चाहेंगे?
1: फिल्म डॉन है, पुरानी अमिताभ बच्चन की, उसमें गीत है अरे दीवानो मुझे पहचानो, ये गीत उपलब्ध होगा तो सुनवा देंगे।
0: जी योगेश जी, आपका पसंदीदा गाना हम जरूर सुनाएंगे। कॉल करने का धन्यवाद।

0: है कौन? अरे दीवानो मुझे पहचानो, जरा पहचानो, मैं हूँ डॉन।
1: आज तो अपने दोस्तों से बात करके उनके पसंदीदा गीत सुनवा कर हमें तो आनंद ही आ गया।
2: हाँ शीतल, सही कहा, और उम्मीद है हमारे दोस्तों को भी हमारा आज का कार्यक्रम जरूर पसंद आया होगा।
1: दोस्तों, अगर आप भी हमसे यूं ही बातें करना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 222666, यानी 222666, या 222160, यानी 222160 पर। इस नंबर से पहले STD कोड लगाना न भूले, जो है 07782, यानी 07782।
2: ध्यान रखिए दोस्तों, हमारी रिकॉर्डिंग प्रत्येक गुरुवार को 3:30 से 4 बजे के बीच होती है, जिसका प्रसारण शनिवार को किया जाता है, तो हमें कॉल करना ना भूलें।
1: इसी के साथ वक्त हो चुका है आप सभी से फिर विदा लेने का। कल शाम इसी समय फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। मैं यानी शीतल बघेल
2: और मैं आपका कंपियर दोस्त स्नेह श्रीवास्तव,
1: नमस्कार।

युवा श्रोताओं के कार्यक्रम युववाणी का प्रसारण अभी किया गया। ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। शाम के 6 बजने को हैं, थोड़ी ही देर में हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आकर्षिता सिंह। शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। राज्य में पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। भाजपा ने विधानसभा चुनाव में ऐतिहासिक जीत दर्ज करते हुए तृणमूल कांग्रेस के 15 साल के शासन का अंत कर दिया है। कोलकाता की ब्रिगेड परेड ग्राउंड में राज्यपाल आरएन रवि ने श्री शुभेंदु अधिकारी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित देश के कई राज्यों के मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए। दिलीप घोष, अग्निमित्रा पॉल, अशोक कीर्तनिया, खुदीराम टुडू और निशीत प्रमाणिक ने मंत्री के रूप में शपथ ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि श्री अधिकारी ने जनता से गहराई से जुड़े रहने और उनकी आकांक्षाओं को करीब से समझने वाले नेता के रूप में अपनी पहचान बनाई है। प्रधानमंत्री ने पांचों मंत्रियों को बधाई दी है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी के आदर्शों पर आधारित राजनीतिक दल को किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। श्री अधिकारी ने कहा कि गुरुदेव की जयंती के शुभ अवसर पर पार्टी ने शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया।
1: आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है देश के लिए, बंगाल के लिए। इसलिए प्रधानमंत्री का इच्छा था नया सरकार रविंद्र जयंती का दिन अपना कार्यकाल शुरू करे। इसलिए हम लोग प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व में गोभी गुरु को प्रणाम करते हुए आज संविधान को मानते हुए वोट टेकिंग किया।
0: आज गुरुदेव रवींद्रनाथ ठाकुर की 165वीं जयंती है। इस अवसर पर शांति निकेतन, विश्व भारती विश्वविद्यालय और बांग्लादेश सहित दुनिया भर में सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पोचिशे बोईशाख के अवसर पर गुरुदेव को श्रद्धांजलि अर्पित की। त्रिपुरा में भी गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर की जयंती सांस्कृतिक उत्साह के साथ मनाई गई। तमिलनाडु में बहुमत हासिल नहीं कर पाने के कारण नई सरकार के गठन में और देरी हो रही है। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव एम ए बेबी ने कहा कि राज्यपाल का ये कर्तव्य है कि सबसे बड़ी पार्टी को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया जाए। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्यपाल केंद्र के इशारों पर काम कर रही हैं। केरलम में भी नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। यूडीएफ की प्रमुख पार्टी कांग्रेस कल तक नेता की घोषणा कर सकती है। कांग्रेस सूत्रों ने बताया है कि विधायक दल के नेता के बारे में राज्य में पार्टी पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय नेतृत्व निर्णय लेगा। वहीं असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रहा है। शपथ ग्रहण समारोह मंगलवार को होगा। पार्टी विधायक दल की बैठक कल होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल तेलंगाना में लगभग 1535 करोड़ रुपए की रेलवे अवसंरचना परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे, जिनमें 118 किलोमीटर लंबी काजीपेट विजयवाड़ा मल्टी ट्रैकिंग परियोजना और काजीपेट रेल अंडर रेल बाईपास का उद्घाटन शामिल है। श्री मोदी कल शाम सिकंदराबाद के परेड ग्राउंड में एक जनसभा में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित भी करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री कल ही 2 दिन के गुजरात दौरे पर जाएंगे। दौरे के दूसरे दिन श्री मोदी सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित सोमनाथ अमृत महोत्सव में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना पीएमजीएसवाई की 25वीं वर्षगांठ पर कल मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के भैरुंदा में रजत जयंती समारोह का आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान करेंगे। इस दौरान पीएमजीवाई के चौथे चरण का भी शुभारंभ किया जाएगा। भारत ने कल ओडिशा के डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेड री एंट्री व्हीकल एमआईआरवी प्रणाली से लैस उन्नत अग्नि मिसाइल का सफल परीक्षण किया। एमआईआरवाई ऐसी तकनीक है जिससे एक ही मिसाइल कई लक्ष्यों को निशाना बना सकती है। चीन के शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में साहिल जाधव ने पुरुषों की व्यक्तिगत कंपाउंड स्पर्धा में कांस्य पदक जीत लिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है।

ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। शाम के 6:10 होने को हैं। कुछ ही पलों में छत्तीसगढ़ी में समाचार आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से रिले किया जाएगा।

0: छत्तीसगढ़ी में प्रादेशिक समाचार।
1: ये आकाशवाणी रायपुर है। छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन के संग प्रथा शुक्ला के जय जोहार। अब सुनाओ आज के प्रमुख समाचार। आज छत्तीसगढ़ के कतको न्यायालय में राष्ट्रीय लोक अदालत के होइस आयोजन। न्यायालय में लंबित मामला ला आपसी सहमति ले सुलझाए केस। प्रदेश के कतकोन जिला में आज हल्का ले मध्यम वर्षा होए के खबर। अवैया 24 घंटा में प्रदेश के कुछ जगह में तेज हवा गरेर के संग गिर सकत है पानी। औ बालोद औ गौरेला पेंड्रा मरवाही जिला में होइस आज बड़का रद्दा हादसा। ए घटना में कका भतीजा समेत 5 जिन मनखे के होगे मौत। अब समाचार विस्तार ले। छत्तीसगढ़ के कतकोन न्यायालय में आज राष्ट्रीय लोक अदालत के आयोजन हुईस। एबेरा में न्यायालय में लंबित मामला ला आपसी सहमति ले सुलझाए गईस, जेमा आपराधिक प्रकरण के संगे संग मोटर दुर्घटना प्रकरण, बिहाव ले जुड़े परेशानी, जलकर, संपत्ति कर, राजस्व संबंधित प्रकरण, ट्रैफिक चालान, बैंक और विद्युत संबंधित प्री लिटिगेशन के अलावा आबकारी ले संबंधित प्रकरण शामिल रहीस। उन्हें 21 ले 23 अगस्त के बीच सर्वोच्च न्यायालय परिसर में विशेष लोक अदालत लगा के लंबा बेरा के मामला सुनवाई करे जाही। पक्षकार मनला अपन लंबित मामला ला विशेष लोक अदालत में शामिल करे बर सर्वोच्च न्यायालय के वेबसाइट में 31 मई तक गूगल फारम में देना होही। छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत के आम और उपचुनई के घोषणा कर दे है। राज्य निर्वाचन आयुक्त अजय सिंह बताएं कि निर्वाचन प्रक्रिया 11 मई ले शुरू होगी, जो उनके 4 जून तक चलही। नामांकन पत्र 11 ले 18 मई तक भरे जाही, जेकर जांच 19 मई के होना है और नाव वापस लेके आखिरी तारीख 21 मई रखे गए हैं। मतदान एक चरण में 1 जून के होना है, जबकि परिणाम 4 जून के घोषित करे जाही। राज्य निर्वाचन आयुक्त बताई है कि नगरी निकाय चुनई ईवीएम ले दलीय आधार मा और पंचायत चुनई मत पेटी के माध्यम ले गैर दलीय आधार ले कराए जाही। चुनई वाले जगह मा आदर्श आचार संहिता लागू हो गए है। जानवा के अनुसार नगरी निकाय मा अध्यक्ष के 5 और पार्षद के 77 समेत कुल 82 पद पर चुनई होना है। उन्हें त्रिस्तरीय पंचायत में जनपद पंचायत सदस्य के 10, सरपंच के 82 और पंच के 1136 समेत कुल 1228 रिक्त पद पर चुनई कराई जाही। राज्य सरकार के सुशासन तिहार के चलत बलौदाबाजार भाटापारा जिला के ग्राम पंचायत झुमका में जन समस्या निवारण के शिविर के आयोजन हुईस। इस शिविर में राजस्व और उच्च शिक्षा मंत्री टंकराम वर्मा शामिल हुई। एबेरा में श्री वर्मा हितग्राही मनला ट्रैक्टर के चाबी, अनुदान राशि के चेक, प्रमाण पत्र और आने सामग्री भेंट करें। इस शिविर में 2300 ले ज्यादा आवेदन मिले रहीस, जिमाले 272 आवेदन के मौका मही निराकरण करेगी से। छत्तीसगढ़ में अभी मकान सूचीकरण और मकान के गिनती के काम चलत है। इही कड़ी में बलौदाबाजार भाटापारा जिला के कलेक्टर कुलदीप शर्मा आज मुंडा गांव में प्रगणक मन कोती ले करे जात जनगणना के काम के निरीक्षण करें। ओमन प्रगणक मन ले मोबाइल लेके खुदे एक झिन मकान मालिक के घर में पहुंच गए और मकान गणना संबंधित सबो जानकारी लेके डिजिटल गणना ला पूरा करीन है। नगरीय प्रशासन और विकास विभाग सबो निकाय ला पीए के पानी ले होवत परेशानी ला दूर करे के निर्देश दीन है। विभाग सबो निकाय ला बोरिंग बोरवेल मान मा एक हफ्ता मा जांच करके ठीक करे बर कहीन है। संगे संग टूटे पाइपलाइन ला तुरते सुधारे और नाली ले होके जाए वाला पाइपलाइन और घर के कनेक्शन ला घलो स्थानांतरित करे के निर्देश दीन है। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के चलत प्रदेश भर में हुए सामूहिक विवाह कार्यक्रम में 1300 ले ज्यादा जोड़ा मन के बिहाव हुईस। ए बिहाव राजधानी रायपुर समेत सबो जिला में पारंपरिक रीति रिवाज के संग करेगीस। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय नवविवाहित जोड़ा मन ला बधाई दीन है। उमन कहीन है कि योजना जरूरतमंद परिवार के बड़े चिंता ला दूर करत है। प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी रायपुर कोती ले पद्मश्री बरचयनित गोडबोले दंपत्ति लेगे विशेष भेंट वार्ता के प्रसारण काली बिहिन्या 10:30 बजे ले 11 बजे तक करे जाही। ए कार्यक्रम के प्रसारण छत्तीसगढ़ के आकाशवाणी के सबो केंद्र एके संग्रह करही। छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन आप मन आकाशवाणी रायपुर ले सुनत हो।
0: छत्तीसगढ़ के खबर ले है आपके वास्ता और खबर के विश्वसनीयता ले है हमार वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के संगे संग हमार समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के संग अपन मोबाइल में घलो सुन सकत हो। आकाशवाणी समाचार फेसबुक ट्विटर और यूट्यूब में घलो हावय। हमार फेसबुक पेज हरे छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमार यूट्यूब चैनल हरे छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के संगे संग आपके मोबाइल के माध्यम ले हम आप तक पहुँचत हन। छत्तीसगढ़ के हर खबर पर सुनत रहो आकाशवाणी समाचार।
1: अब आगु बढ़बो बाचे समाचार कोती। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह काली 10 मई के नई दिल्ली में देश में संभावित बाढ़ और गर्मी ले निपटे के तैयारी के समीक्षा करही। एमा केंद्र और राज्य सरकार के एजेंसी के बीच अच्छा समन्वय, NDRF ला सुदृढ़ बनाना और प्राकृतिक आपदा के बेरा शून्य जनहानि के दृष्टिकोण में सरलग ध्यान देना शामिल है। विश्व रेड क्रॉस दिवस में काली रायपुर में हुए राज्य स्तरीय कार्यक्रम में स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव शामिल हुईं। ए मौका में उमन कहीं कि निस्वार्थ भाव ले लोगन मन के सेवा करना ही सबले बड़का धर्म हरय और यही रेड क्रॉस के असली पहचान है। कार्यक्रम में लोक नृत्य, चित्रकला और नाटक प्रतियोगिता के विजेता मनला इनाम दे के संगे संग प्रदेश के 64 रेड क्रॉस स्वयं सेवक मनला प्रमाण पत्र देगीस। एकर अलावा अंगदान, रक्तदान, नेत्रदान और समाज सेवा में योगदान देवैया लोगन मन के संग अच्छा काम करैया कलेक्टर मनला घलो सम्मानित करेगीस। ए मौका में जूनियर और यूथ रेड क्रॉस सम्मेलन घलो होइस। उन्हें रायपुर जिला प्रशासन कोती ले प्रोजेक्ट छांव के चलत लोक भवन में स्वास्थ्य शिविर लगाएगीस जेमा सामान्य बीमारी के संगे संग हृदय रोग, कैंसर, किडनी, स्त्री रोग और आने गंभीर बीमारी के निशुल्क जांच करेगीस। बालोद जिला के डोंडी लोहारा थाना क्षेत्र में आज हुए एक रद्दा हादसा में 3 झीन जवान लड़का मन के मौत हो गए। पुलिस अब बताइन कि देवरी गांव ले ए तीनों झीन हा मोटरसाइकिल ले डोंडी लोहारा कोती जात रहीन, फिर इही बेरा खैरीडी गांव करा आगू ले आवत कार हा ए मोटरसाइकिल ला टक्कर मार दिस। टक्कर हा अतेक जोरदार हा रहीस कि ए तीनों जवान लड़का मन के मौका में ही मौत हो गए। इति सूचना मिलतेज पुलिस हा घटनास्थल में पहुंचीन और सबला पोस्टमार्टम पर भेज के मामला के जांच शुरू कर दे है। ओती गौरेला पिंडरा मरवाही जिला में घलो मझगवा गांव में एक ठिन तेज रफ्तार मोटरसाइकिल हा रद्दा तीर बैठे 3 जीन मनखेला टक्कर मार दीस, जेका से तीर कका और भतीजा के मौका में ही मौत हो गए और उन्हें एक जीन आने हा गंभीर रूप ले घायल हुए है। नारायणपुर जिला में आज सुरक्षा बल के टीम हा बड़का मात्रा में माओवादी सामान जब्त करे है। हमार संवाददाता हा बताइन कि सुरक्षा बल के टीम हा तलाशी अभियान के चलत तोके के जंगल में बड़का मात्रा में हथियार, गोला बारूद और IED बनाए के सामान जब्त करे है, जेमा 315 बोर राइफल, 12 बोर राइफल, रॉकेट लॉन्चर और जिंदा कारतूस शामिल है। एकांश आकाशवाणी रायपुर कोती ले प्रस्तुत कार्यक्रम जिले की चिट्ठी के प्रसारण काली संझा 6:05 ले 6:10 तक करे जाही। ए कार्यक्रम ला छत्तीसगढ़ के आकाशवाणी के सबो केंद्र रिले करही। ए बखत के अंक मा बालोद जिला के संबंध मा जानकारी दे जाही। अब जानन मौसम के हाल। राजधानी रायपुर समेत प्रदेश के कतकोन जिला में आज हल्का ले मध्यम वर्षा होए के खबर है। मौसम विभाग ले मिली जानकारी के अनुसार उत्तर पूर्वी मध्य प्रदेश में एक ठेन चक्रवात बने हुए हैं। उन्हें राजस्थान ले लेके मध्य प्रदेश और उत्तरी छत्तीसगढ़ ले लेत हुए झारखंड तक एक द्रोणिका विस्तारित है, जेकर से तीर मौसम में बदलाव आए है। मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर गायत्री वाणी है बताइन कि अवैया 24 घंटा में प्रदेश के कुछ जगह में तेज हवा गरेर के संग में पानी गिर सकत है। उन्हें 11 मई ले तापमान हा बढ़ सकत है। आखिर में प्रमुख समाचार एक घाव फिर। आज छत्तीसगढ़ के कतकोन न्यायालय में राष्ट्रीय लोक अदालत के हुई आयोजन, न्यायालय में लंबित मामला ला आपसी सहमति ले सुलझाए गए। प्रदेश के कतकोन जिला में आज हल्का ले मध्यम वर्षा होए के खबर। अवैया 24 घंटा में प्रदेश के कुछ जगह में तेज हवा गरेर के संग गिर सकत है पानी। औ बालोद और गौरेला पिंडरा मरवाही जिला में हुई आज बड़का रद्दा हादसा। एक घटना में कका भतीजा समेत 5 झीन मनखे के हो गए मौत। एकरे संग छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन इहे सिरावत है। जय जोहार।

0: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः जतिन शर्मा। आदौ मुख्य वार्ताः। शुभेन्दु अधिकारी पश्चिम बंगालस्य प्रथमः भाजपा मुख्यमंत्री संजातः। तेन सह पञ्चान्यैः मन्त्रिभिः अपि पदगोपनीयतायाः शपथं गृहीतम्। तमिलनाडु राज्ये नूतन सर्वकार रचनायै टीवीके दलेन प्रमाणितं यत् तेषां पार्श्वे 20+ विधायकानां समर्थनं वर्तते। राष्ट्रिय विधिक सेवा प्राधिकरणेन अशेषे हि देशे विवादानां सौहार्दपूर्ण रीत्या निस्तारणार्थं राष्ट्रिय लोक न्यायालयस्य आयोजनं विहितम्। विदेशमंत्री डॉ एस जयशंकर द्विपक्षीय सहयोगं सुदृढ़ीकर्तुं त्रिनिदाद एंड टोबैगो देशस्य प्रधानमंत्रिणा सह मेलनं साधितवान्। अपि च क्रिकेट स्पर्धा मालिकायां अद्य जयपुर नगरे राजस्थान रॉयल्स दलं गुजरात टाइटन्स दलेन सह क्रीडिष्यति। अथ वार्ताः विशदीकृत्य। शुभेन्दु अधिकारी पश्चिम बंगालस्य नूतन मुख्यमंत्रित्वेन शपथं गृहीतवान्। इत्थं पश्चिम बंगाल राज्ये प्रथमं तावत् भाजपा दलस्य प्रशासनं संघटितं जातम्। अवधेयं यत् भाजपा दलं विधानसभा निर्वाचनेषु ऐतिहासिकं जयं समर्ज्य तृणमूल कांग्रेस दलस्य 15-वर्षात्मकस्य शासनस्य अन्तं कृतवत्। कोलकाता नगरस्य ब्रिगेड परेड ग्राउंड इति स्थले राज्यपालः आर एन रविः श्री शुभेन्दु अधिकारिणं पदगोपनीयतायै प्रतिश्रावितवान्। तेन सह पञ्चान्यैः मन्त्रिभिः अपि पदगोपनीयतायाः शपथं गृहीतम्।
1: आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है देश के लिए, बंगाल के लिए। इसलिए प्रधानमंत्री का इच्छा था नया सरकार रविंद्र जयंती का दिन अपना कार्यकाल शुरू करे। इसलिए हम लोग प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व में गोभी गुरु को प्रणाम करते हुए आज संविधान को मानते हुए ओथ टेकिंग किया।
0: तमिलनाडु राज्ये नूतन सर्वकार रचनायै टीवीके दलेन प्रमाणितं यत् तेषां पार्श्वे 20+ विधायकानां समर्थनं वर्तते। 34-200 सदस्यानां विधानसभायां बहुमताय 18-100 विधायकाः आवश्यकाः आसन्। चेन्नई नगरे वार्ताहरैः सह भाषमाणः टीवीके दलस्य नेता अधव अर्जुनः अवदत् यत् वीसीके तथैव इण्डियन यूनियन मुस्लिम लीग इत्युभाभ्यां दलाभ्यां तस्मै पक्षाश्रयं विना समर्थनं प्रदत्तम्। अधुना निर्वाचने 88% आसनानि जित्वा टीवीके सर्वबृहत्तम दलत्वेन उद्भूतम्। यद्यपि दलनेता सी जी

0: राष्ट्रीय लोक न्यायालयस्य आयोजनं विदधाति। प्राधिकरणस्य सदस्य सचिव संजीव पांडेय आकाशवाणीं विज्ञापयत् यत् लोक न्यायालये सहमतेः योग्येषु आपराधिक प्रकरणेषु वादश्रवणं विधीयते। अस्य आयोजनस्य उद्देश्यं न्यायालयेषु लंबित प्रकरणानां सहमत्यानुसारं निस्तारणम् इति वर्तते। श्री पांडेयः अवोचत् यत् 23-2000 25-2000 यावत् द्वादश राष्ट्रिय लोक न्यायालयानां आयोजनं विधाय 26 कोटि प्रकरणानां समाधानम् अभवत्।
1: आज राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन पूरे देश में एक ही समय पे किया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि न्यायालय में लंबित मामलों का बोझ कम किया जाए तथा जो मामले जो विवाद न्यायालय में और प्री लिटिगेशन स्टेज पे लंबित है उनको समझौते के आधार पर निस्तारित किया जाए।
0: संस्कृत वार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज ऑन एआईआर चलदूरभाषीय तन्त्रांशे अपि समुपलब्धो भविष्यति। विदेशमन्त्री सुब्रह्मण्यम् जयशंकरः भारत त्रिनिदाद टोबैगो देशानां मिथः पारंपरिक संबंधानां प्रशंसाम् अकरोत्। त्रिनिदाद टोबैगो इत्यस्य विदेश तथा कैरिकॉम प्रकरणानां मन्त्रालयस्य समारोहे डॉ जयशंकरेण द्वयोः देशयोः प्रगाढ़ सांस्कृतिक संबंधानां अथ ऐतिहासिकतायाः उल्लेखं कृतम्। भारतस्य त्रिनिदाद टोबैगो अमुना सह परंपरागत रूपेण मैत्रीपूर्णाः संबंधाः वर्तन्ते। उभयोः देशयोः जनाः वेशभूषां क्रीडां आहार व्यवहारं च समेत्य परम्पराः यावत् नैकेषु विषयेषु साम्यं संददते। डॉ जयशंकरेण प्रधानमन्त्रिणा कमला प्रसाद विशेषवर्येण सह मेलनं विधाय द्विपक्षीय सहयोगं इतोपि सुदृढीकर्तुं चर्चा कृता। यात्रावधौ पर्यटनं विदेश कैरिकॉम मन्त्रालय भवनस्य सौरोर्जा संचालनं विविध परियोजनाः अथ च आयुर्वेद केन्द्रस्य स्थापनां समेत्य नैकेषु विषयेषु सहमतिः जाता। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी श्वः कर्णाटकस्य बेंगलुरुनगरे आर्ट ऑफ लिविंग इत्येतस्य संस्थानस्य 45वीं वर्षपूर्तिम् उपलक्ष्य आयोजयिष्यमाणे समारोहे सहभागितां करिष्यति। श्रीमोदी आर्ट ऑफ लिविंग इंटरनेशनल सेंटर इत्यत्र नवनिर्मितं ध्यानमन्दिरमपि उद्घाटयिष्यति। ततः परं प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी हैदराबादनगरे प्रायः 19,000 कोटितोप्यधिकरूप्यकाणाम् अनेकासां विकास परियोजनानां शिलान्यासं लोकार्पणं च करिष्यति। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी तत्र हैदराबाद पणजी आर्थिक वीथिकायां राष्ट्रिय राजमार्गस्य चतुः भागपरस्य निर्माणस्य आधारशिलामपि स्थापयिष्यति। तत्रैव प्रधानमन्त्री वारंगल स्थले पीएम मित्रा पार्क इत्येतस्य उद्यानस्य उद्घाटनं करिष्यति। सममेव श्रीमोदी हैदराबाद अत्याधुनिकं कर्करोगपरं चिकित्सालयमपि लोकार्पयिष्यति। अद्य गुरुदेवस्य रवीन्द्रनाथ ठाकुरस्य 65वीं जयन्ती वर्तते। दिनमिदं उपलक्ष्य शान्तिनिकेतनं विश्वभारती विश्वविद्यालयं अथ बांग्लादेशं समेत्य जगतः अनेकेषु स्थलेषु सांस्कृतिक कार्यक्रमाः समायोजिताः। उपराष्ट्रपतिः सीपी राधाकृष्णन वर्यः, प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी, गृहमन्त्री अमितशाहः अथ रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहः पोचिशे बोईशाख इत्येतस्य अवसरे गुरुदेवाय श्रद्धांजलिं समर्पितवन्तः। भारतीय रिजर्व बैंक इत्यनेन नियामक निर्देशानां तथा च केवाईसी मानकानां उल्लंघनमुद्दिश्य हिंदुजा हाउसिंग फाइनेंस सहैव यस बैंक इत्यनयोः उपरि मौद्रिक दण्डः आरोपितः। पृथक पृथक वक्तव्येषु भारतीय रिजर्व बैंकेन सूचितं यत् तेन हिंदुजा हाउसिंग फाइनेंस इत्यस्योपरि 1.80 लक्ष रूप्यकाणां दण्डः प्रस्थापितः। अपरत्र यस बैंक इत्यस्योपरि 1.30 लक्ष रूप्यकाणां दण्डः आरोपितः।

0: भारतीय ऋतुविज्ञान विभागेन आगामि पञ्च दिवसेषु केरलं राज्यस्य विविध जनपदेषु विद्युत्पातेन प्रचण्ड वायुना च सह अतिवृष्टेः पूर्वानुमानं प्रकटितम्। विभागेन अद्य राज्यस्य नवजनपदेषु पीतवर्णीया संचेतना अपि प्रसारिता। श्वः अपि संचेतना तावत् सप्तजनपदेषु यथावस्थं कार्यान्विता भविष्यति। प्रतिकूल वातावरणस्य कारणात् मत्स्याजीविभ्यः अद्य केरल लक्षद्वीपतटेषु गमनपरिहारार्थं परामर्शः प्रदत्तः। यद्यपि कर्णाटकतटेषु मत्स्यग्रहणार्थं तादृशः कश्चन प्रतिबन्धः एतावता नैव उपस्थापितः। आईपीएल क्रिकेट स्पर्धा मालिकायाम् अद्य राजस्थान रॉयल्स दलं गुजरात टाइटन्स दलेन सह क्रीडिष्यति। भारतीय समयानुसारेण इयं स्पर्धा तावत् सायं सार्धसप्तवादने जयपुरनगरे आरप्स्यते। अवधेयं यत् अंकतालिकायां राजस्थान दलं चतुर्थे गुजरात दलं च पंचमे स्थाने स्तः। इति वार्ताः।
1: ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: सुनो ना।
2: हाँ?
1: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
2: तो रोका किसने है? हाँ?
1: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
2: मुझसे।
1: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
2: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
1: पर उससे मेरा क्या फायदा?
2: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ।
1: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
2: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 870-001-4242।
1: ओ 870-001-4242। लो अभी फोन लगाता हूँ 870-001-4242 पर।
2: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
2: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
2: डायल कीजिए 870-001-4242।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें 870-001-4242। सुनो ना।
2: हाँ?
1: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
2: तो रोका किसने है? हाँ?
1: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
2: मुझसे।
1: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
2: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
1: पर उससे मेरा क्या फायदा?
2: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ।
1: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
2: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो 870-001-4242।
1: ओ 870-001-4242। लो अभी फोन लगाता हूँ 870-001-4242 पर।
2: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
1: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
2: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
1: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
2: बुकिंग है तो संपर्क करें 870-001-4242 पर।
1: 870-001-4242। सुनो ना।
2: हाँ?
1: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
2: तो रोका किसने है? हाँ?
1: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
2: मुझसे।
1: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
2: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
1: पर उससे मेरा क्या फायदा?
2: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ।
1: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
2: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो 870-001-4242।
1: ओ 870-001-4242। लो अभी फोन लगाता हूँ 870-001-4242 पर।
3: ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। शाम के 6:35 होने को हैं। प्रस्तुत है हल्बी लोकगीत, कलाकार हैं मधुराम और साथी।

अभी आप सुन रहे थे हल्बी लोकगीत, कलाकार थे मधुराम और साथी। ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। शाम के 6:44 हुए हैं। थोड़ी ही देर में प्रादेशिक समाचार हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से रिले करेंगे।

0: आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: उमेश, आजकल खूब छाए हो अखबार में नई नई रिपोर्टिंग के साथ।
2: हाँ यार, पत्रकार जो हूँ।
1: तो अब अगली रिपोर्टिंग किस पर कर रहे हो?
2: सुधीर, मुझे एक ऐसी 11 साल की लड़की के बारे में पता चला है जिससे एक परिवार वाले घर का सारा काम करवाते हैं और ऊपर से उस पर ज्यादती करते हैं। उसी पर एक स्टोरी बना रहा हूँ।
1: उमेश, स्टोरी बनाते समय इस बात का ध्यान रखना कि पीड़ित बालिका का नाम, पता, फोटो या स्कूल का पता या ऐसी कोई भी जानकारी सामने ना आए जिससे उसकी पहचान होती हो।
2: क्यों?
1: क्योंकि ऐसा करना बाल न्याय तथा बच्चों की देखभाल और उनके संरक्षण संबंधी संवैधानिक अधिनियम 21A का उल्लंघन है। और इस बात का ध्यान हमारे सभी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकारों को भी रखना है।
3: बाल अधिकार हनन से पीड़ित बच्चों की पहचान उजागर करने वाली जानकारी का प्रकाशन या प्रसारण न करें, क्योंकि इससे पीड़ित बच्चों के सामाजिक और मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है।
4: अरे गोपाल, जा तो सब्जी बाजार से नींबू और मिर्ची लेकर आना।
5: क्या बात है मालिक, आज आप नींबू और मिर्ची क्यों खा रहे हैं?
4: अरे पगले, खाने के लिए नहीं, दुकान में लगाने के लिए मंगवा रहा हूँ। तू तो देख रहा है, दिन भर बैठकर मक्खी मारता हूँ, 10 ग्राहक भी दुकान में नहीं आते।
5: आएंगे कैसे मालिक, हमारी दुकान का ठीक से प्रचार भी तो नहीं हो रहा है। मेरी मानिए तो आप भी अपनी दुकान का प्रचार आकाशवाणी से करवाइए, फिर देखिए हमारी दुकान में भी ग्राहकों की भीड़ लगेगी।
4: गोपाल, आज पहली बार तूने अक्लमंदी की बात की है रे।
5: क्यों नहीं मालिक, रेडियो जो सुनता हूँ।
3: अपनी दुकान, व्यापार या सेवा का प्रचार रेडियो से करवाइए। विज्ञापन बुक करने आकाशवाणी आइए।
6: बधाई हो सेठ जी, आपकी कंपनी की इस नई अगरबत्ती की खुशबू तो लाजवाब है।
5: अरे भाई साहब, आप देखते जाइए, अब तो ये अगरबत्ती घर घर में महकेगी। मैंने पूरे शहर में इसके विज्ञापन बंटवाए हैं।
7: क्यों भाई, सिर्फ शहर में? अरे गांव में नहीं महकेगी क्या?
5: महकना तो गांव में भी चाहिए, मगर गांव के लोगों को हमारी नई अगरबत्ती के बारे में पता कैसे चलेगा?
6: आकाशवाणी से।
3: गांव हो या शहर, अपनी दुकान या उत्पाद की जानकारी पहुंचाइए घर घर। आकाशवाणी आइए और विज्ञापन बुक करवाइए।
5: भाई साहब, आपके यहाँ कपड़ों पे 25% छूट अभी भी चल रही है ना?
6: हाँ हाँ जरूर, आपको किसने बताया?
5: मेरे रेडियो ने, वरना मैं तो इस डिस्काउंट से वंचित रह जाता।
3: विज्ञापन बुक करवाने आकाशवाणी आइए।
0: ये आकाशवाणी रायपुर है, प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। छत्तीसगढ़ के विभिन्न न्यायालयों में आज राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। महासमुंद पुलिस ने एलपीजी गैस के गबन और आपराधिक षड्यंत्र के मामले में जिला खाद्य अधिकारी सहित 3 लोगों को गिरफ्तार किया। आईपीएल T20 क्रिकेट मैच कल नवा रायपुर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और मुंबई इंडियंस के बीच खेला जाएगा। और रायपुर सहित प्रदेश के कई जिलों में आज हुई हल्की से मध्यम बारिश, मौसम विभाग ने कल कुछ स्थानों पर तेज हवाओं के साथ बारिश होने की जताई संभावना। छत्तीसगढ़ के विभिन्न न्यायालयों में आज राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। इस दौरान न्यायालयों में लंबित मामलों को आपसी सहमति से सुलझाया गया। इनमें आपराधिक प्रकरणों के साथ ही मोटर दुर्घटना प्रकरण, विवाह संबंधी विवाद, जलकर, संपत्ति कर, राजस्व संबंधी प्रकरण, ट्रैफिक चालान, बैंक और विद्युत संबंधी प्री लिटिगेशन के अलावा आबकारी से संबंधित प्रकरण शामिल थे। वहीं 21 से 23 अगस्त के बीच सर्वोच्च न्यायालय परिसर में विशेष लोक अदालत के माध्यम से भी लंबित मामलों की सुनवाई की जाएगी। पक्षकारों को अपने लंबित मामलों को विशेष लोक अदालत में शामिल करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय की वेबसाइट पर 31 मई तक गूगल फॉर्म में देना होगा। महासमुंद जिले में पुलिस ने एलपीजी गैस के गबन और आपराधिक षड्यंत्र के मामले में जिला खाद्य अधिकारी सहित 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। जिले के पुलिस अधीक्षक प्रभात कुमार ने आज जिला मुख्यालय में आयोजित एक पत्रकार वार्ता में बताया कि जिला खाद्य अधिकारी अजय यादव ने गैस एजेंसी संचालकों के साथ मिलकर जब्त किए गए 6 एलपीजी कैप्सूलों से लगभग 92 मीट्रिक टन गैस का गबन किया, जिसकी कीमत करीब 1.5 करोड़ रुपए आंकी गई है। इस मामले में पुलिस ने महासमुंद स्थित एक गैस एजेंसी के संचालक पंकज चंद्राकर और रायपुर के मनोज चौधरी को भी गिरफ्तार किया है। इनके पास से नकदी, मोबाइल और अन्य सामग्री जब्त की गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल 10 मई को नई दिल्ली में देश में संभावित बाढ़ और ग्रीष्म लहर से निपटने की तैयारियों की समीक्षा करेंगे। इसमें केंद्र और राज्य सरकार की एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय, एनडीआरएफ को सुदृढ़ बनाना और प्राकृतिक आपदाओं के दौरान शून्य जनहानि के दृष्टिकोण पर निरंतर ध्यान केंद्रित करना शामिल है। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री देश में बाढ़ के प्रभाव को कम करने के लिए किए जा रहे दीर्घकालिक उपायों की प्रगति की भी समीक्षा करेंगे। शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में आज राज्यपाल आरएन रवि ने श्री शुभेंदु को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सहित कई राज्यों के मुख्यमंत्री मौजूद थे। छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग ने नगरीय निकायों और त्रिस्तरीय पंचायतों के आम तथा उपचुनाव की घोषणा कर दी है। राज्य निर्वाचन आयुक्त अजय सिंह ने बताया कि निर्वाचन प्रक्रिया 11 मई से शुरू होगी, जो 4 जून तक चलेगी। नामांकन पत्र 11 से 18 मई तक भरे जाएंगे। नामांकन पत्रों की जांच 19 मई को की जाएगी। नाम वापस लेने की अंतिम तिथि 21 मई निर्धारित की गई है। मतदान एक ही चरण में 1 जून को होगा, जबकि परिणाम 4 जून को घोषित किए जाएंगे। राज्य निर्वाचन आयुक्त ने बताया कि नगरीय निकाय चुनाव ईवीएम से दलीय आधार पर और पंचायत चुनाव मतपेटी के माध्यम से गैर दलीय आधार पर कराए जाएंगे। चुनाव वाले क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। गौरतलब है कि नगरीय निकायों में अध्यक्ष के 5 और पार्षद के 77 सहित कुल 82 पदों पर चुनाव होगा। वहीं त्रिस्तरीय पंचायतों में जनपद पंचायत सदस्य के 10, सरपंच के 82 और पंच के 1136 सहित कुल 1228 रिक्त पदों के लिए चुनाव होगा। छत्तीसगढ़ में इन दिनों मकान सूचीकरण और मकानों की गणना का कार्य चल रहा है। इसी कड़ी में बलौदाबाजार भाटापारा जिले के कलेक्टर कुलदीप शर्मा ने आज ग्राम मुंडा में प्रगणकों द्वारा किए जा रहे जनगणना कार्य का निरीक्षण किया। कलेक्टर प्रगणक से मोबाइल लेकर स्वयं एक मकान मालिक के घर पहुंचे और मकान गणना संबंधी सभी जानकारी लेकर डिजिटल गणना पूरी की। नवा रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में कल 10 मई को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और मुंबई इंडियंस के बीच आईपीएल T20 क्रिकेट मैच खेला जाएगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। आईपीएल मैच को लेकर प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। पूरे स्टेडियम की निगरानी सीसीटीवी कैमरे से की जाएगी। इस बीच आज शाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और मुंबई इंडियंस के खिलाड़ियों ने अभ्यास किया। वहीं 13 मई को शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में ही रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच मुकाबला होगा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं।
8: छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार।
0: और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। प्रदेश में इन दिनों सुशासन तिहार चल रहा है। इस दौरान जगह जगह समाधान शिविर लगाकर लोगों की समस्याओं का मौके पर निराकरण किया जा रहा है। इसी कड़ी में बलौदाबाजार भाटापारा जिले की ग्राम पंचायत झुमका में जन समस्या निवारण शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में राजस्व और उच्च शिक्षा मंत्री टंकराम वर्मा शामिल हुए। इस दौरान श्री वर्मा ने हितग्राहियों को ट्रैक्टर की चाबी, अनुदान राशि के चेक, प्रमाण पत्र और अन्य सामग्रियां भेंट की। शिविर में 2300 से अधिक आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 272 आवेदनों का मौके पर ही निराकरण किया गया। प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी रायपुर द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम जिले की चिट्ठी का प्रसारण कल शाम 6:05 से 6:10 तक किया जाएगा। इस कार्यक्रम को छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के सभी केंद्र रिले करेंगे। इस बार के अंक में बालोद जिले की गतिविधियों के बारे में जानकारी दी जाएगी। प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी रायपुर द्वारा पद्मश्री के लिए चयनित गोडबोले दंपत्ति से ली गई विशेष भेंटवार्ता का प्रसारण कल सुबह 10:30 से 11:00 तक किया जाएगा। इस कार्यक्रम का प्रसारण छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के सभी केंद्र एक साथ करेंगे। बालोद जिले के डौंडीलोहारा थाना क्षेत्र में बीती रात हुए एक सड़क हादसे में 3 युवकों की मौत हो गई। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार ग्राम देवरी से तीनों युवक मोटरसाइकिल से डौंडीलोहारा की ओर जा रहे थे। इसी दौरान खैरीडी गांव के पास विपरीत दिशा से आ रही कार ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि तीनों युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना मिलने पर पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी है। उधर गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले के ग्राम बजगवा में एक तेज रफ्तार मोटरसाइकिल ने सड़क किनारे बैठे 3 लोगों को टक्कर मार दी। इस हादसे में चाचा और भतीजे की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं एक अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है। नगरीय प्रशासन और विकास विभाग ने सभी निकायों को पेयजल संकट के निवारण के निर्देश दिए हैं। विभाग ने सभी निकायों को हैंडपंप, बोरवेल और अन्य जल प्रदाय प्रणालियों की 1 सप्ताह में जांच कर मरम्मत करने को कहा है। साथ ही पाइपलाइन में लीकेज या टूट फूट को तत्काल सुधारने तथा नालियों से होकर गुजरने वाली पाइपलाइनों और हाउस सर्विस कनेक्शन को स्थानांतरित करने के भी निर्देश दिए हैं। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी द्वारा चयनित भारतीय वन सेवा परीक्षा 2025 की अंतिम चयन सूची कल जारी की गई। इसमें 148 अभ्यर्थियों का चयन हुआ है। इस परीक्षा में छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले की सुष्मिता सिंह का भी चयन हुआ है। उन्होंने 32वीं रैंक हासिल की है। और अब पेश है मौसम का हाल। आज राजधानी रायपुर, बिलासपुर, राजनांदगांव सहित कई जिलों में दोपहर बाद तेज हवा के साथ बारिश हुई है। कई स्थानों पर अंधड़ चलने से पेड़ गिरने और बिजली आपूर्ति प्रभावित होने की भी खबर है। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार उत्तर पूर्वी मध्य प्रदेश में एक चक्रवात बना हुआ है। वहीं राजस्थान से लेकर मध्य प्रदेश और उत्तरी छत्तीसगढ़ से होते हुए झारखंड तक एक द्रोणिका विस्तारित है। इसके असर से मौसम में बदलाव आया है। मौसम विज्ञानी डॉक्टर गायत्री वाणी ने बताया कि आगामी 24 घंटों के दौरान प्रदेश के कुछ स्थानों पर तेज हवाओं के साथ बारिश होने की संभावना है।
9: आज उत्तर और मध्य छत्तीसगढ़ में कुछ स्थानों पर मेघ गर्जन के साथ तेज हवा लगभग 50-60 किलोमीटर प्रति घंटा, बीच में गस्टिंग 70 किलोमीटर प्रति घंटा भी जाने की संभावना है, जिसका वजह से ऑरेंज अलर्ट जारी किया था बिलासपुर संभाग और रायपुर संभाग के 1-2 स्थानों पर। बाकी जिले जो है उत्तर और मध्य छत्तीसगढ़ ने येलो अलर्ट जारी किया है। 11 में से प्रदेश में मेघ गर्जन का गतिविधि कम होने का चांस है, जिसकी वजह से अधिकतम तापमान में 10 मई से लेकर आगामी 4 दिन तक क्रमिक वृद्धि आने की संभावना है।
0: नारायणपुर जिले में आज सुरक्षा बलों की टीम ने बड़ी मात्रा में माओवादी सामग्री बरामद की है। हमारे संवाददाता ने बताया कि सुरक्षा बलों की टीम ने तलाशी अभियान के दौरान तोके के जंगल में भारी मात्रा में हथियार, गोला बारूद और आईईडी बनाने की सामग्री बरामद की है। और अब कुछ समाचार संक्षेप में। रायगढ़ पुलिस ने ऑनलाइन क्रिकेट सट्टे के मामले में 3 अलग अलग ठिकानों पर छापामार कार्रवाई करते हुए 5 सटोरियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से 2,70,000 रूपये नकद, 6 मोबाइल और 1 नोट गिनने की मशीन के साथ ही डिजिटल साक्ष्य जब्त किए गए हैं। और रायगढ़ जिले के धर्मजयगढ़ वनमंडल के छाल क्षेत्र में स्थित घुघड़ा डैम में हाथी के एक बच्चे की डूबने से मौत हो गई। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। छत्तीसगढ़ के विभिन्न न्यायालयों में आज राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। महासमुंद पुलिस ने एलपीजी गैस के गबन और आपराधिक षड्यंत्र के मामले में जिला खाद्य अधिकारी सहित 3 लोगों को गिरफ्तार किया। आईपीएल T20 क्रिकेट मैच कल नवा रायपुर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और मुंबई इंडियंस के बीच खेला जाएगा। और रायपुर सहित प्रदेश के कई जिलों में आज हुई हल्की से मध्यम बारिश। मौसम विभाग ने कल कुछ स्थानों पर तेज हवाओं के साथ बारिश होने की जताई संभावना। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन हिंदी में कल सुबह 9:55 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।
10: ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। शाम के 7 बजने को है। प्रस्तुत है कार्यक्रम बस्तर की स्वर।

0: बस्तर के स्वर कार्यक्रम सुन तो सपाय गांवकारी दादा दीदी भाई बहन मन संगजोर या संगवारी मन के मैं कुलदर करें से राम राम। और नानी नानी पीला मन के बोले खुब्बे खुब्बे मैं आरु चुमा। गांवकारी दादा दीदी मन आलतू मन मन संग भेटो ले और पीला जिला मन के बोले सुरता कर ले। तो दादा दीदी मन पीला जिला घर सारने रले ने खूबे नंगत अरिक लागू आए। मान तरुण संग संग आमचो पीला जिला और भाई बहन मन सब के कहीं ना कहीं ज्ञान चोगोड़ सांग तो राय और बुता बहना सलाह सुतु राम के दे तो राय। तो दादा दीदी मन जसन पीला मनोला जाले आंगनबाड़ी जातो लाइक पीला मन आसो जाले मन के आंगनबाड़ी पटात राय और स्कूल जातो लाइक छो पीला मन के स्कूल पटात राय। यार पीला मन के बोले पढ़ तो लिख तो काजे अच्छा अनंगत नंगत गोट मन के सांग तो राय। तो दादा दीदी मन असने आमचो बस्तर ने कई प्रकार चो गीत होय से गोविंद होय से उसने पढ़ून लिखून जानला सुनला बोले नाम से पुरभानी गीत मन के बोले आमचो पीला जिला मन ये तो समय ने कुबे नंगत बचाऊ संगा दे जसन की जगार गीत होली रेला गीत होली और परन परन छू कहीं देवधामी चुपरेज बोल गीत रहे से सन गीत मन के बोले आमचू पीला जिला मन के सांग तोराय कहनी असन काय काय असन बीते मन के आगे छू। दादा दीदी मन तो गावला सोत जानला सोत अरु कोनी कोनी जानो जालून दादा दीदी मन आपलो पीला जिला मन के बोले समस्या मन शिकात रोत कसन बोले ने आम चो पुरवानी बीती चो गीत ये रुसु मन बोल नी बोलो को एक बोल बचाऊन संगा तो राय। तो गांव कारी दादा दीदी मन आगे काय सुंदर सोकार घर मन ने गांव पर आ चुकनी सियान सियनीन मन जाओ जाले भेड़ा उड़ाने में जाऊ कलाई उता काय मजा रसरसा गीत मन सुनाओ काय सुंदर लागत रहे असन गीत मन के बोले आम के बचाऊन संगा तो राय। तो दादा दीदी मन तो असने पीला मन बल सिकोत अरु जानू जानोत तो असने आमचू मोटरा ने नंगत गोट बोला साले नंगत गोट के बोले सुनो।
1: जीएसटी काउंसिल तोरु वाणिज्यिक कारोबार तगा टैक्स तुन और वेंट सरल बना कित तोड़ बस ट्रक और एम्बुलेंस गाड़ी की नगा इंजे ओंडोई लेकिन 18% टैक्स की सित तोड़ मुन्ने अद 28% मत्ता एचएस कोड क्लासिफिकेशन किन परवा की वलेवा गाड़ी ना सामान तपोरो इंजे ओंडोई 18% टैक्स की सित तोड़ इत बुताते यू सामान पाड़ा नोर और सामान तच इनोड़ा तिप्पाल कम आता और सामान तत्ता ओयना बूता सरल आयना उम्मीद मिंदे इलेक्ट्रिक गाड़ी न पोर्रो मुन्नीटा लेकिन 1% टैक्स मनता नेलता माटा इद मिंदे की इलेक्ट्रिक गाड़ी नगा बाताय बदलाव आयो कोंडे इलेक्ट्रिक गाड़ी इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल और इलेक्ट्रिक मूंड चक्का ना गाड़ी 1% जीएसटी मोला देने दोर किता अदेन के और सोबेर कम टैक्स तक गाड़ी बने मास मनता।
2: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सह कर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
3: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट 64 सालों की बुनियाद के साथ चेटिनाड सीमेंट द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
4: जीएसटी परिषद कमर्शियल बिजनेस के और सरल बनाली से बस ट्रक एम्बुलेंस ऊपरे एवर एक समान 18% कर लागे दे आगे ये 28% रहे। एचएस कोड क्लासिफिकेशन चो गिरधा करलो बिना ऑटो पार्ट्स ऊपरे एवर एक समान 18% कर होली से ये काम ले कल पुर्जा बनातो कंपनी अरु घेनतो लोग अरु सप्लायर्स चो चीपा गुचे दे एचई संगे कल पुर्जा चो अमरातो काम बले सरल होए दे। बिजली ले चलतो बीती गाड़ी ऊपरे 5% कर लागे दे ए मन्ने काही बदलाव नहीं होली से बिजली ले चलतो सपाई गाड़ी दुई चक्का बीती गाड़ी और तीन चक्का बीती गाड़ी ऊपरे 5% कर चो लाभ मिलते रह दे असन ले ये मन सपाई कम जीएसटी दर बीती गाड़ी मंचो विकल्प बनू रह दे।
2: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सह कर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
3: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट 64 सालों की बुनियाद के साथ चेटिनाड सीमेंट द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।

0: जाए निखार।
1: इफको नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
2: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सह कर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
3: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ। चेटिनाड सीमेंट, द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
4: जीएसटी से जुड़ी नई खबर ने आम लोगों और निवेशकों दोनों को राहत दी है। सबसे बड़ी राहत खाने पीने के सामान पर दी गई है। ब्रेड, रोटी और छेना पनीर पर अब कोई जीएसटी नहीं लगेगा। इसके अलावा 33 जरूरी दवाइयों के दाम कम कर दिए गए हैं, जिससे इलाज का खर्च भी घटेगा। लाइफ इंश्योरेंस पर भी पूरी तरह जीएसटी छूट दी गई है, जिससे पॉलिसी खरीदना अब और सस्ता हो जाएगा। छोटी कारों और 350 cc तक की बाइक पर जीएसटी 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है। इसका मतलब है कि गाड़ी या बाइक खरीदने का सपना अब पहले से सस्ता हो सकता है।
5: तो गांव का जी दादा दीदी मन ये नंगत गोट के सुन लो, मात्र मोडरानिया से लोग गाता, ये लोग गाता के सांग सो तो लोग गाता से सूरजमती और चंद्रदेव, तो ये मन के सांग सो तो मुक्ति बगे लारू बुद्धमती मोहरे, अलेमन छो गोट बात के सुनो।

मैं को सोना करुण मोये रे भाई पूजेंदे पूजवे बोले से मैं को सोना करुण मोये काय ननी पूजू आए बोले से।

तो दादा दीदी मन अले गीत की बोल सुनलु काय सुंदर गीत रेली। ये गीत के गौरला गेलमनी देवी और उनचो संगवारी मन, और फिर गीत आसे ये गीत के गावला सोत राजश्री देव और उनचो संगवारी मन। अले गीत की बोले सुनू।

तो गांवकारी दादा दीदी मन काय सुंदर गीत रेली, ये गीत के गौरला रासरी देवार उंचो संगवारी मन। दादा दीदी मन असने आमी समयाने येते रहूं दे, अरु काय सुंदर गोट बात के बोले सांगते रहूं दे, सुरता बोले कराते रहूं दे, अरु पिला जिला मन के बोले काय सुंदर अच्छा अच्छा ज्ञान जो गोट मन के सांगा, अरु सांग तो रहा है नी जान लो भी तिक सिखा तो रहा है, अरु बड़े पिला जिला मन के बोले पढ़ाई लिखाई बुता बहना सब आया है कि आम के सिखा तो रहा है दादा दीदी मन, अरु पिला मन बोले बुता बहना कर तो काजे ठग ओतोरनु आए। तो दादा दीदी मन

बस्तर की स्वर कार्यक्रम का प्रसारण अभी किया गया। ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। शाम के 7:30 हुए हैं। प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम फोन इन किसान वाणी।

0: फोनीन किसानवाणी सुनत सपाय खेतिहार दादा दीदी मन के मोचे बाटले जोहार। हाँ तो दादा दीदी मन एदाय बता रमरे से खेती बाड़ी करतोर असन ने आप मन बले बेड़ा काड़ा जतना उक मोरिया ला सौती और बता रमर तो के जतना तोर ची आए जतना लोर नहलो खाई बले काम बुता करुक नहीं होए असने ची अमी दान के बले डोलगी नहले बोरी ने बरुन संगालू से तो एदा है फिर तो काजी उन दान के बले निकराव पड़े उन दाना चाह से की नहीं आए फिर तो पूरे उनके बले जांच करू पड़े दे तेबे तो पता चले दे कि दान गाजा फूट तो लायक आसे की नहीं आए। तो यही सपाए जानकारी मन के सांग तो काजे आज आम चो स्टूडियो ने इलासोत वैज्ञानिक बल्लो ने कोजाखारी साहब श्री उपेंद्र कुमार नाग एमन कृषि विज्ञान केंद्र कांकेर ने पदस्थासो। तो अले या सुनंदकू सबले पहले कौन किसान दादा फोन कर सो जान।
1: हेलो पोनिन किसान वाणी।
2: हेलो।
1: हाँ हेलो पोनिन किसान वाणी दादा जोहार ना कौन बोल सी।
2: हाँ भैया जी जय जोहार।
1: हाँ जय जोहार
2: पवन कुमार सेन बोला था गंडी पंडरिया छत्तीसगढ़ ले।
1: हाँ तो आज जो नाम जो विषय आया है किसान वाणी जो भंडारित अनाज और उनके जो वहाँ कीट जो लगते हैं उनकी रोकथाम के लिए है और धान की खेती करने से पूर्व की तैयारी और साथ में उर्वरकों का जो प्रबंधन है उसका समुचित करना है इस संबंधित आप प्रश्न पूछ सकते हैं। तो आप सवाल करिए सर।
2: हाँ तो क्या है जिन अनाज के भंडारण करना है ना
1: जी
2: उसके विषय में क्या का जानकारी क्या का सावधानी रखना है और क्या का चीज के उपयोग करना है बारे में विस्तार पूर्वक जानना चाहते हम भैया
1: जी। तो आपके जो सवाल है उसको हमारे विशेषज्ञ महोदय जी सुन चुके हैं इसके उत्तर देंगे आपको आप उनके जवाब को सुन लीजिएगा।
2: बिल्कुल बिल्कुल।
3: जय जोहार
2: डॉक्टर साहब। जय जोहार
3: जी जी जी जी नमस्कार आप मल्ला आप मन
2: नमस्कार
3: प्रश्न है वो बहुत अच्छा है कब किस जो नुकसान होती हमार है ना जो हम खेत में से धान ला कटिंग करता ओकर बाद लंबे समय तक स्टोर करके रखे पड़ते दादा ओकर लिए आप मन सबसे पहली ये करो कि सबसे पहली नमी की प्रतिशत जो होते आप मन ला रखे पड़ी 8-10% कोई भी अनाज में धान हो चाहे दलहन फसल में जाओ उड़द मूंग कुल्थी में 8-10% तक नमी रखना पड़े और कभी के जो सीजन है अभी जो मौसम है गर्म गर्मी है ये समय आप अपन अनाज ला बाहर फ्लोर पे या पाल वगैरह बिछा के सुखा सकत हो साथ ही मतलब पता कैसे चली कि 8-10% तक के एक नमी पहुंची से ओकर लिए पड़ी आप मन जब बोला अपन दांतों से चाबो तो एक कट की आवाज है मतलब आप ला अनुमानित हो जाए कि वो 8-10% तक के ओकर नमी है पहुंच गए।
2: जी डॉक्टर साहब
3: जी ओकर बाद हमेशा याद रखो कि जब नीचे फ्लोर जैसे कि आप मन मंडी में देखे हो कि भूसा वगैरह के उपयोग करके जमीन से ऊपर रखे का है कि जमीन से नमी है खींच के धान अवशोषित करी और वो फिर से नमी प्राप्त कर ली तो चाहे नीचे पुआल या भूसी की बोरी या बदरा धान के बच्चे हुई बदरा पेरोसी वाला नीचे बिछा के ऊपर ऊपर धान रखो ऊपर से नमी की मात्रा का हुई जो जमीन से ऊपर चढ़ते धान में वो खत्म हो जाए रुक जाए है ना। तीसरा चीज दीवार से एक हाथ की दूरी में रखना है दीवार से बिल्कुल टच नहीं करना है ताकि काकी नमी दीवार से भी आते और नीचे से फर्श फ्लोर से भी आते नीचे पाल भी बिछा सकते हो नीचे फ्लोर में है ना
2: जी डॉक्टर।
3: साथ ही साथ आप एक प्रकार के दवाई मिलते हैं मार्केट में मिलते EDB कहते हैं जिला मन मना एथलीन डाई ब्रोमाइड के नाम से दवाई थे जिला मन EDP ई मतलब एथलीन डी मतलब डाई बी मतलब ब्रोमाइड EDP करके जो इंजेक्शन जैसे आते ट्यूब टाइप के आते छोटे छोटे कांच के ग्लास में मिलते सीसी में 3 ml प्रति क्विंटल के हिसाब से गेहूं जो दलहनी फसल है उनमें डाल सकते हो है ना और चीज है 5 ml प्रति क्विंटल के हिसाब से धान में डाल सकते हो वो जो जो आप जो जो थे ना अपन के वो EDP है एक कांच के सीसी जैसे में वो सीसी में पूरा कवर रहते काकर से कपड़ा से वो अंदर में हल्का सा तोड़ेल पड़ते ओकर से जो गैस निकली ब्रोमाइड गैस निकली वो धान में फैल जाए जेकर से धान में खपरा भी टल सूही जिला बोलते हो अपन ओकर रोकथाम हो जाए। साथ ही साथ आपला हर सप्ताह में निरीक्षण करेल पड़ी आप मन के धान के स्टोरेज रूम ला अंधेरा कमरा बनाएल पड़ी के जो दवाई है ओला 15 दिन के 20 दिन के अंतराल में जैसे लगते कि आप मन के 15 दिन जैसे कि ओकर असर कम होते 120 दिन के बाद आप मन होकर फिर से उपयोग कर सकते हो।
2: बहुत अच्छा जानकारी दो डॉक्टर साहब।
3: हाँ, साथ ही साथ आप ये भी कर सकते हो कि नीम के जो पत्ती अथे होकर पाउडर बना के सुखा के 10 प्रति केजी अन्न में मिला के स्टोर कर सकते हो।
2: जी जी,
3: वो सबसे अपन घरेलू उपचार रही एकर से आप कर सकते हो।
2: बहुत अच्छा जानकारी दे डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद दे तो आप मतलब।
1: जी, आपने भी फोन इन किसान वाणी में कॉल किया सर, इसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: आप मतलब भी बहुत बहुत धन्यवाद दे भैया, और आकाशवाणी जगदलपुर परिवार भी बहुत बहुत धन्यवाद दे कि हमारे किसान संगवारी मंदिर ऐसे सुंदर कार्यक्रम चालू करे कर सके।
1: जी
2: जी जी
1: जी, धन्यवाद सर। हेलो, फोन इन किसान वाणी।
4: फोन इन किसान वाणी।
1: हाँ दादा, जोहार ना, कौन बोल सी, कहाँ ले बोल सी?
4: जोहार ना।
1: हाँ जोहार,
4: मामरपाल दरबार गणपत बने ना।
1: हाँ गणपत बोल सी।
4: तो आज जो विषय का है ना।
1: हाँ, आज जो विषय आये ना है डोलगी ने बोरी ने आमी दान के संगान रुआ उनचो कीड़ा पड़ुआ, तो उसन कीड़ा पड़ ली से जाले उनचो दका रखा क्वेश्चन करतु रहा है, और उनची संगे संगे जो ने भी खेती किसानी चो मूर हो से दान फसल अधिकतर आमी लगाऊ बस्तरिया, तो दान जो खेती करते पूरे कसन तैयारी करते रहा है, और उनचो संगे संगे कत बात कसन लगाते रहा है उन हाय आज चो आम चो विषय। तो ये चलो जुड़ लो सवाल करू सकीस।
4: तो मैं ये पूछ तो कट लगा रहा है ना।
1: हाँ,
4: तो ये तो हम चो दान वगैरह लगा तो शुरुआत हो तो कसन लगाते रहा है शुरुआत में बोलून
1: विशेष गे महोदय जी।
3: दादा जय जोहार।
4: जय जोहार।
3: आप मन के प्रश्न बहुत अच्छा है। आप मन धान की खेती प्रारंभ करा तो है ना, अरे मैं आप मन जानना चाहता हूँ कि आप मन के पास सिंचाई के साधन है का? बोर
4: का साधन नहीं है, ऐसी जो बरसात का पानी होता है ना उसी से करते हैं।
3: दादा ये सब ठीक है, जो सिंचाई का साधन नहीं है तो उसके लिए अच्छा है कि सबसे अच्छा है कि आप एक अच्छी किस्म का पहले चुनाव करिएगा। बहुत सारी अच्छी किस्में हैं दादा, जैसे कि 1010 बोलते हैं जिसको, MTU 1010, तीसरा दूसरा है 64 किस्म है, तीसरा है एक विश्वविद्यालय उत्तराखंड कृषि विश्वविद्यालय द्वारा जो बनाई गई है उसमें है क्रम TCR, इसका भी उपयोग कर सकते हैं। और साथ ही साथ जैसे आप हाइब्रिड किस्म वगैरह लगा रहे हैं तो उसमें बाहर की बहुत सारी कंपनी है बायर वगैरह का, उन चीजों का उपयोग कर सकते हैं। धान खेती में सबसे पहले सर्वप्रथम आप बीजों का चयन करें, सबसे अच्छा बीज अच्छा कहीं से भी आप खरीदते हैं या आप रखे भी होंगे उनका सबसे पहले उपचार करिएगा। उपचार तो नमक का 17% घोल बना करके उपचार करेंगे। 17% नमक का घोल कैसे बनता है, आप क्या करिएगा एक प्लास्टिक बाल्टी लीजिएगा, उसमें आप क्या करेंगे पानी डालेंगे और नमक को घोलेंगे। जैसे 10 लीटर पानी में आप 1 किलो नमक डालेंगे तो 17% नहीं बनेगा। उसके बाद धीरे धीरे धीरे धीरे क्या करेंगे, देखते चले जाइएगा, आलू आलू आलू देख आलू जानते होंगे ना, आलू को डुबा कर देखिएगा तो सबसे पहले आलू क्या हो जाएगा उसमें डूब जाएगा। धीरे धीरे आप क्या करेंगे, एक समय आएगा कि आलू तैरने लगेगा पानी की ऊपरी सतह पर, पानी और नमक की मात्रा आप मिलाते चले जाएंगे। जैसे ही आप देखेंगे कि आलू पानी की सतह पर तैर रहा है तो आप क्या करिएगा नमक को मिलाना बंद कर दीजिएगा। अब उसके बाद जो अपना धान है, धान को आप क्या करिएगा उस प्लास्टिक बाल्टी में जिसमें आप 17% नमक का घोल बनाए हैं उसमें आप क्या करेंगे धान को डालेंगे। जितना भी बदरा धान है वो सब धान ऊपर तैरेगा पानी में, और जो अच्छे धान होते हैं वो निचली सतह पर बैठ जाएगा। आप अच्छे धान को बाहर निकाल करके अलग कर लेंगे और जो ऊपर तैर रहा है बदरा धान उसको अलग कर लेंगे। यह हो जाएगा आपके धान की अच्छे बीज की अलग से उपचारित। अब इसके बाद या तो आप नीम या करज का ब्रह्मास्त्र जिसको निमास्त्र ब्रह्मास्त्र या बीजामृत बोलते हैं है ना
1: जी।
3: ऐसे जो किसान बनाते हैं बीजामृत का भी हम उस पर लेप चढ़ा सकते हैं, या सबसे अच्छा गोबर गोमूत्र को जो आप घर में रखे होंगे और नीम ला के रखे होंगे उसका लेप कर देंगे जिसपे जो धान आपने उपचारित किया था, और खेतों में बुआई करेंगे। बुआई आप दो विधि से करेंगे, या तो आप थरहे के रूप में खेतों में डाल देते हैं या तो सीधा सीधा क्या करते हैं छिड़कवा विधि से खेतों में बुआई कर देते हैं
1: जी।
3: दूसरा चीज, बुआई करने के बाद क्या होगा, यह मिट्टी में जैसे ही पड़ेगा आसपास के एरिया में एक तो नमी बना के रखेगा गोबर या आप गोमूत्र का लेप छिड़कते हैं तो, जिसमें चींटी बीमारी जो मृदा में जनित रोग होते हैं उनका प्रतिरोध करने का काम करेगा और साथ ही साथ बीज को नमी प्रदान करेगा। इसके बाद आप क्या करिएगा, कुछ दिनों के वजह से बारिश नहीं होता है उस कंडीशन में भी यह नमी को बना के रखता है। साथ ही साथ बारिश होने के बाद जैसे ही धान निकलना प्रारंभ होगा उस समय आप या तो कीटनाशक या फफूंदनाशक दोनों का आप छिड़काव कर सकते हैं। उस समय कीटनाशक और फफूंदनाशक का छिड़काव नहीं करते हैं तो उस स्थिति में ये होगा आपका धान में ब्लास्ट बीमारी है वो मेड़ से धानों में आता है या जो कीट पतंगे रहते हैं वो आपके खेतों में जो रहते हैं मेड़ में वो आपके धान के फसल पर आ जाते हैं, उनको रोकने के लिए आप और फफूंदनाशक का उपयोग कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारे कुछ ऐसे खाद हैं उर्वरक हैं है ना जिनका उपयोग आप उस समय भी कर सकते हैं जैसे कि दीजिए, लेकिन उस स्थिति में आपको जब कब होना चाहिए पानी आपके पास होना चाहिए। यदि आपके पास अभी बता रहे हैं जैसे पानी नहीं है लेकिन ब्यासी करते समय यदि आपके खेत में पानी भरा हुआ मिल जाए या पानी ठहरता हो उस स्थिति में आप बीजिए मतलब ब्लू ग्रीन एल्गी का उपयोग कर सकते हैं जो आपके नत्रजन और आपके खेतों में उर्वरक शक्ति के साथ साथ नत्रजन को बढ़ाने का काम करेगा। ये आप ऐसा कर सकते हैं बीजिए का उपयोग करके है ना, जो आपकी लागत डीएपी यूरिया है कमी करेगा। खाद के लिए आप सबसे पहले जब खेत की जुताई करते हैं उस समय या तो डीएपी उपस्थित हो तो उस समय आप डीएपी का छिड़काव कर सकते हैं। यदि डीएपी की मात्रा उस समय आपको नहीं मिलता है तो आप क्या करिएगा बाद में यूरिया और पोटाश की मात्रा को बढ़ा करके छिड़काव करेगा, लेकिन बाद में डीएपी का उपयोग नहीं करेंगे धान की बुआई के बाद। ठीक है दादा?
4: जी जी ठीक है। फिर मैं कितनी जानकारी दर्शक ली
1: अले तुम्ही आमच्या आकाशवाणीने फोन करला याची खूप खूप धन्यवाद।
4: जुआर ना
1: अले जुआर। हॅलो फोन इन किसान वाणी।
5: हॅलो फोन इन किसान वाणी। जय जोहार सर।
1: हां जय जोहार। कोण कहाले बोल साथ?
5: मैं सागरा सोमनी जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से नारायण लाल साहू बोला हूँ सर।
1: हाँ नारायण लाल साहू साहब जगदलपुर आकाशवाणी तुमचे स्वागत है। आज ही फोन इन किसान वाणी जो विषय आये उन्हें भंडारित अनाज के हानिकारक कीटों से काम और इसके साथ है उर्वरकों का प्रबंधन और उसका समुचित उपयोग।
5: बरसाती में फसल बोना है कौन सा किस्म के धान बोना है वैसे पूछे वाला उर्वरक कैसे टाइप के डालना है उसका पद्धति बताते हो कहाँ से?
1: हाँ हाँ हाँ हाँ ठीक है। हम जो विशेषज्ञ महोदय तुम जो सवाल के सुन ला उनमें जवाब दे दे तुम्हें लाइन में बनू रहा।
3: नमस्कार महोदय जी।
5: हाँ नमस्कार सर।
3: नमस्कार। तो धान के आप मन अच्छा किस्म के चुनाव करो जेमे किस्म रही ओमे बहुत अच्छा जो अभी तक के रिजल्ट मन देखा था धान जेमे हमेशा अच्छा रिजल्ट दे मल्ला ओमे हजार एक के है।
6: दिस कॉल इज नाउ बीइंग रिकॉर्डेड।
3: जरा हमन एमटीयू 1010 MT1001 का था साथ में ओकर क्षमता के बराबर ही इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय द्वारा एक नया किस्म विक्रम पीसीआर के है साथ ही धान एक 1919 भी है। साथ साथ हम और भी उसी जो अच्छा उत्पादन है ना मैं जान तो हमन ना है ना और इसके अलावा जैसे कुछ आप मन सुगंधित करना चाहते हो है ना सुगंधित धान के किस्मों में सुगंधित धान में साथ ही साथ दुबराज सिलेक्शन 1 के नाम से जो दुबराज किस्म रही से आप मन आके नगरी में बहुत अच्छा
5: सोनम भी अच्छा बनेगा सर
3: सिजेंटा के है 4001 ऐसे बहुत सारे हाइब्रिड किस्म में है लेकिन कहीं ये होते कि हाइब्रिड किस्म में बीमारी और होकर खाद के प्रबंधन करना बहुत ही मुश्किल रहते कब की वो हाइब्रिड किस्म ऐसे हो जाते संकर किस्म जरा बहुत अधिक मात्रा में खाद और खाद के साथ साथ कीड़े और बीमारी के बचाए के भी प्रबंधन करे पड़ते लेकिन ये जो हमन पुराना धान है जेकर मन हमन नाम ले आप मन ला जो आप मन लगा भी रहे हो 64-18-10 ये धान ऐसा कि ये बिल्कुल आप मन के उत्पादन ला जति का मन उम्मीद करत भले का से कम है लेकिन बीमारी के प्रति सहनशीलता हारे, रोग के प्रति प्रतिरोधक क्षमता रखते, एक में कोई भी रोग बीमारी लगने पे नुकसान ज्यादा नहीं हुआ। लेकिन एक ही हमन उल्टा बात करन, जैसे कि हमार शंकर किस्म में जब प्राइवेट कंपनी द्वारा जो निर्मित है धान, उनमें कई कई बार ऐसे होते कि उत्पादन कई बार बहुत अच्छा मिल जाते, लेकिन कई बार बीमारी के प्रकोप होते तो लामन नियंत्रण करने में थोड़ा सा समस्या का सामना करना पड़ता है। कि आप खाद और के उपयोग करते हो तो आप मन हमेशा जो अपन माटी के परीक्षण करवा सकते हो, आपके नजदीकी जो भी परीक्षण लैब है, प्रयोगशाला लैब है, वहाँ आप अपन माटी ला छोड़ के ओकर कतिक में उर्वरक क्षमता है ओकर आप मन जांच कर सकत हो। साथ ही आप मन ये समय हमार माटी में उर्वरक जो में मुख्य पोषक तत्व कथन जलामन नत्रजन फास्फोरस है ना स्फूर्ति और पोटास, ये तीन मेजर मानथन। लेकिन आजकल जो जिंक और सल्फर हमन मन बहुत महत्वपूर्ण बोला जाता है, क्या कि आजकल ऐसे है कि हमारे खेतों में दिनों दिन सल्फर और जिंक जो सूक्ष्म पोषक तत्व है वो कर कमी होते। आप बिल्कुल जो सल्फर और जिंक जो गंधक और जिंक बोलथन ओला भी आप मन खेत में पहली शुरुआती समय जब डीएपी के उपयोग करते हो बीज बुआई से पहले वो समय सल्फर के भी उपयोग करो। आप मन ला जिंक के जो कमी होते सल्फर के कमी होते सकत हो। साथ ही साथ खाद के समुचित उपयोग मात्रा कर सकत हो। यदि आप मन के पास सिंचाई के साधन हो ही, तो आप मन हरी खाद सिंचाई के साधन है महोदय आप मन के पास, वो आप मन सनई सुने हो, सनई हो गए और ढेंचा हो गए, ये एक हरी खाद के रूप में एक सनई, यदि सनई आप मन ला या ढेंचा मिल जाए तो 8-10 किलो प्रति एकड़ सनई और ढेंचा है वो 30 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से आप मन 45 से 60 दिन पहली बुआई कर लो। और उकर बाद जैसे ही सनई बड़ी तो आप मन क्या करना होला, जब खेत ला मता थो बड़े जैसे सनई और ढेंचा है ना वो बड़े हो जा रही, उकर बाद जब बोला आप मन मिट्टी में दबा हो तो वो एक हरा खाद के रूप में काम करी। क्या होते कि हमारे खेत के ऑर्गेनिक क्षमता है मिट्टी की ऑर्गेनिक मात्रा, और जब हम सनई ढेंचा ला का करथन मिट्टी में दबथन या पलटथन तो वो हमारा 20 से 25 किलो नत्रजन हमारे खेत में छोड़ के जाते। ओकर से हमन मल्ला का होते हमन जो डीएपी यूरिया देवा था वो हमारे मात्रा धान पर लागत पर कम पड़ता, साथ ही मिट्टी में पूरा पना ठीक है महोदय। तो हमन के पास यदि सनई और ढेंचा के बीज की जरूरत हुई तो वो मार्केट में भी मिल जाते, नहीं मिले आप संपर्क भी कर सकते हो कृषि विज्ञान केंद्र धमतरी में भी काकेर है ना हमारे उपलब्ध है सनई ढेंचा के बीज, हम आप मल्ला उपलब्ध करवा देवो।
7: ठीक है बहुत बहुत धन्यवाद सर, इतना जानकारी गजब की जानकारी दे बर आप मन धन्यवाद से जानकारी दे सर। आपका वासी की बोल रहा था सर?
1: जी बिल्कुल मैं जयराम का वासी बोल रहा हूँ सर।
7: अच्छा बहुत बहुत धन्यवाद सर अच्छा जानकारी देने के लिए, और विशेषज्ञ जी को भी सादर बधाई हो।
1: जी
7: जी सर
1: जी ठीक है सर, आपने फोन इन किसान वाणी में कॉल किया इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
7: धन्यवाद सर।
1: हेलो फोन इन किसान वाणी।
8: हेलो फोन इन किसान वाणी।
1: जी नमस्कार सर, कौन कहाँ से बोल रहे हैं?
8: आदरणीय जयराम कवासी जी नमस्कार।
1: नमस्कार सर
8: जी, मैं ग्राम जुनवानी स्मृति नगर जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से सुरित रमेश साहू बोल रहा हूँ। आदरणीय
1: स्वागत है आज के प्रोग्राम में आपका।
8: जी धन्यवाद सर जी।
1: जी आज हमारा जो विषय है वो है भंडारित अनाज के हानिकारक कीट के रोकथाम, उसके साथ साथ धान की खेती की जो पूर्व तैयारी है और उसी के साथ साथ उर्वरकों का प्रबंधन, साथ में उसका जो उपयोग कैसे करना है, इस बारे में आपके पास कोई सवाल हो आपके विचार में आपके मन में तो आप कर सकते हैं। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं उपेंद्र कुमार नाग जी, पौध रोग विशेषज्ञ कृषि विज्ञान केंद्र कांकेर से।
8: उपेंद्र कुमार नाग साहब ना?
1: जी जी
3: नमस्कार।
8: आदरणीय उपेंद्र कुमार नाग साहब सादर नमस्कार, सादर अभिवादन।
3: जी जी जी नमस्कार नमस्कार।
8: क्या है आदरणीय, मेरा प्रश्न यही है कि हम लोग अनाज का भंडारण कर लेते हैं करने को तो, पर उसमें क्या है जो हानिकारक जो कीट जो होता है जो अनाज को नुकसान पहुंचाते हैं, इसका रोकथाम कैसे करना है? और उसी तरह जो हम जो है खाद जो लाते हैं, खाद को बीज को उसको भी हम भंडारित करके रख देते हैं छल्ली करके, छल्ली लगा करके दीवार के सहारे या दीवार से थोड़ा हट करके, तो उसको भी हानिकारक जो जैसे चूहे वगैरह हो गए या फिर कीटाणु ये सब नुकसान पहुंचाते हैं। और दूसरी बात यह है कि अभी धान जैसा बोना है तो फसल की तैयारी किस तरह करना है?
1: आपने बहुत ही बेहतरीन सवाल किए हैं सर, आपके जो सवाल हैं उनका उत्तर हमारे विशेषज्ञ महोदय देंगे।
3: महोदय जी, सबसे पहले तो मैं भंडारण के जो आपका प्रश्न है उसके बारे में आपसे चर्चा करूंगा।
8: जी जी
3: महोदय जी, एक तो भंडारण में सबसे महत्वपूर्ण रहता है नमी।
8: जी जी,
3: आपके कोई भी अनाज हो गए जैसे कि चना, उड़द, मूंग, अरहर और धान, ये अन्य फसलों में धान, गेहूँ, इसमें नमी की मात्रा यदि अधिक हो तो ये सबसे ज्यादा फफूंद और कीड़ों के द्वारा प्रभावित किए जाते हैं।
8: जी जी,
3: नमी की प्रतिशत मात्रा आप 8-10% जो एक नमी स्तर, जो उच्चतम अच्छा या नमी स्तर कहा जाए, वो अनाज में होना चाहिए ताकि वो लंबे समय तक भंडारित किया जा सकता है।
8: जी सर,
3: आप अभी जो मौसम है गर्मी का, उसमें अच्छे से धानों को फ्लोर में, फर्श में, साफ सुथरे फर्श में सुखाते हैं और सुखाने के बाद इसकी नमी परीक्षण के लिए आप अपने दांतों से उसको काट के देखेंगे, है ना, चबा के देखेंगे तो आवाज आनी चाहिए। यह प्रतिशत बताता है कि हमारे अन्न में 8-10% की नमी आ गई है। उसके बाद भंडारण करने के लिए कोई भी कमरे या गोदाम का हम उपयोग करते हैं, या कई बार ऐसा होता है महोदय कि हमारे घर में बीन बनाया जाता था, जो बांस के टोकनी जैसे बड़े बड़े बीन बनते थे।
8: जी जी,
3: उपयोग कर सकते हैं आप। साथ ही साथ क्या किया जाता था कि गोदामों में जब आप अनाज का भंडारण करते हैं तो दीवाल में आप इंसेक्टिसाइड के साथ लिपाई कर सकते हैं, क्लोरोपाइरीफास जो केमिकल या आता है उसका उपयोग करके दीवाल की पोताई कर दें, या फिटकरी सुने होंगे आप।
8: जी जी जी
3: हाँ, फिटकरी को चूने के साथ मिला करके खुदाई करने से फफूंद और जो कीड़े के जो घोंसले दीवालों पे रहते हैं उससे रोक जाएगा। साथ ही साथ कि हम दीवाल और हमारे फर्श से नमी चढ़कर हमारे धान में आ जाता है, जब हम सीधा सीधा उसको जमीन पे रख देते तो
8: जी
3: शोषित करता है। इसके लिए आप धान को या तो किसी जो हमारा भूसा रहता है धान के बाद बचा हुआ भूसा,
8: जी जी,
3: उसी जिसको बोलते हैं धान को ओसाई करने के बाद जो बच जाता है भूसा या पेरोसी, उसको बोरे में रख करके या रेत का बोरे में भर करके आप ऊपर में चिल्ली पाल बिछा करके उस अनाज को स्टोर करके रख सकते हैं और एक पाल ढक दीजिए।
8: जी,
3: अंधेरा होना चाहिए, ज्यादा रोशनी नहीं आने चाहिए, थोड़ा कोशिश करिए कि हवा का आदान प्रदान भी उसमें कम हो, कुछ ऐसे छेद या खिड़कियां रहती है उसको बंद कर देवे दरवाजे के नीचे, बोरे वगैरह डाल के, जिससे कि

0: जी सर
1: का प्रभाव प्रकोप कम हो जाता है।
0: जी
1: सर, कुछ ऐसे केमिकल भी हमारे बाजार में उपलब्ध हैं जिसको हम लोग एथाइल ब्रोमाइड के नाम से जानते हैं। पहले फोरेट वगैरह का उपयोग करते थे लेकिन वो अभी बंद हो चुका है। कई के
0: जी
1: सल्फास पाउडर को भी उपयोग करते थे, सल्फास टेबलेट का उपयोग करते थे, वो भी अभी बैन है। अभी सबसे अच्छा भी आ रहा है EDB, एथाइल डाइब्रोमाइड। इसका
0: जी
1: आप 5 ml प्रति क्विंटल अनाज के साथ कर सकते हैं, चाहे वो
0: जी
1: धान हो या उड़द हो या मूंग हो, जो भी आप फसल के में स्टोर कर रहे हैं। तीसरा चीज, आप उसको अच्छी तरह से ढक देंगे और हर 15 से 30 दिन बाद आप उसका निरीक्षण करेंगे
0: जी।
1: आपका धान जो स्टोर करके रखे हैं वह निगरानी में रहेगा और सुरक्षित रहेगा।
0: जी
1: सर, आप ऐसा नहीं करते हैं या कुछ चीजें मार्केट में उपलब्ध नहीं होते वगैरह या रासायनिक दवाइयाँ, इसके बदले में आप नीम के पत्ती को सुखा के पाउडर बना के 10 ग्राम प्रति किलो के हिसाब से मिक्सअप करके बोरों में भर के सिलाई करके आप स्टोर कर सकते हैं। लेकिन हमेशा याद रखिएगा महोदय कि
0: जी, जी, जी,
1: और दीवार से सटा हुआ नहीं होना चाहिए, क्योंकि
0: दीवार
1: और फर्श से सटेगा तो वो नमी को अपनी ओर खींचेगा और कीट और बीमारियों का प्रकोप बढ़ता चलेगा।
0: जी जी सर, एक और प्रश्न था सर, ये मिट्टी परीक्षण कैसे करवानी है सर, इसके बारे में थोड़ा बताएंगे।
1: परीक्षण महोदय, आप जिला कौन सा बताए?
0: दुर्ग जिला है आदरणीय।
1: दुर्ग जिला, दुर्ग जिला में आपके यहाँ सहायक संचालक कृषि होंगे महोदय?
0: है ना, है ना, है आदरणीय।
1: सहायक संचालक कृषि में आज क्या हर सहायक संचालक जो जिले में है वहाँ एक मृदा परीक्षण लैब स्थापित किया गया है।
0: जी जी,
1: मृदा परीक्षण के लिए मृदा एक ऐसा ये रहता है कि कई बार जो ग्रामीण विस्तार अधिकारी रहता है उनके पास समय नहीं रहता काम काज के वजह से, तो उसके लिए हम मिट्टी ले जा सकते।
0: जी सर, जी
1: पुनः लेने के लिए हमेशा आप ध्यान रखिएगा, खेत के मेड़ से के किनारे से नहीं लीजिएगा, पेड़ के छाव से नहीं लीजिएगा, और जहाँ पास आप खाद का इकट्ठा करके रखे हैं वहाँ से नहीं लीजिएगा। बाकी जो बचे हुए शेष भाग अपने एरिया है वहाँ से को कलेक्ट करके आप लेके जा 5 या 6 जगह से कलेक्ट करिएगा और उसमें आधा किलो बनाइएगा, और आधा किलो बना करके उसमें आपका जमीन का खसरा नंबर, आपका नाम, उसमें रकबा और कब आप उस मिट्टी को कलेक्ट किए हैं, उसकी तारीख इतना आप और कौन सा फसल लगाए थे पहले, ये सारे लिख के कागज में डाल के आप सहायक कृषि के पास जो लैब रहता है वहाँ सकते हैं महोदय।
0: जी जी,
1: वो आपको नमूना मिट्टी के नमूने की से परीक्षण करके आपको सभी चीज जानकारी देंगे कि आपके खेत में ऑर्गेनिक कितनी है, एंड नत्रजन कितना है, फास्फोरस कितना है, पोटास कितना है, ये सभी का।
0: जी सर, जी सर,
2: ठीक है। सुरेश साहू जी,
0: बहुत अच्छी जानकारी हमारे विशेषज्ञ महोदय ने मुझे दिए, इसके लिए हृदय से आभारी हूँ। साथ ही साथ हमारे उद्घोषक भाई साहब श्री जयराम कवासी जी, आपका भी मैं हृदय से आभारी हूँ आदरणीय
2: जी। धन्यवाद सर, आपने आकाशवाणी में कॉल किया, इसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद सर जी।
3: दादा दीदी मन तुम्ही बले खेती किसानी ले जुड़ लो सवाल मन पूछुक चाहे साथ, तो रोजे मंगरार दिने 3:30 बजे ले दरुन 4 बजे चो मंजीने ये नंबर मन ने फोन करू सकास। नंबर आए 0778222266। हाले तेबे एदाय मके दिया फोन इन किसानवाणी कार्यक्रम ले विदा, तुम्ही सपा की सेवा जोहार।

0: प्रायोजित कार्यक्रम फोन इन किसान वाणी का प्रसारण अभी किया गया। ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। रात्रि के 8 बजने को हैं। जो नियोजन में प्रस्तुत है भत्री नाट गीत, कलाकार हैं नीलू राम और साथी।
1: आज यो दे गला को।

0: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सहकर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
1: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ। चेटिनाड सीमेंट, द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।

0: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सह कर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
1: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ। चेटिनाड सीमेंट, द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।

0: जो न्यूजर में आप सुन रहे थे भत्री नाटगीत, कलाकार थे नीलू राम और साथी। ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। रात्रि के 8:30 होने को हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम पीलामन काजे गोट। प्रस्तुति है बंसी राम कश्यप की।
1: पीला मन काजे गोड कार्यक्रम सुनतोर सब पाए गांव करी भाई बहन मन के मोचो बाटले खुबे खुबे माया और लाड़। दका भाई बहन मन, आमी रोजे दिना चौसन तुमचो काजे।

नंगट नंगट गोड मन धरून इवाव उसनी आजी बले मैं तुमचो काजे ऋतु मंचो नंगट गोड धरून अमर ले से आले मैं मूर करें से सुनावे। ऋतु चक्र बोलने ने मौसम चो बदलतो समय आए एक बरक ने मौसम कितलो वार बदले से कसन ने बदले से बल्ले ने पृथ्वी बेर चो बाहर किंदर तोर और पृथ्वी आपलो जगाने लोहलो कारण ने समय बदले से और आमी एक ही मौसम चक्र या ऋतु चक्र बोलो से। ऋतु चक्र ने एक बरक ने 12 महीना होय से 12 महीना ने हर ऋतु 2 महीना चो होय से और आमचो भारत देश ने ऋतु 6 ठान भाग ने बाटला से एमनचो नाव असन आए गर्मी वर्षा शरद हेमंत शिशिर बसंत ऋतु। उसनी पहली ऋतु चो नाम आए गर्मी जो के आमी जेड बोलो से ये बरक चो छठान ऋतु मन ले गोटोक ऋतु आए जेट ने घाम खूबे अधिक रुआए जेट ऋतु चो मूर बल्ले ने मार्च अप्रैल जो कि हम जेट या आषाढ़ महीना बोल बोलुआ ये महीना बेर चो उजर खूबे आगर लागुआए जोन कारण ने बियाने बियाने बोले खूबे घाम लागुआए जोन कारण ने बियाने बोले घाम लागू रुआए जेट समय ने खूबे घाम चो कारण ने नदी नाला तरी डबरा टिकरा चुआ पानी आठून जवाय पानी आटलो कारण ने पानी काजे जीव जंतु कीड़ा मकोड़ा पशु पक्षी मन भले खूबे हरबर हुआ जेट समय ने मेरार मन मनुक पीला झीला मन पातर ढीला ढाला कपड़ा मन फिंदुआत काय काजे बल्ले ने गर्मी ले अस्थिर लागो और उस संगे संगे देह ने पानी चो कमी नहीं हो बोलून पानी डंडिक डंडिक पीवात जेट दिने बड़े दिन रुआए और ढहा बले खूबे लागुआए गर्मी दिन चो तापमान 40 डिग्री ले ऊपरे रुआए जेट ले आम के खूबे फायदा बले हुआए नगद जेट घाम होले ने नगद वर्षा बले हुआए नगद घाम छेकले जहरील बीती कीड़ा मकोड़ा बले मरुन जवा जेट समय ने खूबे पाक फल मन बले फरुआए जसन आमा काकड़ी तरबूजा खरबूजा लीची भेलवा तेतर काटाकुली चार डूमर खदम खूबे ठान फाग पलमन बले फरुआत और दूसरा ऋतु बोलुआत आमी चमास चमास जो जेठ चो पाटकुटी हुआ चमास ऋतु चो मूर जुलाई ले सितंबर जो कि आमी सावन भादो बोल बोलुआ ये महीना ने शुरू हुआ है चमास चो मूर दक्षिण पश्चिम मानसून लेहरा मन ले शुरू हुआ है और आम चो देश ने चमास चो सीजन मूर हुआ है चमास इले ने आमचो देह पाए के जीव जंतु कीड़ा मकोड़ा मंचो देह पाए के बोले नगद अस्थिर लागू आए और आमचो भारत देश गोटो कृषि प्रधान देश आए ये थानो लोग खूबे पानी चो ऊपरे आशित आसोत चमास चो पानी ने धान पान कोदो कुटकी मरिया जोंद्रा आरु खूबे ठान फसल मन लगवात और संगे संगे चमास चो पानी ले लाटा बुटा पेड़ पौधा मन बले हरा भरा और नगद बढ़ुआत वर्षा कसन होय से बल लेने बेरचो घाम खूबे छेक लेने नदी नाला तरी डबरा टिकरा चुआ समुद्र चो पानी भाप ले रूप धरून बत्ती झिकुआए और ऊपर उन बाष्प के ठंडा अने शीतल करून बत्ती आम के नीचे फिर घसरुआए बादरी चो पानी खूबे वजन हो लेने वर्षा चो रूप ले खाले घसरुआए चमास समय ने खूबे जहीरा कीड़ा मकोड़ा मन बले जन्मुआत जनले खूबे बीमारी सीमारी मन हुआए आरु चमास बेरा आम के बासी कोसी मन के नी खातो राय आम के अधिक ले अधिक तपलो बीती मन के खातो पीतो राय चमास बेरा खूबे पानी होले ने खूबे झन धन चो हानि हुआ जसन बाढ़ ले खूबे आम के झन धन चो हानि हुआ ऊंचो पाटकुटी हुआ शरद ऋतु ये तीसरा ऋतु आए शरद ऋतु के आमी पतझड़ बल बोलुआ ए असन ऋतु है जोन चमाचो पाटकुटी और शीत चो फूरे युवाए और रूख राई आपलो पाना पति मन के घसरवात शरद ऋतु ने तापमान ने गिरावट बोले दखुक मिरुआए शरद ऋतु ने दिन रात चो समय लगभग बराबर रुआए शरद ऋतु ने बेर चो घाम खूबे अच्छा लगुआ जोन कारण ले सुनहरी गुणवत्ता सुनहरे घटे चो बोले ऋतु बोले बोलुआत।
आरु सरल ऋतु चो मूर होतो महीना आय अक्टूबर नवंबर जोन आमी अश्विन या कार्तिक महीना बोले बोलुआ। शरद ऋतु ने वर्षा होल्यो पाटकुटी बादरी साफ आरु नीलिया दखा दीवाय। शरद ऋतु ने भौरा हरा भरा हरियाली दखा दीवाय आरु वातावरण खूबे मनमोहक बोले लागुआ। शरद ऋतु ने दिन बेरा खूबे घाम लागुआ आरु राति भेरा खूबे शीत लागुआ आरु खेत मन के पाकलो धान चो सुगंध गंध चारो बाटे फैलून वातावरण के एकदम सुगंधित बनवाय। शरद ऋतु ने मौसम अच्छा रुआ जोन कारण लोग मन चो श्वास बोले खूबे नगत रुआ जेन कारण शरद ऋतु के अनुकूल ऋतु बोले बलुआत। आमचो लगे आश्रय चौथा ऋतु हेमंत। हेमंत ऋतु शीतकाल समय ले एतो गोटोक ऋतु आय जोन उन छह भारतीय ऋतु मन ले गोटोक आय जोन शीत समयाचो स्वागत करुआ आरु ए ऋतु समय ने पूरा वातावरण शीत लागुआ। पारंपरिक हिंदू कैलेंडर चो अनुसार हेमंत ऋतु चो मूर दिसंबर जनवरी जो के आमी माघ या पुष महीना बोले बोलुआ। आमचो जीवन ने हेमंत ऋतु बरक चो सबले अच्छा हरिक उदित और आनंदमय चो ऋतु आय। हेमंत ऋतु ने शीत धीरे धीरे बाड़ुआ और दिन नानी और राति बड़े होते जाए। हेमंत ऋतु ने ओस बले खूबे घसरुआ। हेमंत ऋतु चो शीत और शिशिर चो ठर्राती सर्दी चो मंजार चो ऋतु आय जोने हरिक उदिन संगे संगे स्वास्थ्य काजे बोले नंगत आय। आमचो लगा से पांचवा ऋतु शिशिर। शिशिर ऋतु बारची छह ऋतु मन ले गोटक ऋतु आय। शिशिर ऋतु के आमी शीत ऋतु और सर्दी ऋतु बोले बलुआ। आमचो भारतीय कैलेंडर ने ए ऋतु जनवरी फरवरी जो के आमी माघ या फागुन महीना बोले बलुआ। शिशिर ऋतु के समय आने खूब शीत लागुआ और मौसम बोले शुष्क यानी ठंडा रुआ और लहरा बोले ठंडा ठंडा बहुआ। शिशिर ऋतु ने पेड़ पौधा मन के पाना मन बोले निकरुक मुरियाए। शिशिर ऋतु ने रवि फसल मन हुआ जसन चना गेहूं जो और खूबे ठान फसल मन हुआ। ए ऋतु ने हल्का फुल्का घाम दका दीवाय जोन कारण ने शीत बले नगत लगुआ और संगे संगे ऋतु स्वस्थ काजे बले और देह पाए काजे बले नगत ऋतु आए। काय काजे बले ने कि आमचो देह पाए ने रोग प्रतिरोग क्षमता बले रोग संगे लड़तो बीती क्षमता बोले खूबे बढ़ुआ। ए ऋतु बारह महीना चो सब ऋतु ले ठंडा ऋतु आय जोन थाने शीत चो तापमान जीरो डिग्री से ले खाले जरूर आए। ए ऋतु ने ठंडा लहरा चो कारण ने देह चो त्वचा शुक्लो असन लागुआ जोन कारण ने शरीर तो त्वचा चिड़चिड़ा टाइप चो लागुआ और ऐसे संगे संगे आलसी ठग सुस्ती बोले शरीर के लागुआ। उनचो पाठ कुटी आया आम लग बसंत ऋतु। बसंत ऋतु भारत चो छह ठान ऋतु मन ले गोटोक ऋतु आए। बसंत ऋतु चो मूर मार्च अप्रैल बल्ले ने चैत बैसाख महीना ने हुआ। बसंत ऋतु ने इले ने धरती जो नाम पृथ्वी बोलुआ खूबे सुंदर सुंदर लागुआ। बसंत ऋतु चो समय ने धरती के दकुन मन हरिक और गदगद लागुआ। हिंदू पंचांग चो अनुसार बरक चो मूर ऋतु और आखिरी ऋतु बसंत ऋतु के बलुआत। बसंत ऋतु शीत ऋतु चो पाटकुटी युवा उन्हीं कारण ने बसंत ऋतु ने शीत कम लागुआ और रुख राही जंगल झाड़ी ने नवा नवा पाना पत्ती मन बले युवा और आमचो रुक ने फूल मन बले युवा जोन खूबे सुंदर महकू और संगे संगे बाड़ी खिड़ी ने सरचो सो सुंदर सुंदर पीलिया पीलिया फूल मन बले दगुक मीरुआ। आमचो भारत देश ने रीति रिवाज परंपरा चो अनुसार मांग महीना चो शुक्ल पक्ष ले पंचमी ले बसंत ऋतु चो मुर हुआ बलुआ जो के आमी बसंत पंचमी के रूप ले बनावा। भारतीय संस्कृति रीति रिवाज चो अनुसार बसंत ऋतु के ऋतु मंचो ऋतुराज बले बोलुआत और संगे संगे बसंत ऋतु ने त्योहार बाहर बनातो काजे नगत समय बले आए बोलुआत। बसंत ऋतु ने आमी होली चो त्योहार बले बनावाओ। आमी एके रंग मंच चो त्योहार बले बोलुआ और होली त्योहार बसंत ऋतु चो मुहूर होतो चीना त्योहार आए और आमचो भारत ने देश ने हरिक उदीले होली त्योहार मनावात। बसंत ऋतु ने शीत ऋतु ले दिन बड़े रुआ और बेर चो घाम खूबे रुआ जोन ले वातावरण खिनिक खिनिक तपते जाए।
बसंत ऋतु ने रवि फसल काटतो समय आए जो के अमी शीत समय ने लगा रुआ और बसंत ऋतु के काटुआ अमी उनके रवि फसल बोलुआ। मौसम चो प्रभाव, मौसम बदल तो एचो प्रभाव जलवायु ने तापमान ने आरु दिन के आरु राति चो बेड़ा नानी बड़े होतर ने रुक रही चो जीव जंतु ने कीड़ा मकोड़ा ने सब जीव ने एचो प्रभाव पड़ुआ। तो आम तुम चो का अच्छा नंगत नंगर गोड़ धरु नेवरो आम चो लगे गोड़ गीत आसे ए गीत के बोले सुनो।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं आकर्षिता सिंह। शुभेंदु अधिकारी ने पश्चिम बंगाल में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। पांच विधायकों ने भी मंत्री पद की शपथ ली। तमिलनाडु में टीवी के प्रमुख विजय ने कांग्रेस, वीसी के, आईयूएमएल और वाम दलों के समर्थन से सरकार बनाने का दावा पेश किया। कल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। भारत ने एमआईआरवी प्रणाली से लैस अग्नि मिसाइल के उन्नत संस्करण का सफल परीक्षण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल कर्नाटक और तेलंगाना के दौरे पर रहेंगे, कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। प्रवर्तन निदेशालय ने पंजाब सरकार में मंत्री संजीव अरोड़ा को धन शोधन मामले में गिरफ्तार किया और साहिल जाधव ने तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में पुरुषों के व्यक्तिगत कंपाउंड स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। और अब समाचार विस्तार से। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी विधायक दल के नेता शुभेंदु अधिकारी ने आज मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इसके साथ ही राज्य में पहली बार भाजपा सरकार का गठन हुआ। राज्यपाल आर एन रवि ने कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में श्री अधिकारी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। राज्यपाल ने मुख्यमंत्री के साथ पांच मंत्रिमंडल मंत्रियों को भी शपथ दिलाई। इनमें दिलीप घोष, अग्निमित्रा पॉल, अशोक कीर्तनिया, निशीत प्रमाणिक और खुदीराम टुडू शामिल हैं। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए और भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन और पार्टी के अन्य नेता उपस्थित रहे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने की तुरंत बाद ही शुभेंदु अधिकारी प्रशासनिक काम में जुट गए। ब्रिगेड में शपथ ग्रहण समारोह के बाद वो जोरासा को ठाकुरबाड़ी गए और गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर को श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके बाद मैदान में पीडब्ल्यूडी की टेंट में राज्य पुलिस और प्रशासन की शीर्ष अधिकारियों के साथ बैठक की। बाद में शाम को भवानीपुर में श्यामा प्रसाद मुखर्जी के निवास पर जाकर राज्य के पहले बीजेपी मुख्यमंत्री ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। पूरी मंत्रिमंडल का गठन अभी पूरा नहीं हुआ है, लेकिन इसके बावजूद मुख्यमंत्री ने अगले सोमवार नवान्नों में प्रशासनिक कामकाज की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक बुलाया है। कलकत्ता से आकाशवाणी के लिए अभिरूप भट्टाचार्य।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बनने पर शुभेंदु अधिकारी को बधाई दी। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि श्री अधिकारी ने जनता से गहराई से जुड़े रहने और उनकी आकांक्षाओं को करीब से समझने वाले नेता के रूप में अपनी पहचान बनाई है। प्रधानमंत्री ने श्री अधिकारी को आगामी कार्यकाल की सफलता के लिए शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री ने पांचों मंत्रियों को भी शपथ लेने पर बधाई दी। श्री मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि मंत्री के रूप में ये सभी पश्चिम बंगाल के विकास पथ को और मजबूत करेंगे। तमिलनाडु में तमिलगम वेत्री कड़गम टीवीके के प्रमुख सी जोसेफ विजय ने आज लोकभवन में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर से मुलाकात की और 120 विधायकों के समर्थन के साथ सरकार बनाने का दावा पेश किया। हमारी संवाददाता ने बताया है कि श्री विजय कल तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। एक रिपोर्ट।
2: हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों में टीवी के 108 सीट जीतकर सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है। 234 सदस्यों वाली तमिलनाडु विधानसभा में पार्टी को नई सरकार के गठन के लिए 118 सीट की आवश्यकता है। चेन्नई में आज संवाददाताओं से बातचीत में टीवी के नेता अधव अर्जुन ने बताया कि वीसी के और आईयूएमएल दोनों ने सरकार गठन के लिए उसे बिना शर्त समर्थन दिया है। दो विधानसभा क्षेत्रों से जीत हासिल करने वाले विजय को एक सीट खाली करनी होगी, जिससे टीवीके की संख्या घटकर 107 रह जाएगी। हालांकि टीवीके पार्टी को कांग्रेस, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, वीसीके और आईयूएमएल से कुल 13 विधायकों का समर्थन मिल चुका है। इनमें कांग्रेस के 5 और अन्य सहयोगी पार्टियों के 2-2 विधायक हैं। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: केरलम में भी नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। यूडीएफ की प्रमुख पार्टी कांग्रेस कल तक नेता की घोषणा कर सकती है। कांग्रेस सूत्रों ने बताया है कि विधायक दल के नेता के बारे में राज्य में पार्टी पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय नेतृत्व निर्णय लेगा। वहीं असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रहा है। शपथ ग्रहण समारोह मंगलवार को होगा। पार्टी विधायक दल की बैठक कल होगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल कर्नाटक और तेलंगाना के दौरे पर रहेंगे। वे बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग की 45वीं वर्षगांठ और इसके संस्थापक गुरुदेव श्री श्री रविशंकर के 70वें जन्मदिन समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी आर्ट ऑफ लिविंग परिसर में नए ध्यान मंदिर और ध्यान कक्ष का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री आर्ट ऑफ लिविंग कार्यक्रम के लिए रवाना होने से पहले सभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री हैदराबाद में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। श्री मोदी हैदराबाद पणजी आर्थिक गलियारे पर गुडे बेलूर से महबूब नगर तक राष्ट्रीय राजमार्ग 167 के 4 लेन के निर्माण की आधारशिला रखेंगे। इसकी कुल लागत 3,175 करोड़ रुपए से अधिक है। प्रधानमंत्री वारंगल में पीएम मित्र पार्क का भी उद्घाटन करेंगे। श्री मोदी हैदराबाद में अत्याधुनिक कैंसर अस्पताल का भी लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री सिकंदराबाद के परेड ग्राउंड में एक जनसभा में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित भी करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री कल ही 2 दिन के गुजरात दौरे पर जाएंगे। दौरे के दूसरे दिन श्री मोदी सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित सोमनाथ अमृत महोत्सव में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री कई धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में शामिल होंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: सोमनाथ महादेव मंदिर में आज आस्था और भक्तिमय वातावरण छाया हुआ है। मंदिर में आज से ही 3 दिवसीय होमात्मक महारुद्र यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें से लगभग 1,25,000 आहुतियां अर्पित की जा रही है। यह महायज्ञ वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों में शांति और मानव कल्याण के लिए आयोजित किया जा रहा है। अमृत पर्व का मुख्य आकर्षण 11 मई को होगा, जब मंदिर के शिखर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 11 पवित्र तीर्थों के जल से कुंभाभिषेक किया जाएगा। इस ऐतिहासिक क्षण का साक्षी बनने के लिए देश के कोने कोने से श्रद्धालुओं का सैलाब सोमनाथ उमड़ पड़ा है। गुजरात के उपमुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने आज सोमनाथ में उच्च अधिकारियों के साथ बैठक की और सोमनाथ अमृत पर्व की आयोजन की समीक्षा की। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना PMGSY की 25वीं वर्षगांठ पर कल मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के भैरुंदा में रज जयंती समारोह का आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान करेंगे। इस दौरान PMGSY के चौथे चरण का भी शुभारंभ किया जाएगा। कार्यक्रम में श्री चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव को राज्य में 973 सड़कों के लिए वित्तीय आवंटन और स्वीकृति पत्र सौंपेंगे। समारोह में श्री चौहान वित्त वर्ष 2026-27 के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 18,907 करोड़ रुपए के आवंटन की घोषणा भी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA सरकार द्वारा 11 वर्ष पहले शुरू की गई प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और अटल पेंशन योजना जैसी प्रमुख सामाजिक सुरक्षा और पेंशन योजनाओं से हुए लाभों का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये योजनाएं देश के लोगों के लिए गरिमा, आश्वासन और वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं। भारत ने कल ओडिशा के डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेड री इंट्री व्हीकल MIRV प्रणाली से लैस उन्नत अग्नि मिसाइल का सफल परीक्षण किया। MIRV ऐसी तकनीक है जिससे एक ही मिसाइल कई लक्ष्यों को निशाना बना सकती है। रक्षा मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस मिसाइल का परीक्षण कई पेलोड के साथ किया गया, जिसका निशाना हिंद महासागर के भौगोलिक क्षेत्र में फैले विभिन्न लक्ष्यों पर था। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अग्नि मिसाइल के सफल परीक्षण के लिए रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO, सेना और उद्योग जगत की सराहना की है। प्रवर्तन निदेशालय ED ने हैम्पटन स्काई रियलिटी लिमिटेड से जुड़े एक कथित धन शोधन मामले में पंजाब के कैबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा को गिरफ्तार किया है। इससे पहले ईडी ने इस मामले में दिल्ली, गुरुग्राम और चंडीगढ़ में 5 स्थानों पर छापेमारी की थी। ये कार्रवाई धन शोधन रोकथाम अधिनियम PMLA 2002 की आपराधिक धाराओं के अंतर्गत की गई है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने रिलायंस अनिल धीरूभाई अंबानी समूह की कंपनियों के खिलाफ दर्ज 3 मामलों के सिलसिले में मुंबई के 17 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया है। सीबीआई ने बताया है कि ये तलाशी अभियान कंपनियों के निदेशकों के आवासीय परिसरों के साथ साथ उन मध्यस्थ कंपनियों के कार्यालयों में भी चलाए जा रहे हैं जिनके खातों का इस्तेमाल बैंक निधि के गबन के लिए किया गया था। सरकार ने राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 के विजेताओं की घोषणा कर दी है। देश भर से चुनी गई 42 पंचायतों को ये पुरस्कार दिए जाएंगे। पंचायती राज मंत्रालय ने बताया है कि पुरस्कार वितरण समारोह 3 जून को नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। मंत्रालय के अनुसार कर्नाटक ने सबसे अधिक पुरस्कार प्राप्त किए हैं जहां 6 पंचायतों को चुना गया है। इसके बाद आंध्र प्रदेश और ओडिशा का स्थान रहा जहां प्रत्येक को 5-5 पुरस्कार मिले हैं। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण APEDA ने आज असम के बक्सा जिले से अमेरिका को 20 मीट्रिक टन शहद की पहली खेप का निर्यात किया। APEDA के प्रसंस्करण संयंत्र में परीक्षण और प्रयोगशाला उपकरण उपलब्ध कराने सहित बुनियादी ढांचे के विकास में सहयोग से ये निर्यात संभव हुआ। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है। ये आकाशवाणी है। अमेरिका ने कहा है कि वो पश्चिम एशिया में चल रहे क्षेत्रीय संघर्ष को समाप्त करने के उद्देश्य से एक प्रस्तावित 14 सूत्रीय रूपरेखा पर ईरान की आधिकारिक प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहा है। एक रिपोर्ट।
3: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संकेत दिया कि तेहरान की प्रतिक्रिया वार्ता के अगले चरण को निर्धारित कर सकती है। वहीं ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराग़ची ने हालिया अमेरिकी सैन्य कार्रवाइयों की आलोचना करते हुए अमेरिका पर तनाव बढ़ाकर कूटनीतिक प्रयासों को कमजोर करने का आरोप लगाया। ये ताजा घटनाक्रम हॉर्मुज जलडमरू मध्य और उसके आसपास की घटनाओं के बाद सामने आए हैं जिनमें ईरानी और अमेरिका सेनाओं के बीच नौसैनिक मुठभेड़ की खबरें शामिल हैं। अमेरिका के अधिकारियों ने ईरान के ड्रोन कार्यक्रम से जुड़े नेटवर्क को निशाना बनाते हुए नए प्रतिबंधों की भी पुष्टि की है। हालांकि तनाव के बावजूद न तो अमेरिका और न ही ईरान ने औपचारिक रूप से युद्ध विराम के टूटने की घोषणा की है। इस बीच इसराइल ने दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्ला के बुनियादी ढांचे को नष्ट करने के लिए अपने अभियान तेज कर दिए हैं। समाचार कक्ष से विशेष शुक्ला।
1: चीन की शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में साहिल जाधव ने पुरुषों की व्यक्तिगत कंपाउंड स्पर्धा में कांस्य पदक जीत लिया है। साहिल ने कांस्य पदक के लिए मुकाबले में डेनमार्क के मार्टिन डैम्सबो को हराया। भारतीय महिला रिकर्व टीम कल स्वर्ण पदक के लिए चीन का सामना करेंगी जबकि सिमरनजीत कौर अपना सेमीफाइनल मुकाबला खेलेंगी। वहीं आईपीएल क्रिकेट में जयपुर में राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक गुजरात ने 17वें ओवर में 3 विकेट पर 186 रन बना लिए हैं। राजस्थान रॉयल्स ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया। राजस्थान अंक तालिका में चौथे जबकि गुजरात 5वें स्थान पर है। मौसम विभाग ने गुजरात और पश्चिमी राजस्थान के कुछ स्थानों पर लू चलने की संभावना व्यक्त की है। बिहार में आज तेज हवाएं चलने का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 2-3 दिन के दौरान केरल, लक्षद्वीप, दक्षिण कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में तेज बारिश का अनुमान है। ओडिशा, रायलसीमा, तेलंगाना और दक्षिणांतरिक कर्नाटक में कल तक बादल गरजने और बिजली चमकने की संभावना है। इस बीच कोंकण और गोवा के कुछ स्थानों पर गर्म और उमस भरा मौसम रहने की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। शुभेंदु अधिकारी ने पश्चिम बंगाल में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। 5 विधायकों ने भी मंत्री पद की शपथ ली। तमिलनाडु में टीवी के प्रमुख विजय ने कांग्रेस, वीसी के, आईयूएमएल और वाम दलों के समर्थन से सरकार बनाने का दावा पेश किया। कल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। भारत ने MIRV प्रणाली से लैस अग्नि मिसाइल के उन्नत संस्करण का सफल परीक्षण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल कर्नाटक और तेलंगाना के दौरे पर रहेंगे। कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। प्रवर्तन निदेशालय ने पंजाब सरकार में मंत्री संजीव अरोड़ा को धन शोधन मामले में गिरफ्तार किया। और साहिल जाधव ने तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में पुरुषों के व्यक्तिगत कंपाउंड स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: Good evening. This is Akashvani. I am Valsa Williams with the news at 9. The headlines. Shubhendu Adhikari takes oath as first BJP Chief Minister of West Bengal. Five MLAs also sworn in as Cabinet Ministers. TVK Chief C. Joseph Vijayat stakes claim to form government in Tamil Nadu with support of Congress, VCK, IUML and left parties. Set to take oath as Chief Minister tomorrow. India conducts successful flight trial of advanced variant of Agni missile with MIRV system. From Minister Narendra Modi to launch several development projects during his day-long visit to Karnataka and Telangana tomorrow. Enforcement Directorate arrests Punjab Cabinet Minister Sanjeev Arora in alleged money laundering case. And in archery, India's Sahil Jadhav wins bronze medal in men's individual compound event at World Cup Stage 2 in Shanghai. Shubhendu Adhikari took oath as the first BJP Chief Minister of West Bengal today. Governor R.N. Ravi administered the oath of office in secrecy to Mr. Adhikari at a grand ceremony held at the Brigade Parade Grounds in Kolkata. Along with him, five other MLAs including Dilip Ghosh, Agnimitra Paul, Ashok Kirtania, Nishit Pramanik and Khudiram Tudu were sworn in as Cabinet Ministers. Prime Minister Narendra Modi, Union Home Minister Amit Shah, Defence Minister Rajnath Singh, Chief Ministers of various NDA and BJP ruled states, BJP President Nitin Naveen and several other leaders of the BJP attended the ceremony. The swearing-in ceremony was held on Pochishe Boishak, marking the 165th birth anniversary of poet Guru Rabindranath Tagore. We have more from our correspondent.
5: After taking the oath as Chief Minister of West Bengal, Shubhendu Adhikari held meeting with the Chief Secretary, Home Secretary and other officials of the state at the PWD tent at Maidan. Meanwhile, renovation works are underway at the Writers Building in Kolkata for reshifting of the Secretariat of the State Government, which was shifted from this heritage building to the Navanno after Mamata Banerjee came to power in 2011. The new BJP government will work from the Writers Building, which is a heritage structure. In an important development today, special observer for the West Bengal for SIR, retired IAS officer Subrata Gupta has been appointed as the advisor to the Chief Minister of West Bengal and the 2017 batch IAS officer Shantanu Bala appointed as the personal secretary to the CM. It is learned that on 30th May, the newly elected MLAs of West Bengal will take oath at the assembly in Kolkata. Kollan Laha reporting from Kolkata.
4: The BJP registered a decisive victory in the recent state assembly elections, securing 207 seats in the 294-member house and ending the 15-year rule of the Trinamool Congress, which was reduced to 80 seats. Prime Minister Modi congratulated Shubhendu Adhikari on taking oath as Chief Minister of West Bengal. In Tamil Nadu, TVK Chief C. Joseph Vijay today met Governor Rajendra Arlekar at Lok Bhavan in Chennai and staked claim to form the government with the support of 120 MLAs. Mr. Vijay is set to take oath as the Chief Minister of Tamil Nadu tomorrow. Tamilaga Vetri Karagam, TVK, which emerged as the single largest party with 108 seats in the recent assembly polls, achieved the majority mark of 118 in the 234-member house required to form a new government in the state by securing backing from the Congress, left parties, Vidutalai Chirutaigal Kachi VCK and the Indian Union Muslim League IUML. Vijay, who won from two assembly constituencies, will have to vacate one seat, reducing the TVK's strength to 107. The combined strength of the supporting parties, including the Congress with five MLAs and CPI, CPIM, VCK and IUML with two MLAs each, stands at 13. Our correspondent has filed this report.
6: TVK leader Joseph Vijay met the governor along with the supporting MLAs of the Congress, the left party CPI and CPM, VCK and the IUML to form the government. 6 days after the results, this is the fourth time that he met the governor on the issue of having a majority. The governor had earlier cancelled the appointment and was to leave for Kerala, but then he invited the TVK leader to once again meet him today. The party has 120 MLAs for support apart from the Congress, who broke the alliance.

0: सकास कि वो था आपन मन अगर 30-35 घर आसे तो 30-35 घर लोग के सबके रोजगार मिले।
1: अच्छा
0: आगे आमी होता अदक तेरो हुन रहा हूँ लोग सांग तेरो तामी आंध्रा उन बाटे रोजी जाते हूँ। लेकिन जब ले आम के अधिकार पत्रक मिरली तब ले आम चो गांव चो आजीविका बोला छोले और गांव चो नीति नियम जो ना है व्यवस्था है ठीक ठाक आसे भी तो ये आम के उता दुख मिरली उसनी प्रकार चो तीरिया गांव है एक माचकोट जंगल ने एरियन पूरे उड़ीसा सीमा ने हुता बोल उसनी आए हुता बोल उसनी पानी के ही सुरक्षित कर हनुमान बोले अच्छा ले आजीविका के बढ़ावा दे सो
1: अच्छा
0: तो जंगल के राखा तराखा कर सो थी उनके संगे संगे एक आप लोग गांव चो आजीविका के युवा वर्ग ने बोले समझ ऐसे कि नहीं अब आमन मन की जंगल के बचान जंगल ले आप लोग आजीविका बल बढ़ात रहे और चले कमाई बले हो उन संग बल ये चले से अभी तक तो दखा दिले।
1: अच्छा तो संतु देख तुम चो बंधन जो सामुदायिक अभियान ये जो काम है बोले पूरे बस्तर संभाग ने बोले अच्छा जसन के भी सांगलीस की कई गांव मन ने पर्यटन चो क्षेत्र ने बोले हनुमान के रोजगार चो अवसर मिरे से मानतर सरासरी ने बोले ने कोनी बोले पंचायत के बोले ने सामुदायिक बंधन जो अधिनियम चो अंतर्गत ये बना तो काजे तुम चो बाटले कहीं बलुक चाय रेडियो चो माध्यम ले
0: अगर कोनी गांव अगर बना चाय से और ये कानून चो माध्यम ने कि एक गांव के सामुदायिक वन संसाधन अधिकार धरुक चाहे से तो आमन मन बाटले हर तरीके ले सहयोग रह दे उन्हीं आमी बोलुक चाहूँ से कि गांव ने गांव चो लोग एक जागरूक हो तो आप लोग गांव के ग्राम सभा के जागरूक करो क्योंकि जल जंगल जमीन जो ना है अपन मन गांव बिता चुआ है न कि कोनी सरकार और शासन प्रशासन क्योंकि गांव ही आए जो जब ले गांव बोसली से तब ले आप लोग जल जंगल जमीन के आप लोग संस्कृति के गांव चो व्यवस्था के गांव बीता वचन संगला उन्हीं का जो कानून बल बले से कि आपन गांव बीता मन ये अधिकार के धरोत और आपन मन जितलो ज्यादा अच्छा लो हुक सके ये अधिकार के धरून प्रबंधन संरक्षण करुन बारी हुताल आप लोग आजीविका बल बढ़ावत और कई अच्छा चीज चाहे पर्यटन हो चाहे पानी ले हो चाहे आप लोग खान पान के बले हो एबे देखुआ देखते जाऊँ से कि खान पान के बले हम चो आदिवासी चो जोन व्यवस्था है खान पान है उनके अब बाहरी चो लोग बले अपना चाहत क्योंकि उन मन समझ ला कि आदिवासी जीवन ने ही पूरा मानव जीवन
1: आसे
0: उन्हीं का जे एबे बले कई जगह देखुआ कि जहाँ मंडिया पे जाए धान कुटलो चाउर आए चाहे कोदा कुटकी आए चाहे हरवा दार हो कई जोन चीज आए उन बले बाहरी चो लोग बोले अब उनके अपना चाहे तो ये अधिकार आए उन्हीं बोले कि जितलो तुम मन चो जीवन यापन बला से जीवन यापन जीवन देख जीव तो बीत बोला हुन बोल तुम चो अधिकार ही के जितलो ज्यादा बचक सका से उतलो ज्यादा खूब बड़े गांव समृद्ध रहे थे और गांव सुरक्षित बने
1: सुरक्षा रहे
0: तो वन अधिकार कानून उन्हीं आए उन खाली जंगल च बात नहीं करे ना जमीन च बात नहीं करे खाली जल च बात नहीं पूरे गांव च व्यवस्था के मजबूत कर तो काज बात करे से यही काज मैं पूरे गांव लोग के यही जानू संगुक चाहें दे कि जितलो ज्यादा हो सके ये वन अधिकार कानून चो माध्यम ले आप लोग गांव चो जितलो बल सामुदायिक अधिकार है उनके बना तो प्रयास करो और ग्राम सभा ने बोसुन गांव के कसन चलात रहा है गांव के कसन प्रबंधन करत रहा है ये चो बोले नियम बनान बारी एक संचालित आप लो तरीका करो तब कहीं ना कहीं ग्राम सभा के पांच अनुसूचित क्षेत्र ने शासन सौ शासन च बात करे उन्हीं तेवे दखा दे ऐसे।

0: आमचूर आन आमचूर जीवना कार्यक्रम का प्रसारण अभी किया गया। ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। रात के 9:30 होने को हैं। हमारा अगला कार्यक्रम कुछ ही पलों में हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी की अखिल भारतीय सांस्कृतिक पत्रिका संस्कृति भारती के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं नवोदिता। आज के इस अंक में हम चलेंगे एक ऐसी यात्रा पर जो मंच के पर्दों से शुरू होती है, लोकगीत की गूंज से गुजरती है और बुद्ध की पावन स्मृति तक जाती है। आज की पत्रिका के पहले पड़ाव पर हम मिलेंगे एक ऐसे रचनाकार से जिन

कलम ने कभी भी समझौता नहीं किया, जिनके नाटकों को बंद कराने की मांगे उठी पर जिनकी आवाज कभी दबी नहीं, शब्दों का विद्रोही विजय तेंदुलकर। सन 1928 6 जनवरी, महाराष्ट्र के पुणे शहर में एक बच्चे का जन्म हुआ, विजय धोंडोपंत तेंदुलकर। पिता एक प्रकाशक थे तो घर में किताबों की सुगंध थी बचपन से। आर्थिक तंगी में बड़े हुए तेंदुलकर ने जल्दी ही काम शुरू किया, पत्रकारिता, अनुवाद, सिनेमा लेखन का। लेकिन उनकी असली पहचान बनी नाटकों से। मराठी में लिखे, हिंदी में अनुदित हुए और पूरे भारत में खेले गए उनके नाटकों ने दर्शकों को बेचैन किया और यही उनका उद्देश्य भी था। उन्होंने कहा, मैं दर्शकों को सुकून देने के लिए नहीं लिखता, मैं उन्हें उनके अपने चेहरे से मिलवाने के लिए लिखता हूँ, चाहे वो चेहरा कितना भी भद्दा क्यों ना हो। शांतता कोर्ट चालू आहे, यानी खामोश अदालत जारी है। सन 1967 में लिखा ये नाटक भारतीय रंगमंच का एक मील का पत्थर है। एक मंडली है, एक स्त्री है बेनी, जो एक नकली अदालत में असली सच्चाइयों का सामना करती है। समाज, परंपरा और पुरुष की सत्ता के विरुद्ध ये नाटक आज भी उतना ही प्रासंगिक है। और फिर सखाराम बाइंडर, 1972 में लिखा गया ये नाटक एक मध्यवर्गीय पुरुष जो कि अपने घर में स्त्रियों के साथ दुर्व्यवहार करता है, उसकी कहानी है। ये नाटक इतना विस्फोटक था कि उसे बंद कराने की मांग उठी। अदालत ने प्रतिबंध नहीं लगाया और तेंदुलकर की जीत हुई, कलम की जीत हुई। फिर घासीराम कोतवाल, ये नाटक इतिहास, राजनीति और सत्ता के खेल का ऐसा चित्रण था कि महाराष्ट्र में इसे हटाने की मांग उठी। पेशवाई के दौर की पृष्ठभूमि में लिखा गया ये नाटक राजनीति की दुष्प्रवृत्तियों का एक आईना सा बन जाता है। 19 मई 2008 को विजय तेंदुलकर इस दुनिया से चले गए, लेकिन उनके नाटक आज भी मंचित होते हैं, मुंबई में, दिल्ली में, पुणे में, कोलकाता में और न जाने कितनी जगहों पर। उनके पात्र आज भी जीवित हैं। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, पद्म भूषण और अनगिनत सम्मान मिले, लेकिन उनकी असली पहचान वो बेचैनी है जो उनके नाटक देखने के बाद हमारे मन में घर कर जाती है। विजय तेंदुलकर ने ही एक बार कहा था, अगर मेरे नाटक से कोई परेशान नहीं हुआ तो शायद मैंने ठीक से वो नाटक लिखा ही नहीं।

0: आकाशवाणी के 90 वर्ष की ये यात्रा जिसमें अनगिनत आवाजें घुली हुई हैं, अनगिनत सुर समाये हुए हैं, इस ऐतिहासिक पड़ाव पर हम मिलते हैं उस आवाज से जिसने लोकगीत को गांव की मेड़ से उठाकर विश्व मंच तक पहुंचा दिया, परंपरा को नया जीवन दिया। इसके साथ साथ शास्त्रीय गायन में भी उन्होंने एक विशेष पहचान बनाई है और अभी कुछ ही समय पहले उन्होंने अपने संस्मरणों को एक पुस्तक के रूप में भी विमोचित किया है। सुनते हैं पद्मश्री मालिनी अवस्थी को।
1: मैं तो यही कह सकती हूँ कि हम लोग बड़े भाग्यवान रहे, हम आकाशवाणी के स्वर्ण युग की रश्मियां हैं। वाचन कैसा हो और कैसी भाषा हो तो आकाशवाणी ने सिखाया। आवाज जो बोलने की शैली है, क्षमा करेंगे मुझे कहने दी कि अनुमति प्रदान करें जो मैं बोलूं, शायद बहुत लोगों को अखरेगा। इस मामले में मैं थोड़ा परंपरावादी हूं कि ये तो सच है कि आपको नई जनरेशन से जुड़ने के लिए अपने को बदलना पड़ेगा, ये ठीक है, लेकिन नई जनरेशन के लिए जब आप बदलेंगे तो आप उनको सुनाना क्या चाहते हैं, उनकी चीजें या अपनी चीजें? आप उनके लिए बदलिए लेकिन सुनाइए तो क्वालिटी की चीजें। मैंने तो वो दौर देखा है आकाशवाणी का, आकाशवाणी की जो उर्दू सर्विस होती थी उसकी जो तकरीरें थी, जो गुफ्तगू थी, उसको सुनने के लिए हम लोग लगाते थे। उर्दू सर्विस की बात करें, हम लोग वो तकरीरें सुनते थे जिसमें कि कोई एक कहानी लेती थी और उस कहानी को बयान करती थी, उस कहानी की वही नायिका है। अब वो कहानी को पढ़ रही है, आप कहेंगे आजकल क्या कोई वन एक्ट प्ले करेगा, कि उस कहानी को पढ़ने का अंदाज ऐसा होता था कि उस कहानी को सुनकर आपको लगता था फिल्म देख रहे हैं पूरा। तलफ्फुज इतना अच्छा, अदायगी इतनी कमाल की कि आपको लगता था क्या बात है। तो हम लोग ने जो थिएट्रिक्स है, जो अपने गाने बजाने में भी, वो सब रेडियो से बहुत सीखा। तो मुझे लगता है कि चाहे वो भाषाई इल्म हो, लिटरेचर हो, पोइट्री हो, क्वालिटी म्यूजिक हो, क्योंकि आकाशवाणी से गानों का, जो फिल्म के गाने भी प्रसारित होते थे, उसका भी एक स्तर होता था। हमारे और भाई और हम लोग ये बात कर रहे थे कि हमारा म्यूजिक का जो सेंस बना वो अर्ली 70s को सुन करके बना, कि अर्ली 70s में जैसे फिल्म के गाने आ रहे थे, जैसा नॉन फिल्मी गाना बन रहा था उसने हमारा शेपअप कर दिया, क्योंकि रेडियो ही हमारा सबसे बड़ा साधन था। क्या बजता था, क्या मतलब क्वालिटी, तो यानी रेडियो में कोई फिल्म का गाना भी स्तरी नहीं समझा जाता था। तो नहीं, बहुत छोटी कलाकार हूँ और मेरी कोई हैसियत नहीं, लेकिन मैं अपनी ओर से ये जरूर यहाँ अर्ज करूंगी कि आज जब बहुत सारे ऑप्शंस आ गए हैं और रेडियो के बहुत सारे प्लेयर्स हैं, यानी प्राइवेट इतने FMs हैं, इतने लोग आज कर रहे हैं, प्लीज आप वो सब मत बनिए, आप रहिए। आपको मैं यही बात दूरदर्शन के लिए कहूंगी कि दूरदर्शन को बाकी चैनल्स जैसा बनने की जरूरत नहीं है। आप क्वालिटी और तकनीक में आज की भाषा और आज की तकनीक को एड्रेस कीजिए, लेकिन कंटेंट वही रखिए। कौन बनाएगा प्रेमचंद, कौन बनाएगा टैगोर की कहानियों पर नाटक, कौन शरद चंद्र पे बनाएगा, यदि हम भी वही सब करने लगे तो? मुझे तो लगता है कि आज के लिए तो यही मैं चाहूंगी कि आकाशवाणी आप ऐसी बात कहें जो सुनाए। आज रेडियो सबके पास है, कंटेंट अच्छा लगेगा तो सुनेगा, क्योंकि भीड़ में आप हमेशा से अलग थे, तो आपकी हमेशा से जो एक पहचान रही आकाशवाणी की वो भारतीयता रही है, भारत की कहानियां सुनाने, तो वो पहचान बनी रहे, बरगद का पेड़ बन के खड़े रहिए जिसको आंधियां नहीं हिला पाती। दो बज के 30 मिनट पे वो समय एक होता था, वो आकाशवाणी गोरखपुर के लिए भी, लखनऊ के लिए भी, सारे आकाशवाणी केंद्रों के लिए अलग अलग कलाकार रोज गाते थे वहां भी यहाँ भी। वो हम लोग उसको सुनने के लिए, क्योंकि वहां पे खाटी कलाकार गाते थे, जो सुगम संगीत गा रहे थे उनके लिए भी अनिवार्य शर्त रख दी गई उस दौर में, भोजपुरी जरूर गाएंगे, क्योंकि ये जियो आया था सरकार की ओर से और मेरे ख्याल में सारे रीजनल सेंटर्स को गया होगा कि वो अपने आंचलिक भाषा को पुष्ट करें। तो वो गाना अलग होता है कि आप सीख कर कुछ गाएं, लेकिन 2:30 बजे से आता था जो वहाँ के पारंपरिक लोक कलाकार, उसको सुनने के लिए, क्योंकि उसमें कुमाऊनी भी बजता था, गढ़वाली बजता था, ब्रज का रसिया बजता था, अवधी भी सब गाते थे हम लोग, तो बड़ा कमाल का एक वो। अब शास्त्रीय संगीत का तो प्रतिदिन कार्यक्रम होते, आप देखिए कि एक कार्यक्रम जो आपका एक होता था स्वर सरिता सुबह 7:15 बजे, जिसमें एक राग लेते थे और उस राग से उसको फिल्म में कैसे, वो बड़ा पॉपुलर कार्यक्रम था, क्योंकि जिनको नहीं शास्त्रीय संगीत समझ में आता है वो उस फिल्म के गाने से ये समझ जाते थे, ओह अच्छा। मुझे लगता आज फिर से उसी तरह से उस सहजता के साथ वो चीजों को लेकर के आने की जरूरत है, वो बड़ा कमाल का कार्यक्रम था। ऐसे मंगलवार को जो शास्त्रीय संगीत की सभा, मंगलवासी सारे क्लासिकल म्यूजिशियंस उनका वैसे तो कभी भी गाते थे, लेकिन मंगलवासी संगीत सभा में गाने का एक अलग गोल्ड स्टैंडर्ड होता था कि लोग कहते थे भाई मंगलवासी में हम गा रहे हैं, सुनिएगा जरूर। लोग कहते थे भैया, लोग सुनते थे, सुन करके वापस बताते थे कि आपने क्या गाया। और गजलों की जहां तक बात करी, जब आपको नियमित गाना है, आपको हर 3 महीने में आपको एक रिकॉर्डिंग मिलेगी जो कि आप दो दो गजलें कम से कम गाएंगे, तो उसमें किसी से दूसरे से कलाम न मिले, तो फिर आप क्या करते हैं, आप मेहनत करते हैं, अच्छे शेर चुनते हैं, अच्छे शायरों को सुनते हैं, फिर आप सीखते हैं, धुन बनाते हैं। कहीं ना कहीं मुझे लगता है दूसरा क्या गा रहा है ये सुनने की भी बड़ी एक हम लोगों में तल्लीनता रहती थी कि अगले ने क्या गाया। और ये तो हुआ, मैंने आपको बताया साथी कलाकार हम लोग, साथ साथ रेडियो में, क्योंकि वो जमाने में पैरेलल म्यूजिक क्रिएट हो रहा था फिल्म के अलावा, उसे आकाशवाणी ने जब बजाना शुरू करा तो हम पहली बार, मेरा मतलब पैरेलल म्यूजिक से है, जो गैर फिल्मी गाने जो फोक भी नहीं थे, यानी सबसे पहले आप जब गजलें सुन रहे थे जगजीत सिंह साहब को सुन रहे थे वहाँ, जब आप वहाँ पहली बार पंकज उदास जी को सुन रहे थे, और जब आप बेगम साहिबा को सुन रहे थे, या भजनों में आप जब सुन रहे थे अच्छे अच्छे कलाकारों को, और सब बॉम्बे की रिकॉर्डिंग्स होती थी, तो आपको समझ में आता था कि हम यहाँ पे जो लोकल स्तर पे रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, और ये जो एल्बम्स, क्योंकि सबके वो जमाना सीडी का नहीं था तो सबके रिकॉर्ड्स भी नहीं थे, लेकिन संस्कार रोपने में रेडियो का बहुत बड़ा हाथ रहा। आराधना, रामचरितमानस भजन रोज बजते थे, तो एक बड़ा खूबसूरत बैलेंस म्यूजिक का 24 घंटे में रेडियो ने कर रखा था कि सबके हिस्से में सब कुछ था, कुछ इग्नोर नहीं था। फिल्म म्यूजिक भी था, क्लासिकल भी था, और किस्सा कहानी थी, नौटंकी थी, बहनों के लिए भी था, किसानों के लिए था। रेडियो की उम्र इतनी लंबी रही है कि वो हर आदमी के कान पे वो ये रहता था कि उस सबके लिए कुछ ना कुछ है।
0: ये थी पद्मश्री मालिनी अवस्थी, स्वराज सौजन्य, आकाशवाणी लखनऊ। सोचिए, एक ऐसा कैनवस जिस पर हर देश का रंग है, हर सभ्यता की लकीर है, और फिर भी तस्वीर एक है। आने वाली 21 मई को यूनेस्को का विश्व सांस्कृतिक विविधता दिवस है, और आज भारत इस कैनवस का केंद्र है, जहां ICCR जैसी संस्थाएं, विदेशी कलाकारों के हाथ और हमारी अपनी बहुरंगी परंपराएं मिलकर एक ऐसी भाषा बोलती हैं जिसका कोई अनुवाद नहीं होता, पर समझता हर व्यक्ति है। सुनते हैं हमारी अगली प्रस्तुति, एक ही मिट्टी 100-100 रंग।
2: आज से करीब 6 दशक पहले मशहूर विचारक मार्शल मैकलुहान ने एक शब्द दिया था, ग्लोबल विलेज। उन्होंने कल्पना की थी एक ऐसी दुनिया की जो सूचनाओं और तकनीक के जरिए एक छोटे से गांव में सिमट जाएगी।
3: लेकिन सच तो ये है कि मैकलुहान से हजारों साल पहले इस भारत भूमि ने पूरी दुनिया को वसुधैव कुटुंबकम का मंत्र दिया था। भारत के लिए वैश्विक गांव कोई नई खोज नहीं, बल्कि एक प्राचीन जीवन दर्शन है, जहां पूरी दुनिया ही एक परिवार है।
2: इसी शाश्वत विचार और बिखरती हुई वैश्विक कलाओं को एक साझा मंच देने के लिए यूनेस्को ने 21 मई को विश्व सांस्कृतिक विविधता दिवस के रूप में चिन्हित किया है।
3: ये दिन महज एक तारीख नहीं, बल्कि एक जीता जागता स्मारक है इस बात का कि विविधता समाज को बांटती नहीं, बल्कि उसे मुकम्मल बनाती है। आज भारत इसी कल्चरल डाइवर्सिटी के वैश्विक केंद्र के रूप में खड़ा है।
2: भारत दुनिया के लिए एक ऐसी सांस्कृतिक प्रयोगशाला है, जहां 7 समंदर पार के रंग हमारी मिट्टी में मिलकर एक नया इंद्रधनुष बनाते हैं। इस सिलसिले को मजबूत कर रही है भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद, यानी ICCR।
3: एक ऐसा संस्थान जिसका मुख्य उद्देश्य केवल अपनी कला का प्रदर्शन करना नहीं, बल्कि विश्व स्तर पर एक ऐसा साझा मंच तैयार करना है जहां हर संस्कृति को सम्मान मिले और संवाद के लिए नए रास्ते खुलें।
2: सरकार की इन कोशिशों और वैश्विक स्तर पर भारत की बढ़ती सांस्कृतिक धमक पर आइए विस्तार से सुनते हैं परिषद की उप महानिदेशक मनीषा स्वामी को।
4: भारत में हमेशा से ही वसुधैव कुटुंबकम की बात करते आए हैं। हमारी फिलॉसफी जो अप्रोच है सारे दुनिया को लेकर, यूनिवर्सल ब्रदरहुड की जो हम बात करते हैं, ग्लोबल विलेज भी उसी का रिप्रेजेंटेशन है, क्योंकि हम यही मानते हैं कि सारी दुनिया जो है वो एक समुदाय, एक कुटुंब की तरह है। भारतीय कल्चर जो है वो उसके अंदर बहुत ही बेहतरीन तरीके से फिट होता है। तो मुझे लगता है कि कल्चर और ICCR ग्लोबल विलेज में एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में काम कर सकता है। शुरुआत में जब भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद ICCR को मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंतर्गत रखा गया था 1950 में, लेकिन बाद में विदेश मंत्रालय जो है उसके अंतर्गत लाया गया, क्योंकि ये माना गया कि वे फॉरेन पॉलिसी का अभिन्न अंग है। इसीलिए ICCR है, उसका जो मैंडेट है वो यही है कि प्रमोशन ऑफ कल्चरल एक्सचेंजेस, आर्टिस्टिक एक्सचेंजेस, पीपल टू पीपल टाइज, जो हमारे 2-3 वर्टिकल है, उनका मकसद ही यही है कि हम भारतीय संस्कृति का न केवल प्रचार प्रसार करें, बाकी विश्व के साथ में भी हमारे एक्सचेंजेस बढ़े। ICCR आज की तारीख में 38 जो हमारे ICC जिन्हें कहते हैं भारतीय कला केंद्र, वो विश्व में हैं, और हमारे 11 ऑफिस जो हैं वो भारत के अंदर हैं, प्लस जो हमारे भारतीय मिशन हैं और दूतावास और प्रधान कौंसिल, वो हैं 200 के आसपास। उनके द्वारा हम अपने सभ्यता, संस्कृति, अपनी हेरिटेज का प्रचार प्रसार करते हैं। हमारे पास में बहुत सारी एक्टिविटीज हैं, हमारे फ्लैगशिप फेस्टिवल्स हैं। मैं उदाहरण के तौर पर बताना चाहूंगी कि हम भारत से कम 700 आर्टिस्ट हर साल भारत से बाहर परफॉर्म करने के लिए भेजते हैं, और ऐसे ही हम 500 के आसपास जो आर्टिस्ट, विदेशी आर्टिस्ट हैं, जो भारत में आते हैं और वो हमारे फेस्टिवल्स में भाग लेते हैं। भारतीय सभ्यता संस्कृति के साथ साथ में जो विश्व में जो आर्टिस्ट परफॉर्म कर रहे हैं, कला साहित्य संस्कृति की कोई भाषा नहीं होती और वो सबके लिए आनंद का विषय है। और विशेष रूप से ICCR जो है फोक ट्राइबल आर्टिस्ट को प्रमोट कर रहा है, तो ICCR स्कॉलरशिप्स के माध्यम से जो है वो विदेशी छात्रों को भारत में पढ़ने के लिए आमंत्रित करता है, और 4000 स्कॉलरशिप प्रति वर्ष दी जाती हैं, और उसमें भी ग्लोबल साउथ जो हमारा है उसको प्रेफरेंस दी जाती है। कुछ विशेष रूप से स्कॉलरशिप हैं जो पूरे विश्व के लिए ओपन है फॉर परफॉर्मिंग आर्ट। तो इस प्रकार से आयुर्वेदा, योगा, डांस एंड म्यूजिक, एक गिवन पॉइंट पे आप देखेंगे 7-8 हजार स्टूडेंट हमेशा भारत में पढ़ रहे होते हैं। दे आर अवर रियल ब्रांड एम्बेसडर।
3: इस दास्तां का सबसे सुंदर रंग उन विदेशी कलाकारों की आंखों में दिखता है जो यहाँ आकर अजनबी नहीं रहे। सुनिए इन आवाजों को जिन्होंने सरहदों की बंदिशों को पीछे छोड़ दिया और भारत की इस छाव में अपना दूसरा घर ढूंढ लिया।
5: नमस्ते प्यारे दोस्तों, मेरा नाम एके जुगबाय है। 15 साल पहले मुझे भारत सरकार ICCR की छात्रवृत्ति मिली। मुझे एक साल तक नई दिल्ली में रहने और पढ़ने का अवसर मिला। मेरे लिए ये बहुत ही रोचक और शानदार अनुभव था। मेरा जिंदगी नए रंगों में रंग गई। मैंने दिलचस्प लोगों के साथ पढ़ाई की और हिंदी का उपयोग मैं आज भी करती हूँ।
6: नमस्ते, मेरा नाम दरिया है। मैं ICCR के एक प्रोग्राम में हिंदी सीख रही थी और मैं भारत गई थी 2012 और 13 में। हिंदी केंद्रीय संस्थान दिल्ली के अंदर में हिंदी का एक साल का कोर्स पूरा किया था। उसके बाद मैंने अपना BA रशिया से पूरा कर लिया था, मास्टर्स भी पूरा कर लिया था और PhD का कोर्स भी पूरा किया था। उसके बाद मैं हिंदी पढ़ा पाई सेंट पीटर्सबर्ग स्टेट यूनिवर्सिटी में, और अलग अलग क्षेत्रों में मैंने काम किया है। भारतीय लोगों के साथ मैंने बहुत काम किया है, अनुवाद के क्षेत्र में, और भारतीय टूरिस्ट को बहुत घुमाया रूस में, सेंट पीटर्सबर्ग में जो कि मेरा अपना शहर है, और भारतीय प्रतिनिधियों के लिए बहुत अनुवाद किए हैं भारत को जानने के लिए, भारत को घूमने के लिए। हमारे पढ़ाई के दौरान हम ICCR के 2 टूर ले पाए और हम गए थे मुंबई गोवा और कर्नाटक और तमिलनाडु देखने गए थे। और ICCR के प्रोग्राम के तहत हम बहुत सारे देशों के लोगों से भी मिल पाए, दोस्ती बना पाए, और अब मैं ये बता पाऊंगी कि मेरे बहुत सारे दोस्त थे, अलग अलग देशों के दोस्त थे, जिससे मुझे बहुत खुशी और आज तक मेरी बात लोगों से होती रहती है। और मैं सबको ये बोलूंगी, भारत जरूर जाइए, भारत घूमिए, देखिए, हिंदी सीखिए और आपको सफलता मिलेगी।
2: जब कोई विदेशी हाथ भरतनाट्यम की मुद्रा बनाता है या जब कोई विदेशी कंठ संस्कृत के श्लोकों का उच्चारण करता है तो भाषा के सारे फासले मिट जाते हैं।
3: शिकागो से टोकियो और सेंट पीटर्सबर्ग से पेरिस तक आज भारत की मिट्टी की महक हर दिशा में है, चाहे वो आयुर्वेद का प्राचीन संयम हो या भारतीय संगीत की मधुर तान। दुनिया आज भारत को खुले दिल से गले लगा रही है।
2: भारत की ये सांस्कृतिक यात्रा हमें उस मोड़ पर ले आती है जहाँ भूगोल के नक्शे धुंधले पड़ जाते हैं और केवल मानवीय संवेदनाओं के रंग उभरते हैं।
3: आज भारत दुनिया के लिए महज एक गंतव्य नहीं बल्कि वो अनुभव बन चुका है जहाँ अलग अलग संस्कृतियाँ नए रंग उड़ती हैं। संस्कृति भारती के लिए मैं नेत्रा
2: और मैं प्रांजल।
0: ये थी हमारी प्रस्तुति एक ही मिट्टी सौ सौ रंग। एक तरफ बड़े बड़े बाजार हैं, चमक दमक है, विज्ञापन है और दूसरी तरफ एक छोटी सी दुकान, एक कांपती उंगली और उसमें उतरा पीढ़ियों का हुनर। आज की हमारी अगली लघु प्रस्तुति में उन्हीं की बात होगी। वो महिला शिल्पकार जो वोकल फॉर लोकल को सिर्फ नारा नहीं अपना जीवन मानती हैं। सुनते हैं उन्हीं की जबानी उनकी कहानी, वोकल फॉर लोकल हुनरमंद।
7: मेरा नाम सुनीता जाखड़ है। एक्चुअली मैं प्रोफेशनल टेक्सटाइल डिजाइनर हूँ। 12 इयर्स के बाद फिर मुझे काम करते करते मुझे लगा कि मुझे अब अपना खुद का कुछ स्टार्ट करना चाहिए और जो मैं घर बैठे ताकि मैं अपनी फैमिली को भी टाइम दे पाऊँ, अपने बच्चों को भी देख पाऊँ और घर से अपना कुछ स्टार्ट कर पाऊँ। तो उसी से मेरा आइडिया है। मैंने जहाँ कंपनी में काम करती थी वही के मैंने स्टाफ, एक दो स्टाफ मैंने हायर किया, एक मशीन से मैंने स्टार्ट किया, फिर मैंने प्रोडक्ट अपने डिफरेंट डिफरेंट जो ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म है वहाँ पे मैंने उनको लिस्टेड किया। फिर देखा कि वहाँ से बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है अपने प्रोडक्ट को, फिर और हौसला बढ़ाते रहे। मतलब कस्टमर ने ही मुझे यहाँ तक पहुँचाया है। मैं जो भी हूँ अपने कस्टमर्स की वजह से ही हूँ। वो मुझे फीडबैक देते हैं अपना कि इसमें इतना दीपस होना चाहिए, इतना इसमें वेट होना चाहिए, इससे कि हम इजी कैरी कर पाए और हमारे लुक के साथ जो है वो मैच भी हो जाए।

0: तो अपने मोस्टली जो है अपना B2B मैं एग्जीबिशन के थ्रू ज्यादा सेल करती हूँ, बाकी दो अपने ऑफलाइन स्टोर्स हैं। पूरा जो है मैं राजस्थान का आर्ट, आर्किटेक्चर और कल्चर हेरिटेज को ही अपने प्रोडक्ट के थ्रू रिप्रेजेंट करती हूँ। जैसे अपने सेखावटी की हवेलियां मैंने बनाई है, इससे भी मैंने नवलगढ़ की, मंडावा की, वहां का आर्ट फॉर्म लेकर के उसको फोटोशॉप में लेयर टू लेयर उसको एक्सपेरिमेंट करते हैं, रिपीट देखते हैं, कलर देखते हैं कि कहां से कैसा मैचिंग करेगा ताकि मेरे कस्टमर को कुछ नया दे पाऊं। मैं हमेशा मेरी यही कोशिश होती है।
1: मेरा नाम साक्षी है और मैं भादरगढ़ हरियाणा से आई हूँ। मेरा जो काम है वो सांझी कला में है। मैं सांझी कला को प्रोत्साहन देने के लिए और उसको जीवंत रखने के लिए काम कर रही हूँ। और सांझी कला जो है वो बहुत ही प्राचीन कला है, हरियाणा की ही नहीं बल्कि पूरे जो ब्रज क्षेत्र है उसकी जो है वो बहुत ही प्राचीन धरोहर है, तो मैं उसके ऊपर कार्य कर रही हूँ। जिससे मैंने बहुत बचपन से ही करते थे, तो मम्मी काफी चीजें करती रहती थी, तो उन्होंने भी बहुत सारा एक्सपोजर दिया और एग्जीबिशन में भी जाते रहते थे बचपन से। तो ये हमारे घर में ही एक आदत थी कि बचपन से कला की पहचान सीखना। तो मैंने बहुत सारी चीजें ट्राई करी, बहुत सारे आर्ट फॉर्म्स ट्राई करे, लेकिन फिर सांझी पे आके मेरा दिल रुक गया कि मेरे को यही करना है। बहुत कम आर्टिजन है जो ये कर रहे हैं, तो मैंने सोचा कि मैं इसी को क्यों ना एज अ नीच लेके चलूं और फिर उसी में काम करूं। तो मैं अभी लगभग 9 से 10 साल हो गए हैं मुझे आर्ट फॉर्म सीखते हुए भी और करते हुए भी, बाकी लोगों को उसके बारे में बताते हुए। जब मैंने अपना 12th पास किया था उसके बाद से ही मैंने ये आर्ट फॉर्म स्टार्ट कर दिया था करना। इन सब चीजों के बारे में बस पढ़ते थे, तो उसके बाद मुझे मौका मिला ताकि मैं ये आर्ट फॉर्म या इसमें कुछ कर पाऊँ। मेरा जो शहर है भादरगढ़, वहाँ पे साल में एक इवेंट ऑर्गेनाइज होता है, उसमें सिर्फ आर्टिजन को बुलाया जाता है। तो जिनसे मैंने सीखा, श्री राम सोनी जी जो इस कला में निपुण है और उनको नेशनल अवार्ड मिला हुआ है, वो वहाँ पे आए थे, तो मैंने उनका काम देखा, फिर मैंने उनसे प्रेरणा ली। तो मैंने उनके साथ सीखते सीखते उनके साथ काम करते करते मैं आज मेरे को स्टेट अवार्ड मिला हुआ है हरियाणा सरकार की तरफ से।
2: मेरा पूजा राहुल नाम है, मैं गुजरात से हूँ, भावनगर कच्छ के साइड से। मेरा ये काम है ज्वेलरी का काम, सारा हैंडमेड रहता है और मेरी ज्वेलरी भी ऐसी ही रहती है, हमेशा हैंडमेड से बनी हुई पीसेस। जब भी मुझे एक पीस बनाना होता है तो 3-4 दिन में मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। हम इतनी जो मेहनत करते हैं और मेहनत के बाद ये जो हमें फल मिलता है जो सरकार की नजरों में आता है, क्योंकि ऐसे तो बहुत से सब होते हैं कारीगर घर में जो काम करते हैं, पर बहुत मुश्किल है वो बाहर निकल के आ पाए। जो सरकार हमें उभारती है, जो अवार्ड देती है नेशनल।
3: ये थी हमारी प्रस्तुति वोकल फॉर लोकल हुनरमंद, सहयोग श्रीनाथ दीक्षित का था। पर लौटती है तो लगता है जैसे इतिहास ने सांस ली हो। प्रस्तुत है लघु रूपक पुण्य प्रत्यावर्तन।
4: आवाज में उतरने दीजिए इस दृश्य को, हिमालय की गोद में बसा लद्दाख, ऊंचाई ऐसी कि सांस थम जाए, ठंड ऐसी कि पत्थर भी सिहर जाए।
5: और इन्हीं पहाड़ों के बीच इन दिनों एक अलग ही ऊष्मा है, एक अलग ही रोशनी है, एक ऐसी आस्था की लहर जो पूरे भारत में महसूस की जा रही है।
4: वजह है भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेषों का लद्दाख पहुंचना। लोग इसे महज एक आयोजन नहीं मान रहे, उनके लिए ये है बुद्ध का पुनरागमन।
5: सदियों से लद्दाख ने बौद्ध धर्म की उस लौ को थामे रखा है जो बाकी दुनिया में भी रोशनी का पर्याय बन रही है। यहाँ के मठ, यहाँ के भिक्षु, यहाँ की मिट्टी, सब कुछ बुद्ध के संदेश से रचा बसा है।
4: जब पवित्र अवशेषों के प्रदर्शन की बात आई तो लद्दाख को ही चुना गया, लेकिन इन अवशेषों का यहाँ पहुँचना बुद्ध के स्वयं आने जैसा क्यों माना जा रहा है? बता रहे हैं इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फेडरेशन के महानिदेशक श्री अजीत हल्दर।
6: ये जो एक्सपोजिशन है, रिलिक जो है, गौतम बुद्ध के जो अवशेष है, इनको गौतम बुद्ध के खुद उनका अपना ओरिजिनल सेल्फ माना जाता है। जब वो रिलिक को कहीं ले जाते हैं हम किसी देश में, तो बौद्ध देश में जो बुद्धिस्ट हैं वो मानते हैं कि गौतम बुद्ध खुद आए हमारे देश। लद्दाख में लेने का मतलब इसलिए है क्योंकि लद्दाख ही एक ऐसा जगह है जहाँ पे सब बौद्ध ट्रेडिशंस जो है वो एक साथ मिलके रह रहे हैं फॉर सेवरल सेंचुरीज। और लद्दाख में जो मोनेस्ट्रीज हैं, 100 से ऊपर मोनेस्ट्रीज है, हमें सिर्फ जो मेन मोनेस्ट्रीज उनके बारे में ज्यादा ज्ञान है। तो इतने सालों से इन मोनेस्ट्रीज ने बुद्धिस्ट आर्ट, स्क्रिप्चर,

0: मैनुस्क्रिप्ट्स, बुद्धिस्ट चैंटिंग, बुद्धिस्ट वैल्यू सिस्टम्स को एक जगह संगठित तरीके से रखा हुआ है, मगर ज्यादा लोगों को इसके बारे में पता नहीं है। वो अपने कोने में कहीं पे लद्दाख में बैठे हुए अपने पास अपने सब एकत्रित करके किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहते हैं। रैली ले जाने का मतलब यह है कि दूर दराज जगहों से लेह में जो लद्दाख में जो लोग हैं सबको एक जगह लाया जाए, हर एक कोने से लोग जो बुद्धिस्ट रह रहे हैं लद्दाख में सबको लाने का बंदोबस्त किया गया है। तो ये पूरा लाके एक माहौल ऐसे क्रिएट किया जाएगा ताकि गौतम बुद्ध का जो सीख है कंपैशन विजडम एंड पीस, इसके जरिए सब पे ये मैसेज जाएगा कि भाई आप लोगों ने इतने सालों से जो इतना बढ़िया काम किया उसका जो एक ट्रिब्यूट कह सकते हैं जो दिया जा रहा है आपको, ये गौतम बुद्ध का आशीर्वाद, बुद्ध खुद आपके जमीन में आके आपको आशीर्वाद दे रहा है।
1: 21 अप्रैल से 15 मई 2026 तक लेह से जांस्कर तक ये आयोजन एक आध्यात्मिक यात्रा की तरह चल रहा है। प्रार्थना सभाएं, ध्यान सत्र, सांस्कृतिक संध्याएं, बौद्ध दर्शन पर संवाद
2: और 1 मई बुद्ध पूर्णिमा के पावन अवसर पर पवित्र अवशेषों के सार्वजनिक दर्शन का अवसर भी खुला।
1: ये आयोजन केवल आस्था का पर्व नहीं, ये लद्दाख को दुनिया के नक्शे पर और गहरे अंकित करने का अवसर भी है।
2: केंद्रीय मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत बता रहे हैं कि किस तरह यह महोत्सव लद्दाख की सांस्कृतिक पहचान और पर्यटन दोनों को नई ऊंचाइयां देगा।
3: भारत में और भारत की वांगमय में भगवान बुद्ध का चरित्र, भगवान बुद्ध का व्यक्तित्व, भगवान बुद्ध का जीवन और उनका दर्शन, ये सब निश्चित रूप से एक स्ट्रांग होल्ड पिलर के रूप में है। और भगवान बुद्ध के जीवन से जुड़े हुए उनके प्रत्यक्ष स्मृति अवशेषों का इस तरह का प्रदर्शन और उसके चलते हुए जिस तरह की ऊर्जा का उत्सर्जन वहाँ लद्दाख में होगा, ये बहुत महत्वपूर्ण। और क्योंकि निश्चित ही इस प्रदर्शनी के चलते हुए देश और दुनिया से अनेक लोग लद्दाख में जाने वाले हैं, स्थानीय लोग भी लद्दाख में, उसके कारण से डोमेस्टिक टूरिज्म भी बढ़ने वाला है। और जब इस तरह का बड़ा आयोजन किसी क्षेत्र में होता है, किसी जगह पर होता है, तो निश्चित ही उसके प्रति एक ध्यान आकर्षित पूरे विश्व भर का होता है, एक नई जो है उत्सुकता उस क्षेत्र को लेकर के डेवलप होती है। मैं ये मानता हूँ कि इसका बहुत बड़ा सकारात्मक प्रभाव जो है वो लद्दाख के पर्यटन पर पड़ेगा।
2: शांति, करुणा, धैर्य, बुद्ध के ये तीन शब्द लद्दाख की हर घाटी में, हर मठ की दीवार पर, हर भिक्षु की सांस में जीते हैं।
1: आज जब ये पवित्र अवशेष इस धरती पर है तो लगता है जैसे बुद्ध स्वयं कह रहे हो, मैं यहाँ था, मैं यहाँ हूँ और रहूंगा। संस्कृति भारती के लिए मैं प्रांजल
2: और मैं नेत्रा।
4: बुद्ध ने कहा था, जो जाता है वो स्मृति में लौटता है, और आज की इस पत्रिका के अंतिम पड़ाव पर हम उन्हें याद करते हैं जो चले गए पर जिनके अवदान आज भी हमारे बीच मौजूद हैं और हमें समृद्ध कर रहे हैं। भारत रत्न पंडित पी.वी. काणे, जिन्होंने धर्मशास्त्र अध्ययन को नई ऊंचाइयां दी। अमर शहीद मास्टर अमीर चंद, जिन्होंने देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। कवि गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर, जिनके शब्दों में पूरा विश्व, पूरा आकाश समाया हुआ है। सत्यजीत रे, जिन्होंने सिनेमा को ही कविता बना दिया। और विदुषी गिरिजा देवी, जिनके स्वर में गंगा सी पवित्रता थी। इन सभी विभूतियों को पत्रिका का शत शत नमन। इसी के साथ संस्कृति भारती का ये अंक अब संपन्न होता है। नवोदिता को अनुमति दीजिए। नमस्कार।
5: ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। रात्रि के 10 बजे हैं। प्रस्तुत है आदिवासी लोकवादी धुन का कार्यक्रम पाड़। इसमें आज आप सुनेंगे तेल जगानी पाड़ और उड़जा पाड़। वादक कलाकार हैं सोनारू और साथी।

0: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सह कर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
1: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ। चेटिनाड सीमेंट, द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
0: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सह कर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
1: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ। चेटिनाड सीमेंट, द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
0: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सह कर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
1: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट।

आप सुन रही थी लोकवाद्य धुन का कार्यक्रम पाड़। वादक कलाकार थे सोनारू और साथी। ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। रात्रि की 11 बजने को हैं। कुछ ही पलों में हिंदी और अंग्रेजी में समाचार आकाशवाणी की दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अपर्णा सिंह। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी विधायक दल के नेता शुभेंदु अधिकारी ने आज मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इसके साथ ही राज्य में पहली बार भाजपा सरकार का गठन हुआ। राज्यपाल आरएन रवि ने कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में श्री अधिकारी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। राज्यपाल ने मुख्यमंत्री के साथ 5 कैबिनेट मंत्रियों को भी शपथ दिलाई। इनमें दिलीप घोष, अग्निमित्रा पॉल, अशोक कीर्तनिया, निशीत प्रामाणिक और खुदीराम टुडू शामिल हैं। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए और भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन और पार्टी के अन्य नेता उपस्थित थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बनने पर शुभेंदु अधिकारी को बधाई दी। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि श्री अधिकारी ने जनता से गहराई से जुड़े रहने और उनकी आकांक्षाओं को करीब से समझने वाले नेता के रूप में अपनी पहचान बनाई है। प्रधानमंत्री ने 5 मंत्रियों को भी शपथ लेने पर बधाई दी। तमिलनाडु में तमिलग्म वेत्री कड़गम टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय ने आज लोकभवन में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अलेकर से मुलाकात की और 120 विधायकों के समर्थन के साथ सरकार बनाने का दावा पेश किया। हमारी संवाददाता ने बताया कि श्री विजय कल तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे।
1: हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों में टीवी के 108 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है। 234 सदस्यों वाली तमिलनाडु विधानसभा में पार्टी को नई सरकार के गठन के लिए 118 सीट की आवश्यकता है। चेन्नई में आज संवाददाताओं से बातचीत में टीवी के नेता अधव अर्जुन ने बताया कि वीसीके और आईयूएमएल दोनों ने सरकार गठन के लिए उसे बिना शर्त समर्थन दिया है। 2 विधानसभा क्षेत्रों से जीत हासिल करने वाले विजय को 1 सीट खाली करनी होगी, जिससे टीवीके की संख्या घटकर 107 रह जाएगी। हालांकि टीवीके पार्टी को कांग्रेस, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, वीसीके और आईयूएमएल से कुल 13 विधायकों का समर्थन मिल चुका है। इनमें कांग्रेस के 5 और अन्य सहयोगी पार्टियों के 2-2 विधायक हैं। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल कर्नाटक और तेलंगाना के दौरे पर रहेंगे। वे बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग की 45वीं वर्षगांठ और इसके संस्थापक गुरुदेव श्री श्री रविशंकर के 70वें जन्मदिन समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी आर्ट ऑफ लिविंग परिसर में नए ध्यान मंदिर और ध्यान कक्ष का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री आर्ट ऑफ लिविंग कार्यक्रम के लिए रवाना होने से पहले सभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री हैदराबाद में विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री वारंगल में पीएम मित्रा पार्क का भी उद्घाटन करेंगे। श्री मोदी हैदराबाद में अत्याधुनिक कैंसर अस्पताल का भी लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री सिकंदराबाद के परेड ग्राउंड में एक जनसभा में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित भी करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री कल ही 2 दिन के गुजरात दौरे पर जाएंगे। दौरे के दूसरे दिन श्री मोदी सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित सोमनाथ अमृत महोत्सव में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री कई धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में शामिल होंगे। भारतीय तटरक्षक बल ICGS ने आज गोवा शिपयार्ड लिमिटेड में नई पीढ़ी के अदम्य श्रेणी के फास्ट पेट्रोल वेसल श्रृंखला के नवीनतम पोत ICGC अचल को सेवा में शामिल किया। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि ये पोत तटीय और अपतटीय निगरानी, अवरोधन गतिविधि, खोज और बचाव, तस्करी रोधी अभियान और समुद्री प्रदूषण से निपटने के अभियान में सहयोग करेगा। चीन के शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में साहिल जाधव ने पुरुषों की व्यक्तिगत कंपाउंड स्पर्धा में कांस्य पदक जीत लिया है। साहिल ने कांस्य पदक के लिए मुकाबले में डेनमार्क के मार्टिन डेम्सबो को हराया। भारतीय महिला रिकर्व टीम कल स्वर्ण पदक के लिए चीन का सामना करेगी, जबकि सिमरनजीत कौर अपना सेमीफाइनल मुकाबला खेलेंगी। भारत ने कल ओडिशा के डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेड री एंट्री व्हीकल MTRV प्रणाली से लैस उन्नत अग्नि मिसाइल का सफल परीक्षण किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय रेणुका। Swendu Adhikari took oath as the first BJP Chief Minister of West Bengal today. Governor R. N. Ravi administered the oath of office and secrecy to Mr. Adhikari at a grand ceremony held at the Brigade Parade Grounds in Kolkata. Along with him, five other MLAs including Dilip Ghosh, Agnimitra Paul, Ashok Kirtanya, Nisit Pramanik and Shuddhiram today were sworn in as cabinet ministers. Prime Minister Narendra Modi, Union Home Minister Amit Shah, Defence Minister Rajnath Singh, Chief Ministers of various NDA and BJP-ruled states, BJP President Nitin Naveen and several other leaders of BJP attended the ceremony. The swearing-in ceremony was held on Pochishe Boishak, marking the 165th birth anniversary of poet Guru Rabindranath Tagore. The BJP registered a decisive victory in the recent state assembly elections, securing 207 seats in the 294-member house and ending the 15-year rule of the Trinamool Congress, which was reduced to 80 seats. In Tamil Nadu, TVK Chief C. Joseph Vijay today met Governor Rajendra Arlekar at Lok Bhavan in Chennai and staked claim to form government with the support of 120 MLAs. Mr. Vijay is said to take oath as the Chief Minister of Tamil Nadu tomorrow. Tamilaga Vetri Karagam, TVK, which emerged as the single largest party with 108 seats in the recent assembly polls, achieved the majority mark of 118 in the 234-member house required to form a new government in the state by securing backing from Congress, left parties, Vidudalai Sirithagai Katchi, VCK and the Indian Union Muslim League, IUML. Vijay, who won from two assembly constituencies, will have to vacate one seat, reducing TVK's strength to 107. The combined strength of the supporting parties, including Congress with five MLAs and CPI, CPIM, VCK and IUML with two MLAs each, stands at 13. The top brass of the Congress party today held a meeting in New Delhi to discuss government formation in Kerala. The meeting convened by Congress Chief Mallikarjun Kharge at his residence was attended by senior party leader Rahul Gandhi, party general secretary in charge of the state Deepa Dasmunshi, general secretary organization KC Venugopal and senior Kerala leaders Ramesh Chinnitala and VD Satheesan. The party said Congress Chief Mallikarjun Kharge and Rahul Gandhi will take the final decision on the new Kerala Chief Minister and the name will be announced very soon. Prime Minister Narendra Modi will visit Karnataka and Telangana tomorrow. Mr. Modi will first travel to Karnataka to participate in the 45th anniversary celebrations of the Art of Living in Bengaluru. He will also inaugurate the newly constructed Dhyan Mandir at the Art of Living International Centre. Thereafter, Prime Minister Modi will travel to Telangana to lay the foundation stone and inaugurate multiple development projects worth around 9,400 crore rupees in Hyderabad. These projects collectively aim to strengthen connectivity, improve logistics efficiency, enhance safety and provide a better travel experience for people. Later in the day, Mr. Modi will reach Jamnagar on a two-day visit to Gujarat. India has conducted a successful flight trial of an advanced Agni missile with MIRV, Multiple Independently Targeted Re-entry Vehicle System, from Dr. APJ Abdul Kalam Island in Odisha. In a social media post, the Defence Ministry said the missile was flight-tested yesterday with multiple payloads targeted to different targets spatially distributed over a large geographical area in the Indian Ocean region. Defence Minister Rajnath Singh has complimented DRDO, Indian Army and industry on the successful flight test of Agni missile with MIRV capability. Mr. Singh said the achievement will add an incredible capability to the country's defence preparedness against the growing threat of perceptions. In archery, India, Sahil Jadhav won a bronze medal in the men's individual compound event at the World Cup 2026 Stage 2 in Shanghai, China today. The 25-year-old Maharashtra archer defeated Denmark veteran player-cum-coach Martin Damsbo 147-144 in the bronze medal playoff to secure India's first medal of the ongoing tournament. And with that, we end this news bulletin.
3: मीडियम वेव 396.82 मीटर अर्थात 756 किलोहर्ट्ज़, FM बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। रात के 11:10 हुए हैं। हमारी ये सभा अब समाप्त होती है। सुबह 5:55 पर प्रातःकालीन सभा के कार्यक्रमों के साथ हम पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। जय हिंद।